सुप्रभात। मीडियम वेव 374.5 मीटर अर्थात 801 किलोहर्ट्ज़ और एफएम बैंड 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी जबलपुर है। आज सोमवार है, शक संवत 1948 के वैशाख मास की 21वीं तिथि, तदनुसार 11 मई सन 2026। सुबह के 5:58 हुए हैं। हमारा आज का ये प्रसारण आरंभ होता है।

0: मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी जबलपुर है। 6 बजने को है समाचार। कुछ ही पलों में हम दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि केंद्र सरकार के प्रयासों के कारण भारत पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न ऊर्जा संकट का प्रभावी ढंग से प्रबंधन कर रहा है। श्री मोदी ने तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में लोगों से ईंधन का संयमित उपयोग करने की अपील की।
2: जो एनर्जी प्रोडक्ट हम विदेशों से मंगाते हैं, हमें प्रयास करना है कि जितनी जरूरत है उतना ही उपयोग करें। इससे विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी और युद्ध के संकट से होने वाले दुष्प्रभाव को भी कम किया जा सकेगा।
1: प्रधानमंत्री ने हैदराबाद में लगभग 9400 करोड़ रुपए की ढांचागत और औद्योगिक परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं का उद्देश्य राज्य को विनिर्माण के केंद्र के रूप में स्थापित करना, यातायात संपर्क मजबूत करना, रोजगार सृजित करना, परिचालन तंत्र में सुधार और सुरक्षा को बढ़ावा देकर लोगों को बेहतर यात्रा सुविधा प्रदान करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात में सोमनाथ अमृत पर्व में शामिल होंगे। प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर यह पर्व मनाया जा रहा है। श्री मोदी सोमनाथ महादेव की पूजा करेंगे और कुंभाभिषेक करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री जनसभा को संबोधित करेंगे और रोड शो में शामिल होंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और उप मुख्यमंत्री हर्ष सांघवी भी उपस्थित रहेंगे। असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने श्री हेमंत बिस्व सरमा को राज्य में नई सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया है। इससे राज्य में एनडीए के लगातार तीसरे कार्यकाल का रास्ता साफ हो गया है। भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए के विधायक दल का सर्वसम्मति से नेता चुने जाने के बाद श्री सरमा ने गठबंधन के नेताओं के साथ लोकभवन में राज्यपाल से मुलाकात की और औपचारिक रूप से सरकार बनाने का दावा पेश किया। श्री आचार्य कल श्री सरमा और नई मंत्रिपरिषद के सदस्यों को पद और गोपनीयता की पद दिलाएंगे। स्पेन के कैनरी द्वीप समूह के पास जहाज पर घातक हंता वायरस प्रकोप के बाद यात्रियों और चालक दल के सदस्यों को उतार कर उनके देशों में भेजा जा रहा है। बीमारी के प्रसार को रोकने के लिए सभी यात्रियों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोटोकॉल के अंतर्गत

0: रखा गया है। स्पेन और फ्रांस के नागरिकों को लेकर सरकारी विमान स्थानीय समय अनुसार कल दोपहर मैड्रिड और पेरिस पहुंचे। यात्रियों को परीक्षण के लिए अस्पताल ले जाया गया। कनाडा, तुर्की, ब्रिटेन, आयरलैंड और अमेरिका के नागरिकों के आज पहुंचने की संभावना है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जहाज के सभी यात्रियों के लिए 42 दिन के क्वारंटाइन की सिफारिश की है। स्पेन में भारतीय दूतावास ने कहा है कि हंता वायरस से प्रभावित जहाज से उतारे गए दोनों भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं और उनमें बीमारी के कोई लक्षण नहीं हैं। इस जहाज पर दो भारतीय सहित लगभग 150 लोग सवार थे। रूस ने कहा है कि वह नाटो या जर्मनी के साथ युद्ध नहीं चाहता, लेकिन यूरोप में संयुक्त परमाणु सुरक्षा कवच पर चर्चाओं से महाद्वीप का रणनीतिक संतुलन बिगड़ सकता है। जर्मनी में रूस के राजदूत सर्गेई नेचेयोव ने बर्लिन में कहा कि यूरोप में परमाणु खतरे के किसी भी विस्तार से रूस को अपने परमाणु सिद्धांत पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर मॉस्को को सैन्य खतरों का सामना करना पड़ा तो वो संयम की गारंटी नहीं दे पाएगा। भारत के 6 खिलाड़ी ताशकंद में एशियाई अंडर 15 मुक्केबाजी चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गए, जबकि 7 को कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा। सेमीफाइनल में कल यश कुमार ने 33 किलो वर्ग संयुक्त अरब अमीरात के कियान इकबाल को 5-0 से हराया। 37 किलो वर्ग में वसंत अशोक कुमार ने किर्गिस्तान के अजितरेताली संचार बेकोफ को हराया। वहीं 43 किलो वर्ग में समीर बोहरा ने उज्बेकिस्तान के अदिजबेक इकलो में वो को 4-1 से जीत दर्ज की, जबकि सुदर्शन वासुदेव चांडक ने 52 किलो वर्ग में ईरान के अमीर मेहदी शाद को पराजित किया। 58 किलो वर्ग में मोहम्मद यासिर ने ईरान के सैयद दरिया मोहम्मद मूसा को, जबकि 67 किलो वर्ग में रौनक पराग लोखंडे ने किर्गिस्तान के मुखमदाली बेर्दिकोव को हराया। रोहित पोथियाना, नितिन नोपोंगकनबा, मेतई ओइना, प्रशांत हर्षवर्धन जीना, देव और सुशांत जयानी सेमीफाइनल में हार का सामना करना पड़ा। आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने मुंबई इंडियंस को 2 विकेट से हरा दिया है। मुंबई इंडियंस ने निर्धारित 20 ओवर में 166 रन बनाए। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 8 विकेट खोकर जीत का लक्ष्य हासिल कर लिया। भुवनेश्वर कुमार को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इससे पहले चेन्नई सुपर किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 5 विकेट से हराया। टूर्नामेंट में आज शाम 7:30 बजे धर्मशाला में पंजाब किंग्स का सामना दिल्ली कैपिटल्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 374.5 मीटर अर्थात 801 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी जबलपुर है। 6:05 हुए हैं। विचार मंथन। स्वामी विवेकानंद का कथन है, हम वो हैं जो हमारी सोच ने बनाया है। इसलिए इस बात का ध्यान रखिए कि आप क्या सोचते हैं। आकाशवाणी जबलपुर से अब प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। कार्यक्रम में सबसे पहले मातृ वंदना।

समूह स्वर में आप सुन रहे थे ये देशभक्ति गीत, और आइए अब सुनते हैं हरिओम शरण की आवाज़ में उन्हीं की लिखी ये भक्ति रचना।

ये भजन आपने सुना लखबीर सिंह लखा और साथियों की आवाजों में, और अब कार्यक्रम का आखिरी भक्ति गीत। आवाज है जगजीत सिंह की।

0: आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना, मीडियम वेव पर ये आकाशवाणी जबलपुर है। अब सुनिए चिंतन। आलेख श्रीमती आशा दुबे का है और वाचक हैं शैलेंद्र जोगी।
1: माता और पिता इस धरती के जीवित देवता हैं। भारतीय संस्कृति में इन देवताओं को पूज्य माना गया है। दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज इनकी सबसे ज्यादा उपेक्षा की जा रही है। बाजारवाद के दौर में एक और ग्लोबलाइजेशन की चर्चा है। पूरी दुनिया सिमट सिकुड़कर छोटा सा रूप लेती जा रही है। हम चंद घंटों में हवाई मार्ग से देश के एक भूभाग से दूसरे भूभाग तक पहुंच जाते हैं और विश्व के दूसरे देश तक भी जाया जा सकता है, परंतु दूसरी ओर मनुष्य मनुष्य से दूर होता जा रहा है। उसमें एकाकीपन और अजनबीपन बढ़ रहा है। वो अपने आत्मीय रिश्तों को भूलता जा रहा है। कभी संयुक्त परिवारों के भारतीय आदर्श को तोड़ा गया और हम दो हमारे दो का नारा

0: बुलंद हुआ। पति पत्नी और उनके संतानों को ही परिवार माना गया। एकल परिवारों की संख्या बढ़ी। अब आलम यह है कि बड़े होते हुए बच्चे अपने माता पिता से किनारा करने लगे हैं, उन्हें माता पिता बोझ लगने लगे हैं, इसलिए वृद्धाश्रमों का चलन बढ़ रहा है। बाजारवाद ने यूज एंड थ्रो का कल्चर दिया है, जिसमें उपयोग के बाद वस्तु फेंक देने के चलन के अनुरूप माता पिता को भी उपयोग के बाद फेंक देने का विधान चल पड़ा है। भावनाएं मरती जा रही हैं। आज व्यक्ति किसी के प्रति कृतज्ञ नहीं रहना चाहता। कृतज्ञता भारतीय संस्कृति की मूल पहचान रही है। हमने हवा से जीवन पाया तो उसे पवन देवता कहा। जल, पृथ्वी, आकाश, अग्नि, सूर्य, वृक्ष, वनस्पतियों से कुछ न कुछ पाया तो हम इनके प्रति कृतज्ञता भार से नमित हुए। इन देने वालों को हमने देवता कहा और देवताओं की पूजा की। मनुष्य सर्वदा चाहता रहा है कि उसे कोई कुछ दे और देने वाले उपकारी के प्रति पूजा का भाव रखा। हम भगवान को मानते मनाते हैं कि वे हमें कुछ दें। हमें जीवन में जो कुछ मिलता है हम उसे प्रभु कृपा का प्रसाद मानते हैं और प्रसन्न होते हैं कि हमें ईश्वर ने दिया। हम उस ईश्वर की पूजा करते हैं। वो दृश्यमान जगत में हमें दिखाई तो नहीं देता कि उसने हमें दिया, पर माता पिता वे तो हमें दिखाई देते हैं। महाभारत में कथा आती है कि प्यासे चार पांडवों द्वारा यक्ष के प्रश्न का उत्तर न दिए जाने और जल पीने के धृष्टता करने पर मृत्यु को प्राप्त होने पर ज्येष्ठ पांडुपुत्र युधिष्ठिर आते हैं तो यक्ष उनसे प्रश्न करता है, वे उत्तर देते हैं। उनमें से एक प्रश्न है, आकाश से ऊंचा कौन? महाराज युधिष्ठिर कहते हैं, पिता। इसी तरह पृथ्वी से अधिक सहनशील माता को माना गया। माता पिता दोनों की गरिमा के गुण बताए गए। एक लोक कथा आती है कि पनघट पर खड़ी महिलाएं अपने अपने पुत्रों का गुणगान कर रही थी। किसी का बेटा इंजीनियर तो किसी का पहलवान, किसी का बड़ा दुकानदार तो किसी का अफसर। भोली भाली महिला के पास कहने को कुछ नहीं था। तभी सबने देखा उसका बेटा चला आ रहा था। उसने अपनी माँ को देखा तो जल से भरे मिट्टी के घड़े अपने सर पर रख लिए और दोनों हाथों में बाल्टी लेकर चल पड़ा। वे अवाक देखती रह गई। किसी ने अफसर बनाया था तो किसी ने इंजीनियर, पर अपना बेटा किसने बनाया था? हम बच्चों को पढ़ाकर अच्छी नौकरी दिलाकर विदेश भेजने में गौरव मानते हैं, पर क्या उन्हें अपना बेटा अपना आज्ञाकारी बना पाते हैं? चिंतन के इन क्षणों में जरा सोचें, माता पिता इस धरती के जीवित देवता हैं जो हमें प्रत्यक्ष दिखाई पड़ते हैं और हमारी सेवा सहायता करते हैं। हम कहां वरदान पाने बाबाओं के चक्कर में पड़े रहते हैं और अनुदान वरदान देने वाले इन भगवानों को बिल्कुल भूल जाते हैं। इन्हें पूजने की परंपरा फिर डालें विचार।
1: आपने सुना चिंतन, आलेख श्रीमती आशा दुबे का था और वाचक थे शैलेंद्र जोगी। मीडियम वेव पर ये आकाशवाणी जबलपुर है। प्रस्तुत है श्री रामचरित मानस गान। आज की कड़ी में स्वर है वाणी जयराम का।

वन गमन के लिए श्रीराम माता कौशल्या की आज्ञा और आशीर्वाद ले चुके हैं। उसी समय आकुल सीता वहां पहुंचती हैं। सास के चरणों की वंदना करके सिर झुकाकर वहां बैठ जाती हैं। पैर की अंगुलियों के नाखून से धरती कुरेदती हुई सोच रही हैं कि किस सुकर्म का फल उन्हें प्राप्त होगा। शरीर तथा प्राण दोनों पति के साथ जाएंगे या केवल प्राणों को ही उनका साथ प्राप्त होगा। उनके सुंदर नेत्रों से अविरल अश्रु प्रवाहित हो रहे हैं। पुत्र वधु की ये दशा देख माता कौशल्या उनके लिए सास ससुर और सभी कुटुंबियों के स्नेह और सद्भाव की चर्चा करती हैं। जिस सुकुमारी के पिता राजाओं के शिरोमणि जनक हैं, श्वसुर सूर्यवंश के सूर्य और पति सूर्य कुल के कमल को खिलाने वाले चंद्रमा के समान रूप और गुण के भंडार हैं, ऐसी रूप राशि और शीलवंती बहू को माता कौशल्या ने आंखों की पुतली के समान प्यार से रखा है। माता कौशल्या का श्रीराम से प्रश्न है कि सीता के लिए उनकी क्या आज्ञा है। क्या विधाता ने सीता को वन के कष्ट भोगने के लिए रचा है? सीता यदि खर ही रहें तो माता कौशल्या को बड़ा सहारा मिल जाएगा।

0: आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस गान, स्वर था वाणी जयराम का। मीडियम वेव पर ये आकाशवाणी जबलपुर है। अब सुनिए कृषि समय की, विषय है पराली यानी फसल अवशेष न जलाएं।
1: अक्सर हमने ये देखा है कि हमारे किसान बहन भाई गेहूं की खासकर कटाई होने के बाद खेत में आग लगा देते हैं। ये अच्छा नहीं है। नरवाई जलाना भले ही तात्कालिक रूप से सरल उपाय होता है, इसके कारण मेड़ों पर स्थित घास, छोटे बड़े वृक्ष, चूहे खाकर खेती को अप्रत्यक्ष रूप से सहारा देने वाले सर्प, कीड़े, इल्ली खाने वाली चिड़िया और इन सब पक्षियों को भी नुकसान होता है, जो कि हमारे मित्र पक्षी या पशु होते हैं, और इससे प्राकृतिक संतुलन बिगड़ने लगता है। जब प्राकृतिक संतुलन बिगड़ेगा तो आप कीटनाशक दवाओं पर पूरी तरह से निर्भर हो जाते हैं। यदि कीटनाशक दवाओं पर पूरी तरह से निर्भर हो जाएंगे तो अंततः प्रदूषण बढ़ेगा और सबसे बड़ी बात, हमारी खेती की लागत बढ़ जाएगी, क्योंकि हमारे पास ना तो मित्र जीव हैं और ना ही मित्र पक्षी हैं जो कि हमारी दवाई की लागत को कम कर सकते हैं। कई बार नरवाई में आग लगने से निरीह जंगली प्राणी भी इसके शिकार बन जाते हैं। एक बात और ध्यान रखें कि पशुधन की उदर पूर्ति के लिए या उनके खाने के लिए भूसे की बहुत ज़रूरत पड़ती है, इसलिए हमारा पहला कर्तव्य तो ये होता है कि भूसे की उपलब्धता को बढ़ाना चाहिए। इसके लिए नरवाई जलाना कोई उपाय नहीं होता है। सूखे और अकाल के समय घास, चारे, भूसे के अभाव में पशुधन तिल तिल करके भूख से मरने लगते हैं। अकाल के समय मनुष्य अपने उदर पूर्ति के लिए अनाज की व्यवस्था कहीं ना कहीं से कर लेता है, परंतु चारे के अभाव में या घास फूस और भूसे के अभाव में पशुओं का नुकसान हो जाता है, इसलिए नरवाई जलाना ठीक नहीं होता है। हार्वेस्टर से यदि हमने गेहूं की कटाई की है तो इसमें सबसे अच्छी बात है कि अब स्ट्रॉ रीपर आ गया है। स्ट्रॉ रीपर से भूसा संग्रहण करना चाहिए, जिससे कि भूसा अच्छा बनता है और पशु चारे के लिए उपयोग में आता है। यदि भूसा आपके पास रहेगा तो आपका पशु उत्पादन भी अच्छा देगा, जिससे कि आमदनी बढ़ेगी। स्ट्रॉ रीपर से भूसा बनाने में होने वाला घाटा कम हो जाता है और लाभ बढ़ जाता है। भूसे के संदर्भ में एक पुरानी कहावत है ना, आपने सुनी भी होगी किसान बहनों भाइयों, खाद पड़े तो खेत, नहीं तो कूड़ा रेत। बिना जैविक खाद डाले खेती से अच्छा उत्पादन लेने की परिकल्पना हम कर ही नहीं सकते। नरवाई में आग लगने से कई घटनाएं होती हैं, जिससे गांव के गांव उजड़ जाते हैं और किसानों का नुकसान होता है। जब हम खेती करते हैं तो सूक्ष्म जीवाणु जो होते हैं मिट्टी के, वो हमारी फसल को उन्नत बनाते हैं या उसका उत्पादन बढ़ाते हैं। जब हम खेत की नरवाई जलाते हैं तो ये सूक्ष्म तत्व जलकर नष्ट हो जाते हैं। ये आपका भ्रम है किसान बहनों भाइयों कि जो राख बचती है उससे उत्पादन अच्छा होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। जो सूक्ष्म तत्व इसमें जल के नष्ट हो जाते हैं वो आपके उत्पादन को कई गुना बढ़ा सकते थे। इससे आपकी मिट्टी की स्थिति भी खराब होती है और भूमि की स्थिति खराब होने के कारण आपकी फसल में आगामी समय में धीरे धीरे नुकसान होना आरंभ हो जाता है। यही सूक्ष्म तत्व जो है जो पौधों की जड़ों से और मिट्टी के बीच में संपर्क स्थापित करते हैं, जिससे कि पौधों की वृद्धि बढ़ती है और पोषक तत्वों को पौधे आसानी से ले सकते हैं। परंतु यदि नरवाई जलाई गई या आग लगाई गई खेतों में, तो उससे जहाँ एक और ये सूक्ष्म जीवाणु नष्ट होने से वृद्धि हमारी कम होती है, हमारी उपजाऊ शक्ति कम होती है, वहीं मिट्टी या भूमि जो होती है, मृदा जो होती है, ये कड़ी और ठोस होने लगती है। इसके होने से जो नमी संरक्षण का कार्य है वो नहीं हो पाता। इसके साथ साथ इसके अंदर इसके आकार में भी फर्क आता है। ये आकार धीरे धीरे परिवर्तित होता है रेगिस्तान वाली आकार के रूप में, यानी कि मिट्टी आपकी धीरे धीरे उपजाऊ से कड़ी होते होते फिर ये रेत के रूप में परिवर्तित होने लगती है। तो आने वाले समय में यही खेत जो कि अभी उपजाऊ दिख रहे हैं, काली मिट्टी वाले अच्छे दिख रहे हैं या हमारी उपजाऊ मिट्टी वाले हैं, ये बंजर हो जाएंगे और बंजर होने से आप जानते हैं कि हमें कितना नुकसान होगा।
0: फसल अवशेष ना जलाएं, कृषि सामयिकी में आप सुन रहे थे इस विषय पर जानकारी, प्रस्तुति थी विपिन यादव की।

मीडियम वेव पर ये आकाशवाणी जबलपुर है। अब सुनिए कार्यक्रम विवरण। श्री सोमनाथ अमृत पर्व पर माननीय प्रधानमंत्री जी के संबोधन का सीधा प्रसारण इस सभा में 11:10 से हम दिल्ली केंद्र से करेंगे। सुबह 7:20 पर सुनिए कार्यक्रम गुड मॉर्निंग जबलपुर, जिसमें चर्चा और फिल्म संगीत के अलावा आपको सुनाएंगे श्रीमती वंदना रघुवंशी की वार्ता जबलपुर की पूरा संपदा। सुबह 8:30 पर सुनिए फिल्म संगीत। 9 होता है लोक संगीत का कार्यक्रम लोक रसथार। आज के इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे तिलोत्तमा विश्वकर्मा और शोभा भट्ट के गाए बुंदेली लोकगीत। सुबह 9:30 पर उर्दू कार्यक्रम आईना हम भोपाल केंद्र से रिले करेंगे। 10:05 पर हमारे केंद्र से आप सुनेंगे कार्यक्रम वंदे मातरम गौरव गान की 150वीं। 10:10 पर समाचार बुलेटिन विश्व दर्पण हम दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे और 10:20 पर सुनिएगा फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम सारंगा।

दूसरी सभा में शाम 5:02 पर कार्यक्रम युववाणी आकाशवाणी भोपाल से अनुप्रसारित किया जाएगा। 5:30 पर सुनिए फिल्म संगीत। शाम 6:00 हमारे केंद्र से आप सुन सकते हैं NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। शाम 6:30 पर सुनिए संजीव सिन्हा के गाए लोकगीत। शाम 6:40 पर आजकल और 6:45 पर प्रादेशिक समाचार दर्शन। क्षेत्रीय समाचार एकांश भोपाल के ये दोनों कार्यक्रम हम अनुप्रसारित करेंगे। शाम 7:21 पर कृषि जगत कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा। इस कार्यक्रम में मशरूम का मूल्य संवर्धन और प्रसंस्करण तकनीक के बारे में जानकारी देंगी डॉक्टर अर्चना पांडेय।

0: रात 8 बजे सुर्खियों में ये कार्यक्रम हम आकाशवाणी भोपाल से रिले करेंगे। रात 8:30 पर सुनिए फिल्म संगीत और रात 10:30 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत का फरमाइशी कार्यक्रम मन भावन। रात 9:15 पर स्पॉटलाइट और 9:30 पर पब्लिक स्पीक, ये दोनों कार्यक्रम हम दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। रात 10 बजे शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में सुनिएगा उस्ताद लतीफ खां का सारंगी वादन। एक बार फिर आपको याद दिला दें, इस सभा में 11:10 से श्री सोमनाथ अमृत पर्व पर माननीय प्रधानमंत्री जी के संबोधन का सीधा प्रसारण हम दिल्ली केंद्र से करेंगे। आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण, मीडियम वेव 374.5 मीटर अर्थात 801 किलोहर्ट्ज पर, ये आकाशवाणी जबलपुर है। 6:55 होने को है। संस्कृत में समाचार कुछ ही पलों में दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किए जाएंगे।
1: एम आकाशवाणी संप्रति वार्ता श्रूयंताम प्रवाचक डॉक्टर गणेश हेगड़े। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ह्यः तेलंगाना राज्ये प्रायः 400-900 कोटि रूप्यकाणां आधारभूत संरचनानां औद्योगिक परियोजनानां उद्घाटनं शिलान्यासं च कृतवान्। तत्पश्चात् सभां संबोधयन् प्रधानमंत्री मोदी उक्तवान् यत् केंद्र सर्वकारेण कृतानां प्रयासानां कारणात् भारतदेशः पश्चिम एशिया संघर्ष जनितं ऊर्जा संकटं प्रभावी रीत्या नियंत्रयति। सः अवदत् यत् आयातित पेट्रोलियम उत्पादानां संयमेन उपयोगः अद्यतनीय आवश्यकता वर्तते।
2: जो एनर्जी प्रोडक्ट हम विदेशों से मंगाते हैं, हमें प्रयास करना है कि जितनी जरूरत है उतना ही उपयोग करें। इससे विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी और युद्ध के संकट से होने वाले दुष्प्रभाव को भी कम किया जा सकेगा।
1: इदानींतन वर्षेषु वैश्विक सौर ऊर्जा उत्पादकेषु शीर्ष श्रेण्यां भारतस्य उल्लेखनीयां प्रगतिम् उद्धृत्य प्रधानमन्त्रिणा उक्तं यत् पेट्रोल ईंधनेन सह इथेनॉल इत्यस्य मिश्रणे अपूर्व प्रगतिः अभवत्।
2: बीते सालों में सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप देशों में पहुंच चुका है। पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर अभूतपूर्व काम हुआ है। पहले

0: हमने शत प्रतिशत एलपीजी कवरेज पर फोकस किया, अब हम पाइप से सस्ती गैस पर फोकस कर रहे हैं, सीएनजी आधारित व्यवस्था को प्रमोट कर रहे हैं। ऐसे तमाम प्रयासों के कारण भारत इस बहुत बड़े वैश्विक ऊर्जा संकट का सामना कर रहा है।
1: प्रथमस्य ज्योतिर्लिङ्गस्य श्री सोमनाथ महादेव मन्दिरस्य पुनर्निर्माणस्य पञ्चसप्ततिः वर्षपूर्त्यवसरे अद्य प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदी ऐषमः श्री सोमनाथ अमृत पर्व उत्सवे भागं गृहीष्यति। श्री मोदी भगवतः श्री सोमनाथस्य प्रार्थनां करिष्यति, कुम्भाभिषेकञ्च विधास्यति, अनन्तरं जनसभां च सम्बोधयिष्यति। अस्मिन् अवसरे मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेलः, उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी, अन्ये नेतारश्च उपस्थिताः भविष्यन्ति। पश्चिमबंगालस्य मुख्यमंत्री सुवेन्दु अधिकारी अद्य नबन्ना इत्यत्र स्थिते राज्यसचिवालये मंत्रिमंडलस्य अध्यक्षतां करिष्यति। पञ्चमन्त्रिणां कृते विभागानां वितरणस्य सम्भावना वर्तते। इमे च शनिवासरे ब्रिगेड परेड ग्राउंड इत्यत्र मुख्यमन्त्रिणा सह पदस्य गोपनीयतायाः च शपथग्रहणं कृतवन्तः आसन्। नूतन मन्त्रिमण्डले भाजपादलस्य निर्वाचनप्रणाल्याः विषये चर्चा भविष्यति इत्यपेक्षा वर्तते। आयुष्मान भारतम्, अन्नपूर्णाभण्डारः, राज्यसर्वकारीयकर्मचारिणां कृते सप्तमवेतन आयोगस्य कार्यान्वयनम् इत्यादीनां मुख्यविषयाणाम् उपरि अपि चर्चा भवितुं शक्यते। अस्मिन् अवसरे मण्डल दण्डाधिकारिभिः, पुलिस इति आरक्षि अधीक्षकैः, विभिन्न विभागानां सचिवैः सह प्रशासनिक विधि व्यवस्था विषयाणां समीक्षा भविष्यति। अवधेयं यत् नवनिर्वाचिताः विधेयकाः अपि अस्यां सभायाम् उपस्थिताः भवेयुः। असमराज्यस्य राज्यपालः लक्ष्मणप्रसाद आचार्यः मुख्यमन्त्रीपदाय निर्वाचितं हिमन्त बिश्व शर्माणं राज्ये नूतनसर्वकारस्य घटनार्थम् आहूतवान्। भाजपानेतृत्वेन एनडीए इत्यस्य विधायकदलस्य सर्वसम्मत्या नेतृरूपेण निर्वाचितः श्री हिमन्त शर्मा घटबन्धननेतृभिः सह लोकभवने राज्यपालं मिलित्वा औपचारिकरूपेण सर्वकारस्य घटनार्थं प्रतिवेदनं दत्तवान्। राज्यपालः श्वः हिमन्त बिश्वशर्मणे नूतनमन्त्रिपरिषदः सदस्येभ्यश्च पदस्य गोपनीयतायाः च शपथं प्रदास्यति। शपथग्रहणसमारोहः खानापारा इत्यत्र पशुचिकित्सामहाविद्यालयस्य क्रीडाङ्गणे आयोजितं भविष्यति, यस्मिन् प्रधानमन्त्री श्रीनरेन्द्रमोदी, केन्द्रीयगृहमन्त्री अमितशाहः, रक्षामन्त्री राजनाथसिंहः, भाजपाध्यक्षः नितिन्नवीन् इत्यादयः भागं गृहीष्यन्ति इत्यपेक्षा वर्तते। इति वार्ताः।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि केंद्र सरकार के प्रयासों के कारण भारत पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न ऊर्जा संकट का प्रभावी ढंग से प्रबंधन कर रहा है। श्री मोदी ने तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में लोगों से ईंधन का संयमित उपयोग करने की अपील की।
0: जो एनर्जी प्रोडक्ट हम विदेशों से मंगाते हैं, हमें प्रयास करना है कि जितनी जरूरत है उतना ही उपयोग करें। इससे विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी और युद्ध के संकट से होने वाले दुष्प्रभाव को भी कम किया जा सकेगा।
2: प्रधानमंत्री ने हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की ढांचागत और औद्योगिक परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं का उद्देश्य राज्य को विनिर्माण के केंद्र के रूप में स्थापित करना, यातायात संपर्क मजबूत करना, रोजगार सृजित करना, परिचालन तंत्र में सुधार और सुरक्षा को बढ़ावा देकर लोगों को बेहतर यात्रा सुविधा प्रदान करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात में सोमनाथ अमृत पर्व में शामिल होंगे। प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर यह पर्व मनाया जा रहा है। श्री मोदी सोमनाथ महादेव की पूजा करेंगे और कुंभाभिषेक करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री जनसभा को संबोधित करेंगे और रोड शो में शामिल होंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल और उप मुख्यमंत्री हर्ष सांघवी भी उपस्थित रहेंगे। असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने श्री हिमंता बिस्व शर्मा को राज्य में नई सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया है। इससे राज्य में एनडीए के लगातार तीसरे कार्यकाल का रास्ता साफ हो गया है। भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए के विधायक दल का सर्वसम्मति से नेता चुने जाने के बाद श्री शर्मा ने गठबंधन के नेताओं के साथ लोकभवन में राज्यपाल से मुलाकात की और औपचारिक रूप से सरकार बनाने का दावा पेश किया। श्री आचार्य कल श्री शर्मा और नई मंत्रिपरिषद के सदस्यों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी आज नबन्ना स्थित राज्य सचिवालय में मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। 5 मंत्रियों को विभागों का वितरण किए जाने की उम्मीद है। इन्होंने शनिवार को ब्रिगेड परेड ग्राउंड में मुख्यमंत्री के साथ पद और गोपनीयता की शपथ ली थी। बैठक में आयुष्मान भारत, अन्नपूर्णा भंडार और राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए 7वें वेतन आयोग के कार्यान्वयन जैसे मुद्दों पर भी चर्चा की संभावना है। इस दौरान जिला मजिस्ट्रेटों, पुलिस अधीक्षकों और विभिन्न विभागों के सचिवों के साथ बैठकों में प्रशासनिक और कानून व्यवस्था की समीक्षा की जाएगी। स्पेन के कैनरी द्वीप समूह के पास जहाज पर घातक हंता वायरस प्रकोप के बाद यात्रियों और चालक दल के सदस्यों को उतारकर उनके देशों में भेजा जा रहा है। बीमारी के प्रसार को रोकने के लिए सभी यात्रियों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोटोकॉल के अंतर्गत अलग रखा जाएगा। स्पेन और फ्रांस के नागरिकों को लेकर सरकारी विमान स्थानीय समयानुसार कल दोपहर मैड्रिड और पेरिस पहुंचे। यात्रियों को परीक्षण के लिए अस्पताल ले जाया गया। कनाडा, तुर्की, ब्रिटेन, आयरलैंड और अमरीका के नागरिकों के आज पहुंचने की उम्मीद है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जहाज के सभी यात्रियों के लिए 42 दिन के क्वारंटाइन की सिफारिश की है। स्पेन में भारतीय दूतावास ने कहा है कि हंता वायरस से प्रभावित जहाज से उतारे गए दोनों भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं और उनमें बीमारी के कोई लक्षण नहीं है। इस जहाज पर 2 भारतीयों सहित लगभग 150 लोग सवार थे। रूस ने कहा है कि वो नेटो या जर्मनी के साथ युद्ध नहीं चाहता, लेकिन यूरोप में संयुक्त परमाणु सुरक्षा कवच पर चर्चाओं से महाद्वीप का रणनीतिक संतुलन बिगड़ सकता है। जर्मनी में रूस के राजदूत सर्गेई नेचायेव ने बर्लिन में कहा कि यूरोप में परमाणु खतरों के किसी भी विस्तार से रूस को अपने परमाणु सिद्धांत पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर मॉस्को को सैन्य खतरों का सामना करना पड़ा तो वो संयम की गारंटी नहीं दे सकता। आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने मुंबई इंडियंस को 2 विकेट से हरा दिया। मुंबई इंडियंस ने निर्धारित 20 ओवर में 166 रन बनाए। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 8 विकेट खोकर जीत का लक्ष्य हासिल कर लिया। भुवनेश्वर कुमार को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इससे पहले चेन्नई सुपर किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 5 विकेट से हराया था। टूर्नामेंट में आज शाम 7:30 बजे धर्मशाला में पंजाब किंग्स का सामना दिल्ली कैपिटल्स से होगा। भारत के 6 खिलाड़ी ताशकंद में एशियाई अंडर 15 मुक्केबाजी चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गए हैं, जबकि 7 को कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं धारणा सचदेव। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सोमनाथ अमृत पर्व में करेंगे कुंभाभिषेक। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कूनो में दो मादा चीते किए आजाद। गुना में अदानी समूह की नई सीमेंट इकाई की रखी गई नींव। केंद्रीय संचार मंत्री सिंधिया ने कहा, अब प्रदेश छोड़कर नहीं जाएंगे युवा। और प्रदेश में टर्फ और साइक्लोनिक सर्कुलेशन से 8 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पहले ज्योतिर्लिंग सोमनाथ महादेव मंदिर के पुनर्निर्माण के अवसर पर आयोजित सोमनाथ अमृत पर्व में भाग लेंगे। वे भगवान सोमनाथ की पूजा और कुंभाभिषेक करेंगे और इसके बाद जनसभा को भी संबोधित करेंगे। कार्यक्रम में एक रोड शो भी आयोजित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल हैदराबाद में कई बड़ी विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि साइबराबाद देश और दुनिया दोनों के लिए अहम है और तेलंगाना को बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब

0: बनाने के लिए जहीराबाद में एक इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी विकसित की जाएगी। श्री मोदी ने देश हित में लोगों से एक साल तक सोना खरीदने से बचने और पेट्रोल डीजल का उपयोग संयम के साथ करने की अपील भी की।
1: भारत की एनर्जी सिक्योरिटी पर हमारी केंद्र सरकार अभूतपूर्व निवेश कर रही। बीते सालों में सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप देशों में पहुंच गया है। सीएनजी आधारित व्यवस्था को प्रमोट कर रहे हैं। ऐसे तमाम प्रयासों के कारण भारत इस बहुत बड़े वैश्विक ऊर्जा संकट का सामना कर रहा है। लेकिन अब आज समय की ये भी मांग है, पेट्रोल डीजल गैस ऐसी चीजों का बहुत संयम से इस्तेमाल करें।
0: असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने भाजपा नेता हिमंता बिस्वा सरमा को नई सरकार बनाने का न्योता दिया है। हाल के विधानसभा चुनाव में एनडीए ने 126 में से 102 सीटें जीती थी, जिनमें अकेले भाजपा को 82 सीटें मिली। राज्यपाल कल श्री सरमा और उनकी मंत्रिपरिषद को शपथ दिलाएंगे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज श्योपुर के कूनो नेशनल पार्क में दो मादा चीतों को क्वारंटीन बाड़े से खुले जंगल में छोड़ेंगे। ये दोनों चीते फरवरी 2026 में बोत्सवाना से लाए गए 9 चीतों में से हैं, जिन्होंने अपनी क्वारंटीन अवधि पूरी कर ली है। इस कदम से प्रोजेक्ट चीता को नई रफ्तार मिलेगी और अब भारत में कुल चीतों की संख्या 57 हो गई है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कल गुना में अदानी समूह की अंबुजा सीमेंट फैक्ट्री का शिलान्यास किया। 32 हेक्टेयर जमीन पर बनने वाली इस फैक्ट्री से 1,500 लोगों को रोजगार मिलेगा और सालाना 4 मिलियन टन सीमेंट का उत्पादन होगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि इस बदलते दौर में मध्य प्रदेश भी विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है।
2: और विकास के लिए जो इंडस्ट्री के लिए जमीन चाहिए, रेल, पुल, पुलिया, सड़क, हमने कहा ये किसान कल्याण वर्ष है, इसलिए किसान की अगर विकास की जमीन भी लेंगे तो बाजार के दाम से 1 गुना नहीं, 2 नहीं, 4 गुना कीमत देकर के किसान के लिए भी उसका विकास का भागीदार बनाएंगे। ये बदलते दौर में गुना ग्वालियर पूरा क्षेत्र बदल रहा है। विकास के मामले में हमारा प्रदेश आगे बढ़ रहा है तो गुना भी बहुत आगे बढ़ने वाला है।
0: श्री सिंधिया ने कहा कि प्रदेश में उद्योग लगाने की कोशिशें तेज हैं, ताकि युवाओं को नौकरी के लिए दूसरे राज्यों में न जाना पड़े।
3: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: समाचारों में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत स्व सहायता समूह से जुड़कर महिलाएं आत्मनिर्भरता की नई मिसाल पेश कर रही हैं। शिवपुरी विकासखंड के ग्राम धुवानी की इंदिरा जाटव भी ऐसी ही एक प्रेरणादायक कहानी है, जिन्होंने स्व सहायता समूह से जुड़कर अपनी जिंदगी बदल ली है। इस बारे में विस्तार से बता रहे हैं हमारे शिवपुरी संवाददाता रंजीत गुप्ता।
4: इंदिरा जाटम ने वर्ष 2016 में समूह गठन की प्रक्रिया से जुड़कर बांकड़े बाबा स्व सहायता समूह का गठन किया और समूह की अध्यक्ष बनी। समूह से जुड़ने के बाद उन्होंने सिलाई कढ़ाई का प्रशिक्षण प्राप्त किया। उन्होंने स्कूल गढ़वे सिलाई के माध्यम से आय अर्जित की। महिला इंदिरा जाटम ने बताया कि वे पहले मजदूरी और कृषि कार्य करती थी, लेकिन अब समूह से जुड़कर आत्मनिर्भर बन गई है।
5: महिला समूह से नहीं जुड़ी थी तो मेरी कोई आमदनी थी, लेकिन सिलाई कढ़ाई के प्रशिक्षण प्राप्त करने से मेरी आय बढ़ गई है।
4: मध्य प्रदेश ग्रामीण आजीविका मिशन के DPM डॉक्टर अरविंद भार्गव ने बताया कि
6: जो हमारे समूह से महिलाएं जुड़ी हैं, उनको आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। शिवपुरी जिले में इंदिरा जाटो किया है और वो 12,500-13,000 रुपए प्रति माह कमा रही है, और जो प्रधानमंत्री का सपना था कि लखपति दीदी बने, तो वो लखपति दीदी की श्रेणी में भी आ चुकी है।
4: आकाशवाणी समाचार के लिए शिवपुरी से मैं रंजीत गुप्ता।
0: केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल सीहोर के भैरुंदा में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेज 4 के कार्यक्रम में प्रदेश को 830 करोड़ रुपए का आवंटन सौंपा। उन्होंने बताया कि प्रदेश में 973 सड़कों को मंजूरी दी गई है और कोई भी गांव पक्की सड़क से वंचित नहीं रहेगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2055 करोड़ रुपए की मंजूरी भी मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को सौंपी गई। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि खादी सिर्फ कपड़ा नहीं बल्कि देश की पहचान है।

और आत्मनिर्भर एमपी के लिए खादी और ग्रामोद्योग सरकार की बड़ी प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री ने बताया कि बुनकर मुद्रा योजना के तहत पिछले 3 साल में 194 बुनकरों को 268 लाख रुपए से ज्यादा का कर्ज दिया गया है। मध्य प्रदेश विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद आज राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के मौके पर विज्ञान भवन में एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन करेगा, जिसमें भोपाल के 27 स्कूलों कॉलेजों के 250 से ज्यादा छात्र शिक्षक भाग लेंगे। कार्यक्रम में विशेषज्ञ स्वदेशी तकनीक और विज्ञान की अहमियत पर बच्चों से रूबरू होंगे। इसके साथ ही एक रोबोटिक्स वर्कशॉप भी होगी, जिसमें बच्चे खुद टीमें बनाकर रोबोटिक्स मॉडल तैयार करेंगे। जबलपुर के बरगी बांध में 30 अप्रैल को आंधी तूफान की वजह से एमपी टूरिज्म का क्रूज डूब गया था, जिसमें 13 लोगों की जान चली गई थी। अब सरकार ने इस हादसे की जांच के लिए हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज संजय द्विवेदी की अध्यक्षता में एक जांच आयोग बनाया है। ये आयोग 3 महीने में अपनी रिपोर्ट सौंपेगा और यह भी बताएगा कि हादसे के वक्त बचाव का काम ठीक से हुआ या नहीं। साथ ही प्रदेश में चलने वाली सभी नावों और क्रूज के लिए नए सेफ्टी नियम भी तय किए जाएंगे। बात मौसम की। प्रदेश में 2 टर्फ और 1 साइक्लोनिक सर्कुलेशन एक्टिव होने से आज मंडला, सिवनी, बैतूल, छिंदवाड़ा समेत 8 जिलों में 30 से ज्यादा किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आंधी और बारिश का अलर्ट है। वहीं दूसरी तरफ भोपाल, इंदौर, उज्जैन और रतलाम समेत कई जिलों में तेज गर्मी रहेगी। कल रतलाम में पारा रिकॉर्ड 45.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में यह मिलाजुला मौसम अभी कुछ दिन और बना रहेगा। अब बात खेल की। प्रदेश की शूटर नीरू दंडा ने कजाकिस्तान के अल्माटी में चल रहे ISSF वर्ल्ड कप 2026 में ट्रैप मिक्स्ड टीम इवेंट में विवान कपूर के साथ मिलकर कांस्य पदक जीता है। नीरू राज्य शूटिंग शॉटगन अकादमी की खिलाड़ी हैं। खेल मंत्री विश्वास सारंग ने नीरू को बधाई देते हुए कहा कि ये पूरे प्रदेश के लिए गर्व का पल है। रायपुर में कल रात खेले गए आईपीएल मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने मुंबई इंडियंस को 2 विकेट से हरा दिया। मुंबई ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 7 विकेट पर 167 रन बनाए, जिसमें तिलक वर्मा ने 42 गेंदों पर 57 रन की अहम पारी खेली। बेंगलुरु ने 8 विकेट गंवाकर लक्ष्य हासिल किया और भुवनेश्वर कुमार ने 4 विकेट लेकर प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब जीता। वहीं आज धर्मशाला में 7:30 बजे पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स आमने सामने होंगे। अब कुछ समाचार संक्षेप में। जबलपुर के गौरीघाट पर 4 दिवसीय आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण संपन्न। होमगार्ड और एसडीआरएफ के जवानों ने किया अभ्यास। बैतूल के नंदावन धन विकास केंद्र में आज न्यूजीलैंड का प्रतिनिधिमंडल करेगा भ्रमण। मधु संग्रहण और जनजातीय आजीविका गतिविधियों का लेगा जायजा। रतलाम टिकट चेकिंग टीम ने 3,41,00,000 रुपये का राजस्व अर्जित कर पश्चिम रेलवे रतलाम मंडल में बनाया नया रिकॉर्ड। बालाघाट के कान्हा टाइगर रिजर्व में जंगली भैंसा पुनर्स्थापना कार्यक्रम का 2रा चरण पूरा। 4 जंगली भैंसे विशेष बाड़े में किए गए मुक्त। डिंडोरी में आरोह ग्रीष्मकालीन कैंप के तहत मां नर्मदा तट पर विशेष संडे एक्टिविटी का आयोजन हुआ। और पन्ना जिला चिकित्सालय में 4 से 10 मई तक चले अग्नि सुरक्षा सप्ताह में मरीजों, परिजनों और अस्पताल स्टाफ को फायर सेफ्टी का प्रशिक्षण दिया गया। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: मीडियम वेव 374.5 मीटर अर्थात 801 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी जबलपुर है। 7:21 हुए हैं, अब सुनिए कार्यक्रम गुड मॉर्निंग जबलपुर।

0: और अब बात संस्कारधानी जबलपुर की। अगर कविताओं की या कविता की ज़बान में कहें तो बात कुछ ऐसे बयान हो सकती है कि जबलपुर की माटी चंदन, रेवा तट का करते वंदन, दुर्गावती का दुर्ग सुनाता शौर्य की गाथा, मरमरी चट्टानों का सुन लो इस बंधन। पिसनहारी के श्वेत कणों की है बलिहारी, श्रम की पूजा करती है ये दुनिया सारी। बावन ताल में रूप निखरती संस्कारधानी, धर्म प्राण नगरी की सुन लो मधुर कहानी। और ये कहानी है जबलपुर की पूरा संपदा की, जिसके मामले में ये बड़ी समृद्ध नगरी है। और यही आज की वार्ता का विषय है। वार्ताकार हैं श्रीमती वंदना रघुवंशी।
1: यहाँ जबलपुर शहर अपने प्राकृतिक सौंदर्य व पर्यटन स्थल के लिए देश में एक विशिष्ट स्थान रखता है, वहीं जबलपुर अपनी उत्पत्ति और विकास में भी विशेष महत्व रखता है। जबलपुर शहर की उत्पत्ति और विकास काल बहुत प्राचीन नहीं है। इस विषय के विशेषज्ञों ने जबलपुर की उत्पत्ति गोंड मुगल प्रभुसत्ता काल में एक बुंदेलखंडी बस्ती के रूप में 17वीं शताब्दी के मध्य बताई है। जबलपुर शहर के ऐतिहासिक काल को 4 कालखंडों में विभाजित किया गया है। प्रथम गोंड काल, जो 14वीं सदी से 1564 ईस्वी तक। द्वितीय मुगल काल, जो 1564 से 1741 ईस्वी तक। तृतीय मराठा काल, सन 1741 से 1817 ईस्वी तक। और अंतिम चतुर्थ ब्रिटिश काल, सन 1818 से 1947 ईस्वी तक। भारत में आधुनिक युग का आरंभ सन 1947 से यानी आजादी के साथ आरंभ हुआ। जबलपुर के ऐतिहासिक स्थलों की सूची बहुत विस्तृत है, अतः हम यहाँ पर विशेष ऐतिहासिक स्थलों का ही विवरण प्रस्तुत करेंगे, जिसमें सर्वप्रथम है गोंड काल। मुगल प्रभुसत्ता काल में मुख्यतः यह क्षेत्र सन 1564 ईस्वी तक गोंड राज्य का अंग था और आज ये गढ़ा क्षेत्र में आता है। सन 1564 ईस्वी में वीरांगना रानी दुर्गावती द्वारा मुगल सेना से लड़ते हुए वीरगति प्राप्त होने के बाद से ये मुगल आधिपत्य में आ गया। गढ़ा क्षेत्र में मूलतः गौड़ कालीन संरचनाएं पाई जाती हैं, जिनमें मदन महल, अनेक मंदिर, छोटे बड़े तालाब, बाबड़ियां आदि ही शेष बचे हैं। मदन महल का किला इस क्षेत्र का प्रमुख ऐतिहासिक स्थल है। इस किले का निर्माण अथवा जीर्णोद्धार गोंड राजा संग्राम शाह द्वारा सन 1510 से 1543 ईस्वी में कराया गया था। सतह से 1469 मीटर ऊंची पहाड़ी पर यह स्थित है। ये महल नुमा इमारत एक छोटी गढ़ी, सीमा चौकी, शिकारगाह अथवा राजाओं की बिहार स्थली प्रतीत होती है। कुछ इतिहासकार इसका निर्माण 14वीं सदी के एक अन्य गोंड शासक मदन शाह द्वारा भी मानते हैं। यहाँ गोंड कालीन छावनी और जन सामान्य की बस्ती भी स्थित थी। इसी मदन महल गढ़ के कारण इसका नाम गढ़ा प्रचलित हुआ। मदन महल यानी मदन गढ़ की विशेषता उसकी ऊंची पहाड़ियों में स्थित होने के साथ गोंड कालीन विशिष्ट वास्तुशिल्प भी है। ये सहज और ठोस प्रतीत होता है। इसका मुख्य भवन एक विशाल बेसाल्टिक चट्टान पर निर्मित है। ये भवन वैसे तो एक मंजिला है, परंतु बाहर से देखने में दो मंजिला प्रतीत होता है। मुख्य इमारत के पास उत्तर दिशा में घुड़साल, छोटे कक्ष और बावड़ी लगभग ध्वस्त हो गए हैं। इनके निर्माण में गाढ़े गारा से जुड़ाई कर मोटे पलस्तर की छपाई, खिड़की और दरवाजों के ऊपर पत्थर की मोटी चीपों की डांटों का उपयोग हुआ है। यह निर्माण विधि अपने स्थूल आकार के कारण ही ज्यादा प्रभावकारी दिखती है।

है, जो गौंड वास्तुशिल्प की एक विशेषता है। भेड़ाघाट में कलचुरी काल का 64 योगनी मंदिर, गौंड कालीन संग्राम सागर, बाजना मठ और अनेक ताल तथा उजार पूर्वा बाबड़ी सादृश्य अनेक ऐसे ऐतिहासिक स्थल जबलपुर में विद्यमान हैं। हम जैसा जानते हैं कि जैसे संग्राम सागर और बाजना मठ गौंड शासक प्राकृतिक साधनों के नियंत्रित दोहन और सफल जल प्रबंधन के लिए प्रसिद्ध रहे हैं। राजा संग्राम शाह ने मदन महल पहाड़ी और बर्गी हिल्स के बीच घाटी में एक बड़े तालाब संग्राम सागर का निर्माण कराया था। 15 हेक्टेयर से ज्यादा में बना यह ताल गौंड शासकों के जल प्रबंधन की श्रेष्ठता को प्रदर्शित करता है। इसी ताल में एक ओर स्थित छोटे टापू में एक मंत्रणा कक्ष अथवा आमोद प्रमोद गृह भी बना था, जो अब खंडहर बन चुका है। बाजना मठ, इसके बारे में हम सब जानते हैं। संग्राम सागर के उत्तर पश्चिमी तट में बना यह मंदिर आज भी सुरक्षित और जागृत अवस्था में है। अनेक श्रद्धालु वर्ष भर यहाँ नियमित पूजन के लिए आते हैं। ये कई साधु संत आज भी यहाँ कठिन तपस्या करते हैं। मराठा काल के अंतर्गत हम देखते हैं तो 18वीं सदी के अंत में मराठों द्वारा मूल जब्बलपुरा बस्ती को एक गांव के रूप में विकसित कर उसको जब्बड़गढ़ नाम दिया था और उन्होंने इस गांव के चारों ओर एक सुरक्षा दीवार या फाटक भी बनाए गए थे। आज वह सुरक्षा दीवार पूर्णतः नष्ट हो गई है। 5 फाटकों में अब केवल 3 फाटक ही आंशिक रूप से बचे हैं। उत्तरी फाटक, जिसे मिलौनीगंज कहते हैं, का केवल एक स्तंभ, दक्षिण पश्चिम में गड़ा फाटक की केवल एक खड़ी दीवार और दक्षिण में कमानिया फाटक का 1939 में पूर्णतः पुनर्निर्माण हो चुका है। आज के जबलपुर में हनुमान ताल, सिटी कोतवाली और दीक्षितपुरा मोहल्लों में मराठा कालीन भवन, छोटे मंदिर आदि मराठा आधिपत्य की याद दिलाते हैं। ब्रिटिश कालीन ऐतिहासिक स्थलों में अंग्रेजों ने दिसंबर 1817 ईस्वी में मराठों से जब्बलगढ़ को जीतने के बाद उसे एक सुव्यवस्थित कस्बे के रूप में विकसित किया और उन्होंने उसे जबलपुर नाम दिया था। ब्रिटिश काल में जबलपुर के पुराने क्षेत्र में लोक सेवा के लिए जॉर्ज टाउन स्कूल, जो कि सन 1835 ईस्वी में, सिटी कोतवाली सन 1854 ईस्वी में, विक्टोरिया सेठ गोविंददास अस्पताल सन 1876 ईस्वी में, विक्टोरिया टाउन हॉल, गांधी भवन पुस्तकालय सन 1892 ईस्वी में और नगर पालिका नगर निगम कार्यालय सन 1919 ईस्वी में निर्मित हुए। सिविल लाइन क्षेत्र में शासकीय कार्यालय एवं अधिकारियों के निवास, जिसमें कमिश्नर रेसिडेंसी सन 1821 में, मुख्य रेलवे स्टेशन 1867, डिस्ट्रिक्ट लॉ कोर्ट, जिसे हम हाई कोर्ट भवन के नाम से अभी जानते हैं, 1890 ईस्वी में, तथा एम्पायर चौराहे से लगा सर्किट हाउस नंबर 1 1905 ईस्वी में बनवाए गए थे। अंग्रेजों ने नागरिक क्षेत्र से अलग छावनी क्षेत्र का भी विकास किया था, जिसमें सैन्य एरिया मुख्यालय था, फ्लैग हाउस जो कि 1824 ईस्वी में, रिज रोड और सदर क्षेत्र, ये प्रमुख एवं आकर्षक स्थल हैं। ब्रिटिश काल में निर्मित ये भवन मूलतः ब्रिटिश, इटालियन, ग्रीक और अन्य यूरोपीय वास्तुशिल्प के मिश्रित स्वरूप हैं और उनमें उपयोग में लाई गई निर्माण सामग्री आज भी ठोस और सुरक्षित ढंग से काम कर रही है। ब्रिटिश कालीन डिस्ट्रिक्ट लॉ कोर्ट नाम जाना जाने वाला हाई कोर्ट भवन सिविल लाइंस क्षेत्र में स्थित है। इस इमारत में मूलतः पहले मध्य वाला एक ही ब्लॉक था, जिसका निर्माण सन 1890 में हुआ था। ये ब्लॉक 2.5 हेक्टेयर वाले परिसर में उस समय मात्र 3 लाख रुपए में बनकर तैयार हो गया था। ये भवन इटालियन वास्तुशिल्प पर आधारित है। सन 1564 में मुगलों से लड़ते हुए वीरगति प्राप्त वीरांगना रानी दुर्गावती की समाधि गौर तिराहे से बरगी बांध रोड में नरई नाले के किनारे स्थित और रानी दुर्गावती के बलिदान की याद दिलाने वाला पवित्र और नमनीय स्थल है। सन 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ हुए स्वतंत्रता संग्राम में शहीद हुए गौंड राजा शंकर शाह और उनके पुत्र कुंवर रघुनाथ शाह का आत्मबलिदान स्थल एल्गिन अस्पताल से लगा हुआ और माल गोदाम
यानी मुख्य रेलवे स्टेशन चौराहे पर स्थित है। शहीदों का इसी श्रृंखला में अमर शहीद ठाकुर गुलाब सिंह का स्मारक गुप्तेश्वर

0: रामेश्वर मंदिर के सामने हैं। गुलाब सिंह विद्यार्थी, जिनकी आयु 16 वर्ष थी, 14 अगस्त सन 1942 को घमंडी चौक के समीप अंग्रेज प्रशासन की गोली झेलकर शहीद हुए थे। गुप्तेश्वर मंदिर क्षेत्र में एक वार्ड का नाम उन्हीं शहीद के नाम पर शहीद गुलाब सिंह वार्ड क्रमांक 63 रखा गया है। सन 1951 में बना शहीद स्मारक गोल बाजार क्षेत्र के 5 हेक्टेयर परिसर में उस समय केवल 20 लाख रुपयों में बनाया गया था। ये भवन जबलपुर वासियों द्वारा सभी शहीदों के प्रति प्रदर्शित संयुक्त सम्मान का प्रतीक है। विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत माला के दुर्गम क्षेत्र और नर्मदा घाटी में बसे जबलपुर शहर के ऐतिहासिक स्थलों का छोटा और सहज स्वरूप उनकी प्राचीनता और ऐतिहासिकता को किसी भी प्रकार से कम नहीं करता। अंचल का पुरातात्विक वैभव जबलपुर को देश के प्रमुख पर्यटन केंद्रों में शुमार करता है तथा पर्यटकों के लिए आकर्षक का केंद्र भी, जिसे शासन द्वारा संरक्षित और विकसित किए जाने की नितांत आवश्यकता है।
1: जबलपुर की पुरा संपदा, श्रीमती वंदना रघुवंशी की ये वार्ता अभी आपने सुनी और अब सुन लेते हैं गाना।

दोस्तों, जीवन में अगर कायदा मर्यादा और अनुशासन नहीं है तो ऐसा जीवन भटकाव का शिकार हो जाता है। आपने इस बात को महसूस किया होगा कि कुदरत या प्रकृति का भी अपना एक कायदा, अपनी मर्यादा हो।

होती है जिसका वो पूरी ईमानदारी से पालन करती है, जब तक कि मानव का हस्तक्षेप एक सीमा से ज़्यादा ना बढ़ जाए। और अनुशासन हर क्षेत्र में हमें आगे बढ़ने में मदद करता है, हमें सफल बनाता है। और एक बात और है कि सफ़र चाहे ज़िंदगी का हो या सड़क का, आसान नहीं होता। जीवन में तरह तरह की समस्याओं और परेशानियों से हमारा सामना होता है, जिनसे हमें निपटना भी होता है और समझदारी के साथ उनका समाधान भी निकालना पड़ता है। बिल्कुल ऐसा ही होता है सड़क का सफ़र, जिसमें हर समय हमें सजगता, सावधानी और धैर्य बनाकर चलना पड़ता है। और ये भी आवश्यक होता है कि हम घर परिवार की चिंता और तनावों को घर पर ही छोड़कर सड़क पर चलें, खासकर वाहन चलाएं, वरना ऐसा ना हो जाए कि ब्रेक की जगह एक्सीलेटर दब जाए। और अनुशासन वो सबसे अच्छा होता है जो खुद ब खुद जीवन में आए, यानी आत्म अनुशासन। सड़क पर ट्रैफिक लाइट है तो लोग उसका पालन करते हैं, लेकिन इस मजबूरी में पालन ना करें कि ट्रैफिक का सिपाही खड़ा है। और अगर सिपाही नहीं है, उसके बाद कितने लोग कितनी ईमानदारी से ट्रैफिक सिग्नल का पालन कर रहे हैं, ये अहम बात है। और ये छोटी छोटी बातें ही हमें ज़िम्मेदार नागरिक बनाती हैं, और ज़िम्मेदार नागरिकों से ही किसी शहर की पहचान होती है।

0: जानवर आदमी से ज्यादा वफादार है। खाता है कूड़ा भी, रहता है भूखा भी, फिर भी वो मालिक पे करता नहीं वार है। और इंसान ये माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, गीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भौंकता कटार है।
1: कहिए श्रीमान, आपका क्या विचार है?
0: माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, गीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भौंकता

है और सर्कस में बड़े को भी छोटे को भी खड़े को भी छोटे को भी दुबले को भी मोटे को भी नीचे से ऊपर को ऊपर से नीचे को आना जाना पड़ता है और रिंग मास्टर के

0: नरकस।
1: हाँ बाबू, ये सर्कस है और ये सर्कस है शो 3 घंटे का।

दोस्तों, अभी सड़क सुरक्षा सप्ताह तो चल ही रहा है, इसके अलावा आज है राष्ट्रीय तकनीकी दिवस या राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, जो कि हर साल 11 मई को मनाया जाता है। ये दिन 11 मई 1998 को पोखरण में हुए सफल परमाणु परीक्षण ऑपरेशन शक्ति और भारत की वैज्ञानिक और तकनीकी उपलब्धियों का जश्न मनाने के लिए समर्पित है। ये दिन वैज्ञानिकों और इंजीनियरों के योगदान को याद करता है। पोखरण 2 परमाणु परीक्षण 11 मई 1998 की सफलता का जश्न, जिसने भारत को एक परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र बनाया। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 1999 में इस दिन को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में घोषित किया था। इसी दिन 11 मई 1998 को भारत ने पहले स्वदेशी विमान हंसा 3 का परीक्षण किया था और त्रिशूल मिसाइल का सफल प्रक्षेपण किया था। यह दिवस स्वदेशी तकनीक के विकास, नवाचार और विज्ञान के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देता है। इस अवसर पर प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड द्वारा विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों को सम्मानित किया जाता है।

दोस्तों, परेशानियाँ, समस्याएँ, रुकावटें हमारे जीवन का अहम हिस्सा हैं और इससे जीवन रुकता नहीं है। कई बार ऐसा लगता है कि चारों तरफ अंधेरा आ गया है, पर वास्तव में रोशनी कहीं आसपास ही मौजूद होती है, सिर्फ हमें तलाशना होता है। और रुक कर, ठहर कर इत्मीनान से सोचा जाए कि हम कहाँ गलत हैं और अपनी गलतियों पर काम किया जाए और उन्हें दूर कर लिया जाए, तो फिर सफलता दूर नहीं रह जाती है। जीवन वैसे भी चलने का नाम है।

0: नहीं।
1: इसके साथ ही कार्यक्रम गुड मॉर्निंग जबलपुर से हमें दीजिए इजाज़त। चलने से पहले आपको याद दिला दें, इसी सभा में 11:10 से श्री सोमनाथ अमृत पर्व पर माननीय प्रधानमंत्री जी के संबोधन का सीधा प्रसारण हम दिल्ली केंद्र से करेंगे, तो सुनना न भूलें। फिलहाल चमन सालवार को दें इजाज़त। नमस्कार।

0: वेव 374.5 मीटर अर्थात 801 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी जबलपुर है। 8 बजने को है समाचार प्रभात। अब हम दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच नागरिकों से एक वर्ष तक सोना नहीं खरीदने, ईंधन की खपत कम करने और विदेशी मुद्रा संरक्षित करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री आज गुजरात में सोमनाथ अमृत पर्व में शामिल होंगे। वडोदरा में सरदार धाम हॉस्टल का शुभारंभ करेंगे। असम के राज्यपाल ने हिमंत बिस्व शर्मा को राज्य में नई सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया। उत्तराखंड सरकार ने प्रतिकूल मौसम के बीच चारधाम यात्रियों और पर्यटकों से सतर्क रहने और यात्रा के दौरान सुरक्षा बरतने का आग्रह किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के शांति प्रस्ताव को पूरी तरह अस्वीकार्य बताया और AFC अंडर 17 महिला एशियाई फुटबॉल कप के क्वार्टर फाइनल में आज भारत और मेजबान चीन सूजो में आमने सामने होंगे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि केंद्र सरकार के प्रयासों के कारण भारत पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न ऊर्जा संकट का प्रभावी ढंग से प्रबंधन कर रहा है। श्री मोदी ने तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में एक जनसभा में नागरिकों से एक वर्ष के लिए पेट्रोल और डीजल के संयमित उपयोग, अनावश्यक विदेशी यात्रा से बचने, सोने की खरीदारी नहीं करने और स्थानीय वस्तुओं को प्राथमिकता देने जैसे उपाय अपनाने की अपील की।
2: जो एनर्जी प्रोडक्ट हम विदेशों से मंगाते हैं, हमें प्रयास करना है कि जितनी जरूरत है उतना ही उपयोग करें। इससे विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी और युद्ध के संकट से होने वाले दुष्प्रभाव को भी कम किया जा सकेगा।
1: प्रधानमंत्री ने हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की ढांचागत और औद्योगिक परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात में सोमनाथ अमृत पर्व में शामिल होंगे। प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर ये पर्व मनाया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और उप मुख्यमंत्री हर्ष सांघवी भी उपस्थित रहेंगे।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हवाई मार्ग से जामनगर से सोमनाथ पहुंचेंगे। हेलीपैड पर उतरने के बाद वे वीर हमीर जी गोहिल सर्कल तक रोड शो के दौरान जनता का अभिवादन स्वीकार करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे, जिन्होंने सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण का सपना देखा था। श्री मोदी मंदिर में विशेष पूजा अर्चना करेंगे तथा मंदिर के शिखर पर कुंभाभिषेक और ध्वजारोहण भी करेंगे। इस अवसर पर भारतीय वायुसेना की सूर्य किरण एरोबेटिक टीम सोमनाथ के आकाश में रोमांचक एयर शो प्रस्तुत करेंगी। पूजा अर्चना के बाद प्रधानमंत्री जनसभा को भी संबोधित करेंगे। वे एक विशेष स्मारक डाक टिकट और 75 रुपए का विशेष स्मारक सिक्का भी जारी करेंगे। मयूर सोलंकी, आकाशवाणी समाचार, सोमनाथ।
1: बाद में प्रधानमंत्री वडोदरा जाएंगे। वे शाम लगभग 6 बजे सरदार धाम हॉस्टल परियोजना का उद्घाटन करेंगे। इस परियोजना में 1,000 लड़कों और 1,000 लड़कियों के लिए हॉस्टल की सुविधाएं शामिल हैं। इसमें सेंट्रल डाइनिंग हॉल, पुस्तकालय और ऑडिटोरियम जैसी सुविधाएं भी हैं। श्री मोदी सरदार धाम परिसर में विभिन्न सुविधाओं का भी दौरा करेंगे, जिनमें रिसेप्शन एरिया, नागरिक सुविधाएं, डाइनिंग एरिया और ई लाइब्रेरी शामिल हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री जनसभा को भी संबोधित करेंगे। असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने श्री हिमंत बिस्व शर्मा को राज्य में नई सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया है। इससे राज्य में NDA के लगातार तीसरे कार्यकाल का रास्ता साफ हो गया है।
4: सर्वसम्मति से भाजपा के नेतृत्व वाले NDA विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद श्री शर्मा ने गठबंधन के नेताओं के साथ लोकभवन में राज्यपाल से मुलाकात की और औपचारिक रूप से सरकार बनाने का दावा पेश किया। श्री आचार्य कल श्री शर्मा और नई मंत्री परिषद के सदस्यों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। शपथ ग्रहण समारोह खानपाड़ा के वेटरनरी कॉलेज मैदान में होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन सहित कई गणमान्य लोगों के समारोह में शामिल होने की संभावना है। NDA में भाजपा, असम गण परिषद और बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट शामिल हैं। गठबंधन ने विधानसभा चुनावों में 126 में से 102 सीटें जीती। भाजपा ने 82 सीटें हासिल की। श्री शर्मा पहली बार 2021 में मुख्यमंत्री बने थे। वह असम में पहले ऐसे गैर कांग्रेसी नेता बनने जा रहे हैं जो लगातार 2 बार मुख्यमंत्री के पद पर रहेंगे। समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
1: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंद्र अधिकारी आज राज्य सचिवालय नवन्ना में मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। एक रिपोर्ट।
5: पश्चिम बंगाल की नई सरकार अपनी प्रशासनिक यात्रा शुरू करने जा रही है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी आज नवन्न में पहली कैबिनेट बैठक करेंगे। उस बैठक में 5 नए शपथ ग्रहण किए गए मंत्रियों का विभागों का अन्य विभागों पर भी निर्णय लिए जाने की उम्मीद है। सूत्रों का कहना है कि भाजपा के चुनावी वादे एजेंडा में सबसे ऊपर रहेंगे, जिनमें आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना का क्रियान्वयन, अन्नपूर्णा भंडार और राज्य कर्मचारियों के 7वें वेतन आयोग का लागू होना शामिल है। आज मुख्यमंत्री सचिवों, जिला मजिस्ट्रेट और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से भी मिलेंगे, ताकि प्रशासनिक कार्यों का गति और कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा की जा सके। संदीप अंदाज गुप्ता, आकाशवाणी न्यूज, कोलकाता।
1: पश्चिम बंगाल में कांग्रेस और वामपंथी दलों ने भाजपा के खिलाफ संयुक्त विपक्षी मोर्चा बनाने के ममता बनर्जी का प्रस्ताव खारिज कर दिया है। ममता बनर्जी ने कांग्रेस, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और कट्टर वाम दलों सहित सभी विपक्षी दलों से भाजपा के खिलाफ एकजुट होने का आह्वान किया था। कांग्रेस प्रवक्ता सौम्या एच रॉय ने ममता बनर्जी की अपील खारिज करते हुए पूछा कि वो कट्टर वामपंथी समूह की बात क्यों कर रही हैं। उन्होंने 2013 में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के खिलाफ माओवादी हिंसा का भी जिक्र किया। उन्होंने तृणमूल कांग्रेस पर पिछले चुनावों में कांग्रेस को बदनाम करने और भाजपा के उदय को बढ़ावा देने का आरोप लगाया और कहा कि ममता बनर्जी ने ही भाजपा को बंगाल में पैर जमाने का मौका दिया। माकपा के प्रदेश सचिव मोहम्मद सलीम ने भी इस प्रस्ताव को सिरे से खारिज करते हुए ममता बनर्जी को भ्रष्ट और सांप्रदायिक बताया। सीपीआई के प्रदेश सचिव स्वप्न बंदोपाध्याय ने कहा कि ममता बनर्जी के साथ जुड़ने का कोई सवाल ही नहीं है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
6: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
7: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे, आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
6: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। उत्तराखंड सरकार ने चारधाम यात्रा के श्रद्धालुओं और पर्यटकों से राज्य में खराब मौसम की स्थिति के बीच सतर्क रहने तथा सुरक्षा मानकों का पालन करने की अपील की है।
8: मौसम विभाग ने उत्तराखंड के विभिन्न भागों, विशेष रूप से पर्वतीय क्षेत्रों में कल और बुधवार को खराब मौसम और बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। गढ़वाल मंडल के आयुक्त विनय शंकर पांडे ने श्रद्धालुओं और पर्यटकों से यात्रा के दौरान मौसम के बारे में ताजा जानकारी रखने और सावधानी के साथ यात्रा कार्यक्रम तैयार करने का आग्रह किया है। यात्रियों से राज्य में खराब मौसम को देखते हुए 12 और 13 मई को यात्रा कार्यक्रम तैयार करते समय अधिक सजग रहने की अपील की गई है। सभी संबंधित सरकारी विभागों को यात्रियों के लिए आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए गए हैं। समाचार कक्ष से मैं SB त्रिपाठी।
1: पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के प्रयासों के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के शांति प्रस्ताव को पूरी तरह अस्वीकार कर दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि उन्होंने ईरान का प्रस्ताव खारिज कर दिया है।
9: इससे पहले कल ईरान ने कहा था कि उसने पश्चिम एशिया में संघर्ष समाप्त करने के उद्देश्य से अमेरिका के प्रस्ताव पर जवाब भेजा है। यह जवाब पाकिस्तान के माध्यम से भेजा गया, जो ईरान और अमेरिका के बीच मध्यस्थता की भूमिका निभा रहा है। ईरान के राष्ट्रपति

0: पजिश्कियन ने कहा कि पश्चिमी देशों के साथ बातचीत को आत्मसमर्पण या पीछे हटने के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। इस बीच इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने कल रात राष्ट्रपति ट्रंप से बातचीत की। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय सुरक्षा स्थिति पर चर्चा की। इसराइल के प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप ईरान के उच्च संवर्धनित यूरेनियम भंडार को हटाने की आवश्यकता पर सहमत हुए, जो वार्ता का प्रमुख मुद्दा बना हुआ है। ईरान ने चेतावनी दी है कि हॉर्मुज जल डमरू मध्य में अमरीकी समुद्री अभियानों के साथ फ्रांसीसी या ब्रिटिश युद्धपोतों की किसी भी तैनाती का निर्णायक और तत्काल जवाब दिया जाएगा। फ्रांस के अधिकारियों ने कहा कि परमाणु ऊर्जा से चलने वाले विमान वाहक पोत चार्ल्स डी गॉल, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की स्टार्मर के नेतृत्व में रणनीतिक जलमार्ग में नौवहन की स्वतंत्रता बहाल करने के प्रयासों के तहत इस क्षेत्र की ओर बढ़ रहा है। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं अर्जुन शर्मा।
2: सुजो में AFC अंडर 17 महिला एशियाई फुटबॉल कप के क्वार्टर फाइनल में आज मेजबान चीन और भारत आमने सामने होंगे। ये मैच जीतते ही भारत फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप में जगह पक्की कर लेगा। भारत इससे पहले 2017 और 2022 में मेजबान के तौर पर इस विश्व कप में हिस्सा ले चुका है, लेकिन उसने प्रतियोगिता के जरिए क्वालिफाई नहीं किया था। भारत ने ग्रुप स्टेज में शानदार प्रदर्शन करते हुए क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई है। इस बीच भारत के 6 खिलाड़ी ताशकंद में एशियाई अंडर 15 मुक्केबाजी चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गए, जबकि 7 को कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा। फाइनल में कलयश कुमार ने 33 किलो वर्ग में, 37 किलो वर्ग में वसंत कुमार ने, 43 किलो वर्ग में समीर बोहरा ने, सुदर्शन वासुदेव चांडक ने 52 किलो वर्ग में, 58 किलो वर्ग में मोहम्मद यासिर ने, जबकि 67 किलो वर्ग में रौनक पराग लोखंडे ने जीत दर्ज की। रोहित पोथीना, नितिन नोंग, पोकांगवा मेईते, ओइना प्रशांत, हर्षवर्धन जीना देव और सुशांत जयानी को सेमीफाइनल में हार का सामना करना पड़ा। इधर IPL क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने मुंबई इंडियंस को 2 विकेट से हरा दिया। मुंबई इंडियंस ने निर्धारित 20 ओवर में 166 रन बनाए। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 8 विकेट खोकर जीत का लक्ष्य हासिल कर लिया। भुवनेश्वर कुमार को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। टूर्नामेंट में आज शाम 7:30 बजे धर्मशाला में पंजाब किंग्स का सामना दिल्ली कैपिटल से होगा।
1: पश्चिम बंगाल में विशेष जांच दल ने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या के सिलसिले में 3 लोगों को उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए 3 कुख्यात शूटर हैं। हत्या की साजिश में शामिल अन्य लोगों का पता लगाने के प्रयास जारी हैं। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में अग्नि सुरक्षा जागरूकता, खतरों को कम करना और आपदा रोकना विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। चर्चा में गृह मंत्रालय में अग्नि सुरक्षा सलाहकार प्रशांत लोनकर और दिल्ली अग्निशमन सेवा के निदेशक अतुल गर्ग भाग लेंगे। कार्यक्रम के दौरान श्रोता विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारे फोन नंबर है 0112-3101-04-81 और 0112-3101-7106। व्हाट्सएप नंबर 9289-09-4044 पर भी सवाल पूछे जा सकते हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
3: धन्यवाद विशाल। पश्चिम एशिया संकट से उत्पन्न चुनौतियों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का देशवासियों से आह्वान दैनिक जागरण सहित सभी अखबारों के पहले पन्ने पर है। पेट्रोल डीजल और गैस का संयम से करें इस्तेमाल। राजस्थान पत्रिका ने PM के हवाले से लिखा है 1 साल सोना नहीं खरीदें, वर्क फ्रॉम होम और ऑनलाइन मीटिंग करें। हिंदुस्तान ने आर्थिक विशेषज्ञों के हवाले से लिखा है प्रधानमंत्री की अपील का सकारात्मक असर पड़ने की उम्मीद, आयात बिल घटने से अर्थव्यवस्था को मिलेगी मजबूती। तमिलनाडु में नई सरकार का गठन भी अखबारों की सुर्खी बनी है। राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है तमिलनाडु में विजय राज, 6 दशक बाद गैर द्रविड़ सरकार। TVK प्रमुख विजय ने ली CM की शपथ। वहीं देशबंधु की सुर्खी है केरलम में नए मुख्यमंत्री के नाम को लेकर संशय बरकरार। बदलाव का चेहरा शीर्षक से अमर उजाला ने संपादकीय में लिखा है तमिलनाडु में द्रविड़ राजनीति का चक्र तोड़ते हुए थालापति विजय का मुख्यमंत्री बनना इस बात का प्रतीक है कि राज्य नई ऊर्जा, नई सोच और नए राजनीतिक प्रयोग की ओर बढ़ रहा है। ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि मुख्यमंत्री विजय केंद्र राज्य संबंधों में संतुलन बनाने में कैसी परिपक्वता दिखाते हैं और सुशासन की मिसाल कायम करते हैं। भारत की सभ्यता का प्रतिबिंब सोमनाथ शीर्षक से केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री का लेख नवभारत टाइम्स में है। सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने लिखा है कोई सभ्यता तब तक मजबूत रहती है जब तक वो अपनी जड़ों से जुड़ी रहे। लोकतंत्र की ताकत संघर्ष में नहीं बल्कि संतुलन और सम्मान में है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का ये बयान पंजाब केसरी में है। एक कार्यक्रम में गृह मंत्री ने कहा कि 1947 से संसद

0: और विधानसभाओं द्वारा लाए गए बदलाव देश में लोकतंत्र की मजबूती को बताते हैं। झूठ को तोड़ता और सच को जोड़ता चीन सीमा पर सेना का रेडियो। दैनिक ट्रिब्यून के अनुसार भारत चीन सीमा से लगे हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में सेना के ये रेडियो स्थानीय बोलियों में मौसम के अलर्ट के साथ साथ संवेदनशील सीमा पर गलत जानकारी से निपटने में मददगार साबित हो रहे हैं।
1: धन्यवाद फरहत। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच नागरिकों से एक वर्ष तक सोना नहीं खरीदने, ईंधन की खपत कम करने और विदेशी मुद्रा संरक्षित करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री आज गुजरात में सोमनाथ अमृत पर्व में शामिल होंगे। वडोदरा में सरदार धाम हॉस्टल का शुभारंभ करेंगे। असम के राज्यपाल ने हिमंत बिस्वा सरमा को राज्य में नई सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया। उत्तराखंड सरकार ने प्रतिकूल मौसम के बीच चार धाम यात्रियों और पर्यटकों से सतर्क रहने और यात्रा के दौरान सुरक्षा बरतने का आग्रह किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के शांति प्रस्ताव को पूरी तरह अस्वीकार्य बताया। और AFC अंडर 17 महिला एशियाई फुटबॉल कप के क्वार्टर फाइनल में आज भारत और मेजबान चीन सुझाव में आमने सामने होंगे। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

मीडियम वेव 374.5 मीटर अर्थात 801 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी जबलपुर है। 8:30 हुए हैं। श्रोताओं अब सुनिए फिल्म संगीत। पहला गाना लता मंगेशकर की आभास में है, गीतकार नीरज, संगीतकार एस टी बर्मन, फिल्म का नाम है प्रेम पुजारी।

0: लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत निर्देशन में इंदिवर के बोल अभी आपने सुने। आवाज थी मोहम्मद रफी की और फिल्म का नाम पारसमणि। आकाशवाणी जबलपुर से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। आपको याद दिला दें, इस सभा में 11:10 से श्री सोमनाथ अमृत पर्व पर माननीय प्रधानमंत्री जी के संबोधन का सीधा प्रसारण हम दिल्ली केंद्र से करेंगे। और अब अगला गाना आवाज़ मोहम्मद रफ़ी की है, गीत हसन कमाल का, संगीत रवि का, फिल्म का नाम है निकाह।
1: अभी अलविदा मत कहो।

परिचय फिल्म का ये नगमा आपने सुना लता मंगेशकर और भूपेंद्र की आवाज़ में। गीतकार थे गुलजार और संगीतकार RD बर्मन। अगला गीत आशा भोसले के स्वर में है। फिल्म का नाम है हम साया। गीतकार हैं हसरत जयपुरी और संगीतकार OP नैयर।

इस गाने के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है। मीडियम वेव पर ये आकाशवाणी जबलपुर है। आपको याद दिला दें, श्री सोमनाथ अमृत पर्व पर माननीय प्रधानमंत्री जी के संबोधन का सीधा प्रसारण इस सभा में 11:10 से हम दिल्ली केंद्र से करेंगे। अभी 8:58 होने को है। इस घंटे की खास खबरें कुछ ही पलों में हम भोपाल केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पहले ज्योतिर्लिंग सोमनाथ महादेव मंदिर के पुनर्निर्माण के अवसर पर आयोजित सोमनाथ अमृत पर्व में भाग लेंगे। वे भगवान सोमनाथ की पूजा और कुंभाभिषेक करेंगे और उसके बाद जनसभा को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल हैदराबाद में कई बड़ी विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। श्री मोदी ने कहा कि इन परियोजनाओं से हजारों नए रोजगार के मौके मिलेंगे और तेलंगाना की कनेक्टिविटी और मजबूत होगी। असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने भाजपा नेता हिमंत बिस्वा सरमा को नई सरकार बनाने का न्योता दिया है। हाल के विधानसभा चुनाव में एनडीए ने 126 में से 102 सीटें जीती थी, जिसमें अकेले भाजपा को 82 सीटें मिली। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल सीहोर के भैरुंदा में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना

0: फेज चार के कार्यक्रम में प्रदेश को 830 करोड़ रुपए का आवंटन सौंपा। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कल गुना में अडानी समूह की अंबुजा सीमेंट फैक्ट्री का शिलान्यास किया। फैक्ट्री में 1,500 लोगों को रोजगार मिलेगा और सालाना 4 मिलियन टन सीमेंट का उत्पादन होगा। रतलाम जिले में कल पारा रिकॉर्ड 45.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में यह मिला जुला मौसम अभी कुछ दिन और बना रहेगा। और रायपुर में कल रात खेले गए आईपीएल मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने मुंबई इंडियंस को 2 विकेट से हरा दिया। भुवनेश्वर कुमार ने 4 विकेट लेकर प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब जीता। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: मीडियम वेव पर ये आकाशवाणी जबलपुर है। सुबह के 9 बजे हैं। अब सुनिए लोक संगीत का कार्यक्रम लोक रसधार। इस कार्यक्रम में पहले आपको सुनवा रहे हैं तिलोत्तमा विश्वकर्मा के गाए बुंदेली लोकगीत।

आप सुन रहे थे तिलोत्तमा विश्वकर्मा के गाए बुंदेली लोकगीत। कार्यक्रम लोकरस्तार में लीजिए, अब सुनिए शोभा भट्ट के गाए बुंदेली लोकगीत।

नए जमाने की नई तस्वीर। अब छत पर लगे टीवी एंटेना को कहो गुड बाय सदा के लिए। समय के साथ बदलें, आगे बढ़ें। ले आए आज ही दूरदर्शन का डीडी फ्री डिश। इसमें है आपके पसंदीदा 100 से ज्यादा टीवी चैनल्स। इसके अलावा 51

0: 57 एजुकेशनल यानी पढ़ाई लिखाई वाले चैनल्स और 48 रेडियो चैनल्स। और तो और सेट टॉप बॉक्स लगवाने के बाद कोई खर्चा नहीं, बिल्कुल नहीं। डिजिटल क्रांति की ओर एक कदम और आपका डीडी फ्री डिश।
1: आपको याद दिला दी 11:10 से श्री सोमनाथ अमृत पर्व पर माननीय प्रधानमंत्री जी के संबोधन का सीधा प्रसारण दिल्ली केंद्र से किया जाएगा। मीडियम वेव 374.5 मीटर अर्थात 801 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी जबलपुर है। 9:30 होने को है। उर्दू कार्यक्रम आईना कुछ ही पलों में हम भोपाल केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।

0: ना हमसायों को आग बुझाने के लिए पुकारता है। सर सैयद ने बर्रे सगीर के मुसलमानों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए भरपूर कोशिश की और इसके लिए आसान पैराया अपनाया। वो सनाए बदाए तशबीह इस्तारा और मुतरादिफ अल्फाज के ज़खीरे का इस्तेमाल करने से एतराज़ करते थे, लिहाजा उनकी तहरीरों में असर व तासीर की कैफियत खूब पाई जाती है। बमिसदाक इस शेर के अंदाज़े बयां गरचे बहुत खूब नहीं है, शायद के उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। सर सैयद की तहरीरों में हमारंगी और मुनासिब हाल अंदाज़े तहरीर पाई जाती है। सर सैयद का दायरा तहरीर मुतफर्रिक मजामीन का अहाता करता है, जिसकी वजह से उनके सामने नई नई मुश्किलात के पहाड़ खड़े होते हैं। वो कभी तारीख पर लिखते नज़र आते हैं तो कभी तसव्वुफ पर, किसी वक्त उनका कलम फ़लसफ़े की तरफ मुड़ जाता है तो कभी वो सियासत और मजहब पर रवां हो जाता है। ऐसे में लिखने वालों का इम्तहान शुरू हो जाता है, क्योंकि हर मौजू अलग असलूब व इस्तिलाह का तकाजा करता है। सर सैयद का कमाल ये है कि वो हर मौजू पर लिखते हैं और उस मजमून और मौजू के लिहाज से असलूब इख्तियार करते हैं। यह सर सैयद के असलूब निगारिश की हमारंगी और ख़ूबसूरती है कि वो मुनासिब हाल असलूब इख्तियार करने में यद तूला रखते हैं। उनकी इस खूबी को सराहते हुए प्रोफेसर नूर हसन नकवी फरमाते हैं कि उर्दू नसर पर उनका बराह रास्त इख्तियार है कि उन्होंने नसर का उम्दा नमूना पेश करके दूसरों की रहनुमाई की, उनके चराग से अनगिनत चराग जल उठे। सर सैयद अपनी बात बरमला कहने में जुबानों की हदबंदी को कबूल नहीं करते हैं। यही वजह है कि उनकी तहरीरों में दिगर जबानों खुसूसन अंग्रेज़ी की आमेजिश पाई जाती है। बाज नाकदीन ने लिखा है कि सर सैयद अपनी तहरीरों में बेदरेग अंग्रेज़ी अल्फाज शामिल कर देते हैं, इससे तहरीर का हुस्न मांद पड़ जाता है और तहरीर गैर शगुफ्ता हो जाती है। सर सैयद का अहद अंग्रेज़ी हुकूमत और मगरबी तहजीब की आमद का ज़माना था। मगरब से उठने वाली जदीद साइंसी तहजीब सारी दुनिया में अपने बालों पर फैला रही थी। इस तहजीब की रेशा दवानियों और मेहरबानियों से दुनिया का कोई भी खित्ता, खुसूसन मशरक़ी खित्ता, अछूता नहीं था। यहाँ की ज़ुबान और अदब पर रिवायत परस्ती और कायदों की निगरानी कायम थी, जिसकी वजह से इसकी तरक्की और वसत की राह मसदूद होकर रह गई थी। ऐसी सूरत में अपनी बात साफ, सादा और आम फहम तरीके से कहने के लिए सर सैयद ने बड़े ही मुनासिब तौर पर अपनी तहरीरों में अंग्रेज़ी अल्फाज का इस्तेमाल किया और जहाँ किया बेमहल नहीं किया। वैसे भी ज़बानों की तरक्की और तौसी के लिए लाजिम है कि वो अपने दरवाज़े दूसरी ज़बानों के लिए खोले रखे। उर्दू ज़बान की यही तो खूबी है कि दूसरी ज़बानों के अल्फाज बड़ी आसानी से अपने अंदर समो लेने का कुदरती मिजाज रखती है। सर सैयद अंग्रेज़ी का जो भी लफ्ज़ और जहाँ भी इस्तेमाल करते हैं वो बेमहल नहीं होता और न ही तहरीर की खूबसूरती पर आँच आती है। सर सैयद की तहरीरों में खलूस और दिलसूजी खूब पाई जाती है। वो सच लिखते हैं और सच के तरफदार हैं। डॉक्टर शौकत सब्जवारी लिखते हैं कि सर सैयद का काम सबसे बड़ा काम है और सर सैयद का सही फितरी असलूब बे बयान है। सर सैयद ने जिस असलूब की बुनियाद रखी, उनके बाद हाली, शिबली और नज़ीर अहमद ने उसको मज़ीद मुस्तहकम और ज़्यादा मुस्तार बनाया। इस मकाले को मैं सैयद सुल्तान महमूद हुसैन के इस कौल पर ख़त्म करता हूँ कि सर सैयद एक अजीम शख्सियत हैं जिसने उर्दू नसर को अदब बराए ज़िंदगी के तहत इस्तेमाल करके उसे एक ऐसा लबो लहजा और तर्ज तहरीर अता किया कि आज हम अदबी दुनिया में उसकी पैरवी करते हैं। अदब की तमाम असनाफ, मसलन तारीख, ड्रामा, अफसाना, अदबी तनकीद, सहीफा निगारी और मजमून निगारी के वही मौजिद हैं। शुक्रिया
1: दोस्तों। भी आप मिर्ज़ा मुमताज़ बेग साहब की आवाज़ में तकरीर समाअत फरमा रहे थे, जो सर सैयद अहमद ख़ान के अदबी कारनामे मौजू पर मरकूज़ थी। हकीकत है कि जहां सर सैयद की नसर ने फ़िक्र को जला बख्शी, वहीं उनकी तहरीक ने शायरी को भी मकसदियत और इफादियत का नया पिरहन अता किया। जब नसर इस्लाह मुआशरत का रास्ता दिखाती है तो शायरी इंसानी जज्बों को महमीज़ करती है। इस इल्मी तकरीर के बाद अब हम रुख करते हैं शेरी गुलस्तान की जानिब। उर्दू गज़ल जो अज़ल से हमारे कल्बी वारदात की तर्जुमान रही है, आज की इस सुबह में एक जुदा गाना समा बांधने को तैयार है। गज़ल की रेशमी बहरों में नेहा गहरे फलसफे जब समातों से टकराते हैं तो रूह में एक वजदानी कैफियत सरायत कर जाती है। इसी फिजा को मजीद पुरकैफ बनाने के लिए पेश खिदमत है ये गज़ल राजेंद्र मेहता की दिलफरेब आवाज़ में और कला نام ہے ممتاز مرزا کا۔

0: दोस्तों, अभी आप राजेंद्र मेहता की आवाज में खूबसूरत गजल समाप्त फरमा रहे थे और कलाम था मुमताज मिर्जा का। इस प्रोग्राम की आखिरी कड़ी की जानिब हम रुख करते हैं, जहां हम सुनेंगे अयाज कमर साहब को और गजल के जादू से हमें मसहूर करें।
1: गजल का मतलब मुलाहिजा कीजिए। ये कह रहा हूँ बात बराबर हुजूर से, ये कह रहा हूँ बात बराबर हुजूर से, हाँ शख्सियत समरती है फिक्र व शऊर से, यो मशवरा है अहल कलम को मेरा आयाज, रहना है कोस दूर अना और गुरूर से। ये कह रहा हूँ बात बराबर हुजूर से, हाँ शख्सियत समरती है फिक्र व शऊर से, ये मशवरा है अहल कलम को मेरा आयाज, रहना है कोस दूर अना और गुरूर से। कता है ये कि शहर उल्फत से भागने वाले, शहर उल्फत से भागने वाले, बुग्ज व नफरत को बांटने वाले, सबको मालूम है वो बोने थे कद हमारा तराशने वाले। शहर उल्फत से भागने वाले, बुग्ज व नफरत को बांटने वाले, सबको मालूम है वो बोने थे कद हमारा तराशने वाले। कता देखें कि मुखालिफीन से डरना हमें नहीं आता, मुखालिफीन से डरना हमें नहीं आता, चुरा के नजरे गुजरना हमें नहीं आता, उन नबर्द आजमा होते हैं रूबरू उनके, जो सच है कह के मुकरना हमें नहीं आता। मुखालिफीन से डरना हमें नहीं आता, चुरा के नजरे गुजरना हमें नहीं आता, नबर्द आजमा होते हैं रूबरू उनके, जो सच है कह के मुकरना हमें नहीं आता। कत्ता देखें, सितम का बोझ हरीफों ने हम पे डाला है, सितम का बोझ हरीफों ने हम पे डाला है, तेरे करम ने अभी तक हमें संभाला है। सितम का बोझ हरीफों ने हम पे डाला है, तेरे करम ने अभी तक हमें संभाला है, ये बुजुर्गों की दुआओं का है नतीजा आयाज, हमारी जीत में अब हर तरफ उजाला है, हमारी जीत में अब हर तरफ उजाला है। कि देखिए उर्दू के हवाले से कि आसमां पर माहो अख्तर देख कर, आसमां पर माहो अख्तर देख कर है खुशी अब मार का सर देख कर, आसमां पर माहो अख्तर देख कर है खुशी अब मार का सर देख कर, बिल यकीन ताबिंद है उर्दू आयाज, नौजवानों में ये जोहर देख कर, बिल यकीन ताबिंद है उर्दू आयाज, नौजवानों में ये जोहर देख कर। अब निजामत में भी निजामत है, अब निजामत में भी निदामत है, छोड़िए ये कहाँ की जहमत है, कहिए जर्रे को आफ्ताब, मगर जो हकीकत है वो हकीकत है, और ये हकीकत मिसाल बन जाए, ये हकीकत मिसाल बन जाए, मेरा भारत मिसाल बन जाए, वो मिलके रहते रहे हैं मिलके रहे हैं, ये मोहब्बत मिसाल बन जाए। एक आखिरी कता देखें हजरात, कि हम लाए शेर व सुखन को छोड़कर, हम लाए शेर व सुखन को छोड़कर, हर मुसीबत गम को सह लेते हैं हम, हम लाए शेर व सुखन को छोड़कर, हर मुसीबत गम को सह लेते हैं हम, बासित व सहबा बशर के फैज से, चलते फिरते शेर कह लेते हैं हम। सादा सा गजल का मतला है कि हाल कैसा भी हो मेरे घर का, हाल कैसा भी हो मेरे घर का, मैं भिखारी नहीं किसी दर का, हाल कैसा भी हो मेरे घर का, मैं भिखारी नहीं किसी दर का, आओ क्या किसी दिल का जायजा लेते, क्या किसी दिल का जायजा लेते, था मिलता नहीं समंदर का,

0: या किसी दिल का जायजा लेते, थाव मिलता नहीं समंदर का, ओ कब कहा मैंने हूँ तही दामन, कब कहा मैंने हूँ तही दामन, मिल रहा है मुझे मुकद्दर का। और काट दो शाखे जबरो इस्तबदाद, काट दो शाखे जबरो इस्तबदाद, बोल बाला ना हो सितमगर का, काट दो शाखे जबरो इस्तबदाद, बोल बाला ना हो सितमगर का। और देखिए कुछ के लाजमी अम्र है जराहत भी, लाजमी अम्र है जराहत भी, जख्म को खौफ क्यों हो लश्तर का। और अब तो जीना पड़ेगा सदियों तक, अब तो जीना पड़ेगा सदियों तक, उसने वादा किया है महशर का, अब तो जीना पड़ेगा सदियों तक, उसने वादा किया है महशर का। आखिरी है देखें साहब, मुंदमिल ऐ अयास क्या होता, जख्म था वो जुबान खंजर का, मुंदमिल ऐ अयास क्या होता, जख्म था वो जुबान खंजर का, जख्म था वो जुबान खंजर का। और शेर देखिए मतलब दूसरे गजल का, कि अहले नज़र से कर्ब को परखा न जा सका, अहले नज़र से कर्ब को परखा न जा सका, हमसे भी अपना हाल सुनाया न जा सका, अहले नज़र से कर्ब को परखा न जा सका, हमसे भी अपना हाल सुनाया न जा सका। उथे गुलशिता में खार भी फूलों के दरमिया, थे गुलशिता में खार भी फूलों के दरमिया, आँखों से उसका हुस्न सरापा न जा सका। और से देखिए कि आलम वही है आज भी उनके जलाल का, आलम वही है आज भी उनके जलाल का, गुम्बद को पार करके परिंदा ना जा सका, आलम वही है आज भी उनके जलाल का, गुम्बद को पार करके परिंदा ना जा सका। महलों से अहले जर के निकलता नहीं है मेहर, तारीख बस्तियों से अंधेरा ना जा सका, महलों से अहले जर के निकलता नहीं है मेहर, तारीख बस्तियों से अंधेरा न जा सका। वो कहते हैं था इश्क का जवाब आना हक का तर्जुमा, था इश्क का जवाब आना हक का तर्जुमा, उसको किसी दलील से काटा न जा सका। कुछ ऐसे कौम का हुआ शीराजा मुंतशिर, कुछ ऐसे कौम का हुआ शीराजा मुंतशिर, फिर मरकज़ हयात पे लाया न जा सका। और इंसाफ की दुकान पे पहुँचे तो हम आयाज, कि इंसाफ की दुकान पे पहुँचे तो हम आयाज, महंगा था इस कदर के खरीदा ना जा सका, महंगा था इस कदर के खरीदा ना। रुबाइयात मुलाहिज़ा फरमाए, पहली रुबाई है कि बेवजह गले लोग जो पड़ जाते हैं, बेवजह गले लोग जो पड़ जाते हैं, हक बात पे भी लोग अकड़ जाते हैं, इखलास व मोहब्बत का नतीजा है आयाज, इंसान तो इंसान से जुड़ जाते हैं। दूसरी रुबाई देखिए कि हर शख्स को उर्दू में पढ़ाया जाए, हर शख्स को उर्दू में पढ़ाया जाए, इस तरह भी उल्फत को निभाया जाए, यकजहती का माहौल बनाना है अगर इंसान को इंसान से मिलाया जाए, हर शख्स को उर्दू में पढ़ाया जाए, इस तरह भी उल्फत को निभाया जाए, यकजहती का माहौल बनाना है अगर इंसान को इंसान से मिलाया जाए। और देखिए रुबाई अगली कि हर हाल में बच्चों को पढ़ाना उर्दू, हर हाल में बच्चों को पढ़ाना उर्दू, मुश्किल नहीं है दोस्त सिखाना उर्दू, हर हाल में बच्चों को पढ़ाना उर्दू, मुश्किल नहीं है दोस्त सिखाना उर्दू, बच्चों के जहन में भी रहेगी महफूज, बस और नहीं और बिछाना उर्दू, हर हाल में बच्चों को पढ़ाना उर्दू, मुश्किल नहीं है दोस्त सिखाना उर्दू, बच्चों के जहन में भी रहेगी महफूज, बस ओढ़ना और बिछाना उर्दू। एक कता और मुलाहिज़ा फरमा लें कि खंजर बकफ सिपाही से मैं डर नहीं सकता, खंजर बकफ सिपाही से मैं डर नहीं सकता, और झूठी गवाही से मैं डर नहीं सकता, सीने को सिपर रखता हूँ हर वक्त मैं आयाज, सीने को सिपर रखता हूँ हर वक्त मैं आयाज, हाँ जिल्ले इलाही से मैं डर नहीं सकता, रखता हूँ हर वक्त मैं आयाज, हाँ जिल्ले इलाही से मैं डर नहीं सकता।
1: सामईन इकराम, अभी आप अयाज कमर साहब के कलाम से महसूस हो रहे थे। इसी के साथ हमारा प्रोग्राम यहीं इख्तिताम पजीर होता है। अपने गिरा कदर तासुरात और तजावीज हमें खतूत के जरिए जरूर अरसाल करें। हमारा पता नोट फरमाइए। उर्दू प्रोग्राम आईना मार्फत स्टेशन डायरेक्टर आकाश।

आकाशवाणी शामला हिल्स भोपाल, पिन कोड है 462-0002। उर्दू प्रोग्राम आईना को हर सोमवार सुबह 9:30 बजे सुनना ना भूलें। अब अपनी दोस्त शीरीन खान को दीजिए इजाजत। आदाब।

0: ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है जिले की चिट्ठी।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है विदिशा जिले की चिट्ठी। आलेख वेद प्रकाश शर्मा का, वाचन स्वर धारणा सचदेव। सबसे पहले बात विदिशा नेशनल लोक अदालत की। जिला मुख्यालय समेत सभी तहसीलों में 34 खंडपीठों का गठन कर आपराधिक, सिविल, बैंक वसूली, मोटर दुर्घटना, वैवाहिक और राजस्व से जुड़े कुल 1716 मामलों का आपसी सहमति से निराकरण किया गया। प्रधान जिला और सत्र न्यायाधीश शेख सलीम ने बताया कि इन मामलों में करीब 5,99,00,000 रुपए की सेटलमेंट राशि तय की गई है। अदालत के साथ न्यायालय परिसर में रक्तदान शिविर भी लगाया गया। दूसरी तरफ भोपाल संभागायुक्त संजीव सिंह ने विदिशा जिले के खामखेड़ा कस्बे में जल जीवन मिशन के तहत चल रही नल जल योजना का निरीक्षण किया। अधिकारियों ने बताया कि 46 लाख रुपए से अधिक की लागत से रेट्रोफिटिंग योजना के तहत नया नलकूप, सम्पवेल और करीब 5,000 मीटर पाइपलाइन बिछाई गई है। इससे अब गाँव के सभी घरों तक नल कनेक्शन पहुँचा दिए गए हैं। अब बात मुख्यमंत्री जनकल्याण संबल योजना की। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भोपाल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए श्रमिक परिवारों को आर्थिक सहायता राशि वितरित की। स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने की दिशा में सिरोंज के शासकीय राजीव गांधी स्मृति चिकित्सालय में नई सोनोग्राफी सेवा शुरू की गई है। इससे अब क्षेत्र के मरीजों को जाँच के लिए दूसरे शहरों का रुख नहीं करना पड़ेगा। जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत जिले में पेयजल व्यवस्था को मजबूत करने के प्रयास लगातार जारी हैं। खामखेड़ा आंगनवाड़ी सेक्टर केंद्र में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग ने 31 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को FTK किट से पानी की जांच का प्रशिक्षण दिया। इसी कड़ी में शासकीय ITI विदिशा में जिला होमगार्ड विभाग ने आपदा प्रबंधन पर कार्यशाला आयोजित की। प्राचार्य कविता रघुवंशी ने बताया कि छात्रों को प्राकृतिक और अन्य आपदाओं से बचाव के उपायों की जानकारी दी गई। शिक्षा के क्षेत्र में भी जिले में नई पहलें देखने को मिल रही हैं। पीएम श्री योजना के तहत डाइट विदिशा में कक्षा 6 से 10 तक के शिक्षकों के लिए विषयवार प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। 3 चरणों में चले इस प्रशिक्षण में शिक्षकों को डिजिटल तकनीक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित मॉनिटरिंग की जानकारी दी गई। वहीं चलो घाट की ओर अभियान के तहत बेतवा नदी संरक्षण के लिए साप्ताहिक श्रमदान शुरू किया गया है। जन अभियान परिषद के सहयोग से चल रहे इस अभियान में युवा और सामाजिक संस्थाएं नदी घाटों से जलकुंभी, प्लास्टिक और अन्य कचरा हटा रहे हैं। विदिशा जिले में जनगणना 2027 की तैयारियां भी तेज हो गई हैं। जनगणना निदेशक कार्तिकेय गोयल ने जिले में चल रहे कार्यों की समीक्षा करते हुए स्वगणना अभियान की सराहना की। गोड़खेड़ी गांव में 100% स्वगणना कराने वाले शिक्षक KG राजपूत समेत अन्य कर्मचारियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया गया। कृषि क्षेत्र में विदिशा जिले के किसान नई पहचान बना रहे हैं। पारंपरिक गेहूं चना की खेती छोड़ अब कई किसान ड्रैगन फ्रूट, चिया सीड और कलौंजी जैसी औषधीय फसलों की ओर बढ़ रहे हैं। प्रगतिशील किसान यशवंत तिवारी ने बताया कि चिया सीड की खेती से किसानों को प्रति बीघा 70,000 से 1,00,000 रुपए तक की शुद्ध आमदनी हो रही है। वहीं सिरसी गाँव

0: के किसान विपुल श्रीवास्तव ने ड्रैगन फ्रूट की खेती शुरू कर दूसरे किसानों को भी प्रेरित किया है। आधार बायोमेट्रिक अपडेट अभियान में बेहतर काम करने पर विदिशा जिले को बड़ी उपलब्धि मिली है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के निदेशक सुमित मिश्रा ने विदिशा को देश के टॉप 5 जिलों में शामिल होने पर जिला प्रशासन की सराहना की है। खासतौर पर स्कूलों में विद्यार्थियों के आधार अपडेट अभियान को सफल बनाने के लिए शिक्षा विभाग और DEGS टीम की प्रशंसा की गई। अब बात विदिशा जिले से मिली हुई कुछ प्रेरणादायक खबरों की। ITI से इलेक्ट्रीशियन ट्रेड की पढ़ाई करने वाले अनिकेत मैना आज MPEB में प्लांट ऑपरेटर बनकर 25,000 रुपये महीना कमा रहे हैं। वहीं केमिकल इंजीनियर चिराग गौर ने ITI से मैकेनिक डीजल ट्रेड का प्रशिक्षण लेकर बुधनी प्लांट में अप्रेंटिसशिप हासिल की। PM विश्वकर्मा योजना से 1,00,000 रुपये का कर्ज लेकर भारत सिंह ने अपनी खुद की वर्कशॉप खोली है। वहीं वन स्टॉप सेंटर ने गलत ट्रेन में चढ़ जाने से विदिशा पहुंची 85 वर्षीय बुजुर्ग महिला को इलाज के बाद बिहार के मधुबनी में उनके परिवार तक सुरक्षित पहुंचाया। इसके अलावा RBSK योजना के तहत नटेरन की 10 वर्षीय खुशी का आयुष्मान कार्ड से भोपाल के चिरायु अस्पताल में जन्मजात हृदय रोग का सफल निःशुल्क ऑपरेशन हुआ। विदिशा जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: अभी आप सुन रहे थे जिले की चिट्ठी। इसमें आज आपने सुनी विदिशा जिले की चिट्ठी। आलेख वेद प्रकाश शर्मा का था, वाचन था धारणा सचदेव का।
2: मीडियम वेव पर ये आकाशवाणी जबलपुर है। आप सुनिए कार्यक्रम वंदे मातरम, गौरव गान की 150 आजादी किसे अच्छी नहीं लगती, भले ही पिंजरा सोने का ही क्यों ना हो। आजाद होकर परिंदा उसमें कभी लौट कर नहीं आता। आज पिंजरा टूट चुका है और आजाद है सोने की चिड़िया। अपने पूर्ण वैभव के साथ आजादी के आकाश में परवाज भरते हुए आज हम खुद अपने भाग्य विधाता हैं। लेकिन ये आज़ादी के बाद की तस्वीर है। उससे पहले की तस्वीर इतनी खुशरंग नहीं थी। देश के आकाश पर छाए थे परतंत्रता के बादल। चारों ओर थीं कठिन परिस्थितियां जिनसे जूझकर हमारे वीर सेनानियों ने आज़ादी हासिल की। परतंत्रता के बादल छटे और देश में एक नए सूरज का उदय हुआ, जिसकी किरणें अपने साथ सुनहरे भविष्य का संदेश लेकर आईं, जिनसे रोशन हुई समृद्धि और विकास की एक नई इबारत। हम अपनी मातृभूमि की कल्पना ममतामयी माँ के रूप में करते हैं, जिसके प्रति आदर और कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए बंकिम चंद्र चटर्जी ने 7 नवंबर 1875 को रचा था गीत वंदे मातरम, जिसका अर्थ है माँ मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ।

0: आप सुन रहे थे कार्यक्रम वंदे मातरम, गौरवगान की डेढ़ सदी। ये आकाशवाणी जबलपुर है। समाचार बुलेटिन विश्व दर्पण अब हम दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच नागरिकों से एक वर्ष तक सोना नहीं खरीदने, ईंधन की खपत कम करने और विदेशी मुद्रा बचाने का आग्रह किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के शांति प्रस्ताव को पूरी तरह अस्वीकार्य बताया। सऊदी अरब ने पड़ोसी खाड़ी देशों पर ईरान के हमलों की निंदा की। हंता वायरस प्रभावित जहाज पर सवार दो भारतीय नागरिक सुरक्षित और उनमें संक्रमण के लक्षण नहीं पाए गए। और AFC अंडर 17 महिला एशियाई फुटबॉल कप के क्वार्टर फाइनल में आज भारत और मेजबान चीन सुजों में आमने सामने होंगे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच नागरिकों से एक वर्ष तक सोना न खरीदने, ईंधन की खपत कम करने और विदेशी मुद्रा बचाने का आग्रह किया है। हैदराबाद में कल एक समारोह में श्री मोदी ने वर्क फ्रॉम होम व्यवस्था फिर शुरू करने, अनावश्यक विदेशी यात्रा से बचने और स्थानीय उत्पादों की खरीद को वरीयता देने की अपील की।
2: एक जमाना था जब संकट आता था तो लोग देश हित में सोना दान दे देते थे। आज दान की जरूरत नहीं है, लेकिन देश हित में हमको ये तय करना पड़ेगा कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे, विदेशी मुद्रा बचाने के लिए।
1: प्रधानमंत्री की अपील ऐसे समय आई है जब पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और हॉर्मुज जलडमरू मध्य के आसपास व्यवधान के कारण वैश्विक कच्चे तेल की कीमतें लगभग $70 प्रति बैरल से बढ़कर $126 प्रति बैरल के आसपास पहुंच गई हैं। प्रधानमंत्री ने नागरिकों से विवेकाधीन खर्चों पर पुनर्विचार करने की भी अपील की, क्योंकि देश बढ़ती वैश्विक ऊर्जा लागतों से आर्थिक दबाव का सामना कर रहा है। प्रधानमंत्री ने नागरिकों से खाद्य तेल की खपत कम करने और किसानों से विदेशों से आयातित रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम करने का भी आह्वान किया। पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के प्रयासों के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के शांति प्रस्ताव को पूरी तरह अस्वीकार कर दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि उन्होंने ईरान का प्रस्ताव खारिज कर दिया है।
3: इससे पहले कल ईरान ने कहा था कि उसने पश्चिम एशिया में संघर्ष समाप्त करने के उद्देश्य से अमेरिका के प्रस्ताव पर जवाब भेजा है। यह जवाब पाकिस्तान के माध्यम से भेजा गया, जो ईरान और अमेरिका के बीच मध्यस्थता की भूमिका निभा रहा है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियन ने कहा कि पश्चिमी देशों के साथ बातचीत को आत्मसमर्पण या पीछे हटने के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। इस बीच इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने कल रात राष्ट्रपति ट्रंप से बातचीत की। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय सुरक्षा स्थिति पर चर्चा की। इसराइल के प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप ईरान के उच्च संवर्धनित यूरेनियम भंडार को की आवश्यकता पर सहमत हुए, जो वार्ता का प्रमुख मुद्दा बना हुआ है। ईरान ने चेतावनी दी है कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य में अमेरिकी समुद्री अभियानों के साथ फ्रांसीसी या ब्रिटिश युद्धपोतों की किसी भी तैनाती का निर्णायक और तत्काल जवाब दिया जाएगा। फ्रांस के अधिकारियों ने कहा कि परमाणु ऊर्जा

0: से चलने वाले विमान वाहक पोत चार्ल्स डी गॉल, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की स्टार्मर के नेतृत्व में रणनीतिक जलमार्ग में नौवहन की स्वतंत्रता बहाल करने के प्रयासों के तहत इस क्षेत्र की ओर बढ़ रहा है। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: इस बीच सऊदी अरब ने संयुक्त अरब अमीरात, कतर और कुवैत के क्षेत्रों और समुद्री सीमा को निशाना बनाकर किए गए ईरान के हमलों की कड़ी निंदा की है और खाड़ी देशों की सुरक्षा के प्रति फिर से समर्थन व्यक्त किया है। इससे पहले संयुक्त अरब अमीरात ने कल कुवैत पर ड्रोन हमलों की कड़ी निंदा की थी। संयुक्त अरब अमीरात के विदेश मंत्रालय ने कहा कि ये आतंकी हमले कुवैत की संप्रभुता का उल्लंघन और उसकी सुरक्षा के लिए खतरा है। ये राजनयिक प्रतिक्रिया कुवैत के रक्षा मंत्रालय की उस घोषणा के बाद आई है जिसमें देश के हवाई क्षेत्र में घुसपैठ करने वाले शत्रु के कई ड्रोन देखे जाने की पुष्टि की गई थी। विश्व दर्पण आकाशवाणी से प्रसारित किया जा रहा है। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। स्पेन के कैनरी द्वीप समूह के पास जहाज पर घातक हंता वायरस प्रकोप के बाद यात्रियों और चालक दल के सदस्यों को उतारकर उनके देशों में भेजा जा रहा है। बीमारी के प्रसार को रोकने के लिए सभी यात्रियों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोटोकॉल के अंतर्गत अलग रखा जाएगा। स्पेन और फ्रांस के नागरिकों को लेकर सरकारी विमान स्थानीय समयानुसार कल दोपहर मैड्रिड और पेरिस पहुंचे। यात्रियों को परीक्षण के लिए अस्पताल ले जाया गया। कनाडा, तुर्की, ब्रिटेन, आयरलैंड और अमेरिका के नागरिकों के आज पहुंचने की संभावना है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जहाज के सभी यात्रियों के लिए 42 दिन के क्वारंटाइन की सिफारिश की है। स्पेन के मैड्रिड में भारतीय दूतावास ने कहा है कि हंता वायरस से प्रभावित जहाज से उतारे गए दोनों भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं और उनमें संक्रमण के कोई लक्षण नहीं है। इस जहाज पर दो भारतीयों सहित लगभग 150 लोग सवार थे। स्पेन के राष्ट्रीय आपातकालीन निगरानी और समन्वय केंद्र ने कहा कि दोनों भारतीय जहाज के चालक दल के सदस्य के तौर पर काम कर रहे थे। उन्हें नीदरलैंड्स भेज दिया गया है और स्वास्थ्य सुरक्षा प्रोटोकॉल के तहत क्वारंटाइन में रखा जाएगा। विदेश मामलों के राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा ने कोस्टारिका के विदेश मंत्री मैनुअल तोवर के साथ द्विपक्षीय बैठक की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मार्गरेटा ने कहा कि बैठक के दौरान भारत कोस्टारिका द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने पर सार्थक चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि भारत और कोस्टारिका बहुपक्षवाद, लोकतंत्र और नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को बढ़ावा देने के मामले में समान मूल्यों को साझा करते हैं। रूस ने कहा है कि वो नाटो या जर्मनी के साथ युद्ध नहीं चाहता, लेकिन यूरोप में संयुक्त परमाणु सुरक्षा कवच पर चर्चाओं से महाद्वीप का रणनीतिक संतुलन बिगड़ सकता है। जर्मनी में रूस के राजदूत सर्गेई नेचायेव ने बर्लिन में कहा कि यूरोप में परमाणु खतरों के किसी भी विस्तार से रूस को अपने परमाणु सिद्धांत पर पुनर्विचार के लिए मजबूर होना पड़ेगा। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर मॉस्को को सैन्य खतरों का सामना करना पड़ा तो वो संयम की गारंटी नहीं दे सकता। इस बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि यूक्रेन में रूसी सैनिक नाटो के समर्थन वाली सेना के साथ युद्ध लड़ रहे हैं और फिर भी आगे बढ़ते जा रहे हैं। उन्होंने मॉस्को के रेड स्क्वायर में विजय दिवस परेड के दौरान विशेष सैन्य अभियान में शामिल रूसी सैनिकों की भी प्रशंसा की। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग के निमंत्रण पर 13 से 15 मई तक चीन की आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे। पिछले 9 वर्षों में किसी अमेरिकी राष्ट्रपति की चीन की यह पहली यात्रा होगी। ये यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब अमेरिका, इसराइल और ईरान के बीच संघर्ष लगातार जारी है। अमरीकी प्रशासन की प्रमुख उप प्रेस सचिव अन्ना केली ने कहा कि ट्रंप बुधवार शाम को बीजिंग पहुंचेंगे। उन्होंने इस दौरे को बहुत महत्वपूर्ण बताया। और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं अर्जुन शर्मा।
2: सुजो में AFC अंडर 17 महिला एशियाई फुटबॉल कप के क्वार्टर फाइनल में आज मेजबान चीन और भारत आमने सामने होंगे। ये मैच जीतते ही भारत फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप में जगह पक्की कर लेगा। भारत इससे पहले 2017 और 2022 में मेजबान के तौर पर इस विश्व कप में हिस्सा ले चुका है, लेकिन उसने प्रतियोगिता के जरिए क्वालिफाई नहीं किया था। भारत ने ग्रुप स्टेज में शानदार प्रदर्शन करते हुए क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई है। इस बीच भारत के 6 खिलाड़ी ताशकंद में एशियाई अंडर 15 मुक्केबाजी चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गए, जबकि 7 को कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा। सेमीफाइनल फाइनल में कल यश कुमार ने 33 किलो वर्ग में, 37 किलो वर्ग में वसंत अशोक कुमार ने, 43 किलो वर्ग में समीर बोहरा ने, सुदर्शन वासुदेव चांडक ने, 52 किलो वर्ग में, 58 किलो वर्ग में मोहम्मद यासिर ने, जबकि 67 किलो वर्ग में रौनक पराग लोखंडे ने जीत दर्ज की। रोहित पोथीना, नितिन नोंग पोकंगनवा, मई तेई ओइना, प्रशांत हर्षवर्धन जीना, देव और सुशांत जयानी को सेमीफाइनल में हार का सामना करना पड़ा। इधर आईपीएल क्रिकेट

0: में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने मुंबई इंडियंस को 2 विकेट से हरा दिया। मुंबई इंडियंस ने निर्धारित 20 ओवर में 166 रन बनाए। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 8 विकेट खोकर जीत का लक्ष्य हासिल कर लिया। भुवनेश्वर कुमार को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। टूर्नामेंट में आज शाम 7:30 बजे धर्मशाला में पंजाब किंग्स का सामना दिल्ली कैपिटल से होगा।
1: ईरान की जेल में बंद नोबेल शांति पुरस्कार विजेता नारगिस मोहम्मदी को राजधानी तेहरान के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उन्हें जमानत पर रिहा कर उनकी सजा निलंबित कर दी गई है। 54 वर्षीय नारगिस ने 2023 में महिलाओं के अधिकारों को बढ़ावा देने और मृत्युदंड को समाप्त करने के अभियान के लिए जेल में रहते हुए ये पुरस्कार जीता था। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच नागरिकों से 1 वर्ष तक सोना नहीं खरीदने, ईंधन की खपत कम करने और विदेशी मुद्रा बचाने का आग्रह किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के शांति प्रस्ताव को पूरी तरह अस्वीकार्य बताया। सऊदी अरब ने पड़ोसी खाड़ी देशों पर ईरान के हमलों की निंदा की। हंता वायरस प्रभावित जहाज पर सवार 2 भारतीय नागरिक सुरक्षित, उनमें संक्रमण के लक्षण नहीं पाए गए। और AFC अंडर 17 महिला एशियाई फुटबॉल कप के क्वार्टर फाइनल में आज भारत और मेजबान चीन सूजो में आमने सामने होंगे। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: मीडियम वेव पर ये आकाशवाणी जबलपुर है। 10:20 हुए हैं। श्रोताओं, आप सुनिए फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम सारंगा।

अपनों का कार्यक्रम अपनों द्वारा अपनों के लिए। ये बड़ी छोटी सी परिभाषा है कार्यक्रम सारंगा की। स्वीकार करें अपने दोस्त चमन सालवार का नमस्कार। आज के इस कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं एक बहुत ही मीठे से गाने से। योगेश ने इस गाने को लिखा, एस डी बर्मन ने संगीतबद्ध किया और फिल्म का नाम है उस पार। सुनने के ख्वाहिशमंद है हमारे ये सभी श्रोता। जैतू का किशनपुर से आलम दिलकश, शबाना नाज, रिजवान दही, इमरान राजा, आलम शेख, शबाना आलम, चांदनी नाज, सिराजपुर गणेशपुर से हिना कैसर, मोहम्मद वकील राही, फिरोज आलम और नाज प्रवीण, जरुण वरुण महाराष्ट्र से बाबा साहब आडोदे, मीनाक्षी चरपे, रजनी कनीरे, कार्तिक और युवराज, बोरखेड़ा पित्रामल उज्जैन से विनोद मूडत, नेहा जैन, दीपक मयंक मूडत, चेतन नाहटा, दिलीप सिंह पवार, दीक्षा और कुश मूडत, महादेवघाट हमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारनी ठाकुर, सूरज ज्योति, रियांश ठाकुर और गुड़िया ठाकुर, कल्पा जिला सतना से चांद मोहम्मद, लाल मोहम्मद, सितारा खान, मौसमी खान, आशिकी अंजुम और मोहम्मद दिलशान पठान।

क्रिश्चियन कॉलोनी सागर से डैनी मार्टिन, अर्चना मार्टिन, अश्मिका, अंशिका और विमला मार्टिन। गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव, मीका, बलविंदर बिरक, जयतेक बिरक और मीका बिरक। सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, जयवीर सिंह ठाकुर, अमनदीप, अनिल शर्मा। कालका से शुभचंद्र बजाज, बिट्टा बजाज और साहिल बजाज। गौरीनगर इंदौर से आनंद कुमार कामले, रेखा कामले, राखी पारस, तपस्या और करिश्मा कामले। सरोज चौक अमरावती से कमरुल्ला, नसीम बेगम, आयसा खान, हदिया खान, हसमा सालिया, शोएब खान, पोत्रा मुस्ताबा खान, राउफ और शाहिद भाई। गांधीबाग अकोला से रमेश कटनकर और वैशाली कटनकर। कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय। दुबिहा नेवादा गाजीपुर से प्रतीक राय, रोशनी राय और प्रांजल राय। शेरपुर कलां गाजीपुर से अवधेश राय, प्रीति राय और नवनीत राय। आप सबको सुना रहे हैं कार्यक्रम का अगला गीत, जिसे आवाज दी है चंद्राणी मुखर्जी ने। गीत शीतल का, संगीत रवि का, फिल्म का नाम है ये प्रीत न होगी कम।

कार्यक्रम का अगला गीत अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाज में है। गीतकार हैं समीर और आतिश कपाड़िया, संगीतकार अनु मलिक। फिल्म का नाम है वक्त। पसंद करने वाले श्रोता आप सब हैं। तेंदुखेड़ा दमोह से ओम प्रकाश नेमा, किरण नेमा, आकाश, विकास, नंदिनी और शिवांश। सरगुजा मेन पार्ट से सोनिया थापा, सोनम थापा, रेशमा थापा, आदिबा थापा। बिहारी कॉलोनी लोनी से परवीन डोम, शरफुद्दीन डोम, कुमारी बली डोम, डब्लू डोम। जेल रोड मथुरा से वसीम आसमा बेलदार, अकरम आसमा बेलदार और उल्लाह आसमा बेलदार। नर्मदा कॉलोनी मंडला से सिया शरण, ज्योतिषी पुष्पा, ज्योतिषी गोल्डी रोली, लकी श्वेता और परू। भाटापारा दतरंगी से द्वारका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार और झाविंद्र कुमार वर्मा। महादेवघाट टमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश, तारणी सूरज, सुजला ज्योति और रेयांश ठाकुर। नेपाल पैलेस सागर से तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका नूपुर, ऋषिका रॉबिन और भी श्रोता हैं। शिवा, शिवांशु, यश, अवधेश, प्रेम नारायण, रमेश कठौदिया, सुजीत और रमाकांत दुबे। घंटाघर चौक खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका, गुनगुन, संप्रीत हेमेंद्र और सन्मति पंचोलिया। बंडा बेली सागर से लक्ष्मण रैकवार, हल्ले, विनीता रैकवार, लल्लू, ऋषि रैकवार, वैशाली और वैष्णवी।

बने बुजुर्ग टीकमगढ़ से ब्रजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी, सोनाली सोनम और आशीष विश्वकर्मा, कंवर कॉलोनी बड़वाह से प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली, आदित्य अदिति शिवानी और मीनू राज श्रीमाली, बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशन लाल देवांगन, कौशल्या हेमलता और डिम्पल देवांगन, कस्बा गुन्नौर से फारूख अली खान, फैजी फराज, फरहान, फरहीन, फारिया और ताहिरा, ऊपरकोट मोहल्ला चौखुंटी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन, शहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरसान और अबान अब्बासी, प्रणाम सिटी खंडवा से शिवांश कुमार खंडाले, सुभाष खंडाले, मंदा, संदीप कुमार, माधुरी, पिंटू कुमार और जयश्री खंडाले, दिल्ली शहर मोरीगेट से कन्हैया लाल, रीता देवी, शिल्पा रानी, आकाश कुमार, लुधियाना पंजाब से अमरजीत, सोनम कौर, परमजीत, आदिबा कौर, बिहारी कॉलोनी महासमुंद से वली उल्लाह फकीर, डब्लू उल्लाह, परवीन उल्लाह फकीर, बुलंदशहर से बद्रू वली अंसारी, फर्जू वली अंसारी और फर्जी वली अंसारी, बर्गीनगर जबलपुर से रविंद्र गदरे, सुभाष गदरे, दिगंबर राजेश, शिवम शुभांग और सृष्टि गदरे, बाजार पारा बेमेतरा से भरत लाल सिन्हा, लव कुमार और लक्की, बेमेतरा छत्तीसगढ़ से सुरेश कुमार सारथी, पूर्णिमा हेमलता, कमलकांत और वीरेंद्र ब्रिजकांत सारथी। आप सबको सुना रहे हैं आनंद मिलिंद के संगीत निर्देशन में समीर का लिखा ये गाना, जिसे आवाज़ दी है लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर ने। फिल्म का नाम है वंश।

मुजफ्फरपुर बिहार से आर्यन राज, रोहित राज और पीयूष कुमार, सारनाथ बनारस से बाबू यादव, श्रीमती मंशा यादव, दुर्गेश, सीमा, अन्नू और अरुणेश यादव, डोंगरगांव राजनांदगांव से राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका बेबी अनिष्का और तन्मय गजभिये, कानीवाड़ा सिवनी से संध्या चौरसिया और विजय चौरसिया, बेरडी से राजेश सोनी, कंचन सोनी, गायत्री ढोमड़े, वैष्णवी ढोमड़े, चंचल ढोमड़े, अर्जुन गवनेकर और धीरज सभाशेरे, सर्रई सिवनी से कमला प्रसाद शर्मा और उनके परिवारजन, मेहरनगर उमरखेड़ से अभिजीत गवाड़कर, सरिता गवाड़कर, प्रिंस एकांश गवाड़कर, बहादुरा नागपुर से वैशाली शैलेश, श्वेता सुमित और कुमारी धोनी गवाड़कर, बदलापुर मुंबई से सिद्धांत, प्रणिता और टुकटुक गवाड़कर, आज़ादनगर लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर रही और महराज जहां, नागचंद रोड खंडवा से अब्दुल गफार डाबर, खुश नसीब अब्दुल हक, ज़ियाउल हक और मोहम्मद उमर डाबर। आप सबको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर और अमित कुमार की आवाज़ में आनंद बख्शी का लिखा ये नगमा। इसे संगीतबद्ध किया है आर डी बर्मन ने। फिल्म का नाम है तेरी कसम।

मोटक का माफी जिला खंडवा से जगन्नाथ पटेल, कमला पटेल, अंतिम ज्योति ललित, मनीषा, शुभम, देवी किशन, भावना, कनिका, आदित्य, मानस और मन पटेल। गड़िया मौजी उस्तू से प्रदीप कुमार मंडल, आशीष मंडल, कुंदन मंडल, करीना कुमारी, पूजा कुमारी, आरती कुमारी, सुनीता देवी और उनके दोस्त। चांदनी चौक गंडई पंडरिया से पवन कुमार सेन, प्रभा देवी सेन, लक्की विक्की नानू, रविंद्र सेन, खुशी रौनक सेन। आप सबकी पसंद पर आखिरी गाना सुनिधि चौहान की आवाज़ में, फिल्म का नाम है सूर्य।

दोस्तों अब सिर्फ आपसे नमस्कार करने का वक्त है, इजाजत दें अपने दोस्त चमन सालवार को। मीडियम वेव पर ये आकाशवाणी जबलपुर है। न्यूज हेडलाइंस कुछ ही पलों में हम भोपाल केंद्र से रिले करेंगे।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच लोगों से एक साल तक सोना न खरीदने, ईंधन की खपत कम करने और विदेशी मुद्रा बचाने का आग्रह किया है। हैदराबाद में कल एक समारोह में श्री मोदी ने वर्क फ्रॉम होम व्यवस्था फिर से शुरू करने की अपील की। आज राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस है। गृह मंत्री अमित शाह ने युवाओं को शुभकामनाएं देते हुए सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि सरकार कई परिवर्तनकारी पहलों के माध्यम से नवाचार क्षमता का उपयोग करते हुए भारत के विकास को गति दे रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के अवसर पर देश के वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और शोधकर्ताओं के समर्पण, नवाचार और दृढ़ता को नमन किया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज श्योपुर के कूनो नेशनल पार्क में दो मादा चीतों को क्वारंटीन बाड़े से खुले जंगल में छोड़ेंगे। इस कदम से प्रोजेक्ट चीता को नई रफ्तार मिलेगी और अब भारत में कुल चीतों की संख्या 57 हो गई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि खादी सिर्फ कपड़ा नहीं बल्कि देश की पहचान है और आत्मनिर्भर एमपी के लिए खादी व ग्रामोद्योग सरकार की बड़ी प्राथमिकता है। मध्य प्रदेश विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद आज राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के मौके पर विज्ञान भवन में एक कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है।

0: इसमें भोपाल के 250 से ज़्यादा छात्र शिक्षक शामिल होंगे। और आईपीएल क्रिकेट में आज पंजाब किंग्स का मुकाबला दिल्ली कैपिटल से होगा। ये मैच धर्मशाला में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है फिल्म संगीत।

कॉकटेल फिल्म का नगमा अभी आप सुन रहे थे। आवाज़ें थी नीरज श्रीधर और कविता सेठ की। गीतकार थे इरशाद कामिल और तर्ज बनाई थी प्रीतम ने। फिल्म संगीत का कार्यक्रम इस वक्त आप सुन रहे हैं।

चांदनी फिल्म का नगमा आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर और बाबला की आवाज़ें हैं, आनंद बख्शी के बोल हैं, शिव हरी की तर्ज़।

इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम संपन्न हुआ। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। अब हम दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे सोमनाथ अमृत पर्व के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के संबोधन का सजीव प्रसारण। कृपया इस महत्वपूर्ण प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए।

0: यह आकाशवाणी है। आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी सोमनाथ अमृत महोत्सव में सम्मिलित हो रहे हैं। इस समारोह का सजीव विवरण आपको सुनवा रहे हैं, विवरण दे रहे हैं नीलम मलकानिया और कौशिक राय। विशेषज्ञ के रूप में हमारे साथ हैं श्री आशुतोष शर्मा।
1: नमस्कार। आज गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में प्रभास पाटन में सोमनाथ अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की इस महोत्सव में गरिमामय उपस्थिति रहेगी। पुनर्निर्मित मंदिर के उद्घाटन की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में ये महोत्सव मनाया जा रहा है। इस दौरान बहुत सी गतिविधियां होंगी। आयोजन का विवरण आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। मैं नीलम मलकानिया अपने साथी कमेंटेटर कौशिक रॉय के साथ इस विशेष प्रसारण में आपका स्वागत करती हूं और साथ ही स्वागत कर रही हूं हमारे आज के विशेषज्ञ सनातन संस्कृति मर्मज्ञ और वेद विशेषज्ञ डॉक्टर आशुतोष शर्मा का भी। हम आपको बताएं कि आज के इस आयोजन के हिस्से के तौर पर एक विशेष रोड शो का आयोजन हो रहा है। विभिन्न सांस्कृतिक झांकियों का प्रदर्शन हो रहा है। पारंपरिक प्रस्तुतियों के माध्यम से प्रधानमंत्री जी का स्वागत किया जा रहा है। स्थानीय कलाकार और सामाजिक संगठन भी इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। साथ ही संत समाज के लोग हैं, आध्यात्मिक जगत की जो हस्तियां हैं उनकी उपस्थिति इस विशेष आयोजन में बनी हुई है। मंदिर की भव्यता और दिव्यता आज कुछ अधिक ही है। ये सोमनाथ विरासत के 75 वर्षों का उत्सव है। प्रथम ज्योतिर्लिंग माना जाता है सोमनाथ को, द्वादश ज्योतिर्लिंग जो हैं उनमें, और कहा जाता है प्रभासम च परिक्रम्य पृथ्वी क्रम संभवम, यानी दिव्य प्रभास की परिक्रमा पूरी पृथ्वी की परिक्रमा के समान होती है। हम आपको बताएं कि माननीय प्रधानमंत्री जी श्री सोमनाथ न्यास के अध्यक्ष भी हैं और उनके अपने उद्गार हैं कि सोमनाथ आशा का वो गीत है जो हमें सिखाता है कि सृजन की शक्ति विनाश से कहीं अधिक प्रबल होती है।
2: सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जयिन्यां महाकालम् ओंकारं ममलेश्वरम् परलयं वैद्यनाथं च दाक्षिण्यं भीमशंकरं सेतुवंदे तु रामेशं नागेशं दारुकावले वाराणस्ये तु विश्वेशं त्र्यंबकं गौतमी तटे हिमालये तु केदारं घृष्मेशं च शिवालये। एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायप्रातः पठेन्नरः सप्तजन्मकृतं पापं स्मरणं विनश्यति। Namaskar and welcome to this very special broadcast to commemorate the 75th anniversary of the restoration of the most important Jyotirling temple at Somnath. The Honorable Prime Minister will be participating at the Somnath Amrit Mahotsav 2026, and Somnath is the amalgam of our ancient heritage, our culture and our deep faith. As we mentioned that Somnath is among the most important and the first of the 12 Jyotirlings. It is nestled next to the sea, and the main shikhar of the temple is 155 feet high. The temple is a seven-storied structure built in the Chalukya style, featuring a 10-ton kalash at its peak and a 37-foot flagpole. And today we shall also see the Kumbh Abhishek and the Dwajarohan by the Honorable Prime Minister, and the flypast by the Indian Air Force Surya Kiran aerobatic team. And this will be a sight to see. And we have with us Dr. Ashutosh Sharma. First of all, Dr. Sharma, can you explain to our listeners the importance of the Kumbh Abhishek?
3: नमस्कार। आप सभी को आज के इस विशेष महोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं।

0: जो अभिषेक आज हो रहा है इसका विशेष नाम कुंभाभिषेक है। वास्तविकता में वैसे तो हम भगवान शिव के अभिषेक को रुद्राभिषेक के नाम से जानते हैं, परंतु इस कुंभाभिषेक का महत्व इसलिए भी है क्योंकि जब विशेष पूजा की जाती है, विशेष अर्चना की जाती है, तो उसका एक विशेष नाम होता है, वह है कुंभ। कुंभ कहते हैं घड़े को। इसीलिए जहाँ विशेष तीर्थ होते हैं वहाँ पे सहस्रघट यानी कि हजार मटकों से, हजार घड़ों से जल को लाकर के, गंगा जल आदि, नर्मदा का जल आदि लाकर के जो पूजा की जाती है, अर्चना की जाती है, स्नान कराया जाता है, उसे अभिषेक की संज्ञा दी गई है। वैसे तो स्नान आदि की प्रक्रिया सभी के लिए सामान्य रूप से होती है, चाहे किसी भी पिंड रूप में हो, और उसी पिंड के रूप में मनुष्य भी है एवं जितने भी चराचर जगत में प्राणी हैं सभी वो पिंड रूप हैं, लेकिन उस पिंड के अंदर जो बैठने वाला सूक्ष्म जगत शरीर है वह स्वयं शिव है, जो इस स्थूल से निकलने के बाद भी सूक्ष्म जो जाता है उसको हम पिंड रूप में ही मानते हैं, सूक्ष्म रूप से, और उसको मन के साथ संयोग किया गया है क्योंकि मननात रायते, जो मंत्र को लिया गया वो मन से है। इसीलिए आप देखेंगे सोमनाथ में सोम का अर्थ भी चंद्रमा है, और चंद्रमा को जब हम मानते हैं तो चंद्रमा मन का कारक है, इसलिए मन की प्राप्ति के लिए चंद्रमा जल का भी है, मन का भी है, और इसीलिए हम कहते हैं कि जल के द्वारा अपने मन को शुद्ध करो, अपनी वाणी को शुद्ध करो, और अपने अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए अर्चना की जानी चाहिए।
1: जी आशुतोष जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी, जैसा कि हम बता रहे हैं और सुनते आए हैं कि जो सोमनाथ मंदिर है, ये जो ज्योतिर्लिंग है, इन्हें द्वादश ज्योतिर्लिंग में प्रथम स्थान प्राप्त है, तो हम इसका महत्व भी आज आपसे जानना चाहेंगे।
0: जो हमारे द्वादश ज्योतिर्लिंग है, लिंगों की जब हम बात करते हैं तो लिंग किसे कहते हैं, तो लिंग जो शब्द है संस्कृत धातु में लिगि गतो में अच प्रत्यय लग के बना है, इसका अर्थ होता है आकृति, चिन्ह, प्रतीक या लक्षण
1: जी,
0: अर्थात एक विशेष प्रभाव को बताने वाला जो लक्षण है उसे लिंग कहा गया। यदि हम देखें तो एक स्थिति मिलती है जिसमें कहा गया निराकार ओंकार मूलम तुरीयम, तो निराकार का अर्थ क्या है, दुनिया में जितनी भी आकृतियां निकली हैं, जितने भी चिन्ह उत्पन्न हुए हैं या जो भी हम दृश्यमान देखते हैं, वो चराचर जगत में प्रस्तुतिकरण उस लिंग के माध्यम से ही होता है। अब वो लिंग कई प्रकार के हैं, स्थूल लिंग हो सकता है, आत्मलिंग है, ज्योतिर्लिंग है। ज्योतिर्लिंग उसे कहते हैं जो स्वयंभू है, जो भगवान शिव की विशेष प्रभाव शक्ति के द्वारा उत्पन्न हुआ, चाहे वो जमीन से हुआ, चाहे वो अलग अलग प्रकार से हुआ। जैसे अगर हम साउथ इंडिया में देखें तो पंचभूतात्मक लिंगों का भी वर्णन मिलता है। तो ये प्रथम क्यों है, क्योंकि इसका विवरण शिव पुराण में कोटि रुद्र संहिता के अध्याय 13 और 14 में भी इसका वर्णन है, और स्कंद पुराण में प्रभास खंड में भी। यदि आप आज का नाम देखें तो आज का नाम तो यह नहीं है, यह जूनागढ़ रियासत का पहले था स्थान, बाद में वेरावल में विलय हो गया, लेकिन इसको जो आरंभिक नाम है प्राचीन काल से उसका नाम है प्रभास तीर्थ। यदि आप देखें तो भगवान कृष्ण ने भी अपना जो शरीर का त्याग किया है इसी क्षेत्र में किया है, अर्थात कि जब भगवान भी आते हैं तो अपने पंचभूतात्मक शरीर को छोड़ने के लिए, मुक्ति के रूप में अपने सूक्ष्म शरीर को ऊपर बढ़ाने के लिए शिव की कृपा चाहिए
1: जी।
0: इसीलिए यहाँ पे प्रथम रूप जो है, हमारा जन्म क्यों हुआ, ये पुनर्जन्म के चक्र में क्यों फंसे, क्योंकि हमारे मन के अंदर जो अलग अलग विकार हैं वो आ जाते हैं, और इसी की एक कथा हमें पुराणों में मिलती है चंद्रमा के रूप में, कि जब चंद्रमा अर्थात हमारा मन, जब 27 नक्षत्र अर्थात उसकी पत्नियां उसमें किसी जगह पर स्थिर हो गया, यानी कि हमारे जो चलायमान मन को सही रूप ना लग के एक जगह अटकाव में आ गया, तो उसमें कमी आ गई, हम समत्व भाव को प्राप्त नहीं कर पाए, इसीलिए शिव ने उसके दो भाग करे, पाप भाग को नीचे किया कि आप शुद्धिकरण करो। इसीलिए आप देखेंगे यहाँ पे सोमनाथ क्यों, क्योंकि चंद्रमा ने यहाँ पे अभिषेक किया है, चंद्रमा ने महामृत्युंजय आदि के द्वारा अपने पाप का विमोचन किया है, पाप को नष्ट किया है, अर्थात अपने मन को शुद्ध किया। तो ये चंद्रमा कौन है, चंद्रमा कोई व्यक्ति हो या ना हो, लेकिन हमारे अंतःकरण में बैठा हमारा मन जो चलायमान है, जो सत्व रूप है, जो हमें आगे बढ़ा सकता है, उसकी पूजा और उसको सही दृष्टिकोण से आगे बढ़ाना, ये चंद्रमा का उद्देश्य है, इसलिए सोमनाथ मंदिर का उद्देश्य है
1: जी।
2: And the Honorable Prime Minister offering prayers at the historic Somnath Tirth, which is the first of the Jyotirlings. And today, the 11th of May marks the 75th year since the inauguration of the restored temple by the first President of India, Dr. Rajendra Prasad. The Honorable Prime Minister had at the beginning of this year had gone to Somnath Temple for the Somnath Swabhiman Parv, and today we are marking the Somnath Amrit Mahotsav 2.

0: 2026. As the Prime Minister said recently in a newspaper article, the Honourable Prime Minister said that Somnath gives us a civilizational message. The vast sea before it evokes timelessness. The waves tells us that no matter how fierce the storms are or how turbulent the tides are, one can always rise again with dignity and strength. The waves return to the shore as though reminding every generation that the spirit of the people can never be subdued for long. And the Honorable Prime Minister is offering prayers at the Somnath Mandir.
1: मंदिर में विशेष पूजन अर्चन चल रहा है, मंगल ध्वनियां आप तक पहुंच रही हैं आकाशवाणी के माध्यम से। और हम आपको बताएं कि सोमनाथ मंदिर जो है वो अदम्य साहस और जिजीविषा का प्रतीक भी है, जैसा कि हम अक्सर सुनते आए हैं। कई बार विदेशी आक्रांताओं ने इसे लूटा तोड़ा, लेकिन हर बार जीर्णोद्धार हुआ, पुनरुद्धार किया गया इस मंदिर का, क्योंकि आस्था का प्रतीक है। चालुक्य या मारू गुर्जर स्थापत्य शैली में निर्मित लगभग 150 फीट ऊंचे शिखर वाला एक भव्य मंदिर है ये, जो एकता का प्रतीक भी है। अरब सागर के तट पर कपिला हिरण और सरस्वती के पावन त्रिवेणी संगम पर स्थित है। और ये एक ऐसा मंदिर है जिसमें सिर्फ भारतीय नागरिक नहीं बल्कि विदेशों से भी श्रद्धालु लगातार आते रहे हैं। और अंतरराष्ट्रीय महत्व इस मंदिर का है, हमारे इतिहास का हिस्सा है। हम कह सकते हैं कि ये हमारे इतिहास और भविष्य के बीच का एक ऐसा सूत्र है जो आध्यात्मिकता का लगातार चार करता रहा है। राष्ट्रीय पुनर्जागरण का सबसे दृढ़ स्तंभ सोमनाथ को माना जाता है। सोमनाथ स्वाभिमान का प्रतीक है और इसीलिए सोमनाथ स्वाभिमान पर्व जो है वो भी बहुत चर्चा में रहा, उसने भी बहुत प्रेरित किया सभी को। और यहाँ पर आज मंदिर की जो सज्जा है वो विशेष है, पुष्प सज्जा की गई है। शिव भगवान से जुड़े हुए प्रतीक चिन्ह जो है वो स्थान स्थान पर दिखाई दे रहे हैं। डमरू की आकृति, नंदी जी की आकृति, त्रिशूल यहाँ पर पुष्पों से बनाए गए हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो विशेष पूजन अर्चन किया है जिसका वो हिस्सा बने हैं, ऐसा माना जाता है कि ये भी भगवान शिव से आशीर्वाद लेकर आध्यात्मिकता का संचार करके और राष्ट्र कल्याण की भावना के साथ किया गया है। हम आपको बताएं कि इस समय सोमनाथ मंदिर में अमृत महोत्सव चल रहा है और माननीय प्रधानमंत्री जी की इसमें गरिमामय उपस्थिति है। साथ ही जो अन्य कार्यक्रम होंगे उनमें एक विशेष आकर्षण रहेगा सूर्य किरण फॉर्मेशन, जो अलग अलग ये बनाए गए वायुसेना की सूर्य किरण टुकड़ी है जो कई तरह के फॉर्मेशन बनाएगी और हवाई करतब दिखाते हुए यहाँ पर मंदिर में नमन करते हुए पुष्प वर्षा भी की जाएगी। 1951 में प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव हुआ था, भव्य आयोजन था। उस समय 101 तोपों की सलामी दी गई थी मंदिर के प्रांगण में और आज माननीय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति पूरे आयोजन को और अधिक गरिमामय बना रही है।
0: Yes, you are absolutely right, Neelam. And as you mentioned, that our ancient scriptures say that a pradakshina of the divine Prabhasa, that is the Somnath, is equal to the pradakshina of the whole earth itself. While people come to Somnath to pray, they also experience the remarkable continuity of a civilization whose flame could never be extinguished. Empires rose and fell, tides changed, history moved through the conquests and upheavals, yet Somnath continues to endure in our consciousness. Today is also a time to remember the countless greats who stood firm in the face of tyranny.
2: मनः शिव संकल्पमस्तु सुमुखश्चैक

विष्णुरा विष्णु श्रीमदा भगवतो महापुरुषस्य विष्णु राज्ञया प्रवर्त मानस्य अद्य ब्रह्मणो द्वितीये परार्धे मनः शिवसंकल्पमस्तु। सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णक धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजानन ते सर्वार्थ

विष्णुरा विष्णुः श्रीमद भगवतो महापुरुषस्य विष्णुः राज्ञया प्रवर्त मानस्य अद्य ब्रह्मणो द्वितीये परार्धे मनः शिवसंकल्पमस्तु।

0: विष्णुः श्रीमदा भगवतो महापुरुषस्य विष्णुः राज्ञया प्रवर्ता मानस्य अद्य ब्रह्मणो।
1: डॉक्टर आशुतोष, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि कुछ समय बाद यहाँ पे ध्वजारोहण भी होगा, और जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि सोमनाथ मंदिर के ध्वज पे नंदी जी और त्रिशूल है, तो इसके बारे में हमारे श्रोताओं को थोड़ा बता दें।
2: इसके लिए हमें समझना होगा कि जो वास्तुशास्त्र के मूल ग्रंथ हैं, जैसे रूपमंडनम, प्रसादमंडनम, तो प्रसाद का अर्थ ही महल या मंदिर है। उसमें ऐसा विवरण मिलता है कि जो पूरा मंदिर है, जहाँ से हम आरंभ मंदिर में एंट्री लेते हैं, वहाँ से और शिखर तक एक मनुष्य रूप आकृति की कल्पना की गई है, जिसमें आप देखेंगे मंडपम या अर्ध मंडपम या महामंडपम आदि जो क्षेत्र हैं, ये पेट और वक्षस्थल के आदि भाग हो जाते हैं। अब क्योंकि हमारा पूरा शरीर का जो मूल ब्रह्म रूप है, ये गर्दन से ऊपर मस्तक भाग होता है, इसीलिए यहाँ पर जो व्यवस्था है, ये किसी भी पिंड को रखने की या भगवान को रखने की कल्पना है, क्योंकि हमारे मस्तक में जो तृतीय नेत्र हम मान के चलते हैं या दृष्टि रूप जो मान के चलते हैं, दृष्टि से भगवान का दर्शन होता है रूप क्षेत्र में, तो इसीलिए हमारा मस्तक जो है वो शिखर के रूप में है, और उसके अंदर जो उठने वाली दृष्टि रूप है, जिसे हम तीसरा नेत्र भी कह सकते हैं या मन की आंख भी कह सकते हैं, उसका दर्शन हम कैसे करें कि भगवान हमारे पास है, उसके लिए जैसे हम मन के अंदर आंखें बंद करके विचार करते हैं, इसी प्रकार से दृष्टि रूप से हम बाह्य रूप में शिखर और उसके ऊपर बैठा हुआ जो कलश स्थापना होती है और उसके साथ जो ध्वजारोहण होता है, ये बताता है कि यहाँ पर भगवान का जागृत वास है, ये उसका प्रमाण हो जाता है। और आप देखेंगे भगवान शिव के जो मंदिर है, उसमें विशेष रूप से जहां भी कोई मंदिर होगा वहां त्रिशूल विशेष होगा। त्रिशूल की आवश्यकता क्यों है? त्रिशूल कोई हथियार नहीं है, जो हम कई बार सामान्य रूप से देखते हैं, ये बताता है समाधि रूप में जब हम चलते हैं तो हमारे तीन प्रकार से विचार चलेंगे, शरीर चलेगा, मन चलेगा, चित्त चलेगा, आत्मा का संयोग उसमें बनेगा। वो तीन रूप क्या है? सत्व, रज और तम। इसे अहंकार की संज्ञा दी गई है। ये तीन प्रकार के अहंकार हैं, इसी में तमोगुण प्रधान तत्व से हमारे शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, और उसी से उत्पन्न आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी उत्पन्न हुए, और उसी के जो रजोगुण और जो सतोगुण रूप से हमारे जो ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां और मन की उत्पत्ति हुई है। अतः हम ये देख सकते हैं कि यदि हमारे शरीर में पंचभूतात्मक जो हमने पिंड लिया, और इस पिंड के हटने के बाद भी जो सूक्ष्म जगत में शरीर में जाएगा, जो पुनर्जन्म का कारण बनेगा, उसका मूल प्रभाव का जो हम ये कारण यदि समझ सकें, तो हम समझेंगे कि यह सत्व, रज और तम ही है। इनका तीनों का आपसी संयोग और व्यवस्थितीकरण ये त्रिशूल बताता है, इसीलिए इसमें जो मध्य क्षेत्र आप देखोगे उठा हुआ है, उसे रजोगुण की संज्ञा दी गई है। रज वो जो गति दे, आगे बढ़ाए, मूवमेंट दे, इसीलिए उसके संयोग से दोनों गुणों का जब साम्यावस्था हो जाती है तो व्यक्ति मुक्त हो जाता है, इसलिए मुक्तिनाथ क्षेत्रों में हमेशा शिवार्चन होता है।
3: जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस जानकारी के लिए। हम अपने श्रोताओं को बताएं कि इस समय वैदिक मंत्रोच्चार और पूरे विधि विधान के साथ मंदिर में पूजन अर्चन जो है वो चल रहा है, मंगल ध्वनियां हैं चारों ओर, सोमनाथ अमृत महोत्सव ये है, और इस पावन पर्व की याद में समृद्ध विरासत और आध्यात्मिक महत्व को ध्यान में रखते हुए प्रतीक के रूप में कार्यक्रम में एक स्मारक डाक टिकट जारी किया जाएगा और एक सिक्का

0: भी जारी किया जाएगा। अलग अलग क्षेत्र की विशिष्ट हस्तियों की कार्यक्रम में उपस्थिति है, अनेक माध्यमों से वो इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं और ये भी संयोग ही है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं कहा है कि जनवरी माह में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के बाद ये दूसरा अवसर है जब प्रधानमंत्री जी सोमनाथ जी के दरबार में राष्ट्र निर्माण की प्रतिबद्धता के साथ पहुंचे हैं, उपस्थित हैं और यहाँ सोमनाथ अमृत महोत्सव का हिस्सा बन रहे हैं। पूजन अर्चन के बाद आम श्रद्धालु भी दर्शन कर पा रहे हैं मंदिर में और वायु सेना के जो यान हैं वो सूर्य किरण टुकड़ी जो है जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बहुत सारे देशों के विभिन्न कार्यक्रम जो होते हैं उसमें भाग लेती रही है, वो अलग अलग फॉर्मेशन बनाते हुए कार्यक्रम में और अपनी ओर से भाग लेगी और इसकी रोचकता को और बढ़ाएगी। जो एक्रोबेटिक यान होते हैं इन्हें देखना भी बहुत आकर्षण का एक हिस्सा रहता है और उत्सुकता इनकी लगातार बनी रहती है माननीय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति सोमनाथ अमृत महोत्सव में।
1: Yes, and as we mark the 75 years of the consecration of the rebuilt Somnath Temple by the first President of India, Dr. Rajendra Prasad, the Honorable Prime Minister today, as my colleague Neelam mentioned, will release a special commemorative postal stamp and a coin of rupees 75 denomination. As we were speaking earlier, today is also a time to remember the countless greats who stood firm in the face of tyranny. They were Lakulisha and Soma Sarman, who transformed Prabhasa into a great center of philosophy. Chakravarti Maharaj Dharmasena IV of the Vallabha built the second temple 3 centuries ago. Bhima Deva, Jayapal and Anandapal will always be remembered for defending civilizational honor against invasions. It is said that Raja Bhoj too helped with the construction. Karna Dev and Siddharaja Jayasimha played a pivotal role in restoring Gujarat's political and cultural strength. Bhava, Brihaspati, Kumarapal Solanki and Pashupal Acharyas rebuilt and sustained the shrine as a great center of worship and learning. Vishaladev Vaghela and Tripurankara protected its intellectual and spiritual traditions. In the 1940s, when the spirit of freedom swept across India and the foundations of a new republic were being laid under the leadership of towering figures like Sardar Patel, one thing continued to trouble Sardar Patel deeply: the condition of the Somnath Temple. On the 13th of November 1947, during Diwali, he stood next to the dilapidated ruins of the temple with seawater in his hands and said, "On this auspicious day of the Gujarati New Year, we have decided that Somnath should be reconstructed." He asked the people of Saurashtra to do their best. This was a holy task in which all should participate. And on his clarion call, it was not only the people of Gujarat, but also the people of entire India that responded enthusiastically.
0: और इसीलिए हम कहते हैं कि इतिहास का एक सूत्र थामे है सोमनाथ मंदिर, हमारी समृद्ध विरासत का प्रतीक है। आयोजन का विवरण हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, आइए आपको सुनवा रहे हैं एक भजन।

0: महोत्सव में सोमनाथ अमृत महोत्सव।
1: सोमनाथ अमृत महोत्सव आयोजन किया जा रहा है। सोमनाथ मंदिर में माननीय प्रधानमंत्री जी की विशेष उपस्थिति। इस कार्यक्रम में संत समाज के लोग हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूजन अर्चन किया विधि विधान के साथ, और साथ ही आज के आयोजन में विभिन्न कार्यक्रम होंगे। अभी आप शिव स्तुति सुन रहे थे, आइए आपको सुनवाते हैं एक और भजन।

0: सोमनाथ अमृत महोत्सव चल रहा है इस समय, सोमनाथ मंदिर में इसका आयोजन किया जा रहा है। और आशुतोष जी, इस दौरान हम देख रहे हैं कि मंदिर में जो विशेष पुष्प सज्जा की गई है, इसमें स्थान स्थान पर हम ओम की आकृति देख रहे हैं, तो इसका महत्व हम आपसे पूछेंगे, लेकिन हम आपको ये भी
1: एंड यस नीलम द टाइम फॉर द सूर्य किरण्स द एरोबैटिक टीम द सूर्य किरण एरोबैटिक टीम SKAT the red and white Hawk MK-32 aircraft of the Indian Air Force led by Group Captain Ajay Dasharathi performing this wonderful aviation adventure atop the skies of the Somnath Temple, adding glitter and color. What a sight indeed. And a wonderful performance by the Indian Air Force's Surya Kiran aerobatic team. And we also saw the petals being dropped from the helicopters of the Indian Air Force. And now we can listen to the chants of Har Har Mahadev as the Dhwajarohan is going on.
0: जी बिल्कुल, और हम जैसा कि कह रहे थे कि स्थान स्थान पर ओम की आकृति देख रहे हैं, भगवान शिव से जोड़ा जाता है, तो हम ओम उच्चारण के विषय में आपसे जानना चाहेंगे।
2: जब हम भगवान शिव की आरती करते हैं तो दो विशेष शब्द आते हैं इसमें, बोला एकानन चतुरानन पंचानन राजे। तो एकानन भगवान विष्णु, चतुरानन भगवान ब्रह्मा और पंचानन भगवान शिव, अर्थात पंच महाभूतों के जो स्वामी हैं वो भगवान शिव हैं। और उसी में फिर दूसरा अक्षर आता है प्रणवक्षर के मध्य, ये तीनों एका, अर्थात इन तीनों का जो मूल स्वरूप है ब्रह्मा विष्णु और महेश, उस प्रणव में आ जाता है। उस प्रणव के तीन अक्षर क्या हैं, अ उ और म। तो अगर हम देखेंगे तो अ की जब हम ध्वनि करते हैं तो नाद ब्रह्म से आता है, पेट के पास से आता है। वहीं उ की अगर हम एक वाइब्रेशन देखें तो हमें वक्षस्थल से, छाती के पास से, सीने के पास से ये आती है। और यदि हम म अक्षर को देखें तो मुख में गले के कंठ से जब हम अवरोध करते हैं व्यंजन रूप में, तो अल्व उसमें होकर के पूर्ण शब्द ना होके हलंत लग के वो म बंद हो जाता है। तो आप देखिए कि ऊर्ध्व गति, हमारे प्राण जो ऊपर की ओर उठने वाले हैं, उन प्राण शक्ति का जो द्योतक है वो भगवान शिव हैं। और
1: ध्वजारोहण,
2: अब ध्वजारोहण भी आप देखेंगे हमेशा नीचे से ऊपर की ओर उठती हुई मानी गई है
0: जी।
2: अर्थात कि ये एक प्रकार से प्रकृति के तत्व को बताती है। इसलिए यदि हम देखें भगवान शिव की जो अर्चना कहते हैं, तो इसमें वेदों में वर्णन मिलता है सवन, ये एक प्रात सवन, मध्य सवन और सायं सवन, तीन सवन के रूप में बताया गया कि प्रातकालीन जब समय होता है सूर्योदय का, उस समय भगवान शिव का पूजन किया जाना चाहिए। मध्य दिवस जब सर के ऊपर सूर्य हो तब किया जाना चाहिए, और सायंकाल जब सूर्यास्त का समय हो तब शिव का पूजन किया जाना चाहिए। लेकिन यदि हम सभी समय पर ना भी कर पाएं तो विशेष समय जो भगवान शिव के पूजन का है उसे कहते हैं प्रदोष काल। प्रदोष काल अर्थात संध्या का समय जो सूर्यास्त का होता है, उस समय हम पूजन करें भगवान शिव का तो बहुत उत्तम है, क्योंकि वह तमोगुणी प्रधान तत्व है। तमोगुण अर्थात हम शाम को देखेंगे तो हम थक जाते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं, एक गहन डूब जाते हैं, हमें निद्रा के बाद नहीं पता हम किस लोक में रहते हैं, किस अवस्था में रहते हैं, तो वहाँ हमारी सुरक्षा कौन कर रहा है उस अंधकार में। हम किस प्रकार से अपने प्राणों को भूल कर भी जिस पे आश्रित हो सके पंचभूतात्मक रूप से, वो भगवान शिव हैं। इसीलिए शाम को जब सोते समय सदैव ओम नमः शिवाय का जाप वेदों में बोला गया, प्राणों में बोला गया, और जब उठते हैं तो ओम नमो नारायणाय का जाप हमें बोला गया है
0: जी। तो यानी हम अपने दिन की शुरुआत भी प्रभु का नाम स्मरण करके कर सकते हैं, और संध्या काल में भी जब सही समय है उस वक्त हम भगवान शिव का पूजन अर्चन कर सकते हैं। और हम आपको बताएं श्रोताओं कि सोमनाथ अमृत महोत्सव के इस अवसर पर भारतीय वायु सेना के जो यान है, विशेष सूर्य किरण एक्रोबेटिक टीम है, उसने अद्भुत प्रदर्शन किया है, और विभिन्न आकृतियां जो हैं वो इन यानों ने अद्भुत संयोजन दिखाते हुए बनाई हैं। स्क्वाड्रन लीडर अमन गोयल ने नेतृत्व करते हुए यहाँ पर इन यानों ने जो मंदिर है, हम कहते हैं कि ऐतिहासिक महत्व वाला ये मंदिर है, और साथ ही आध्यात्मिक चेतना का प्रतीक है, हमारी समृद्ध विरासत का प्रतीक है सोमनाथ मंदिर, उस पर जो सोमनाथ अमृत महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, इस अवसर को विशेष बना दिया है। पुष्प वर्षा मंदिर पर की गई, साथ ही विभिन्न आकृतियाँ बनाई गई, और जो हवाई करतब दिखाए गए उसे देख कर यहाँ उपस्थित जन जो हैं वो पूरी तरह से उत्सुक रहे और साथ ही जोश भी भर दिया है, और यही आज का भारत है जिसका बार बार उल्लेख किया जाता है कि हम तकनीकी रूप से भी समृद्ध हैं, लेकिन साथ ही जो आध्यात्मिक चेतना है हमारी, जो विरासत है, उसे लेकर भी हम आगे बढ़ेंगे। और इसीलिए जो लक्ष्य है हमारा 2047

0: 2022 में वो लक्ष्य जो है उसके लिए बार बार माननीय प्रधानमंत्री जी हमें प्रेरित करते हैं और हर भारतीय अपनी ओर से पूरे सजग रूप से उस ओर बढ़ना चाहता है, विकसित भारत के लक्ष्य की ओर अपनी विरासत को संजोए रखते हुए। माननीय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति सोमनाथ अमृत महोत्सव में।
1: Yes, you are absolutely right. And incidentally, Neelam, today is the very day that the first president of India, Dr. Rajendra Prasad, had inaugurated the reconstructed Somnath Temple on the 11th of May 1951. And Dr. Rajendra Prasad had on that occasion said that the Somnath Temple proclaims to the world that anything with unparalleled faith and love cannot be destroyed. He expressed the hope that the temple will live in the hearts of the people. He also said that the restoration of the temple was a fulfillment of Sardar Patel's dream. But taking that spirit forward, it is important that we restore prosperity to the lives of the people. These are important and inspiring messages that the first president of India gave. This is the path that the government of India has been following for over a decade. And as you mentioned, that the resolve of Viksit Bharat by 2047 is indeed something that which every Indian is working towards under the guidance of the Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi. And he has many times proclaimed the principle Vikas Bhi, Virasat Bhi, from Somnath to Kashi, from Kamakhya to Kedarnath, from Ayodhya to Ujjain, from Trimbakeshwar to Srisailam. The government of India's team has had the opportunity to equip our spiritual centers with the latest facilities while at the same time preserving their traditional character. And this is very important, and this has boosted the local economy, it has secured livelihoods and deepened the spirit of Ek Bharat Shreshth Bharat.
0: जी, और आध्यात्मिक चेतना के प्रतीक जो हमारे धार्मिक स्थल हैं, अगर हम देखें तो इनका पर्यटन में भी बहुत बड़ा योगदान होता है और पर्यटन जो है वो देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण एक भूमिका निभाता है। जो धार्मिक स्थल हैं इनका माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो हमारे विशेष धार्मिक स्थल हैं उनके आसपास का जो क्षेत्र है उसको भी विशेष रूप से विकसित किया गया है ताकि जितने भी धार्मिक जो पर्यटक आते हैं और अगर वो विदेशी हैं तो उन्हें भी विश्व स्तरीय सुविधाएं मिल सके, उन्हें तकनीक मिल सके। और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व से विभिन्न गलियारे जो हैं इस तरह से विकसित किए गए हैं कि पार्किंग की सुविधाएँ वहाँ रहें, पेयजल की सुविधा रहें और हमारे जो मंदिर हैं उनके नियमों का पालन होते हुए भी जो पर्यटक हैं, जो दर्शक हैं, जो श्रद्धालु गण हैं वो अपने समय को यादगार बनाते हुए उस समय को एंजॉय कर पाएं, वो तस्वीरें ले सकें। अलग अलग जगह पर अब सेल्फी पॉइंट्स भी बनाए जाते हैं ताकि घर पर मधुर स्मृतियां ये दिखाई जा सकें। जब दर्शन करने आते हैं श्रद्धालु जन अपने पूरे परिवार को लेकर, तो ऐसे में अगर दिव्यांग जन हैं उस परिवार में या फिर छोटे बच्चे हैं तो उनके लिए भी विशेष की सुविधाएं अब हमारे बड़े मंदिरों के आसपास मिलती हैं। ठहरने की जो व्यवस्था है वो पहले से ज्यादा अच्छी की गई है, बेहतर की गई है और ये भी ध्यान रखा गया है कि जो हमारे विशेष ज्योतिर्लिंग है उनकी जो मान्यता है, उन मान्यताओं से जुड़े जो प्रतीक चिन्ह हैं अब वो भी सोवनियर के रूप में मिल सकें। और साथ ही इस तरह की वेबसाइट भी अब राज्य सरकार जो है वो संचालित करती है और इंटरनेट के माध्यम से भी हमें विशेष रूप से ये जानकारी मिल सकती है कि हम जो हमारे धार्मिक स्थल हैं उन तक कैसे पहुंचेंगे, कहां से हम बुकिंग करवा सकते हैं और जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय यात्रा करने वाले जो पर्यटक होते हैं उनके लिए अलग अलग भाषाओं में भी ये सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई हैं। यानी आध्यात्मिक चेतना का जो प्रसार करने का एक संकल्प है उसके साथ साथ तकनीक को शामिल किया गया है और डिजिटल भारत जो है, डिजिटल होती दुनिया ये हमारी है, उसमें भारत विशेष रूप से एक भूमिका निभाता है। और सूर्य किरण टुकड़ी ने बहुत अच्छे प्रतीक चिन्ह बनाए सोम मंदिर के में। इस अमृत महोत्सव का विवरण हम जारी रखेंगे लेकिन ये जानना भी जरूरी है कि हमारे आसपास दुनिया में क्या हो रहा है। तो आपको सुनवा रहे हैं अभी समाचार।
2: जीत लिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। Prime Minister Narendra Modi offered prayers and performed puja at Somnath Temple in Gujarat during the Somnath Amrit Parv celebrations. It marks 75 years since the inauguration of the restored temple. The Mahapuja was followed by the Kumbhabhishek and flag hoisting ceremony. Earlier this morning, Prime Minister Modi arrived at Prabhaspatan and held a 1 kilometer road show up to Hamirji Gohil Circle. Mr. Modi greeted the huge crowd gathered during the show. Chief Minister Bhupendra Patel and Deputy Chief Minister Harsh Sanghvi also accompanied him during the roadshow. While proceeding to the Somnath Temple, the Prime Minister was led by rhythmic beats of the Damru and greeted by devotees. The Prime Minister paid floral tribute to Sardar Vallabhbhai Patel at his statue. Later in the day, the Prime Minister will travel to Vadodara, where he will inaugurate the Sardar Dham Hostel. Prime Minister Narendra Modi has called upon countrymen to become a partner in strengthening the nation amid the West Asia crisis. Addressing a function in Hyderabad yesterday, the Prime Minister made 7 appeals to the nation. He urged citizens to help conserve foreign exchange reserves by reducing the consumption of imported fuel through the use of public transport and carpooling. The Prime Minister's appeal comes at a time when crude oil prices are trading above $100 per barrel due to the West Asia crisis, and the deadlock in the Strait of Hormuz still persists. Crude oil prices had touched a 52-week high of $126 per barrel at the end of last month.
4: आज जो संकट है उसमें हमें विदेशी मुद्रा बचाने पर भी बहुत जोर देना होगा, क्योंकि दुनिया में पेट्रोल डीजल इतना ज्यादा महंगा हो गया है, तो हम सबका दायित्व है कि पेट्रोल डीजल की खरीद पर जो विदेशी मुद्रा खर्च होती है, हमें वो मुद्रा भी बचानी है। वैश्विक संकटों से जो चुनौतियां आई है, हमें उन चुनौतियों को परास्त करना होगा।
3: In Himachal Pradesh, 6 tourists lost their lives after their vehicle plunged into a gorge near Kakira in the Bhatiyat area of Chamba district amid heavy rain and strong winds. 4 others were seriously injured. After receiving primary treatment, the injured were referred to Dr. Rajendra Prasad Government Medical College. Among the deceased, 5 were residents of Gujarat, while the driver was a resident of Mandi district. National Technology Day is being celebrated today. The day is marked to commemorate the historic Pokhran 2 nuclear tests of 1998. It aims to pay tribute to the scientists, innovators and visionaries driving the dream of an Atmanirbhar Bharat through technology, research and innovation. Vice President C.P. Radhakrishnan and Prime Minister Narendra Modi have extended greetings to scientists, engineers, innovators and researchers of the country on the occasion. In a social media post, the Vice President wished that the nation continue to make significant strides in science, innovation and technology, powered by the talent and dedication of people. Prime Minister Modi said, on this day, India recalls with pride the hard work and dedication of scientists, which led to the successful tests in Pokhran in 1998. He underlined that the government's continued focus remains on empowering talent, encouraging research and creating solutions that serve both national progress and the aspirations of citizens. Sharing a Sanskrit quote, the Prime Minister said that scientists are the true architects of the nation's pride and self-respect. Union Home Minister Amit Shah and Science and Technology Minister Dr. Jitendra Singh have also wished people on National Technology Day. Uttarakhand administration has urged the Char Dham Yatra pilgrims and tourists to remain cautious and travel safely amid adverse weather conditions in the hill state. An orange alert has been issued by the India Meteorological Department IMD amid the possibility of rainfall and adverse weather in various parts of Uttarakhand, especially in the hilly areas. In football, India will play against host China in the crucial quarterfinal match at the AFC Under-17 Women's Asian Cup in Suzhou today. Benchmark domestic equity indices were trading around 1% lower in forenoon trade today amid weak global cues. The Sensex dropped 864 points to 76,464, while the Nifty dipped 205

0: 40 points to 23,936 when reports last came in. And with that, we end this news bulletin.
1: समाचारों के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है इस विशेष प्रसारण में। सोमनाथ अमृत महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। सोमनाथ मंदिर प्रांगण में इस समय भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की गरिमा में उपस्थिति इस कार्यक्रम में है और इस पूरे आयोजन के हिस्से के तौर पर अलग अलग कार्यक्रम किए जा रहे हैं, जिनमें कलश यात्रा शामिल है, भजन संध्या है, ओमकार मंत्र का जाप है, सोमनाथ पुस्तिका में मंत्र लेखन से लेकर सोमनाथ से जुड़ी कथाओं का वाचन तक है। और ये 8 तारीख से शुरू हुआ कार्यक्रम आज 11 मई अब ये कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं उपस्थित हैं। प्रधानमंत्री जी ने विधि विधान के साथ मंदिर में पूजन अर्चन किया है, साथ ही जो कलश है उसके माध्यम से जलाभिषेक किया गया है, कुंभाभिषेक उसे नाम दिया गया। जो पताका है वो मंदिर को अर्पित की गई है, ध्वजारोहण कहा गया है और वायु सेना की जो सूर्य किरण टुकड़ी है उसने एक्रोबेटिक करते हुए उसके जो यान हैं अलग अलग आकृतियां बनाई हैं, पुष्प वर्षा मंदिर पर की है। माननीय प्रधानमंत्री जी विशेष प्रतीक चिन्ह जो हैं उनको देखते हुए एक प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें जो सोमनाथ से जुड़े हुए विभिन्न प्रसंग हैं उनको दर्शाया जा रहा है। और एक बात हमारे श्रोताओं के मन में आ रही होगी, अक्सर जब हम भगवान शिव का ध्यान करते हैं तो उपवास को उनके साथ जोड़ा जाता है विभिन्न अवसरों पर। हमारे साथ डॉक्टर आशुतोष हैं, हमारे विशेषज्ञ। आइए डॉक्टर आशुतोष से हम जानते हैं कि उपवास का महत्व क्या होता है, कैसे करना चाहिए।
2: वैसे तो केवल शिव जी की जो हम पूजा करते हैं उसी में नहीं, किसी भी प्रकार की पूजा में, चाहे वैष्णव रीति हो, शैव रीति हो या शाक्त रीति हो, उपवास का महत्व होता ही है। लेकिन अब हम उपवास को लेते हैं तो उपवास का एक विशेष महत्व है। क्या है कि उप यानी समीप और वास यानी रहना, अर्थात हम ईश्वर के समीप रहें। ईश्वर के समीप रहने का अर्थ क्या है कि बाह्य दुनिया को छोड़ के आंतरिक दुनिया में खो जाएं, अर्थात आध्यात्मिक चक्र में खो जाएं। तो जब हम ज्ञान ध्यान की मुद्रा में रहते हैं तो ना हमें भूख प्यास का महत्व होता है, ना शरीर की गतिविधियों का विशेष महत्व होता है। तो स्वतः ना उस समय भूख लगती है ना प्यास लगती है, हम भगवान में खो चुके होते हैं, लिंक हो जाते हैं। तो हम उस प्रक्रिया को लेकर चल रहे हैं उपवास। एक दूसरा तत्व आता है व्रत। व्रत का अर्थ क्या है कि हमें कार्य को करते रहना है लेकिन भगवान के निमित्त हमें अपने आप को साधना है। वो शरीर को साधने के चक्र की बात है। उसमें क्या है कि वेदों में वर्णन है कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य आदि यदि व्रत करते हैं और भूख लग जाए तो, क्योंकि हम पूजा कर रहे हैं, घंटों घंटों बैठे हैं पूजा में, 5 घंटे 4 घंटे, तो क्या होगा, ऐसा नहीं हो सकता कि शरीर के चक्र की एक्टिविटी ना चले, जठरग्नि प्रबल ना हो। तो उसमें क्या बोला कि ब्राह्मण आदि जैसे हैं तो कोई दूध पी ले, क्षत्रिय है तो जरा सा जौ का दलिया खा ले, या वैश्य है तो आमिक्स या पनीर या श्रीखंड खा ले। अर्थात कहने का तत्व है कि हमें भोजन पर प्रयोग नहीं करना है और ना ही शरीर के ऊपर इतना आदि हो जाना कि हमें पूजा में मन ना लगे। तो ये व्रत की प्रक्रिया है, एक उपवास की प्रक्रिया है। अब उपवास की प्रक्रिया का मतलब आध्यात्मिक प्रक्रिया है साक्षात, ये हम लेके चले
1: जी। मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि हम द्वादश ज्योतिर्लिंग के दर्शन को बहुत ही पुण्यकारी मानते हैं, तो जब कभी हम किसी ज्योतिर्लिंग के दर्शन करके घर वापस आते हैं तब आचार व्यवहार कैसा होना चाहिए हमारा?
2: सबसे पहले तो आप एक शब्द सुनेंगे कि ज्योतिर्लिंग
1: जी,
2: तो लिंग का हम यदि समझें तो आप एक बात ऐसे समझ सकते हैं सामान्य क्रम से कि यदि मैंने बोला मेरे शरीर का हाथ मेरा अंग है तो ये हाथ किसका अंग है, जिसका वो अंगी होगा, यानी कि एक मूल एक आकृति होगी जिसका एक भाग उसका अंग कहलाएगा। तो यदि मैं शिवलिंग को लिंग बोल रहा हूं तो प्रमुख रूप से है कि शिवलिंग है
1: जी।
2: तो यदि मैं आप देखूं कि यदि किसी की मृत्यु हो जाए तो वो कहते हैं शिव से वो शव हो गया, तो निकला कौन, वो लिंग के रूप में जो स्थापना में जाना एक सूक्ष्म शरीर जिसे हम कहते हैं आत्मा, वो निकला। और इसीलिए हम शरीर में देखेंगे 11 प्रकार की वायु है जिसको रुद्र बोला गया, जैसे प्राण, अपान, उदान, समान, व्यान, नाग, कूर्म, क्रक्कल, देवदत्त, धनंजय, और 11वीं वायु है जीवात्मा। जब ये एक साथ निकलते हैं तो सगे संबंधी रुदन करते हैं, उसी को बोला गया रुद्र। ये रुद्र है, ये 11 वायु हैं। इसी प्रकार से जब हम किसी भगवान को भोग लगाते हैं तो हम मंत्र बोलते हैं ओम नाभ्या आसीद अंतरिक्ष, नाभि अर्थात हमारे शरीर का नाभि क्षेत्र, और उसी में अंतरिक्ष बोला, यानी कि उसी को अंतरिक्ष की संज्ञा दी गई, और उसके अंदर उस नाभि से अंतरिक्ष में हम 3 लोकों की कल्पना करते हैं, पृथ्वी लोक जिसे भूलोक कहा, अंतरिक्ष लोक जिसे भुवा लोक कहा, और सूर्य लोक जिसे सह लोक कहा। तो इन तीन चक्रों में जब हम बात करते हैं पंच प्राणों के बारे में, प्राण अपान उदान समान और व्यान, ये तीन प्राण, जैसे एक व्यक्ति मनुष्य भोजन मुख से करता है, दृष्टि रूप से भगवान किस रूप से लेते हैं, दृष्टि रूप से और वायु मार्ग से ग्रहण करते हैं, इसीलिए जब भगवान को भोग लगा दिया जाता है तो फिर बाद में वो भोजन नहीं रहकर प्रसाद बन जाता है। तो प्रसाद की संज्ञा क्यों, क्योंकि भगवान ने उसका आंखों से नेत्रों से अपनी दृष्टि से और अपने वायु मार्ग से ग्रहण करके उसका स्पर्श कर लिया है, उस तेजोमय रूप को उसको आकार दे दिया। तो लिंग का अभिप्राय क्या है, उस शिव यानी वो आत्म रूप में जो लिंग रूप है जो हमें अपने मूल व्यवस्था को बताता है। हम यदि अपनी एक चक्र की व्यवस्था समझे तो हम देखेंगे चार प्रकार के जीव उत्पन्न होते हैं, जरायुज जो गर्भ से पैदा होते हैं, अंडज जो अंडे से पैदा होते हैं, सुइदज जो दुर्गंध पसीना आदि से पैदा होते हैं, और चौथा उद्भिज जो पेड़ पौधे जो जड़ों से पैदा होते हैं। इन चार प्रकार की सृष्टि हम देखेंगे किसी भी ब्रह्मांडीय प्रकृति में पैदा हो सकते हैं
1: जी। तो आपने प्रसाद का जिक्र किया बीच में, यानी जब भी हम किसी पावन भूमि का दर्शन करके आते हैं घर पर तो प्रसाद जरूर साथ लेकर आए और वो घर परिवार में वितरित किया जाए।
2: बिल्कुल। अब यहाँ पर क्योंकि शिवजी को जब पूजन किया जाता है तो एक विशेष प्रावधान है कि प्रसाद लाएं या ना लाएं, क्योंकि ये भी बोला कि शिव पे चढ़ा हुआ प्रसाद ग्रहण कर लिया तो कुत्ते की योनि मिलती है, ऐसा वर्णन भी मिल गया शास्त्रों में। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि उसको प्रत्यक्ष नहीं लेना है। लोग कहते हैं जो शिव पर जल चढ़ा उसको ग्रहण करना चाहिए, तो बोला कि क्योंकि भगवान शिव ने चंडमुंड आदि को अधिकार दिया कि मेरा सर्वप्रथम जो भी मुझे ग्राह्य होगा वो सबसे पहले तुम्हें मिलेगा, जो तुम छोड़ दोगे वन्य को मिलेगा। तो क्या बोला, इसीलिए क्या होता है कि जो आप देखो नालिका जहां से भी सामग्री वहां से निकलती है भगवान शिव की, उसको लांगना नहीं चाहिए नहीं तो सारा पुण्य नष्ट हो जाता है
1: जी।
2: तो क्या बोला कि वो गर्भगृह में होती है, चंडमुंड का स्थान बना दिया जाता है किसी भी गर्भगृह में जहां पर भी शिवालय हो। तो जब उसके बाह्य रूप से आते हैं तो हम परिक्रमा कर सकते हैं लेकिन उसको उल्लंघना नहीं है, इसीलिए भगवान शिव की अर्ध परिक्रमा करने का विधान है, पूर्ण परिक्रमा करने का विधान ही नहीं है
1: जी।
2: और वहां पर उसके बाद जो बाहर सामग्री निकल गई उसको आप भोज्य रूप में प्रसाद रूप में बिल्कुल ग्रहण कर सकते हैं
1: जी। एक और प्रश्न है, अक्सर ये कहा जाता है कि घर का जो मंदिर होता है भले ही वो छोटा मंदिर हो लेकिन शिवलिंग वहां नहीं रखना चाहिए, लेकिन कई लोग होते हैं वो घर में शिवलिंग की स्थापना करते हैं।
2: तो बिल्कुल, ये बहुत ही मत मतांतर वाला विषय है, लेकिन वास्तविकता ये तब आती है जब हम ग्रहण को ना ले उस अर्थ को जो कि वेदों में या शास्त्रों में लिखा है। शास्त्र में बिल्कुल शिवलिंग रखने का महत्व बताया है लेकिन किस प्रकार का शिवलिंग, यदि आप शिवलिंग की आकृति हमारा जो अंगूठा है उससे बड़ा रखते हो तब दोष लगता है
1: जी।
2: स्फटिक का शिवलिंग रख सकते हैं, मिट्टी के शिवलिंग की पूजा करके उसका विसर्जन कर सकते हैं, या जो नर्मदा में जो भी हमें शिवलिंग मिले जिसे हम नर्मदेश्वर कहते हैं उसको यदि हम छोटी मुद्रा में लेके आए उसका अर्चन करें तो हो सकता है, लेकिन स्वयंभू शिवलिंग, जागृत शिवलिंग या प्राण प्रतिष्ठित शिवलिंग को घर में नहीं रखा जा सकता, क्योंकि पंच भौतिक तत्व में उसकी ऊर्जा आपको वहां पे क्षेत्रीय रूप से आवरण करेगी। ऐसे में आपके सामान्य ऊर्जा, क्योंकि दैनिक ऊर्जाएं हमारे जीवन की अलग होती है और विशेष ऊर्जाएं अलग होती है, ऐसे में दो ऊर्जाओं का यदि सामान्य सकारात्मक प्रयोग हो जाए तो बहुत उत्तम हो जाता है, लेकिन यदि वो दोनों आपस में विच्छेद कर दें तो कई बार अर्थ के अनर्थ भी हो जाते हैं
1: जी। यहां मैं ये भी जानना चाहूंगी, कई बार अलग अलग क्षेत्रों में ऐसे मंदिर होते हैं जिनकी बहुत मान्यता होती है, शिव जी के मंदिर है, लेकिन ऐसे में ज्योतिर्लिंग दर्शन का विशेष महत्व है, तो अगर बहुत बड़ा कोई मंदिर है और ज्योतिर्लिंग मंदिर है दोनों में अंतर क्या है?
2: मंदिर क्या है कि एक तंत्रोक्त भाग से इस स्थापना तत्व को लेकर चलता है जिसमें हम कहेंगे कि प्राण प्रतिष्ठित किया जाता है
1: जी।
2: आप देखेंगे जब भी किसी मंदिर में स्थापना होती है तो कई दिन का प्रोसीजर चलता है, कहीं 5 दिन, कहीं 11 दिन, कहीं 10 दिन, कहीं 15 दिन, कहीं 1 महीना, वो जलाधिशयन अन्नाधिशयन आदि की प्रक्रियाएं होती है। जैसा हमने जब राम जी की मंदिर की प्रतिष्ठा हुई तो उसमें भी बहुत सारे विधान हमने देखने को मिले
1: जी।
2: अब जब शिवलिंग की स्थापना होती है तो उसके लिए जो स्थापना करने वाला उसका विचार आवरण भी शिव जैसा होना चाहिए, पहले तो ये प्रधानता आ जाती है। आज के समय में उस प्रकार के शुद्धि और क्रियाएं सबकी नहीं रही, इसलिए अघोर रूप में अघोरी आदि शिवलिंग की स्थापना करते हैं। प्राचीन समय में आप देखोगे मार्कंडेय ऋषि आदि ने हजारों लाखों शिवलिंग की स्थापना की, तो स्थापना करने का अपना एक महत्व है। बोला जाता है कि जो शिव की स्थापना करता है वो स्वयं शिव के समान हो जाता है, ये बोला। फिर यदि हम ज्योतिर्लिंग की बात करें तो यहाँ एक शब्द आता है कि ये किसी ने स्थापना नहीं की गई, ये स्वयंभू है, यानी कि प्रकृति में विशेष ऊर्जा को लेकर के प्रकृति ने स्वयं उसको उत्पन्न किया या भगवान की विशेष शक्ति के द्वारा वो उत्पन्न हुए, यदि इस तत्व को देखें तो यह प्राण प्रतिष्ठित करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि स्वयंभू ऑटोमेटिकली प्राण प्रतिष्ठित उत्पन्न ही हुए हैं। ये विशेष महत्व हो जाता है कि एक मैन मेड है। हम जब कोई कार्य करते हैं तो हम अल्प रूप से

0: करते हैं, और जब भगवान कोई कार्य करते हैं तो पूर्ण रूप से करते हैं। इसीलिए भगवान को पूर्ण मधा पूर्ण मदम पूर्णात पूर्ण मुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवा वशिष्यते, ये तत्व की संज्ञा दी गई है। और ये किस प्रकार से है, जैसे समुद्र में से एक लोटा जल निकालो तो वो अपूर्ण नहीं माना जाएगा, है वो उसी का अंग, लेकिन समुद्र भी अपने आप में पूर्ण है और वो लोटे में भरा हुआ जल भी अपने आप में पूर्ण है। इस प्रकार से पूर्ण को निकालो तो पूर्ण ही बचेगा, इस प्रकार के विधान से भगवान शिव को ज्योतिर्मय रूप से यहाँ पे अभिषेक किया जाता है और दर्शन किया जाता है।
1: जी, कई बार हमने ये भी देखा है जब ज्योतिर्लिंग पर या फिर शिव मंदिर में अलग अलग उपादानों पर जलाभिषेक किया जाता है तो उसमें कुछ सामग्री डाली जाती है, थोड़े अक्षत होते हैं, पुष्प होते हैं और दुग्धाभिषेक भी करते हैं कई लोग, तो मैं इनका महत्व आपसे जानना चाहूंगी।
0: देखिए, लोग कहते हैं कि भगवान शिव को जल चढ़ाना चाहिए
1: जी।
0: जिनके मस्तक पर ही जल हो उसको जल की क्या आवश्यकता, आप ये भी तो देखें। तो यहाँ जल चढ़ाने का मूल महत्व नहीं है, यहाँ अर्घ देने का मूल महत्व है। और इसीलिए अर्घ रूप में औषधियाँ मिलाई जाती है, कहीं पंच औषधि कहीं सर्व औषधि आदि का मिलाने का महत्व है। ऐसे ही आप देखेंगे भगवान सूर्य, सूर्य भी स्वयं नारायण रूप भी कहे गए, शिव रूप भी कहे गए। तो लोग कहते हैं सूर्य को जल चढ़ाओ, जल नहीं चढ़ाना होता, सूर्य को अर्घ देना होता है। अगर आप देखेंगे इस महत्व को तो जो अभी हमारे बड़े बूढ़े वो जानते हैं कि अर्घ दिया जाता था ऊपर से दिया जाता, जल के अंदर चावल या फूल आदि डाल करके उसको अर्घ रूप में बना के भगवान को अर्पण किया जाता था, एक सेवा के रूप में, एक सत्कार के रूप में, एक आदर के रूप में। तो यह आदर रूप है। दूसरी बात, जब हम प्रकृति में तत्व में देखें तो यहाँ पे शिव रूप क्या है जो पंच रूप से आया, और उसका जब हम सोमीयकरण देखेंगे, सोम तत्व क्या है, लताओं का रस। सोम एक प्रकार की अमृत रूप लता थी, जिसे बोला कि वेदों में बोला इंद्र ने सोम रस का पान किया। तो ये सोम रस कोई वैसी चीज नहीं है जो आजकल में निषेध मानी गई, ये सोम रस का मतलब है औषधियों का अर्क, जिसे हम आयुर्वेद में भी प्रयोग करते हैं अर्क के रूप में, लेकिन लोगों ने मत मतांतर में इसके अलग अलग प्राचीन से नवीनीकरण कर दिया और अर्थ का अनर्थ कर दिया। तो यहाँ पर क्या, जो भी रस के रूप में आए किसी भी तत्व के, उसको अर्पण किया जाना चाहिए। जैसे गाय है तो एक अंग है, भगवान का एक रूप है, तो उसके द्वारा जो प्राप्त हुआ दूध, वो किया, दूध क्या है, सबसे सूक्ष्म रूप है। अगर हम अपने स्किन में भी देखें तो सबसे बारीक रूप से महीन रूप से दूध जा सकता है, सबसे शुद्धता का प्रतीक होता है। इसीलिए पय बोला गया, आपके रूप में बोला गया, आपह मयो व्यवस्था, इस प्रकार के मंत्र मिलते हैं। तो जल और दूध को मिला के करना चाहिए प्रयोग, या जैसे गन्ना है तो गन्ने के रस को प्रयोग करो या गन्ने के रस से बनने वाले गुड़ को प्रयोग करो, वो एक विधान है। तिल आदि को अर्पण करने का प्रयोग है, अर्थात हम कह सकते हैं, या पेड़ है तो पेड़ के द्वारा उत्पन्न होने वाली पत्ती या उसका फल अर्थात बिल्व या बिल्व पत्र, दोनों हम उसको अर्पण कर सकते हैं भगवान को। तो अलग अलग रूप से जिसकी जैसी भावना, जिसकी जैसी आवश्यकता, उसके अनुरूप भगवान को जो अर्पण करें, भगवान तो सर्वसाध्य है, जो दे दो सब सर्वसुलभ हो जाता है
1: जी।
0: इसलिए अर्पण कर देना चाहिए।
2: यस, एंड वी आर bringing to you the Somnath Amrit Mahotsav 2026 that has been held at the Somnath Temple at Prabhaspatan in Gujarat, and the Honorable Prime Minister of India, Sri Narendra Modi, has offered prayers at the Sri Somnath Temple, and he has also watched the special air show. The Surya Kiran aerobatic team of the Indian Air Force performed this spectacular air show atop the Somnath Temple, and the Honorable Prime Minister will be addressing a gathering at Somnath in just a short while from now, and meanwhile we bring you some devotional bhajan.

0: गुजरात के माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल और माननीय उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष सांघवी उनके साथ उपस्थित एक विशाल जनसमूह जो है वो इस समय हम देख पा रहे हैं और पारंपरिक परिधान कुछ ने धारण किए हैं, सर पर जो है वो पगड़ी पहनी हुई है, हाथों में पताकाएं हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी पूजन अर्चन करके यहाँ पर आए हैं। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने मस्तक पर जो है वो भी तिलक धारण किया है और यहाँ पर विशाल जनसमूह जो है बेहद उत्सुक और उत्साहित है, गमछे धारण किए हुए हैं, अंगवस्त्र पहने हैं, हाथों में पताकाएं हैं लगातार लहराते हुए और एक विशाल स्क्रीन जो है वो दिखाई दे रही है जिस पर की मंदिर की प्रतिकृति बनी है। माननीय प्रधानमंत्री जी का अब अभिनंदन किया जा रहा है, पगड़ी उन्हें पहना कर अभिनंदन किया गया और साथ ही अंगवस्त्र माननीय प्रधानमंत्री जी को भेंट किया गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभिवादन स्वीकार किया, हाथ जोड़कर सबका अभिवादन स्वीकार करते हुए और इस वक्त मंचासीन जो गणमान्य व्यक्ति हैं उनकी उपस्थिति भी इस कार्यक्रम में माननीय प्रधानमंत्री जी को अब एक स्मृति चिन्ह भेंट किया जा रहा है। सोमनाथ मंदिर की प्रतिकृति है, एक बेहद सुंदर तस्वीर माननीय प्रधानमंत्री
1: Minister in Gujarat government, Shri Arjun Modwadia, and a huge sea of people here at Prabhas Patan, and another memento being presented to the Honorable Prime Minister of India that features the lion of Gir, and this is quite close to the Gir sanctuary, and as we can see that there's a huge public who are present here and have come to listen to the Honorable Prime Minister, and yet another memento, a kalash being presented to the Honorable Prime Minister by the Sri Somnath Trust, and the Honorable Prime Minister himself is the president of the Sri Somnath Trust, and we have now seen a garland being presented to the Honorable Prime Minister by the organizers, and people have been waiting since a long time to hear the Prime Minister, and the Honorable Prime Minister will be addressing the gathering very soon.
0: और कौशिक जी, मैं यहाँ ये भी बोलना चाहूंगी कि जब हम बहुत दूर से यात्रा करके जाते हैं द्वादश ज्योतिर्लिंग जो है उनमें से किसी भी मंदिर के दर्शन करने के लिए, तो बहुत अधिक भक्ति भाव से भरे होते हैं, तो जो लोग उसी स्थान पर रहते हैं वो अपने आप को बेहद भाग्यशाली मानते होंगे और इस समय जो ये विशाल जनसमूह हम देख रहे हैं इसमें ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो मंदिर की सेवा में भी लगे होते हैं, वो कार्यकर्ता होते हैं और इस तरह के बहुत सारे लोग हैं जो स्वेच्छा से मंदिर के विशेष कार्य जो हैं वो करते हैं और यहाँ पर हम इस समय देख पा रहे हैं उत्साहित जनसमूह है माननीय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति से आयोजन और भी भव्य और अब स्वागत उद्बोधन यहाँ पर
2: विश्व आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी साहेब, मारा साथी नायब मुख्यमंत्री श्री हर्ष भाई संघवी, मारा साथी सौ मंत्रीश्रीओ, सांसद श्री सोमनाथ ट्रस्टना ट्रस्टीश्रीओ श्री जेडी परमार, श्री पीके लहरी, श्री हर्षवर्धन नोटिया, श्री विशद भाई मफतलाल, आमंत्रित सर्वे महानुभाव, प्रेस मीडिया ना मित्रों, सौ ने मारा नमस्कार। વિશ્વના સૌથી અધિક લોકપ્રિય નેતા અને આપણા લોકલાડીલા વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીનું હું હૃદયથી ખૂબ ખૂબ સ્વાગત કરું છું। સમગ્ર દેશ અને દુનિયાની નજર જે રાજ્યની ચૂંટણી પર હતી તે પશ્ચિમ બંગાળ સહિત આસામ અને પોન્ડિચેરીમાં પણ વિકાસની રાજનીતિને મળેલા प्रचंड जन समर्थन शिल्पी यशस्वी वडाप्रधान श्री नरेंद्र भाई मोदी साहेब ने समग्र गुजरात की जनता जनार्दन वती खूब खूब अभिनंदन पाठवो छु। भगवान सोमनाथ नु मंदिर सदियों थी देश की आस्था संस्कृति अड़क संकल्प ने पुनर्जागरण नु जीवंत प्रतीक है। अपनी आस्था ना अजय अने अतूट प्रतीक आ मंदिर ने ध्वंस करवाना अनेक प्रयासों थया अने दरेक विनाश पछी सोमनाथ भगवान नु मंदिर फरी वधु તેજસ્વતા સાથે ઉભું થયું છે. આજે આ દિવ્ય મંદિર વિધ્વંસમાંથી પુનઃનિર્માણના સરદાર સાહેબના અડગ નિર્ધાર, દ્રઢ સંકલ્પ અને રાષ્ટ્રના આત્મસન્માનનું પ્રતીક છે. તેમનો આ સંકલ્પ 1951ની 11મી પૂર્ણ થયો તે ગૌરવશાળી વિરાસતને આજે 75 વર્ષ થયા છે. આદરણીય શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ 2001માં મુખ્યમંત્રી તરીકેનું સેવાદાયિત્વ સંભાળ્યું. એ જ વર્ષે તેમણે સોમનાથ મંદિરના પુનઃનિર્માણનો સુવર્ણ જયંતી ઉત્સવ ઉજવીને આપણને તક આપી હતી અને આજે સરદાર સાહેબનો દ્રઢ સંકલ્પ સાકાર થયાનો આ અમૃત ઉત્સવ આદરણીય વડાપ્રધાન શ્રી મોદી સાહેબની પ્રેરણાથી દેશની આઝાદીના અમૃતકાળમાં જ આવ્યો છે તે સોનામાં સુગંધ સમો પ્રસંગ છે. આખા યુગનું નિર્માણ કરનાર વિઝનરી લોકનાયક શ્રી મોદી સાહેબે પ્રત્યેક ભારતવાસીઓમાં સાંસ્કૃતિક રાષ્ટ્રવાદ અને સનાતન હિન્દુ સંસ્કૃતિના પુનર્જાગરણનો ભાવ પ્રબળ બનાવ્યો છે. આદરણીય શ્રી મોદી સાહેબે અયોધ્યામાં રામ મંદિરના પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા ઐતિહાસિક પ્રસંગે દેવથી દેશનું વિઝન આપ્યું હતું. સોમનાથ મંદિર પર 1000 વર્ષ પહેલા થયેલા આક્રમણ સામે શૌર્ય દાખવનાર સ્વાભિમાની યોદ્ધાઓને યાદ કરતું સોમનાથ સ્વાભિમાન પર્વ, કાશી વિશ્વનાથ કોરિડોર, કેદારનાથ ધામ વિકાસ, પાવાગઢમાં 500 વર્ષ પછી ધ્વજારોહણ અને અંબાજી કોરિડોર તથા સોમનાથ તાલીમ સંગલ દ્વારા વિરાસત બી વિકાસ બી સાકાર કર્યું છે અને ફરીથી જ્યારે આજે ગુજરાતમાં આવ્યા છે ત્યારે ફરીથી એમનું સ્વાગત કરીને વિરમું છું. ભારત માતા કી જય, વંદે માતરમ, જય જય ગરવી ગુજરાત.
1: That was the welcome address by the Honorable Chief Minister of Gujarat, Shri Bhupendra Bhai Patel, and he mentioned about the various development works that have been undertaken by the visionary leadership of the Prime Minister, Shri Narendra Modi, and he mentioned about the Kashi Vishwanath corridor, the Sri Ambaji temple in Gujarat, and also the Pran Pratishtha of the Sri Ram Lala temple at Ayodhya. And this is the hallmark of the government of India. And the Honorable Prime Minister is now releasing the commemorative postal stamp. And also the stamp has been now released by the Honorable Prime Minister and the Chief Minister of Gujarat and the Deputy Chief Minister of Gujarat. It's a 5 rupee postage stamp depicting the Somnath Temple.
0: एक स्मारक डाक टिकट इस अवसर पर जारी किया गया. सोमनाथ मंदिर की तस्वीर उस पर बनी है. माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो डाक पुस्तिका है उसे जारी किया और उपस्थित जनसमूह की ओर विशेष रूप से उसे दिखाया भी. और मंच के जो पार्श्व भाग में स्क्रीन है उस पर भी इसकी छवियां इस समय होगी.
1: एंड नाउ नीलम, द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर विल रिलीज द कमेमोरेटिव coin. It is a 75 rupee denomination coin and it's very beautiful indeed. The two sides can be seen on this very special memento that the Honorable Prime Minister is displaying, and this is to mark the occasion of the 75th anniversary of the consecration of the rebuilt Somnath Temple. It says Bharat, India, rupees 75 with the lion capital of the Sarnath, and on the heads there's the beautiful replica of the Somnath Temple.
0: 75 रुपए का एक स्मारक सिक्का भी इस अवसर पर जारी किया गया. सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के बाद उद्घाटन होने के 75 वर्ष पूरे होने पर विशेष ये कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, सोमनाथ अमृत महोत्सव. माननीय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति इस अवसर पर, अन्य गणमान्य व्यक्ति यहाँ पर उपस्थित हैं और एक विशाल जनसमूह माननीय प्रधानमंत्री जी को सुनने के लिए उत्सुक. प्रधानमंत्री जी ने स्मारक डाक टिकट और सिक्का जारी किया है और सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण पुनरुत्थान जो किया गया है और जो ऐतिहासिक इसका महत्व है उससे जुड़ी प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया माननीय प्रधानमंत्री जी ने. और माननीय प्रधानमंत्री जी का संबोधन अब इस कार्यक्रम में।
1: The Honorable Prime Minister of

0: India, Shri Narendra Modi will now address the gathering.
1: Jai Somnath. Jai Somnath. Har Har Mahadev. Gujarat ke Mukhyamantri श्रीमान भूपेंद्र भाई पटेल, उप मुख्यमंत्री भाई हर्ष संघवी जी, गुजरात सरकार के मंत्रीगण, सांसद एवं विधायकगण, अन्य सभी महानुभाव, देवी और सज्जनों, आज प्रभास पाटन का पवित्र क्षेत्र एक अद्भुत प्रभा से भरा हुआ है। महादेव का ये साक्षात्कार, ये सौंदर्य धरती और आसमान से हुई पुष्प वर्षा, भगवा ध्वजों की ये आभा, कला संगीत और नृत्य की अद्भुत प्रस्तुतियां, वेद मंत्रों का उच्चार, गर्भगृह में हो रहा शिव पंचाक्षरी का अखंड पाठ, और इस सब के साथ साथ सागर की लहरों का जयघोष, ऐसा लग रहा है जैसे ये सृष्टि एक साथ बोल रही है जय सोमनाथ, जय जय सोमनाथ। साथियों, समय खुद जिनकी इच्छा से प्रकट होता है, जो स्वयं कालातीत है, जो स्वयं काल स्वरूप है, आज उन देवाधिदेव महादेव की विग्रह प्रतिष्ठा के हम 75 वर्ष मना रहे हैं। ये सृष्टि जिनसे सृजित होती है, जिनमें लय हो जाती है, यतो जायते पाल्यते येन विश्वम तमिशम भजे लीयते यत्र विश्वम। आज हम उनके धाम के पुनर्निर्माण का उत्सव मना रहे हैं। जो हलाहल को पीकर नीलकंठ हो गए, आज उन्हीं की शरण में यहां सोमनाथ अमृत महोत्सव हो रहा है। ये सब भगवान सदाशिव की ही लीला है। साथियों, दादा सोमनाथ के अनन्य भक्त के रूप में मैं कितनी बार यहां आया हूं, कितनी ही बार उनके सामने नतमस्तक हुआ हूं, लेकिन आज जब मैं यहां आ रहा था तो समय की ये यात्रा एक सुखद अनुभूति दे रही थी। अभी कुछ ही महीने पहले मैं यहां आया था, तब हम सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मना रहे थे। प्रथम विध्वंस के 1000 वर्ष बाद भी सोमनाथ के अविनाशी होने का गर्व, और आज इस आधुनिक स्वरूप की प्राण प्रतिष्ठा के 75 वर्ष, हम केवल दो आयोजनों का हिस्सा भर नहीं, सिर्फ हिस्सा भर नहीं बने हैं, हमें

हजार वर्षों की अमृत यात्रा को अनुभव करने का शिवजी ने मौका दिया है। साथियों, 75 साल पहले आज के ही दिन सोमनाथ मंदिर की पुनर्स्थापना, यह कोई साधारण अवसर नहीं था। अगर 1947 में भारत आजाद हुआ था तो 1951 में सोमनाथ की प्राण प्रतिष्ठा ने भारत की स्वतंत्र चेतना का उद्घोष किया था। आजादी के समय सरदार साहब ने 500 से ज्यादा रियासतों को जोड़कर एक भारत का आधुनिक स्वरूप गढ़ा था। तो साथ ही सोमनाथ के पुनर्निर्माण से उन्होंने दुनिया को बताया था, भारत केवल आजाद नहीं हुआ है, भारत अपने प्राचीन गौरव को पुनः हासिल करने के मार्ग पर भी अब आगे बढ़ चुका है। साथियों, इसलिए आज इस अवसर पर मैं केवल 75 वर्षों की झांकी नहीं देख रहा हूं, मैं यहां देख रहा हूं विनाश में सृजन के संकल्प को, जिसे सोमनाथ ने चरितार्थ किया है। मैं यहां देख रहा हूं असत्य पर सत्य की विजय को, जिसे प्रभाष पाटन ने बार बार जिया है। मैं यहां देख रहा हूं हजारों वर्षों की आध्यात्मिक चेतना को, जिसने मानव मात्र के कल्याण की सीख समूचे विश्व को दी है। मैं यहां देख रहा हूं भारत के उस अविनाशी स्वरूप को, जिसे सदियों के कुत्सित प्रयास भी न मिटा सके न हरा सके। और मैं यहां देख रहा हूं सोमनाथ का अमृत महोत्सव, ये केवल अतीत का उत्सव नहीं है, ये अगले 1000 वर्षों के लिए भारत की प्रेरणा का महोत्सव भी है। मैं सभी देशवासियों को दादा सोमनाथ के कोटि कोटि भक्तों को इस महोत्सव की बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आज का दिन एक और वजह से भी विशेष है। 11 मई 1998 यानी आज के ही दिन देश ने पोखरण में परमाणु परीक्षण किया था। देश ने 11 मई को पहले 3 परमाणु परीक्षण किए। हमारे वैज्ञानिकों ने भारत के सामर्थ्य को, भारत की क्षमता को,

वैज्ञानिकों ने दुनिया के सामने रखा, दुनिया में तूफान आ गया, भारत उसकी ये हैसियत, ये कौन होता है भारत जो परमाणु परीक्षण करें और दुनिया की आंखें लाल हो गई, दुनिया भर की शक्तियां भारत को दबोचने के लिए मैदान में उतरी, अनेक प्रकार के बंधन लग गए, आर्थिक संकट की संभावनाओं के रास्ते सारे के सारे बंद कर दिए गए, कोई भी हिल जाता जब दुनिया भर की बड़ी बड़ी शक्तियां इतना बड़ा आक्रमण कर दें तो आगे के रास्ते दिखते नहीं हैं। लेकिन हम कोई और मिट्टी के बने हुए हैं। 11 मई के बाद दुनिया हम पर टूट पड़ी थी, 11 मई को वैज्ञानिकों ने अपना काम कर लिया था, लेकिन 13 मई को फिर दो और परमाणु परीक्षण हुए, उससे दुनिया को पता चला था कि भारत की राजनीतिक इच्छा शक्ति कितनी अटल है। उस समय पूरी दुनिया का दबाव भारत पर था, लेकिन अटल जी के नेतृत्व में बीजेपी सरकार ने दिखाया था कि हमारे लिए राष्ट्र प्रथम है। दुनिया की कोई ताकत भारत को झुका नहीं सकती, दबाव में नहीं ला सकती। साथियों, देश ने पोखरण परमाणु परीक्षण को ऑपरेशन शक्ति नाम दिया था, क्योंकि शिव के साथ शक्ति की ये आराधना, ये हमारी परंपरा रही है। अर्धनारीश्वर शिव स्वयं भी शक्ति के साथ ही पूर्ण होते हैं। आपको याद होगा जब देश का मिशन चंद्रयान सफल हुआ था, तब चंद्रमा पर जहां भारत का रोवर लैंड हुआ, उस जगह का नाम भी हमने शिव शक्ति पॉइंट रखा है, क्योंकि हमारी आस्था में चंद्रमा शिव से जुड़ा है और शिव शक्ति से जुड़े हैं। और ये कितना सुखद है कि चंद्रमा के नाम से ही इस ज्योतिर्लिंग को हम सोमनाथ कहते हैं। साथियों, शिव और शक्ति की हमारी आराधना का जो विचार है, वो देश की वैज्ञानिक प्रगति के लिए भी प्रेरणा बने। आज हम ये संकल्प साकार होते देख रहे हैं। मैं इस अवसर पर भगवान सोमनाथ के चरणों से सभी देशवासियों को ऑपरेशन शक्ति की वर्षगांठ की भी बधाई देता हूं। साथियों, जब मैं पिछली बार यहां आया था, तब मैंने कहा था जिसके नाम में ही सोम अर्थात अमृत जुड़ा हो, उसे नष्ट कौन कर सकता है। इतिहास के लंबे कालखंड में इस मंदिर ने

जितने ही आक्रमण झेले, महमूद गजनवी, अलाउद्दीन खिलजी जैसे अनेक आक्रांत आए, लुटेरों ने सोमनाथ मंदिर का वैभव मिटाने का प्रयास किया। वो सोमनाथ को एक भौतिक ढांचा मानकर उससे टकराते रहे, बार बार इस मंदिर को, इस ढांचे को तोड़ा गया और ये बार बार बनता रहा, हर बार उठ खड़ा होता रहा, क्योंकि तोड़ने वालों को मालूम नहीं था हमारे राष्ट्र का वैचारिक सामर्थ्य क्या है। हम भौतिक शरीर को नश्वर मानने वाले लोग हैं, लेकिन हम जानते हैं उसके भीतर बैठी आत्मा अविनाशी है। और फिर तो शिव तो सर्वात्मा है, इसलिए अलग अलग काल में, अलग अलग जीवों की संकल्प शक्ति में शिव प्रकट होते रहे। राजा भोज, कभी राजा भीमदेव प्रथम, कभी राजा कुमारपाल, कभी राजा महिपाल प्रथम, तो कभी राव खंगार, ऐसे अनेक शिव भक्त समय समय पर सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण करवाते रहे। लकुलीश और सोम शर्मा जैसे कितने मनीषी, उन्होंने प्रभास पाटन क्षेत्र की विरासत को संरक्षित किया, इसे शैव साधना और दर्शन का महान केंद्र बनाया। भाव बृहस्पति, पाशुपताचार्यों और अनेक विद्वानों ने इस तीर्थ की आध्यात्मिक परंपराओं को जीवित रखा। विशाल देव और त्रिपुरांतक जैसे व्यक्तित्वों ने यहां की बौद्धिक चेतना को सुरक्षित रखने का पुनीत कार्य किया। साथियों, वीर हमीर जी गोहिल, वीर भेगड़ा जी भील, पुण्य श्लोक अहिल्याबाई होलकर जी, बड़ोदरा के गायकवाड़ जामसा महाराजा दिग्विजय सिंह जी, ऐसी कितनी ही महान विभूतियां हैं जो सोमनाथ की सेवा में अपना सर्वस्व अर्पित करती थी। मैं आज इस अवसर पर सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, श्रीमान के एम मुंशी जी, ऐसी सभी ज्ञात अज्ञात दिव्यात्माओं को भी श्रद्धापूर्वक आदरपूर्वक नमन करता हूं। उनका स्मरण हमें ये प्रेरणा देता है कि हमें न केवल अपनी सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाना है, बल्कि इस जिम्मेदारी को आने वाली पीढ़ियों के हाथों में सौंप कर भी जाना है। साथियों, हमारे सांस्कृतिक स्थल हजारों वर्षों से भारत की पहचान रहे हैं। इतनी समृद्ध विरासत हमें मिली है, लेकिन आप विडंबना देखिए, हमने दशकों तक उसके महत्व को नहीं समझा। दुनिया में से कितने ही उदाहरण हैं जहां विदेशी हमलावरों ने राष्ट्रीय पहचान से

जुड़े स्थलों को नष्ट किया। लेकिन जब उस देश के लोगों को मौका मिला, सबने साथ आकर अपनी पहचान को फिर से सहजा, फिर से संवारा, पुनः प्रतिष्ठा की। लेकिन हमारे यहां राष्ट्रीय स्वाभिमान से जुड़े विषयों पर भी राजनीति होती रही। सोमनाथ खुद इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। आजादी के बाद पहले दायित्वों में से एक था कि सोमनाथ मंदिर का पुनरुद्धार करते। इसलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, उन्होंने इसके लिए इतने प्रयास किए। लेकिन हम सब जानते हैं, उन्हें इसके लिए नेहरू जी द्वारा कितना विरोध झेलना पड़ा था। मैं आज इसके विस्तार में नहीं जाऊंगा, लेकिन ये सरदार साहब की इच्छा शक्ति थी कि इतने विरोध के बावजूद सरदार साहब डिगे नहीं, सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण भी हुआ और देश ने सदियों के कलंक को भी धो दिया। साथियों, दुर्भाग्य से देश में ऐसी शक्तियां आज भी प्रभावी हैं जिन्हें राष्ट्रीय स्वाभिमान से ज्यादा तुष्टीकरण जरूरी लगता है। राम मंदिर निर्माण जैसे अवसरों पर भी हमने देखा है किस तरह राम मंदिर निर्माण का भी विरोध किया गया। हमें ऐसी मानसिकता से सावधान रहना है। इस तरह की संकुचित राजनीति को हमें पीछे छोड़ना होगा। हमें विकास और विरासत को साथ लेकर के आगे बढ़ना होगा। साथियों, बीते वर्षों में मुझे सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में सोमनाथ दादा की सेवा का जो अवसर मिला, इस मंदिर और क्षेत्र के विकास के लिए जो ऐतिहासिक काम हुए, उस परिवर्तन को आज हम सब प्रत्यक्ष देख रहे हैं। लेकिन साथ ही इस सेवा का मुझे व्यक्तिगत लाभ भी हुआ है। आज मुझे देश के सभी पवित्र तीर्थों के विकास का जो मौका मिल रहा है, ये भगवान सोमनाथ का ही कृपा प्रसाद है। साथियों, आज काशी में सदियों बाद बाबा विश्वनाथ धाम का इतना भव्य विस्तार हुआ है। आज उज्जैन में महाकाल महालोक के विशाल दर्शन भी हो रहे हैं। केदारनाथ धाम का पुनर्निर्माण भी हुआ है। जैसा मैंने पहले कहा, अयोध्या में 500 साल की प्रतीक्षा भी पूरी हुई है। आज वहां भव्य मंदिर में रामलला विराजमान है। साथियों, ऐसे कितने ही पवित्र तीर्थ, पवित्र मठ, मंदिर और क्षेत्र, उनकी जो महिमा हमने पुराणों में सुनी है, आज वहां हमें उस समृद्ध परंपरा के दर्शन होने लगे हैं। और ये इतना कुछ 10-12 साल के भीतर भीतर हुआ है। साथियों, हमारे सांस्कृतिक केंद्रों की उपेक्षा देश के विकास में बड़ी बाधा रही है, क्योंकि हमारे तीर्थ भारत की आध्यात्मिक सामाजिक व्यवस्था के केंद्र तो है ही, वो देश की आर्थिक प्रगति के भी स्रोत रहे हैं। आज आप देखिए, चार धाम महामार्ग परियोजना, गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब तक रोपवे परियोजना,

करतारपुर कॉरिडोर, बौद्ध सर्किट का विकास, इनके जरिए देश में तीर्थ क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियां बढ़ी हैं। सोमनाथ परिसर भी इसका एक सशक्त उदाहरण है। आज सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट से सैकड़ों परिवार जुड़े हैं, हजारों लोगों का जीवन इस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। देश दुनिया के कोने कोने से जो लोग यहां आते हैं, वो गुजरात के बाकी हिस्सों में भी जाते हैं। इससे प्रदेश और देश में प्रगति के नए द्वार खुलते हैं। साथियों, हमारी आस्था हमें जीवन जीने का तरीका भी सिखाती है, क्योंकि हम मानते हैं सर्वम खलिद्वम ब्रह्म, अर्थात सृष्टि का हर एक घटक, इस संपूर्ण प्रकृति भी ईश्वर का ही स्वरूप है। इसलिए हमारी आस्था नदियों में भी है, वृक्षों में भी है, हम जंगलों को भी श्रद्धा की दृष्टि से देखते हैं, हम पर्वतों में भी पवित्रता का भाव रखते हैं। और आज जब दुनिया प्राकृतिक जीवन शैली की ओर लौट रही है, हमें हमारी शक्ति को भी पहचानना होगा। हम हमारे तीर्थों और मंदिरों के विकास के साथ साथ उनकी गरिमा के लिए जागरूक होना होगा। हमें ऐसा जीवन अपनाएं जिससे प्राकृतिक और पर्यावरण की रक्षा हो। साथ ही हम हमारे पुण्य स्थलों को पूरी दुनिया के लिए एक उदाहरण के रूप में विकसित करें। हमें इन संकल्पों को अपनी आस्था से जोड़कर जीना होगा। साथियों, जब नई पीढ़ियां अपने इतिहास, अपनी आस्था और अपने सांस्कृतिक मूल्यों से जुड़ती है, तब राष्ट्र का आत्मबल और मजबूत होता है। आज भारत जिस आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है, उसमें हमारी सांस्कृतिक निरंतरता की भी बहुत बड़ी भूमिका है। आधुनिक और विरासत, आधुनिकता हो या विरासत हो, भारत में इसे कोई अलग नहीं कर सकता। भारत में एक दूसरे के विरोधी नहीं है, ये साथ साथ आगे बढ़ने वाली शक्तियां हैं, एक दूसरे में प्राण पूरने वाली शक्तियां हैं। सोमनाथ हमें याद दिलाता है कि कोई भी राष्ट्र तभी लंबे समय तक मजबूत रह सकता है जब वो अपनी जड़ों से जुड़ा रहे, जब हम अपनी विरासत को आने वाली पीढ़ियों तक उसी श्रद्धा और विश्वास के साथ उनके हाथों में सुपुर्द करें। 75 वर्ष पहले जब पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर में 75 वर्ष पहले प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, तब भारत ने एक नई चेतना यात्रा शुरू की थी। आज 75 वर्ष बाद वही यात्रा और अधिक व्यापक रूप में हमारे सामने है। हमें इसे नई ऊंचाई पर लेकर जाना है। हमारे संकल्पों को पूरा करने में दादा सोमनाथ का आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ रहे, यही प्रार्थना है। एक बार फिर सभी देशवासियों को विरासत में विश्वास करने वाले हर नागरिक को, आप सभी को इस अवसर की बहुत बहुत बधाई देता हूं। मेरे साथ बोलिए, जय सोमनाथ, जय सोमनाथ।

0: The Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi, was addressing the gathering at the Somnath Amrit Mahotsav 2026 at the Somnath Temple at Prabhas Patan in Gujarat. The Prime Minister said that the Somnath Temple is the symbol of India's national respect and it has withstood the travails of time. It has withstood the tyranny of Mahmud of Ghaznavi and Alauddin Khilji and many other tyrants. The Prime Minister paid tributes to Lakulisha and Soma Sarma and others, kings and commoners who defended the Somnath Temple and also rebuilt them over 1,000 years. He paid special tributes to Sardar Vallabhbhai Patel and to Dr. Rajendra Prasad. The Prime Minister said that the government is committed towards keeping up our heritage and our culture. And he also said that the government is committed towards Vikas Bhi and Virasat Bhi. The Prime Minister also mentioned that today is the anniversary of Operation Shakti, that is on the 11th of May in 1998, India tested nuclear weapons for the second time under the leadership of Atal Bihari Vajpayee. And as we come to the end of this special broadcast, we conclude with this mantra: Om Namah Shambhavaya Cha Mano Bhavaya Cha Namah Shankaraya Cha Mayaskaraya Cha Namah Shivaya Cha Shivtaraya Cha Har Har Mahadev.
1: आज सोमनाथ मंदिर प्रांगण में सोमनाथ अमृत महोत्सव का आयोजन किया गया। माननीय प्रधानमंत्री इस आयोजन में शामिल हुए। सोमनाथ भारत की अजय सभ्यता का प्रतीक है, ये कहा गया। सोमनाथ भारत की शाश्वत ज्योति है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जनसमूह को संबोधित किया और कहा कि दुनिया की कोई भी ताकत भारत को झुका नहीं सकती है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने शिव शक्ति पॉइंट का उल्लेख किया, ऑपरेशन शक्ति का उल्लेख किया, महान विभूतियों का स्मरण करते हुए उन्हें नमन किया और साथ ही प्रकृति पूजन परंपरा का भी उल्लेख करते हुए हर भारतीय को प्रेरित किया कि अपनी आध्यात्मिक चेतना को हमेशा ऊर्ध्वगामी रखें और जो हमारे आस्था के स्थल हैं उनके प्रति समर्पण बनाए रखें और इस तरह से राष्ट्र सेवा में लीन रहें। ये विशेष प्रसारण आप आकाशवाणी के माध्यम से सुन रहे थे। विशेष प्रसारण प्रस्तुतकर्ता प्रमोद कुमार वत्स के साथ, स्टूडियो में हमारे साथी हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर आशुतोष शर्मा के साथ और एस वाई खान के साथ, अपने को कमेंटेटर कौशिक रॉय के साथ मैं नीलम मलकानिया। इस विशेष आयोजन की आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देते हुए अब आप सभी से अनुमति लेती हूं। नमस्कार।
2: अभी आप सोमनाथ,
3: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए अब सुनिए फिल्म संगीत का कार्यक्रम। केदारनाथ फिल्म का ये गीत है, अमित त्रिवेदी की आवाज है, बोल अमिताभ भट्टाचार्य की और धुन अमित त्रिवेदी की।

सत्यम शिवम सुंदरम। अगली प्रस्तुति इस फिल्म से आवाज़ें लता मंगेशकर और साथियों की हैं, शब्द रचना पंडित नरेंद्र शर्मा की और संगीत निर्देशक हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

इसके साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा करें।

0: भोर की चौखट पर भक्ति की धारा
1: ऑफिस जाने की जल्दी मगर देश दुनिया की खबर भी जरूरी।
2: ये आकाशवाणी है, अब आप समाचार सुनिए।
0: ऑफिस या घर से निकलते ही उफ, ये ट्रैफिक।
1: आकाशवाणी है ना,
3: बातों ही बातों में हर सुबह 10 से 11 बना लो पूरी दुनिया को अपना दोस्त।
1: ऑफिस में थोड़ा रिलैक्सिंग म्यूजिकल ब्रेक,
0: शाम सुहानी हो,
4: आकाशवाणी के साथ जुड़िए ना।
1: घर पहुंचते ही थकान, कैसे हो मनोरंजन,
0: आकाशवाणी है ना। चैन की नींद से पहले कुछ भूले बिसरे पल, हर पल
1: सफर में
0: आपके साथ
1: आकाशवाणी।

आपके विचार अब हर घर तक पहुंचेंगे बार बार। बढ़ेंगे ग्राहक, तरक्की होगी कमाल। विज्ञापन देने का सही पता, आकाशवाणी भोपाल। विज्ञापन संबंधी सभी जानकारियों के लिए कॉल करें 9425012367।

0: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। लोक संगीत के कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं पुष्पलता शर्मा और साथियों के गाए हुए कुछ बुंदेली लोकगीत।

लोक संगीत के कार्यक्रम में आज आप सुन रहे थे पुष्पलता शर्मा और साथियों के गाए हुए कुछ बुंदेली लोकगीत। इस वक्त आप हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश के साथ। सुगम संगीत के कार्यक्रम में लीजिए सुनिए कुछ गीत और भजन। कलाकार हैं प्राची कोकण ठानकर।

सुगम संगीत के कार्यक्रम में आज आप सुन रहे थे प्राची कोंकण ठानकर की आवाज में कुछ गीत और भजन। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। हमारा अगला कार्यक्रम बस थोड़ी ही देर बाद होगा।

0: नमस्कार, मैं राजीव वर्मा स्वच्छता ही सेवा अभियान से जुड़ा हुआ हूं और आप सभी से गुजारिश करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि आप भी इससे जुड़ें और अपने कार्यालय, घर, कॉलोनी, मोहल्लों को स्वच्छ रखें। धन्यवाद। जय हिंद।
1: कवि श्री राग तेलंग।
2: आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने पर यह संदेश बहुत जरूरी है दर्ज करना कि आधुनिक कंक्रीटी संस्कृति में जब संगीत में संस्कृति के अनुकूल माहौल बनाने की कोशिश आकाशवाणी लगातार करता रहा है और आकाशवाणी का यह सफर जिसमें हम सब लोग सहयात्री के रूप में शामिल हुए हैं, हमारे लिए यह गौरव का क्षण है कि एक स्वर की यात्रा ने 100 वर्ष की दिशा में कदम रख दिया है और मात्र 10 वर्ष ही बचे हैं। आकाशवाणी शब्द का आशय ही यह है कि वह अनहद नाद के प्रति चेतना जगाने का काम भारतीय भूमि पर कर रहा है। इसके लिए बधाई हो, बहुत बहुत धन्यवाद।

0: सदी हो तुम, या यूं कहें वक्त की रफ्तार हो। कच्ची यादों से उम्मीदों के चिराग जगमगाने तक, यूं ही चलते चलते अचानक कुछ याद आ जाने तक, हर कदम पर रहे हो साथ साथ। मनोरंजन, समाज और इतिहास तुम्हारी जुबान से ही तो सुना है हमने। सदा बहार हो तुम, बेमिसाल हो तुम, देश की आवाज हो तुम।
1: आकाशवाणी

इस वक्त आप हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश के साथ। लीजिए अब सुनिए फिल्म संगीत का कार्यक्रम। सबसे पहले आपको सुनवाते हैं यशुदास की आवाज में चितचोर फिल्म का गीत। गीत और संगीत रविंद्र जैन का है।

0: सावन को आने दो। इस फिल्म में अभी आप सुन रहे थे यशुदास को, बोल फाग जामी के थे और धुन राजकमल की। इसके साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, थोड़ी देर में प्रादेशिक समाचार होंगे।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं पूर्वा त्रिवेदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच राष्ट्र को सशक्त बनाने में देशवासियों से साझेदार बनने का आह्वान किया है। हैदराबाद में कल एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने राष्ट्र से साथ अपील की। उन्होंने नागरिकों से सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने और कार पुलिंग के जरिए आयातित ईंधन के उपभोग को कम करने, विदेशी मुद्रा भंडार को संरक्षित करने में मदद करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री ने एक वर्ष के लिए विदेशों में शादी कार्यक्रम आयोजित करने या अत्यधिक सोने की खरीदारी को सीमित करने पर दोबारा विचार करने जैसे विदेशी खर्च में कटौती के उपाय तलाशने का आग्रह भी नागरिकों से किया।
2: एक जमाना था जब संकट आता था तो लोग देश हित में सोना दान दे देते थे। आज दान की जरूरत नहीं है, लेकिन देश हित में हमको ये तय करना पड़ेगा कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे, विदेशी मुद्रा बचाने के लिए।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमनाथ अमृत पर्व के अवसर पर आज पहले ज्योतिर्लिंग सोमनाथ महादेव मंदिर में विशेष महापूजा की। उन्होंने सोमनाथ मंदिर के शिखर पर कुंभाभिषेक भी किया। मंदिर के इतिहास में पहली बार मंदिर के शिखर पर 11 तीर्थ स्थलों से लाए गए पवित्र जल से जलाभिषेक किया गया। श्री मोदी ध्वजारोहण समारोह में भी सम्मिलित हुए। इस बीच वायुसेना ने एयर शो किया, जिसमें सूर्यकिरण एरोवेक्टिक्स टीम ने सोमनाथ के ऊपर मनमोहक करतब दिखाए। हेलीकॉप्टर के जरिए पुष्प वर्षा की। इसके बाद श्री मोदी ने विशेष प्रदर्शनी का अवलोकन किया। सोमनाथ अमृत पर्व सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष में मनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश की धरती ने चीतों को अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराकर उन्हें पुनर्स्थापित करने का महत्वपूर्ण कार्य कर अपने परिवार का हिस्सा बनाया है। श्योपुर जिले के कूनू नेशनल पार्क में दो मादा चीतों को खुले जंगल में विमुक्त करते हुए उन्होंने कहा कि आज देश में चीता पुनर्स्थापना का ये प्रोजेक्ट सफलता के साथ में आयामों की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
3: मध्य प्रदेश ने एक नया इतिहास बनाया है। आज पालनपुर कूनू में हमने बोत्सवाना के द्वारा लाए गए चीते में दो मादा चीतों को छोड़ करके खुले जंगल में, खुले वातावरण में प्राकृतिक के साथ सह अस्तित्व के भावना को प्रकट करते हुए उनको छोड़ा है। मैं पालनपुर कुनो श्योपुर जिले के और चंबल मालवा के लोगों को बधाई देना चाहूँगा। लगभग 5000 किलोमीटर में अब इनका बसेरा हुआ है।
1: डॉक्टर यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश धर्म निवेश एवं जैव विविधता के प्रमुख केंद्र के रूप में उभर रहा है। नाइजीरिया, दक्षिण अफ्रीका और अब बोत्सवाना से लाए गए चीतों के पुनर्स्थापना को निरंतर सफलता मिल रही है और आज प्रदेश ने देश भर में चीता स्टेट के रूप में पहचान बनाई है। वर्तमान में चीतों की संख्या 57 है, जिनमें से 54 कूनू नेशनल पार्क और 3 गांधी सागर अभयारण्य में है। प्रदेश में मौसम का मिजाज एक बार फिर बदला हुआ नजर आ रहा है। प्रदेश में सक्रिय 2 टर्फ और 1 साइक्लोनिक सर्कुलेशन के असर से आज भी जिलों में आंधी और बारिश की संभावना जताई गई है। वहीं दूसरी तरफ भोपाल, इंदौर और उज्जैन संभाग के कई इलाकों में तेज गर्मी लोगों को परेशान करेगी। मौसम विभाग के अनुसार बैतूल, छिंदवाड़ा, पादरुना, सिवनी, बालाघाट, मंडला, डिंडौरी और अनूपपुर जिलों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलने के साथ बारिश हो सकती है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने देशवासियों और समस्त प्रतिभावान वैज्ञानिकों को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस की शुभकामनाएं दी। मंत्री डॉ. कुंवर विजय शाह ने कल खंडवा जिले के आवलिया में प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। शिविर में 10वीं 12वीं एवं ITI उत्तीर्ण 18 से 35 वर्ष आयु वर्ग के युवाओं को तकनीकी एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान किया गया और बरगीडेम में हुए भीषण क्रूज हादसे की न्यायिक जांच जबलपुर हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज संजय द्विवेदी को सौंपी गई है, जो आगामी 3 महीनों के भीतर अपनी रिपोर्ट राज्य को प्रस्तुत करेंगे। इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।
0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। अब दोपहर समाचार हम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित करते हैं।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सोमनाथ मंदिर अमृत महोत्सव भारत के दृष्टिकोण को आने वाले 1000 वर्ष तक प्रेरित करेगा। उन्होंने मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने पर महापूजा की। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने सीमा पर बाड़ लगाने के लिए बीएसएफ को भूमि हस्तांतरित करने की घोषणा की। राज्य में आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना का भी शुभारंभ। केंद्र ने विकसित भारत जी राम जी अधिनियम के 1 जुलाई से क्रियान्वयन की अधिसूचना जारी की। एसबीआई के शोध के अनुसार वैश्विक चुनौतियों के बावजूद देश की अर्थव्यवस्था मजबूत बनी हुई है। अगले वित्त वर्ष में 6.6% की वृद्धि का अनुमान। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सोमनाथ मंदिर अटूट आस्था, दिव्यता और देश की शाश्वत आत्मा का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि सोमनाथ अमृत पर्व केवल अतीत का उत्सव नहीं है, बल्कि ये आने वाले 1000 वर्ष तक देश की प्रेरणा बनेगा।
2: मैं यहाँ देख रहा हूँ विनाश में सृजन के संकल्प को, जिसे सोमनाथ ने चरितार्थ किया है। मैं यहाँ देख रहा हूँ असत्य पर सत्य की विजय को, जिसे प्रभाष पाटन ने बार बार जिया है। मैं यहाँ देख रहा हूँ हजारों वर्षों की आध्यात्मिक चेतना को, जिसने मानव मात्र के कल्याण की सीख समूचे विश्व को दी है। मैं यहाँ देख रहा हूँ भारत के उस अविनाशी स्वरूप को, जिसे सदियों के कुत्सित प्रयास भी न मिटा सके, न हरा सके।
4: गुजरात में सोमनाथ अमृत महोत्सव को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सोमनाथ लोगों को ये याद दिलाता है कि कोई भी राष्ट्र तभी लंबे समय तक मजबूती से खड़ा रह सकता है जब वो अपनी जड़ों से जुड़ा रहे।
2: आजादी के समय सरदार साहब ने 500 से ज्यादा रियासतों को जोड़कर एक भारत का आधुनिक स्वरूप गढ़ा था, तो साथ ही सोमनाथ के पुनर्निर्माण से उन्होंने दुनिया को बताया था, भारत केवल आजाद नहीं हुआ है, भारत अपने प्राचीन गौरव को पुनः हासिल करने के मार्ग पर भी अब आगे बढ़ चुका है।
4: प्रधानमंत्री ने कहा कि 11 मई 1998 को 3 परमाणु परीक्षण किए गए थे, जिनके माध्यम से देश के वैज्ञानिकों ने भारत की क्षमताओं का प्रदर्शन पूरी दुनिया के सामने किया।
2: दुनिया भर की शक्तियां भारत को दबोचने के लिए मैदान में उतरी, अनेक प्रकार के बंधन लग गए। उस समय पूरी दुनिया का दबाव भारत पर था, लेकिन अटल जी के नेतृत्व में बीजेपी सरकार ने दिखाया था कि हमारे लिए राष्ट्र प्रथम है। दुनिया की कोई ताकत भारत को झुका नहीं सकती।
4: इससे पहले प्रधानमंत्री ने सोमनाथ महादेव मंदिर में विशेष महापूजा की। उन्होंने सोमनाथ मंदिर के शिखर पर कुंभाभिषेक भी किया। मंदिर के इतिहास में पहली बार शिखर पर 11 तीर्थस्थलों से लाए गए पवित्र जल से जलाभिषेक किया गया। श्री मोदी ध्वजारोहण समारोह में भी शामिल हुए। इस बीच वायुसेना ने एयर शो किया, जिसमें सूर्य किरण एरोबेटिक्स टीम ने सोमनाथ के ऊपर मनमोहक करतब दिखाए। हेलीकॉप्टर के जरिए पुष्प वर्षा की गई। इसके बाद श्री मोदी ने विशेष प्रदर्शनी का अवलोकन किया। श्री मोदी ने हमीरजी गोहिल सर्कल तक रोड शो भी किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ स्वाभिमान उत्सव के अवसर पर देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में उन्होंने कहा कि ये उत्सव भारत की शाश्वत ऊर्जा का उत्सव है और सोमनाथ मंदिर भारत की आध्यात्मिक चेतना और आस्था का सशक्त प्रतीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमनाथ मंदिर की दृढ़ता और शाश्वत सभ्यतागत महत्व को उजागर करने वाले संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के लेख को साझा किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि सोमनाथ एक मंदिर से अधिक देश के मजबूत मनोबल का प्रमाण है। अपने लेख में श्री शेखावत ने मंदिर के इतिहास को समकालीन भारत के साथ जोड़ते हुए लिखा है कि सोमनाथ की भावना 21वीं सदी के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत है। श्री शेखावत ने सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के तहत वर्ष भर चलने वाले राष्ट्रीय आयोजनों का उल्लेख किया। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज कहा कि राज्य सरकार ने बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ को जमीन हस्तांतरित करने का निर्णय लिया है। चुनाव के बाद पश्चिम बंगाल में नई सरकार गठित होने के बाद आज हुई मंत्रिमंडल की पहली बैठक में यह निर्णय लिया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि तृणमूल कांग्रेस की पिछली सरकार ने घुसपैठ को बढ़ावा देने के लिए जमीन रोक रखी थी।
5: आज पहले कैबिनेट में हम लोग बीएसएफ को लैंड ट्रांसफर करने का डिसीजन ले लिया है। लैंड ट्रांसफर आज से शुरू होगा। पहले कैबिनेट ये आने वाला 45 डेज के अंदर पूरा के पूरा जमीन एमएचए को ट्रांसफर करेगा। बीएसएफ फेंसिंग पूरा कर देगा और इलीगल इन्फिल्ट्रेटर्स का जो हमारी प्रॉब्लम चल रहा है ये भी कुछ दिन के अंदर रिजोल्व हो

0: जाएगा।
1: श्री अधिकारी ने राज्य में केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना और कई अन्य योजनाओं के क्रियान्वयन की घोषणा की। राज्य को अब आधिकारिक तौर पर आयुष्मान भारत योजना में शामिल कर लिया गया है। साथ ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का लाभ भी प्राप्त किया जा सकेगा। श्री अधिकारी ने बताया कि केंद्र सरकार के दिशा निर्देश तत्काल लागू किए जा रहे हैं। मंत्रिमंडल ने चुनाव प्रचार के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा दिए गए वचन के अनुसार विद्यालय की नौकरी के आवेदकों के लिए उम्र सीमा में 5 वर्ष का विस्तार करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी। तमिलनाडु विधानसभा में आज 100 से अधिक नवनिर्वाचित सदस्यों ने शपथ ली। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय और कैबिनेट सदस्यों, प्रतिपक्ष नेता उदयनिधि स्टालिन, पूर्व मुख्यमंत्रियों इडापड्डी के पलनीसामी तथा ओ पन्नीरसेल्वम ने भी शपथ ली। इसके अलावा प्रमुख सदस्यों प्रेमलता, विजयकांत, सौम्या, अंबुमणि और गठबंधन के नेताओं ने भी शपथ ली। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। केंद्र सरकार ने विकसित भारत जी राम जी गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम 2025 के क्रियान्वयन के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। ये अधिनियम इस वर्ष 1 जुलाई से देश भर में लागू हो जाएगा। देश भर में नए ढांचे के क्रियान्वयन के लिए मौजूदा वित्त वर्ष में 95,692 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। एक रिपोर्ट।
2: विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 20 साल पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की जगह लेगा। इस नए अधिनियम का उद्देश्य एक वित्तीय वर्ष में रोजगार गारंटी को 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन करना है। इसके अलावा यह अधिनियम समय पर मजदूरी के साथ साथ पारदर्शी और जवाबदेही भुगतान पर जोर देता है। यदि निर्धारित समय के भीतर किसी को काम उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो इस नए अधिनियम में बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान है। विकसित भारत जी राम जी अधिनियम ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त करने, रोजगार के नए अवसर पैदा करने और गांव के समग्र और सतत विकास को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: महिला श्रमिकों की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए विकसित भारत जी राम जी अधिनियम कार्यस्थलों पर बच्चों की देखभाल के लिए एक महत्वपूर्ण प्रावधान करता है। 5 वर्ष से कम उम्र के 5 या अधिक बच्चों की उपस्थिति में उनकी देखभाल के लिए एक महिला श्रमिक को नियुक्त किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच राष्ट्र को सशक्त बनाने में देशवासियों को साझेदार बनने का आह्वान किया है। हैदराबाद में कल एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने राष्ट्र से 7 अपील की। उन्होंने नागरिकों से सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने और कार पोलिंग के जरिए आयातित ईंधन के उपभोग को कम करके विदेशी मुद्रा भंडार को संरक्षित करने में मदद करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री मोदी ने 1 वर्ष के लिए विदेश यात्रा टालने जैसे विवेकपूर्ण खर्च पर दोबारा सोचने का आग्रह किया। उन्होंने 1 वर्ष के लिए विदेशों में शादी कार्यक्रम और अत्यधिक सोने की खरीदारी न करने का आग्रह भी किया। वोकल फॉर लोकल आंदोलन का नारा बुलंद करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आत्मनिर्भरता और जैविक कृषि भारत के लिए आवश्यक है।
3: भारत सरकार खेतों में डीजल पंप की जगह सोलर पंप की योजना चला रही है। मैं कोविड काल में भी आग्रह करता था कि हम स्थानीय चीजें खरीदें, वोकल फॉर लोकल के मंत्र को लेकर चले। हम मेड इन इंडिया चीजें खरीदकर भी विदेशी मुद्रा बचा सकते हैं और हमारे देश में स्थानीय उत्पादन की कोई कमी नहीं है।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज पश्चिम एशिया की स्थिति की निगरानी करने के लिए गठित अनौपचारिक अधिकार प्राप्त मंत्री समूह की एक बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में क्षेत्र की उभरती स्थिति की समीक्षा की गई। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मौजूदा वैश्विक अनिश्चितताओं को देखते हुए नागरिकों और कारोबारियों से विदेशी मुद्रा की आवश्यकता वाली वस्तुओं पर होने वाले खर्च को कम करने का आग्रह किया है। आज नई दिल्ली में आयोजित सीआईआई के वार्षिक व्यापार शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री वैष्णव ने कहा कि पश्चिम एशिया में संघर्ष अब भी जारी है और शांति की स्थिति अभी दूर है। देश के लिए आर्थिक मोर्चे पर जिम्मेदारी से काम करना महत्वपूर्ण है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि नागरिकों को अपने दैनिक जीवन में उन क्षेत्रों की पहचान करनी चाहिए जहां विदेशी मुद्रा का खर्च कम से कम किया जा सके।

हमारे प्रधानमंत्री ने हम सभी नागरिकों से उन सभी चीजों पर होने वाले खर्च को कम करने का आग्रह किया है जिनके लिए विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ती है। साथ ही हमें अधिक से अधिक विदेशी

आज भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT बॉम्बे में एकीकृत कार्बन कैप्चर और उपयोग संयंत्र का उद्घाटन किया। उन्होंने भूवैज्ञानिक कार्बन डाइऑक्साइड पृथक्करण के लिए वैज्ञानिक ड्रिलिंग का भी शुभारंभ किया। संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने इस गंभीर वैश्विक समस्या का समाधान विकसित करने के लिए IIT बॉम्बे को बधाई दी और घोषणा की कि इस परियोजना को अगले महीने फ्रांस में होने वाले भारत इनोवेट्स 2026 में प्रस्तुत किया जाएगा। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे उस वीडियो का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया है कि वाइस एडमिरल AN प्रमोद ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने भारतीय विमानों और हवाई अड्डों को निशाना बनाया था। पत्र सूचना कार्यालय PIB की तथ्य जांच इकाई ने इस दावे को फर्जी बताया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने श्योपुर जिले में कुनो राष्ट्रीय उद्यान के खुले जंगल में आज दो मादा चीता को छोड़ा। ये दोनों चीते इस वर्ष फरवरी में बोत्सवाना से भारत लाए गए 9 चीतों में से हैं। उन्हें क्वारंटीन और अनुकूलन प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी करने के बाद जंगल में छोड़ा गया। इनके आने से देश में चीतों की कुल संख्या 57 हो गई है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @TIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। वैश्विक उथल पुथल के बावजूद देश की अर्थव्यवस्था लचीली बनी हुई है। भारतीय स्टेट बैंक द्वारा आज जारी रिसर्च रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2026-27 में अर्थव्यवस्था में 6.6% की वृद्धि होने का अनुमान है। रिपोर्ट में पिछले वित्त वर्ष की चौथी तिमाही में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि का अनुमान लगभग 7.2% लगाया गया है। वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद भारत ने विकास की मजबूत गति को बनाए रखा है। IPL क्रिकेट में आज पंजाब किंग्स का सामना दिल्ली कैपिटल से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे धर्मशाला में खेला जाएगा। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में अग्नि सुरक्षा जागरूकता, खतरे कम करना और आपदा रोकना विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। चर्चा में गृह मंत्रालय में अग्नि सुरक्षा सलाहकार प्रशांत लोनकर और दिल्ली अग्निशमन सेवा के निदेशक अतुल गर्ग भाग लेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सोमनाथ मंदिर अमृत महोत्सव भारत के दृष्टिकोण को आने वाले 1000 वर्ष तक प्रेरित करेगा। उन्होंने मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने पर महापूजा की। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने सीमा पर बाड़ लगाने के लिए BSF को भूमि हस्तांतरित करने की घोषणा की। राज्य में आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना का भी शुभारंभ। केंद्र ने विकसित भारत G Ramji अधिनियम के 1 जुलाई से क्रियान्वयन की अधिसूचना जारी की। SBI के शोध के अनुसार वैश्विक चुनौतियों के बावजूद देश की अर्थव्यवस्था मजबूत बनी हुई है। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

इस वक्त आप हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश के साथ। लीजिए प्रस्तुत है फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी फरमाइश।

इस कार्यक्रम के सभी सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैं सुनीता सिंह और आप तक भेजती हूँ मेरा प्यार भरा नमस्कार। कहिए दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमें मालूम है कि बहुत अच्छे हैं, लेकिन इस तपिश भरी दोपहरी में गर्मी से हर इंसान परेशान तो है, लेकिन इस तपिश में मुट्ठी भर गीतों की छांव आकाशवाणी आप तक पहुंचाता है। तो चलिए, आप जुड़ ही चुके हैं हमसे, आपकी फरमाइश पर कुछ गाने हम आप तक पहुंचाने के लिए बेताब हैं। सबसे पहले श्रोताओं के नाम बताते हैं जिनकी फरमाइश पर आज के कार्यक्रम का पहला गीत हमने चुना है। ये श्रोता हैं अमरपुर पेंड्रा छत्तीसगढ़ से दीपक कुमार, रोशन बंशीलाल, रेखा देवी, श्वेता देवी, दिशा और लवी श्रीवास्तव। और ये खत आया हुआ है तिल्दा छत्तीसगढ़ से। लिखने वाले श्रोता हैं प्रदीप कुमार चंद्र, सीमा रानी, प्रिया रानी, ओशीम और सोमेन। अगली चिट्ठी आई हुई है सह

अदरी परिसर भदभदा रोड भोपाल से हमारे श्रोताओं के नाम हैं योगेश्वर सिंह भारतीय, डॉक्टर शेखावत सिंह भारतीय, भैरव प्रताप सिंह, लोकेंद्र प्रेमाबाई, और ग्राम पोस्ट बायां तहसील रेहटी जिला सीहोर से अमर सिंह भारतीय, कोशाबाई, लक्ष्मी, महेंद्र, सचिन और तरु। और ये खत आया है फनेश कुमार चंदन, सावित्री देवी, मोहित कुमार और गजेंद्र कुमार चंदन का, सौगा धमतरी छत्तीसगढ़ के हमारे ये श्रोता हैं। आप सबकी फरमाइश पर आइए सुनते हैं मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा हुआ गीत। आवाज़ आशा भोंसले की है, संगीत ओपी नैयर का, फिल्म का नाम है फिर वही दिल लाया हूँ।

और अब आइए सुनते हैं प्रोफेसर फिल्म का गीत, मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ें हैं इसके लिए। गीतकार हजरत जयपुरी, संगीतकार शंकर जयकिशन, और अनुरोध आप सबका है ग्राम अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश, तारणी, सूरज, ज्योति, रियांश और गुड़िया ठाकुर। महाराणा प्रताप कॉलोनी उदयपुर से नरेश नाचानी, भारती, विनीत, प्रगति, मिथिल नाचानी, और जवाहर नगर उदयपुर से बाबू भाई और भारती देवी। घंटाघर चौक खंडवा से इसी गीत को पसंद करते हैं संजय पंचोलिया, प्रियंका और संप्रीत पंचोलिया। आदर्श नगर मलोट पंजाब से हमारे श्रोता हैं राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा और सौरभ शर्मा। आप भी इस गीत को सुनना चाहते हैं। डोंडी लोहारा दुर्ग छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय, रोशनी, बेबी पूजा, तुषार और प्रभा देवी तामुरिया की भी यही फरमाइश है। और ये खत आया हुआ है सारणी जिला बैतूल से अमित खातरकर, निहारिका खातरकर, शिवपाल यादव, अनामिका, अवंतिका, शिवालिका, पारसमणि बाघ, पंजाब राव और साथ में है संदीप पाटिल। आप सबकी फरमाइश पर आइए सुनते हैं प्रोफेसर फिल्म का ये नगमा। वो अगर याद करें हमको तो भूलें किसको, हम अगर उनको भुलाएं तो किसे याद करें।

आपकी फरमाइश कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से। कार्यक्रम का अगला गीत हमारे इन दोस्तों की फरमाइश पर है, प्रमिलागंज आलोट जिला रतलाम से बलवंत कुमार वर्मा, राजूबाई, माया वर्मा, शोभा, राहुल, ज्योति और अतुल। जयराज प्लॉट राजकोट से मधुसूदन भट्ट, आरती, पूजा, जैस्मिन और प्रयागराज भट्ट। नेपानगर से सुदर्शन शाह, ताविश शाह, कुंश, पल्लवी, सुरभि, मंगलाबेन और राजेंद्र जी शाह। जयराज प्लॉट राजकोट से मधुसूदन भट्ट, आरती भट्ट का हमने आपको नाम बताया ही। ये खत आया हुआ है इंदौर से लाल फतेह चंदानी, लीला फतेह चंदानी, संगीता, सुनीता, पिंकेश, साक्षी, मनन और तानिया, और इसी गीत को पसंद करते हैं। राजावत कॉम्प्लेक्स नई सड़क शाजापुर से श्रोताओं के नाम हैं मधु राजावत, राशि, चितरंजन, कमल, उमेश, सरोज, आरती, रेखा, रितिका, रिचा, स्वीटी, रिया और इनके परिवार के सभी सदस्य। आप सबकी फरमाइश पर आइए सुनते हैं नीला आकाश फिल्म का गीत। इस गीत के लिए आवाज़ें मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की हैं। गीतकार हैं राजा मेहदी अली खां और संगीतकार मदन मोहन। ये मेरे दिल की मजबूरियां भी क्या खूब हैं, तुम्हारा राज तुम्ही से छुपा रहा हूं मैं।

0: श्रोताओं, आपकी फरमाइश पर कुछ गीत और हम आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन उसके पहले एक छोटा सा अंतराल।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना, जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना, हर संकट का समाधान है भारतीय सेना, भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल, हर जगह

0: श्रोताओं, अंतराल के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है आपकी फरमाइश कार्यक्रम में। इस कार्यक्रम में आज आपके साथ हूँ मैं, सुनीता सिंह। आइए कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवाते हैं सीआईडी फिल्म से। आवाज़ें गीता दत्त और मोहम्मद रफ़ी की हैं, बोल जानिसार अख्तर के और धुन ओपी नैयर की। अनुरोध आप सबका है, निभोरा से अशोक देशमुख, शरद बबन, शिवाजी चौक बुराला खुर्द से आदिनाथ वाघ और अमोक वाघ, भाटापारा छत्तीसगढ़ से इसी गीत को पसंद करते हैं सोहन जोशी, विष्णु, अज्ञिता, अमृता जोशी, लोकेश, और बिलाईगढ़ से जगदीश देवांगन, पुष्पांजलि देवांगन, जया, जानवी, तृप्तेश देवांगन। और ये खत आया हुआ है ग्राम धुर्रा बांधा भाटापारा से। लिखने वाले श्रोता हैं प्रमोद साहू, देव कुमार साहू, संगीता, सरिता, नेतराम और भूपेंद्र साहू। और इसी गीत को पसंद करते हैं चार मीनार चौक गंडई पंडरिया से दरियाना मल, पार्वती मोटवानी, राजेश, रेशम, मुकेश, भावना, सोमेश और यशराज। तो आप सबकी फरमाइश पर आइए सुनते हैं सीआईडी फिल्म का ये गीत।
1: आंखों में इशारा हो गया, बैठ बैठ जीने का सहारा हो गया।
0: दूर ही दूर से इकरार हुआ करते हैं, कुछ इशारे पसे दीवार हुआ करते हैं।

और अब आइए सुनते हैं साहिर लुधियानवी का लिखा हुआ गीत एन दत्ता का संगीत। इसके लिए आवाज आशा भोसले की है और फिल्म का नाम है धर्मपुत्र। पसंद आप सबकी है। गौतम नगर जिला नांदेड़ से प्रभाकर जोंधले और आरती जोंधले, मोटक्का माफी जिला खंडवा से जगन्नाथ पटेल, कमला पटेल, अंतिम, ज्योति, ललित, मनीषा, शुभम, देवी किशन, भावना, कनिका, आदित्य, मानस और मन पटेल, कमर कॉलोनी बड़वाह से इसी गीत को पसंद करते हैं प्रवीण श्रीमाली, मीना, आदित्य, अदिति, शिवानी और मीनूराज श्रीमाली, ग्राम बगबुड़वा पथरिया से नरेंद्र नेताम और कुसुम नेताम, और मुंगेली छत्तीसगढ़ से उत्तरा कुमार दिवाकर, परमेश्वरी, योगिता, नितिन और अंशिका। आप सबकी फरमाइश पर आइए सुनते हैं कार्यक्रम का आखिरी गीत। यूं तसव्वुर पे बरसती हैं पुरानी यादें जैसे बरसात में रिमझिम का समा होता है।

तो श्रोताओं, आपकी फरमाइश पर कुछ गीत थे ये जो हमने भेजे आप तक। उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे। अब इसके साथ ही अपनी दोस्त सुनीता सिंह को आपकी फरमाइश कार्यक्रम से इजाजत दें। नमस्कार।

0: आप सुन रहे थे फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी फरमाइश, ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए अब सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री मोदी ने कहा कि इस दिन भारत उन वैज्ञानिकों के अथक परिश्रम और समर्पण को गर्व से याद करता है जिनके प्रयासों से 1998 में पोखरण में सफल परीक्षण संभव हुए थे। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच राष्ट्र को सशक्त बनाने में देशवासियों को साझेदार बनने का आह्वान किया है। उन्होंने नागरिकों से सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने और कार पुलिंग के जरिए आयातित ईंधन के उपयोग को कम करने, विदेशी मुद्रा भंडार को संरक्षित करने में मदद करने का आग्रह किया। केंद्र सरकार ने विकसित भारत जीराम जी गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम 2025 के कार्यान्वयन की अधिसूचना जारी कर दी है। यह अधिनियम इस वर्ष 1 जुलाई से देशभर में लागू हो जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज शिवपुर जिले के कुनू नेशनल पार्क में 2 मादा चीतों को खुले जंगल में विमुक्त किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश चीता स्टेट के रूप में तेजी से विकसित हो रहा है और देश के चीता पुनर्स्थापना प्रोजेक्ट को नई सफलता मिल रही है। न्यूजीलैंड का एक प्रतिनिधि मंडल बैतूल जिले के भ्रमण पर है। ये दल मधु संग्रहण एवं जनजातीय आजीविका गतिविधियों का अवलोकन कर रहा है। मौसम विभाग ने बैतूल, छिंदवाड़ा, पारुना, सिवनी, बालाघाट, मंडला, डिंडौरी और अनूपपुर जिलों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने के साथ बारिश की संभावना जताई है। और आईपीएल क्रिकेट में आज धर्मशाला में शाम 7:30 बजे से पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच मुकाबला होगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।

आकाशवाणी का ये भोपाल केंद्र है। श्रोताओं, हम आपको याद दिला दें कि आकाशवाणी मध्य प्रदेश के कार्यक्रमों के अंतर्गत आज शाम 5:02 पर युवा श्रोता सुनेंगे आकाशवाणी भोपाल द्वारा प्रस्तुत युववाणी कार्यक्रम। फिल्म संगीत का प्रसारण समय है शाम 5:33, 6:30 और 8:15। शाम 6 बजे होगा NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। 6:40 पर कार्यक्रम आजकल का प्रसारण होगा। प्रादेशिक समाचार दर्शन आप सुनेंगे 6:45 पर। रात 8 बजे सुनिए कार्यक्रम सुर्खियों में। 9:30 सुनिएगा कार्यक्रम पब्लिक स्पीक, इसे हम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित करेंगे। आपकी फरमाइश का प्रसारण समय है रात 10 बजे। राग रजनी कार्यक्रम में रात 10:30 हम आपको सुनवाएंगे पंडित बुद्धदेव दास गुप्ता का सरोद वादन राग कामोद। और आकाशवाणी भोपाल के प्रसारण के अंतर्गत शाम 7:21 पर ग्राम सभा कार्यक्रम का प्रसारण होगा। इसमें आज किसान भाई सुनेंगे लोकगीतों का फरमाइशी क्रम लोक रंग। मीडियम वेव 188.32 मीटर्स यानी 1593 किलोहर्ट्ज, साथ ही DTH के ऑडियो चैनल, वेब्स OTT और न्यूज ऑन AIR एप्लीकेशन पर ये आकाशवाणी भोपाल है। दिन के 3:02 हो चुके हैं। मीडियम वेव पर हमारी ये सभा अब संपन्न होती है। 5 बजे अपनी सांध्यकालीन सभा के कार्यक्रमों के साथ हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दें, नमस्कार। इस बीच प्रसारण DTH पर जारी रहेगा।

0: कद की, बड़े बड़े थन जो जमीन से लगते चलते हैं, बेहद कमखोर लेकिन बेहद दुधार। एक वक्त में 2-2.5 सेर दूध ले लीजिए। अभी पहली बार ही भी आई है, सिर्फ 25 रुपए में आ जाएगी।
1: मुझे दाम कुछ ज्यादा मालूम हुआ, लेकिन पंडित जी पर मुझे एतबार था। फरमाइश कर दी गई और तीसरे दिन बकरी आ पहुंची। मैं देखकर उछल पड़ा। जो जो गुण बताए थे उनसे कुछ ज्यादा ही निकले। एक छोटी सी मिट्टी की नांद मंगवाई गई, चोकर का भी इंतजाम हो गया। शाम को मेरे नौकर ने दूध निकाला तो सचमुच 2.5 सेर। मेरी छोटी पतीली लबालब भर गई थी। अब मुसलो ढोल बजाएंगे। ये मसला इतने दिनों बाद जाकर कहीं हल हुआ। पहले ही ये बात सूझती तो क्यों इतनी परेशानी होती। पंडित जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा किया। मुझे सवेरे तड़के और शाम को उसकी सींग पकड़ने पड़ते थे, तब आदमी दुह पाता था। लेकिन ये तकलीफ इस दूध के मुकाबले में कुछ न थी। बकरी क्या है, काम धेनु है। बीवी ने सोचा इसे कहीं नजर न लग जाए, इसलिए उसके थन के लिए एक गिलाफ तैयार हुआ। इसकी गर्दन में नीले चीनी के दानों का एक माला पहनाया गया। घर में जो कुछ झूठा बचता, देवी जी खुद जाकर उसे खिला आती। लेकिन एक ही हफ्ते में दूध की मात्रा कम होने लगी। जरूर नजर लग गई होगी। बात क्या है, पंडित जी से हाल कहा तो उन्होंने कहा,
0: अरे साहब, देहात की बकरी है, जमींदार की, बेदरेग अनाज खाती थी और सारे दिन बाग में घूमा चरा करती थी। यहां बंधे बंधे दूध कम हो जाए तो ताज्जुब नहीं, इसे जरा टहला दिया कीजिए।
1: लेकिन शहर में बकरी को टहलाए कौन और कहां, इसलिए ये तय हुआ कि बाहर कहीं मकान लिया जाए। वहां बस्ती से जरा निकलकर खेत और बाग हैं, कहार घंटे 2 घंटे टहला लाया करेगा। झटपट मकान बदला और गांव की मुझे दफ्तर आने जाने में 3 मील का फासला तय करना पड़ता था। लेकिन अच्छा दूध मिले तो मैं इसका दोगुना फासला तय करने को तैयार था। यह मकान खूब खुला हुआ था। मकान के सामने सहन था, जरा और बढ़कर आम और महुए का बाग, बाग से निकलिए तो कछुओं के खेत थे। किसी में आलू, किसी में गोभी। एक काछी से तय कर लिया कि रोजाना बकरी के लिए कुछ हरियाली जाया करे। मगर इतनी कोशिश करने पर भी दूध की मात्रा में कुछ खास बढ़त नहीं हुई। 2.5 सेर की जगह मुश्किल से सेर भर दूध निकलता था। लेकिन ये तस्कीन थी कि दूध खालिस है, यही क्या कम है। मैं ये कभी मान ही नहीं सकता कि खिदमतगारी के मुकाबले में बकरी चराना ज्यादा जलील काम है। हमारे देवताओं और नबियों का बहुत सम्मानित वर्ग गल्ले चराया करते थे। कृष्ण जी भी गाय चराते थे। कौन कह सकता है कि उस गल्ले में बकरियां न रही होंगी। लेकिन आदमी रूढ़ियों का दास है। जो कुछ बुजुर्गों ने नहीं किया उसे वो कैसे करे। नए रास्ते पर चलने के लिए जिस संकल्प और दृढ़ आस्था की जरूरत है वो हर एक में तो होती नहीं। धोबी आपके गंदे कपड़े धो लेगा, लेकिन आपके दरवाजे पर झाड़ू लगाने में अपनी हतक समझता है। मेरे खिदमतगार को बकरी लेकर बाग में जाना बुरा मालूम होता था। घर से तो ले जाए, लेकिन बाग में उसे छोड़कर खुद किसी पेड़ के नीचे सो जाता। बकरियां पत्तियां चर लेती थी, मगर एक दिन उसके जी में आया कि जरा बाग से निकलकर खेतों की सैर करें। यूं बहुत ही सभ्य और सुसंस्कृत बकरी थी। उसके चेहरे से गंभीरता झलकती थी, लेकिन बाग और खेत में घुस गई। आजादी नहीं है इसे वो शायद न समझ सकी। एक रोज किसी खेत में घुस गई और गोभी की कई क्यारियां साफ कर गई। काछी ने देखा तो उसके कान पकड़ लिए और मेरे पास लाकर बोला,
2: बाबूजी, इस तरह आपकी बकरी हमारे खेत चरेगी तो हम तो तबाह हो जाएंगे। आपको बकरी रखने का शौक है तो इसे बांध के रखिए। आज तो हमने आपका लिहाज किया, लेकिन फिर

0: हमारे खेत में गई तो हम या तो उसकी टांग तोड़ देंगे नहीं तो कानी हाउस भेज देंगे।
1: अभी वो अपना भाषण खत्म न कर पाया था कि उसकी बीवी आ पहुंची और उसने इसी विचार को और भी जोरदार शब्दों में अदा किया।
2: अरे मैं हाँ हाँ करती रही मगर ई बकरिया तो भैया का बताएं हमारे खेत में ही घुस गई। सारा का सारा खेत हमारा चौपट कर दिया। इसके पेट में तो भैया भवनी बैठी है। यहाँ कोई तुम्हारा दबेल नहीं है। हाँ हकीम होंगे अपने घर के होंगे। देखो बाबू अगर बकरी रखना है तो बांध कर रखो बताए देते हैं नहीं तो इसका गला ऐंठ दूंगी।
1: मैं भीगी बिल्ली बना खड़ा था। जितनी फटकार आज सहनी पड़ी उतनी जिंदगी में कभी नहीं सही। और जिस धीरज से आज काम लिया, अगर उसे दूसरे मौकों पर काम लिया होता तो आज आदमी होता। कोई जवाब नहीं सूझता था, बस यही जी चाहता था कि बकरी का गला घोंट दूं और खिदमतगार को 150 हंटर जमाऊं। मेरी खामोशी से वो औरत भी शेर होती जाती थी। आज मुझे मालूम हुआ कि किन्हीं किन्हीं मौकों पर खामोशी नुकसानदेह साबित होती है। खैर, मेरी बीवी ने घर में ये गुलगपाड़ा सुना तो दरवाजे पर आ गई तो हेकड़ी से बोली,
3: ये ले जा तू कानी हौज पहुंचा दे। और क्या करेगी, नाहक टर्र टर्र कर रही है घंटे भर से। जानवर ही है, एक दिन खुल गई तो क्या उसकी जान ले लेगी। और हां खबरदार जो एक बात भी मुंह से निकाली। क्यों नहीं खेत के चारों तरफ झाड़ लगा देती, कांटों से रूंध दे। अपनी गलती तो मानती नहीं, ऊपर से लड़ने चली आई है। मैं अभी पुलिस में इत्तला कर दूं तो बंधे बंधे फिरोगे।
1: बात कहने की इस शासनपूर्ण शैली ने उन दोनों को ठंडा कर दिया। लेकिन उनके चले जाने के बाद मैंने देवी जी की खूब खबर ली। गरीबों का नुकसान भी करती हो, ऊपर से रोब जमाती हो, इसी का नाम इंसाफ है। देवी जी ने गर्वपूर्वक उत्तर दिया,
3: मेरा एहसान तो मानोगे ना कि शैतानों को कितनी आसानी से मैंने भगा दिया। लगे उल्टे डांटने। गवारों को राह बतलाने का सख्ती के सिवा दूसरा कोई तरीका ही नहीं है। सज्जनता या उदारता उनकी समझ में ही नहीं आती है। उसे ये लोग कमजोरी समझते हैं और कमजोर को भला कौन नहीं दबाना चाहता।
1: खिदमतगार से जवाब तलब किया तो उसने साफ कह दिया,
4: अरे साहब बकरी चराना मेरा काम नहीं है।
1: मैंने कहा तुमसे बकरी चराने को कौन कहता है? जरा उसे देखते रहा करो कि किसी खेत में ना जाए, इतना भी तुमसे नहीं हो सकता।
4: देखिए मैं बकरी नहीं चरा सकता साहब, कोई दूसरा आदमी रख लीजिए।
1: आखिर मैंने खुद शाम को उसे बाग में चरा लाने का फैसला किया। इतने जरा से काम के लिए एक नया आदमी रखना मेरी हैसियत से बाहर था और अपने इस नौकर को जवाब भी नहीं देना चाहता था जिसने कई साल तक वफादारी से मेरी सेवा की थी और ईमानदार था। दूसरे दिन मैं दफ्तर से जरा जल्द चला आया और चटपट बकरी को लेकर बाग में जा पहुंचा। जाड़ों के दिन थे, ठंडी हवा चल रही थी, पेड़ों के नीचे सूखी पत्तियां गिरी हुई थी। बकरी एक पल में वहां जा पहुंची, मेरे दलेल हो रही थी, उसके पीछे पीछे दौड़ता फिरता था। दफ्तर से लौटकर जरा आराम किया करता था, आज ये कवायद करनी पड़ी, थक गया मगर मेहनत सफल हो गई। आज बकरी ने कुछ ज्यादा दूध दिया। ये ख्याल आया अगर सूखी पत्तियां खाने से दूध की मात्रा बढ़ गई तो यकीनन हरी पत्तियां खिलाई जाएं तो इससे कहीं बेहतर नतीजा निकले। लेकिन हरी पत्तियां आए कहां से? पेड़ों से तोड़ूं तो बाग का मालिक जरूर एतराज करेगा, कीमत देकर हरी पत्तियां मिल न सकती थी। सोचा क्यों एक बार बांस के लग्गे से पत्तियां तोड़े, मालिक ने शोर मचाया तो उससे आरजू मिन्नत कर लेंगे, राजी हो गया तो खैर, नहीं तो देखी जाएगी। थोड़ी सी पत्तियां तोड़ लेने से पेड़ का क्या बिगड़ जाएगा? चुनाचे एक पड़ोसी से एक पतला लंबा बांस मांग लाया, उसमें एक अंकुश बांधा और शाम को बकरी को साथ लेकर पत्तियां तोड़ने लगा। चोर आंखों से इधर उधर देखता जाता था, कहीं मालिक तो नहीं आ रहा है। अचानक वही काछी एक तरफ से आ निकला और मुझे पत्तियां तोड़ते देखकर बोला।

0: मैं काट देता हूं।
1: मैं कट गया, कुछ जवाब न सूझा। इसमें क्या बुराई है, अपने हाथ से अपना काम करने में क्या शर्म वगैरह। जवाब कुछ हल्के बेहकीकत बनावटी मालूम हुए। सफेद पोशी के आत्मगौरव ने जबान बंद कर दी। काची ने पास आकर मेरे हाथ से लग्गा ले लिया और देखते देखते हरी पत्तियों का ढेर लगा दिया और पूछा,
0: ये पत्तियां कहां रख जाऊं?
1: मैंने झेपते हुए कहा, तुम रहने दो, मैं उठा कर ले जाऊंगा। उसने थोड़ी सी पत्तियां बगल में उठा ली और बोला,
0: भला आप क्या पत्तियां रखने जाएंगे, चलिए मैं रख देता हूं।
1: मैंने बरामदे में पत्तियां रखवा ली। उसी पेड़ के नीचे उसकी चौगुनी पत्तियां पड़ी हुई थी। काछी ने उनका एक गट्ठा बनाया और सर पर लाद कर चला गया। अब मुझे मालूम हुआ ये देहाती कितने चालाक होते हैं, कोई बात मतलब से खाली नहीं।
2: अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद की कहानी कोई दुख ना हो तो बकरी खरीद लो का पहला भाग। पात्र परिचय इस प्रकार है, सूत्रधार जी श्याम, बीवी ममता सिंह, पंडित जी दीपक केसावलेकर, काची जयंत पात्रकर, काची की बीवी चंचल वर्मा, नौकर दीपक केसावलेकर, प्रस्तुति अनुश्री पाठक, परिकल्पना एवं निर्देशन रेणु चतुर्वेदी। कथा सुधा में सुनिए इस कहानी का दूसरा और अंतिम भाग अगले सोमवार।
3: तो मंदाकिनी जी, अभी हमारे सभी साथियों ने सुनी ये कहानी, उसी पर एक संदेश भी लिखकर भेजा है कि मुंशी प्रेमचंद की प्रसिद्ध व्यंग कहानी कोई दुख न हो तो बकरी खरीद लो में लेखक दूध की मिलावट से परेशान होकर घर में बकरी पालने की सलाह पर प्रतिक्रिया देते हैं। ये कहानी घरेलू सुख सुविधा, पशुपालन की जिम्मेदारी और पड़ोसियों के साथ होने वाले विवादों पर कटाक्ष करती है। कहानी का सार, दूध की समस्या से तंग आकर लेखक एक दोस्त के साथ मिलकर गाय खरीदते हैं, लेकिन गोबर और साफ सफाई की समस्याओं के कारण दोस्त के घर गाय रहती है और फिर दूध में मिलावट शुरू हो जाती है। बकरी का विचार, अंत में जब गाय का विकल्प काम नहीं करता तो लेखक बकरी खरीदने का फैसला करते हैं, ये सोच कर कि ये आसान होगा। परिणाम, बकरी से सभी भी परेशानी कम नहीं होती क्योंकि वो खेत में घुसकर नुकसान करती है, जिससे पड़ोसियों से विवाद होता है। अच्छी सी समीक्षा लेकर भेजिए इन्होंने।
4: बिल्कुल सही कहा। और देखिए, वही जो थोड़ी देर पहले हम कह रहे थे कि लोग अपने पालतू पशुओं को खुला छोड़ देते हैं और वो खुला जो पशु हैं जाकर कहीं ना कहीं कोई ना कोई नुकसान कर देते हैं, तो आपस में लड़ाई झगड़ा होने की भी संभावना बनी रहती है। इसलिए अपने पशुओं को हमें बांध कर रखना चाहिए। और अभी वक्त है मंजरी एक अंतराल का।

0: इस अंतराल के बाद सभी सुनने वालों का फिर से स्वागत है।
1: और हमारे साथियों ने भी बहुत सारे संदेश दिवस के ऊपर लिखकर भेजे हैं। एक साथी लिखते हैं कि राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के प्रमुख कारण हैं। यहाँ से लिखा है इन्होंने कि भारत में हर साल 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है, जो 11 मई 1998 को पोखरण में हुए सफल परमाणु परीक्षण ऑपरेशन शक्ति की याद दिलाता है। ये दिन देश के वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और तकनीकी उपलब्धियों को सम्मानित करने और वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिक दिवस के प्रमुख कारण है कि पोखरण 2 परमाणु परीक्षण 11 मई 1998 को भारत ने राजस्थान के पोखरण में 3 सफल परमाणु बम परीक्षण किए, जिसके बाद देश परमाणु

0: शक्ति संपन्न राष्ट्र बन गया। वैज्ञानिक उपलब्धियों का जश्न, ये दिन देश की आत्मनिर्भरता और विज्ञान के क्षेत्र में हुई प्रगति का सम्मान करता है। स्वदेशी तकनीकी, इस दिन भारत में पहले स्वदेशी विमान हंसा 3 का परीक्षण और त्रिशूल मिसाइल का सफल परीक्षण भी हुआ था। पूर्व PM वाजपेयी का योगदान, इन्होंने लिखा है, तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने देश की तकनीकी क्रांति को रेखांकित करने के लिए इस दिन को घोषित किया था।
1: बिल्कुल सही लिखा और आपने बहुत ही डिटेल में अपनी बात कही है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि भारत में हर साल 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस यानी नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाया जाता है, जो 11 मई 1998 को पोखरण में हुए सफल परमाणु परीक्षण ऑपरेशन शक्ति की हमें याद दिलाता है। ये दिन देश के वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और तकनीकी उपलब्धियों को सम्मानित करने और वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के प्रमुख कारण उन्होंने बताए हैं कि पोखरण यानी परमाणु परीक्षण 11 मई 1998 को भारत ने राजस्थान के पोखरण में 3 सफल परमाणु बम परीक्षण किए, जिसके बाद देश परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र बन गया। और इसके साथ ही ये दिन देश की आत्मनिर्भरता और विज्ञान के क्षेत्र में हुई प्रगति का भी दिन है। और जैसा कि अभी आपने बताया था कि हंसा 3 का परीक्षण और त्रिशूल मिसाइल का सफल परीक्षण भी इसी दिन हुआ था।
0: जी, और राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 2026 की थीम है यंत्र नई प्रौद्योगिकी, अनुसंधान और त्वरण को आगे बढ़ाने का युगांतर है। ये दिन जो 1998 के पोखरण परमाणु परीक्षणों की याद दिलाता है, यानी कि जो हमारी तकनीकी है वो कितनी तेजी से आगे बढ़ रही है, और इसके पीछे वैज्ञानिक, इंजीनियर जो भी योगदान देते हैं, तो उनको एक कहना चाहिए, एक सम्मान देने के लिए
1: देने
0: भी ये
1: का,
0: दिवस मनाया
1: बिल्कुल
0: जाता है।
1: बिल्कुल
0: और वैज्ञानिक नवाचार को बढ़ावा देने और भारत की तकनीकी आत्मनिर्भरता को याद करने के लिए ये दिन समर्पित है। तो इस दिन की सभी को हार्दिक बधाई देते हैं।
1: बिल्कुल। और अब सुन लेते हैं गीत।

0: देखिए, हम बात करने वाले हैं रिश्तों से ज्यादा मित्र करीब, क्या वजह है। तो ये केवल आज के समय की बात नहीं मंदाकिनी जी, बल्कि इंसानी भावनाओं और व्यवहार से जुड़ा एक गहरा विषय है। परिवार और रिश्तेदार हमारे जीवन की नींव होते हैं, लेकिन कई बार मित्र हमारे मन के अधिक निकट आ जाते हैं। इसके पीछे कई भावनात्मक, सामाजिक और मानसिक कारण तो होते ही हैं, क्योंकि हमारी जो सबसे पहली वजह होती है कि मन की आज़ादी। हम अपने दोस्तों के साथ खुलकर मन की बात करते हैं, क्योंकि हमें पता चल जाता है कि वो हमारी बात को इधर उधर नहीं पहुंचाएगा। और ये भी, मित्र बनाने से पहले हमें ये भी देखना पड़ता है कि हमारा मित्र वो सही है कि नहीं। हमने जो अपने दिल की बात कही है वो किसी और को तो नहीं बता रहा है। तो मित्र वही अच्छा होता है जो दूसरे मित्र की बात को अपने तक रखे। और रिश्तों में क्या होता है, रिश्तों में जैसे हमने कोई बात बताई तो वो बस एक दूसरे को बताने लग जाते हैं, तो बात एक घर से ना होकर कई घरों में पहुंच जाती, परिवार में। तो इसीलिए यही वजह होती है कि हम मित्र के बहुत करीब होते हैं।
1: बिल्कुल सही कहा। लेकिन क्या है, जो साइकोलॉजिकली हम जब जुड़ते हैं ना, तो हम दोस्ती में ज्यादा फ्रीडम महसूस करते
0: जी
1: हैं, है ना। रिश्तों में एक बंधन होता है, जब हम किसी रिश्ते में बंधे होते हैं या रिश्तेदारी में निभा रहे होते हैं, वहाँ एक बंधन है, सीमाएं हैं, बहुत सी चीजें हैं। लेकिन दोस्ती में कोई सीमा नहीं होती है। आप खुले खुले तरीके से अपनी बात कह सुन सकते हैं, अपने मन को हल्का कर लेते हैं, और दोस्ती होती भी ऐसी है। आपने
0: बिल्कुल
1: देखा है, अपने कॉलेज के स्टूडेंट, हमारे स्कूल की जो
0: जी।
1: सहेलियां थी, हम उनसे क्या क्या बातें कर जाते थे, उनकी क्या क्या बातें सुन लेते थे।
0: उनकी
1: और
0: डांट भी हम सुन लेते थे, उनकी राय भी हम सुन लेते थे,
1: हाँ,
0: और रूठना मनाना तो चलता था।
1: चलता ही
0: लेकिन
1: था।
0: रिश्तों में क्या होता है, जब कहते हैं ना मन में खटास आ जाती है, दोस्ती में
1: हाँ,
0: भी खटास
1: तो
0: आती है,
1: आती है,
0: लेकिन
1: लेकिन वो दोस्ती नहीं होती। मैं समझती
0: हाँ
1: हूँ, अगर दोस्ती में खटास आती है तो
0: जी
1: कहीं स्वार्थ आ जाता है, तब
0: बिल्कुल।
1: दोस्ती में खटास आती है। वरना तो दोस्त हमेशा से दोस्त ही रहते हैं।
0: दोस्ती रहती है,
1: जहाँ दोस्ती टूटी नहीं, दोस्त दूर हो गए, इसका मतलब कहीं ना कहीं स्वार्थ
0: स्वार्थ
1: या
0: उनके
1: मन में
0: अंदर,
1: कुछ था।
0: बिल्कुल सही
1: वरना
0: बात है।
1: आज भी हमारी कुछ सहेलियां या हमारी मित्र आज भी बरसों से हैं, उनसे अगर हम इतने दूर रहकर भी हम बात करते हैं, कभी तुम्हें अपने बचपन के लोग मिलते होंगे तो तुम
0: जी
1: बात करती हो ना,
0: बिल्कुल
1: क्योंकि उनसे कोई स्वार्थ नहीं है।
0: बिल्कुल। सौ की सीधी एक बात कि
1: हाँ,
0: आपके अंदर अगर स्वार्थ है, ईर्ष्या, जलन है, तो
1: तो आप नहीं
0: अहंकार है,
1: निभा
0: तो आप
1: पाओगे,
0: दोस्ती नहीं निभा
1: नहीं निभा
0: पाएंगे, है ना।
1: पाओगे।
0: तो हमारे
1: दोस्ती शब्द तो बहुत बड़ा है
0: बहुत
1: मंजरी।
0: बड़ा है
1: मुझे लगता है कि हम आपसी बातचीत को भी नहीं लंबा कर सकते,
0: जी,
1: जारी नहीं रख सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं अहंकार या कुछ बातें हमारे बीच में आ गई हैं।
0: आ गए जी।
1: लेकिन अगर वो नहीं आई हैं, तो वो दोस्ती का अगर हमने तमगा नहीं भी दिया, तब भी वो बातचीत लंबी चल सकती है।
0: बिल्कुल। और हमारे साथी भी लिखते हैं कि सभी रिश्ते हमें जन्म के साथ मिलते हैं, दोस्त हम खुद चुनते हैं। सही बात है। स्कूल, कॉलेज, नौकरी, आस पड़ोस में चारों तरफ हम मित्रों के साथ, और वे हमारे साथ हैं। हम बहुत खुशकिस्मत हैं कि हमारे पास इस तकनीकी के युग में भी सच्चे मित्र हैं। बहुत तो मिलना नहीं होता बाहर रहने वाले मित्रों से, पर आज भी खतों मोबाइल के द्वारा जुड़े हैं। मित्रों से जुड़े रहने में परिवार का सहयोग भी सहयोग है, और बहुत अच्छी
1: बिल्कुल।
0: बात है। जो आजकल हमें सोशल मीडिया की सुविधाएं मिली हुई है, व्हाट्सएप है या मोबाइल है, तो इनके द्वारा हम अपने मित्रों को खोज भी लेते हैं, पुराने पुराने कहाँ गए कहाँ
1: हाँ, सही
0: गए,
1: बात है।
0: है
1: कुछ मित्रों
0: ना।
1: ने हमें खोज लिया, अरे आप
0: हाँ,
1: कहाँ रहती हैं, आप
0: हमने
1: वही मंदाकिनी है जो
0: खुद ही
1: कभी साथ पढ़ा करती
0: जी
1: थी।
0: जी
1: तो बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगी, बहुत बड़ी बात है ये कि दोस्ती हो तो कृष्ण और सुदामा जैसी,
0: जी
1: है ना।
0: बिल्कुल बिल्कुल सही
1: वो
0: बात
1: एक
0: है,
1: बहुत बड़ा उदाहरण है दोस्ती का, जहाँ
0: बिल्कुल
1: उसके आगे और पीछे कुछ भी नहीं है।
0: कुछ भी नहीं। अगर
1: तो
0: वो उनकी दोस्ती को समझ लिया तो समझ
1: हाँ,
0: लीजिए आपने सब कुछ समझ
1: समझ लिया।
0: लिया।
1: तो हम अगर उसकी 10% दोस्ती भी निभा पाए, तो समझ
0: बहुत
1: लीजिए कि हम सच्चे दोस्त हैं, है ना।
0: जी जी
1: एक श्रोता लिखते हैं कि रिश्ते खून से तैयार होते हैं, दोस्त प्यार से मिलते हैं। रिश्तों में नसीब का साथ है, दोस्तों में सुखद सहवास है, रिश्ते बंधन कारक है, मित्र स्वयं स्फूर्त हैं। आज के जमाने में रिश्तेदार पहले तन और फिर धीरे धीरे मन से दूर हो जाते हैं, और समान विचारों वाले दोस्त नजदीक आते रहते हैं। कभी कभी रिश्ते दिल को जला देते हैं, तो दोस्त सच्चे स्नेह के फूल खिला देते हैं। इसलिए रिश्तों से भी मित्र ज्यादा करीब होते हैं।
0: और हमारे एक साथी लिखते हैं, अक्सर मित्र दोस्तों का रिश्ता खून या भावनात्मक रिश्तों से ज्यादा करीबी और भावनात्मक रूप से सुरक्षित तो होते हैं, क्योंकि दोस्ती में अपेक्षाएं कम और समझ ज्यादा होती है। कई बार दोस्त सुख दुख में परिवार से बेहतर साथ निभाते हैं और बिना किसी निर्णय के हमें अपनाते हैं। दोस्ती की मिसाल लोग महाभारत के पात्र कर्ण और दुर्योधन का भी देते हैं। बहुत सही बात लिखी इन्होंने।

0: बिल्कुल, मैं एक श्रोता लिखती हूँ कि आज के दौर में रिश्तों रक्त संबंध से ज्यादा दोस्तों का करीब होना एक आम हकीकत बन गया है। इसके पीछे भावनात्मक, मनोवैज्ञानिक और व्यवहारिक कई कारण हैं। यहाँ कुछ मुख्य वजह हैं, क्योंकि दोस्त अक्सर परिवार से ज्यादा करीब होते हैं। बिना शर्त स्वीकृति के दोस्त हमें वैसे ही स्वीकार कर लेते हैं जैसे हम हैं, और रिश्तेदारी में अक्सर अपेक्षाएं, सामाजिक दबाव होता है, जबकि दोस्ती में हम अनौपचारिक रहते हैं, स्वैच्छिक संबंध होते हैं। परिवार हमें मिलता है लेकिन दोस्त हम खुद बनाते हैं। ये चुनाव हमारी रुचियों, विचारों और मूल्यों की समानता पर आधारित होता है, जिससे जुड़ाव गहरा होता है और भावनात्मक सुरक्षा भी रहती है।
1: और हमारे एक साथी और लिखते हैं कि रिश्तों से ज़्यादा करीबी की बात हो तो सबसे पहले मित्र ही आएगा, क्योंकि कई बार दोस्ती खून के रिश्तों से ज़्यादा करीब और गहरी होती है, जो जीवन के हर सुख दुख की घड़ी में परिवार की तरह खड़े साथ खड़े होते हैं। दोस्त वो भाई बहन होते हैं जिससे हम खुद को चुनने का मौका मिलता है, जो रिश्तेदार से ज़्यादा असरदार होता है। इसमें शुक्रिया या सॉरी की औपचारिकता नहीं होती, जबकि बेहद अनौपचारिक और सुकून देने वाली होती है। ये भी कहा जाता है कि रिश्ते बहुत मिलते हैं पर सच्चे दोस्त बहुत कम मिलते हैं।
0: बिल्कुल, बहुत कम मिलते हैं और बहुत मुश्किल से मिलते हैं। बहुत खुश नसीब होते हैं वो जिन्हें सच्चे दोस्त मिलते हैं, है ना। और कहें तो एक गाना सुनवाएं पहले।

0: हाँ तो
1: देखिए,
0: मंजरी बताइए, दोस्ती
1: हमारे
0: में और क्या-क्या होता है?
1: दोस्ती में बहुत सारी बातें होती हैं, एक दूसरे के सुख दुख बांटते हैं, और कभी कभी एक साथ घूमने भी जाते हैं तो दोस्तों के साथ बड़ा मजा आता है, क्योंकि आपस में खर्चे भी शेयर कर लेते हैं, है ना।
0: मतलब दोस्ती में भी हम खर्चा देखते हैं?
1: भाई
0: मुझे
1: देखते
0: तो
1: हैं, क्योंकि
0: लगता है
1: चलो
0: दोस्ती में हम खर्चा देखते ही
1: नहीं,
0: नहीं है।
1: आजकल दोस्तों में क्या होता है कि चल थोड़ा तू लगा थोड़ा मैं लगा, ऐसा करते हैं और खूब इंजॉय कर लेते
0: अरे मैं तुम्हारे
1: हैं।
0: साथ जाऊंगी तो मैं तो बिल्कुल शेयर नहीं करने वाली हूँ, तुम्हें सारा खर्चा करना पड़ेगा।
1: देखती हूँ।
0: हाँ।

0: चलिए ठीक है, कर लेंगे।
1: हाँ
0: और हमारे साथी लिखते हैं, रिश्तों से ज्यादा मित्र करीब क्या वजह। मुझे लगता है कि दोस्ती और रिश्तेदारी दोनों की अपनी अपनी जगह है और दोनों को बनाए रखना जरूरी है। दोस्ती में विश्वास और समझ होती है, जबकि रिश्तेदारी में प्यार और बंधन होता है।
1: ये तो बात सही है, लेकिन ऐसा नहीं, रिश्तेदारी में भी कई लोग हमें बहुत अच्छे मिलते हैं
0: जी
1: जिनसे बहुत लंबे समय तक हमारा नाता जुड़ा होता है। एक हमारे दोस्त लिख रहे हैं कि रिश्ते हमारे जीवन की जड़ें हैं, वे हमें आधार देते हैं, लेकिन मित्रता उस ठंडी छांव की तरह है जो सफर की थकान मिटा देती है। मित्र करीब इसलिए होते हैं क्योंकि उनके साथ हम होते हैं। रिश्तों में हम बंधे होते हैं, पर मित्रता में हम मुक्त होते हैं। और मनुष्य का स्वभाव है कि वो वहीं सबसे ज्यादा जुड़ाव महसूस करता है जहाँ वो पूरी तरह स्वतंत्र हो। शायद इसलिए कहा गया है कि एक सच्चा मित्र ईश्वर का वो तरीका है जिसमें वो बताता है कि वो हमारी कितनी परवाह करता है।
0: बहुत सुंदर सी बात लिखी है। और ऐसे हमारे एक साथी और लिखते हैं कि आज का विषय बहुत ही सुंदर है। मुझे लगता है कि मित्र हमारे जीवन के वो चुने हुए रिश्ते हैं जो जहाँ दिखावे की जरूरत नहीं होती। रिश्तों में हम अक्सर अपनी जिम्मेदारियों से बंधे होते हैं, लेकिन मित्रों के साथ हम अपनी रूह से जुड़े होते हैं। एक सच्चा दोस्त वही है जो आपकी खामोशी को भी शब्दों से ज्यादा बेहतर समझ ले। शायद इसीलिए वो रिश्तों से भी ज्यादा करीब महसूस होते हैं। बहुत सुंदर
1: बिल्कुल
0: बात
1: सही।
0: है।
1: और एक आखिरी हम और ले लेते हैं, उसके बाद एक गीत हमारे श्रोताओं के लिए। लिखते हैं कि पारिवारिक रिश्तों में अक्सर एक मर्यादा और अपेक्षाओं का बोझ होता है, वहां गलतियों पर टोकने या उपदेश देने का डर रहता है। लेकिन एक सच्चे मित्र के सामने हम अपनी कमियों और गलतियों को बिना किसी डर के रख सकते हैं। मित्रता में जज किए जाने का डर कम और स्वीकार किए जाने का एहसास ज्यादा होता
0: जी
1: है ना।
0: बिल्कुल सही बात लिखी है। और तो हम लोग
1: तो
0: सुनते हैं गीत।
1: हमारे दोस्त भी चाहेंगे कि हम उन्हें गीत सुनवा लें।

0: तो
1: कहीं
0: मंजरी
1: जाए।
0: भाई, ये तो बातें हो गई हैं दोस्ती की बातें, कि दोस्त तो सबसे प्यारा होता ही है,
1: जी
0: और बड़े खुशनसीब होते हैं वो लोग जिनको ताउम्र के लिए दोस्त मिलता
1: मिलते
0: है।
1: हैं बिल्कुल,
0: तो दोस्त के साथ साथ अगर जब हम कुछ मिल बैठकर खाते हैं तो कितना
1: बनाते हैं
0: मजा
1: तो
0: आता
1: बहुत
0: है
1: अच्छा
0: ना।
1: लगता है। जी बिल्कुल। और आज हम बात करने वाले हैं बिहार के जो व्यंजन है हमारे, दाल पीठा और सत्तू का शरबत। तो हमारे साथियों ने लिखकर भेजा है, उन्हीं के कमेंट्स को लेते हैं। एक लिखते हैं कि दाल पीठा जिसे फरा यूपी में से पनगोजा बोलते हैं, गेहूं के आटे में भी बनती है लेकिन इसका असली स्वाद चावल के आटे में मिलता है, जिसमें चना उड़द की दाल को भिगो कर लहसुन मिर्च के साथ पीस कर नमक मिलाकर गर्म पानी से गूथा हुआ चावल के आटे में भरा जाता है, फिर इसे उबलते पानी में पकाते हैं, इसे धनिया टमाटर मूली की चटनी के साथ खाते हैं, या फिर इसके टुकड़े करके कढ़ाई में तेल या घी में हरी मिर्च राई का तड़का देकर इसको थोड़ा सा भून लेते हैं, खाते हैं। अपने स्वाद के अनुसार लोग इसमें भुने आलू का भरावन, चटपटी मसालेदार भुनी अलसी, तिल का स्टफिंग भी करके पीठा बनाते हैं, जो भरकर स्टफ करके बना हुआ पीठा और जो दाल में पका वो दाल पीठी कहलाता है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हम लोग फरा तो बनाते ही हैं चने की दाल से, तो इसी तरह का है, बहुत अच्छा व्यंजन है। और हमारे साथी लिखते हैं कि आप कुछ पढ़ने वाली थी ना,
0: नहीं आप पढ़िए ना, क्या कह
1: लिखते
0: रही
1: हैं कि
0: हैं।
1: सत्तू और सतुई दोनों अलग अलग होते हैं। सत्तू दो तीन तरह के अनाज उसमें मिले रहते हैं, जिसमें चना मसूर मक्का जौ होता है, जिसे लोग खाते हैं। सतुई यह सिर्फ भुने चने का बनता है जो शरबत में प्रयोग होता है, यानी सत्तू और सतुई। ये बहुत अच्छी जानकारी दी है जो हमें पता चल गया कि हम किस
0: दोनों में
1: चीज
0: क्या फर्क
1: क्या
0: होता
1: फर्क
0: है।
1: होता है।
0: हाँ, जो मैं पढ़ने वाली थी वो ये कि एक मेरे साथी ने लिखा है, बिल्कुल मेरे मन की बात लिख दी है,
1: जी
0: कि बिहार की व्यंजन दाल पीठा सत्तू का शरबत, अब तो भूख लग गई।
1: क्या बात है। यानी
0: तो
1: आप इतने से ही निकल नहीं पाते।
0: अगली बार, आप मेरी अच्छी दोस्त है ना,
1: जी
0: तो अगली बार आप ये सत्तू और सतुई बनाकर लेकर आने वाली
1: पक्का।
0: हैं। ठीक है, तो अब सुन लेते हैं गीत।

0: जाना। तो मंजरी, कार्यक्रम सखी सहेली का वक्त पूरा हो रहा है। इस कार्यक्रम से मंदाकिनी जोशी और
1: मंजरी वर्मा लेते हैं विदा। तो सभी को मेरा
0: प्यार भरा नमस्कार।
1: सखी सहेली कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

0: सेहतनामा कार्यक्रम के सभी सुनने वालों को राजेंद्र त्रिपाठी का नमस्कार। दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। और आज के हमारे इस प्रोग्राम में हमने आमंत्रित किया है मुंबई के सुप्रसिद्ध हेमेटोलॉजिस्ट, ऑन्कोलॉजिस्ट और स्टेम सेल ट्रांसप्लांट फिजिशियन डॉक्टर आशय प्रमोद करपे को। डॉक्टर साहब, विविध भारती के स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: नमस्कार राजेंद्र जी, मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए शुक्रिया।
0: हम अपने सुनने वालों को शुरुआत में बताना जरूरी समझते हैं कि आज की हमारी चर्चा का जो विषय रहेगा वो है थैलेसीमिया, उपचार और इससे बचाव। तो शुरुआत हम ऐसे ही करते हैं। कई बार हम अस्पतालों में देखते हैं किसी दंपत्ति के साथ कोई बच्चा होता है और बहुत बीमार सा और चेहरे पे बिल्कुल नूर नहीं, जैसे खून की कमी हो, इस तरह के कोई बच्चे दिखाई देते हैं तो हम पूछते हैं क्या हो गया है, तो बोले ये थैलेसीमिया का मरीज है। तो सबसे पहले हम अपने सुनने वालों को बहुत ही संक्षेप में और सरल जानकारी के रूप में आप बताइए कि थैलेसीमिया बीमारी का इतिहास क्या है और इसके बारे में गहराई से लोग क्या समझते हैं और दरअसल ये क्या है।
1: थैलेसीमिया एक रक्त की बीमारी है जो आनुवंशिक रीतिया संक्रमित होती है आगे चल के, तो पीढ़ी दर पीढ़ी ये बीमारी चलते ही रहती है।

0: अगर हम देखेंगे तो इतिहास जो होता है, देखिए कि बहुत सारी बीमारियां पहले से हैं, पर हमें वो कभी ज्ञात हुई यह ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब ये वर्ड थैलेसीमिया कहाँ से आया? द वर्ड थैलेसीमिया में दो अलग अलग वर्ड है। थैलेस ये ग्रीक वर्ड है और एमिया एक इंग्लिश वर्ड है। तो थैलेस का मतलब होता है समंदर के आजू बाजू।
1: जी
0: तो ये बीमारी जब देखी गई, ये भूमध्य सागर जिसे मेडिटेरेनियन सी कहते हैं उसी के आजू बाजू में पाई गई, और एमिया मतलब खून की बीमारियां। तो मेडिटेरेनियन कंट्रीज जो भूमध्य सागर के आजू बाजू में कंट्रीज थी इसमें ये पाई गई। लेकिन इसके सिवा भी ये बीमारियां पाई गई थी। 1938 में डॉक्टर मुखर्जी करके एक भारतीय शास्त्रज्ञ थे, उन्होंने इस बीमारी का विवरण किया था कलकत्ता में छठे दशक में 1954 में, जब ये बीमारी पूरी तरह से जानी गई। ये बीमारी दो तरीके की होती है, एक तो होती है अल्फा थैलेसीमिया जिसमें अपने हीमोग्लोबिन का अल्फा चरण खराब होता है, या तो बीटा थैलेसीमिया जिसमें तो बीटा चरण खराब होता है। तो धीरे धीरे इस बीमारी के बारे में जैसे अपना ज्ञान बढ़ते गया और उसी हिसाब से फिर उसमें संशोधन भी चलते चला गया है। तो इस बीमारी का इतिहास ऐसा है कि जो नाम जब भी पड़ा था तो वो भूमध्य समुद्र की वजह से पड़ा था, लेकिन ये बीमारी पूरे दुनिया में पाई जाती है। अगर भारत के इतिहास के बारे में हम लोग बात करें तो भारत में कुछ कुछ जगह पर ये बीमारी बहुत कॉमनली पाई जाती है। सिंध प्रांत है और जो पंजाब प्रांत है वहाँ की जो जनता भारत में स्थलांतरित या माइग्रेट हुई थी पार्टीशन के बाद में, तो सिंधीज और पंजाबीज में ये बीमारी कॉमनली पाई जाती है। नॉर्थ रीजन में गुजरात में यही बीमारी पाई जाती है। महाराष्ट्र में, नॉर्थ कर्नाटका में, नॉर्थ ईस्ट रीजन में भी कुछ कुछ जगह पे ये बीमारी पाई जाती है। इंडिया के सबसे सदर्न मोस्ट पार्ट में ये बीमारी इतनी ज्ञात नहीं थी। लेकिन
1: अच्छा, लेकिन मध्य भारत जो रहा है उसके बारे में क्या ख्याल है?
0: देखिए कैसे होता है कि ये जो बीमारी है अपने हीमोग्लोबिन यानी शरीर में लाल रक्त कोशिकाएं हैं उससे निगड़ित होती है। तो मध्य भारत में इसने एक अलग ही रूप धारण कर लिया है। मध्य भारत में सिकल सेल नाम की एक बीमारी होती है। ये बीमारी और थैलेसीमिया जब एक साथ आते हैं तो एक सिकल थैलेसीमिया नाम की नई बीमारी जन्म लेती है। आज के दौर में जहाँ पे माइग्रेशन इज़ वेरी कॉमन, हर जगह पे सब लोग अपने काम की वजह से या किसी और वजह से माइग्रेशन करते हैं और अलग-अलग चले जाते हैं, इसलिए अभी उतना डिस्टिंक्शन नहीं रहा है इस बीमारी के बारे में।
1: डॉक्टर साहब, पूरी दुनिया और भारत में इस बीमारी को अगर हम तौलें और एक अनुपात लगाएं तो क्या पाते हैं आप, कितना प्रभावित क्षेत्र पाया जाता है?
0: देखिए पूरी भारत दुनिया का हम लोग अगर ध्यान रखते हैं तो पूरी दुनिया में करीबन हर साल 1 लाख बच्चे पैदा होते हैं जो है जो थैलेसीमिया मेजर बच्चे होते हैं, और इसमें भारत का है ऑलमोस्ट 10,000 बच्चे हर साल। तो 10,000 बच्चे जो होते हैं हर साल थैलेसीमिया मेजर यानी पूरा थैलेसीमिया से पीड़ित होते हैं। लेकिन हम लोग जो कहते हैं ना एक टिप ऑफ आइसबर्ग फिनोमिनन होता है कि जो ऊपर दिखता है उससे तो काफ़ी गुना तो नीचे होता है पानी के। क्या होता है कि जो लोग होते हैं जिनमें थैलेसीमिया आधा ही होता है जिसे हम लोग थैलेसीमिया माइनर कहते हैं, इनका जो होते हैं इनको थैलेसीमिया कैरियर भी कहते हैं, इनकी अगर संख्या देखी जाए तो पूरे भारतवर्ष में हर 25 के पीछे एक थैलेसीमिया कैरियर होगा।
1: अच्छा,
0: तो इस तरह से ये बीमारी बढ़ती जाती है। अगर हर साल 10,000 से 12,000 बच्चे पैदा होते हैं थैलेसीमिया मेजर से और हर साल ऐसे ऐड हो जाते हैं, नॉर्मल तरीका जो थैलेसीमिया का पूरी तरह से उपचार नहीं होने के कारण ये बच्चे उम्र के 15 से 20 साल में गुजर जाते हैं, तो भी हर वर्ष करीबन 1 से 1.5 लाख बच्चे थैलेसीमिया के लिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन लेते हैं इंडिया में।
1: देखा जाए तो ऊपरी तौर पर एक अनुपात बताया आपने। हम आगे बढ़ेंगे और थैलेसीमिया बीमारी का जो स्वरूप क्या होता है, इसके लक्षण क्या होते हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। यहाँ हम चाहते हैं कि कोई संगीत की बात हो जाए, तो आप क्या सुनवाना पसंद करेंगे?
0: देखिए हिंदी संगीत तो जैसे श्रवणीय रहा है और आप जानते हैं पुराने दशक में जितने पुराने अच्छे गाने रहे, देवानंद जी उनमें से मेरे एक फेवरेट रहे हैं, तो उनका ही प्रेम पुजारी पिक्चर का फूलों के रंग से ये गाना मैं सुनना चाहूँगा।
1: भूलो

0: बहुत ही अच्छा गाना सुनवाया आपने। वैसे ये बताइए, थैलेसीमिया जो ये बीमारी है, इसका मुख्य स्वरूप क्या होता है और इसके लक्षण क्या-क्या हैं?
1: देखिए, थैलेसीमिया जो बीमारी होती है, इसके जैसे मैंने अभी थोड़े दिन पहले बताया कि हर 25 इंसानों में एक इंसान कैरियर होता है। ये आज भारत की स्थिति है। जो कैरियर होता है उसे नॉर्मल तौर पे तो कोई लक्षण नहीं पाए जाते हैं, पर अगर सही ढंग से देखा जाए तो इनका जो हीमोग्लोबिन होता है 7 से 13 के बीच में कहीं पे भी आ सकता है। इनमें थोड़ा सा सफ़ेदपन आ जाना मुंह के ऊपर, थोड़ी सी ग्रोथ में कमी होना, या तो कभी हल्का सा पीलिया दिखना या हल्की सी कमज़ोरी मालूम पड़ना, ऐसे ही लक्षण पाए जाते हैं। अन्यथा इनमें कोई लक्षण की इतना अभाव ही रहता है। दूसरा जो होता है थैलेसीमिया इंटरमीडिया, अभी ये जो होता है इसमें पूरी तरह से थैलेसीमिया तो नहीं आ जाता है। ये जो बच्चे होते हैं उनकी ग्रोथ अच्छी तरह से नहीं होती है। मुख्यतः जो मुंह के बोन्स होते हैं, हड्डियाँ होती है, वो काफ़ी बढ़ जाती है, जिससे
0: अच्छा।
1: इनका जो शरीर में, अब सर देखेंगे तो बाकी धड़ से वो अलग लगता है कि काफ़ी बड़ा दिखता है। दांत अलग अलग हो सकते हैं, मतलब दांतों में कुछ कमियाँ आ सकती है इन बच्चों में, और इनमें पीलिया भी दिखाई दे सकता है। इन बच्चों को हमेशा तो नहीं, पर बीच बीच में रक्त संक्रमण यानी ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत पड़ सकती है।
0: अच्छा।
1: सबसे डरावना इसमें जो है वो है तो थैलेसीमिया मेजर, जिसे हम लोग कहते हैं, जिसमें पूर्णतः थैलेसीमिया बीमारी आती है। यह बच्चे उनके उम्र के 3 से 6 महीने से बाहर के रक्त के संक्रमण के ऊपर निर्भर करते हैं। अगर इनको ये रक्त नहीं दिया गया तो यही जानलेवा हो सकता है कि इनके इसमें रक्त बनने की पूरी प्रणाली खराब हो गई होती है,
0: जो मेजर होता है।
1: जो थैलेसीमिया मेजर कहते हैं हम इसे। तो ये जो बच्चे होते हैं, ये बच्चे उम्र के 3 से 6 महीने में ही सफ़ेद दिखने लगते हैं। माएँ देखती है कि बच्चा खाना नहीं खा रहा है, कंटिन्यूअसली रोते रहता है, तो उसी की वजह से दिखाए जाते हैं। जब बच्चे का रक्त परीक्षण करते हैं तो हीमोग्लोबिन कम पाया जाता है, और जब आगे जाके हम लोग फर्दर टेस्ट करते हैं तो पता चलता है कि बच्चे को थैलेसीमिया मेजर है। ऐसे बच्चे जो पैदा होते हैं, अगर आप उनको ढंग से रक्त संक्रमण ना दें तो अपने शरीर में जो रक्त बनाने वाली हड्डियाँ होती है, बचपन में मेनली होती है अपनी सर की हड्डियाँ, ये बढ़ने लगती है साइज में, और वो अपने बाकी धड़ से अलग दिखने लगती है। इनका सर बड़ा होने लगता है, आंखें छोटी होती है, नाक अंदर चला जाता है, दांत खराब होने लगते हैं, तो इस तरह से अपने सर की हड्डियों पे इनका एक असर होने लगता है।
0: अच्छा, तो डॉक्टर साहब, जैसे आप बता रहे हैं कि मेजर थैलेसीमिया, और बात आपने शुरू में की थी कि माइनर भी होता है, तो क्या दो ही प्रकार के थैलेसीमिया पाए जाते हैं?
1: देखिए, अल्फा थैलेसीमिया जो होता है ये भारत में इतना पाया नहीं जाता है, ये जो दिखता है मेनली अरब रीजन में देखा जाता है।

0: अल्फा थैलेसीमिया इंडिया के पॉपुलेशन में तभी प्रॉब्लमेटिक होता है जब सिकल सेल या किसी अन्य बीमारी के साथ में वो जुड़ जाता है। अल्फा थैलेसीमिया जो होता है भारत में इतना मुख्य कारण नहीं है जितना है कि बीटा थैलेसीमिया।
1: बीटा
0: हम लोग जो आज बात कर रहे हैं मेनली वो बीटा थैलेसीमिया के बारे में है। तो वही मैं बताना चाहता हूँ कि बीटा थैलेसीमिया माइनर जो होता है, या हम लोग जिसे ट्रेट कहते हैं या कैरियर स्टेज कहते हैं, इसमें उस व्यक्ति को विशेष तकलीफ तो नहीं होती है, पर किसी ठराविक अवस्था में जैसे कि शरीर में लोहों की कमी हो गई या किसी और चीज़ की कमी हो गई तो उसका हीमोग्लोबिन धड़ाधड़ नीचे आने लगना ही लगता है। दूसरी जो व्यवस्था होती है, जो हमने बताया कि थैलेसीमिया इंटरमीडिया होता है, जिसमें थैलेसीमिया के साथ और कोई बीमारी जुड़ने के वजह से या किसी वजह से व्यक्ति को बीच बीच में ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन हमेशा तो नहीं पड़ती है। और तीसरा जो बताया मैंने, जो थैलेसीमिया मेजर जो होता है, उसमें हर महीने या कभी कभी 3 से 4 हफ्ते में ब्लड संक्रमण या ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत पड़ती है।
1: ये भी होता है कि साथ में एनीमिक होने के साथ में वो थका हुआ सा दिखता है बच्चा।
0: हाँ, मतलब वही होता है कि जो बच्चा थका हुआ सा है, पढ़ाई में ध्यान नहीं लगता है, उसकी जो बढ़त होती है वो नॉर्मल बच्चों से कंपेयर करें तो बहुत कम होती है, तो ये अलग अलग लक्षण दिखते हैं। बच्चों में पीलिया दिखता है। जो बच्चे थैलेसीमिया मेजर और थैलेसीमिया इंटरमीडिया से प्रभावित होते हैं, उनमें लीवर और प्लिया यानी स्प्लीन की साइज़ भी बढ़ जाती है। कभी कभी उसकी वजह से पेट दर्द या पेट में गांठ लगना, ऐसे भी लक्षण पाए जाते हैं।
1: जैसे आपने ये भी बताया तो यहाँ जिक्र करना होगा दोस्तों आपके लिए कि डॉक्टर साहब ने बताया था कि सर कुछ ज़्यादा बड़ा दिखाई देता है क्योंकि अनुपात में शरीर सिकड़ा हुआ होता है और पेट निकला हुआ सा दिखाई देता है।
0: आप देखेंगे ऐसे जो बच्चे होते हैं उनको ढंग से रंगत्र संक्रमण नहीं मिला होता है और ढंग से उनका उपचार नहीं चल रहा होता है, या तो इस बीमारी को ना जानने के कारण या तो किसी अलग विषय जैसे कि फैमिली गरीब हो और वो ढंग से इसका इलाज नहीं कर पा रही हो।
1: अच्छा, इसके कारण पे यदि हम जाएं मूल रूप से इसका रीज़न जो है कि भाई क्यों होता है, तो अक्सर पारंपरिक रूप से लोग ये कह देते हैं भाई इनके माँ बाप को भी बीमारी थी। तो ये सत्य है कि अनुवांशिकता, जैसे कि आपने कहा, हेरिडेटरी कैरेक्टर होता है उसमें, तो माँ को होता है या पिता को होता है या दोनों को होता है।
0: इसमें अभी देखिए ये ज़रूरी है कि जैसे हम लोग जेनेटिक्स या आनुवंशिकता जो कहते हैं, ये माँ और पिताजी दोनों से ही आती है। ये जो बीमारी है मूल रूप से आधी बीमारी पिताजी से और आधी बीमारी माँ से आती है। कैसे होता है कि बहुत बार मुझे पेरेंट्स कहते हैं, मतलब माँ पिता कहते हैं, हमारे तो पूरे खानदान में बीमारी किसी को नहीं थी और हमारे बच्चे को ऐसे आ गई। अभी ऐसे है कि जो थैलेसीमिया माइनर यानी कैरियर स्टेट होता है वो बहुत बार पता ही नहीं चलता है, तो उनमें तो ये आधी बीमारी होती है। अगर आप देखेंगे तो हम लोग बनाएंगे कि माँ के जीन्स के दो सेट है जिसमें एक बीमारी ग्रस्त है, पापा के दो जीन्स के सेट है जिसमें एक बीमारी ग्रस्त है, तो 50-50% बीमारी पापा और मम्मी दोनों में है। अब बच्चे जो पैदा होंगे उसमें, तो उसमें 25% चांस होता है कि वो थैलेसीमिया मेजर से ग्रस्त होते हैं, 50% चांस होता है कि वो थैलेसीमिया माइनर अपने माँ पिताजी से होंगे, पर अगर नॉर्मल हिस्सा दोनों साइड से आ गया तो वो नॉर्मल बच्चा भी हो सकता है।
1: अच्छा,
0: तो माँ पिताजी अगर दोनों में ये बीमारी आधी आधी है तो 25% चांस है कि बच्चे को आगे चल के थैलेसीमिया मेजर बीमारी होती है। ये बीमारी इसीलिए माँ से और पिता से दोनों साइड से ही आती है। बहुत कम बार, मतलब लाखों में एक हाथ कैसे ऐसे होगा जिसमें सिर्फ माँ को या पिताजी को ही बीमारी है, और जो माँ से या पिताजी से जो नॉर्मल जीन आ गया उसमें वो शांति रह गया और जो दो क्षतिग्रस्त जीन है वही चल गया तो बीमारी आती है। पर मुख्य रूप से माँ और पिताजी दोनों से ही आधी आधी बीमारी आके एक पूरी बीमारी तैयार होती है बच्चे में।
1: डॉक्टर साहब एक प्रश्न यहाँ पर उभरता है कि जैसे आपने बताया कि माता पिता दोनों को होती है और जीन्स में जेनेटिकली ये समावेश होता है गर्भ के दौरान। जैसे कई माँ बाप आते हैं मरीज को लेकर बच्चे के रूप में आपके सामने कि भाई हमारे बच्चे को ये ऐसा क्यों हो रहा है, तो हीमोग्लोबिन की क्या कंडीशन आप पाते हैं, कितना होना चाहिए, कैसे आपको पता चलता है कि वाकई थैलेसीमिया है?
0: क्या होता है कि जो शुरुआती जो हीमोग्लोबिन रहता है, इसे हम लोग कहते हैं हमारी भाषा में HbF, यानी जो माँ के पेट में रहते वक्त जो हीमोग्लोबिन होता है उसकी मात्रा पैदा होते वक्त काफ़ी ज़्यादा होती है और इसीलिए तकलीफ नहीं होती है। 3 से 6 महीने में जो अपने युवा अवस्था का हीमोग्लोबिन है वो धीरे धीरे तैयार होने की प्रक्रिया शुरू होने लगती है। ये प्रक्रिया जब शुरू होती है तभी हीमोग्लोबिन नीचे चले जाने लगता है, तो बच्चा सफ़ेद दिखने लगता है। जब भी हम लोग देखते हैं तो हर वक्त ये हीमोग्लोबिन जो होता है 10 से नीचे तक आ गया होता है। जब और कोई वजह नहीं दिखती है, जैसे कि ये उम्र में हीमोग्लोबिन होने के ज़्यादा कारण नहीं होते हैं अलग, अनलेस किसी को ब्लीडिंग

0: या और किसी चीज़ की तकलीफ होती हो या बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो गया हो। अगर हम लोग मैं अगर ऐसे 10 बच्चे ले लूँ तो 8 बच्चों में थैलेसीमिया यही कारण होगा, हीमोग्लोबिन कम होने का, और मेनली ये 10 से नीचे ही पाए जाते हैं।
1: अच्छा भाई, देखिए बहुत ही गहन जानकारी आपने दी है, क्योंकि हीमोग्लोबिन जो है ऐसा घटक है जो कि पता चलता है कि कमज़ोरी कितनी है और किस ढंग से इसका उपचार होगा। हम आगे बढ़ेंगे और वही हम आपसे गुजारिश करेंगे कि अपनी पसंद का कोई गाना सुनवा दीजिए ताकि चर्चा फिर से जारी रहे।
0: देखिए धर्मेंद्र जी जो है वो हीमैन के रूप में जाने जाते हैं, पर उनका कोई रोमांटिक भी हिस्सा मुझे पसंद है, वो है ब्लैकमेल पिक्चर का, और गाना है पल पल दिल के पास।

0: डॉक्टर साहब, वाकई आपने गीत बहुत अच्छा सुनवाया। और बीमारी की बात चल रही दोस्तों, आज के इस कार्यक्रम में चर्चा का विषय है थैलेसीमिया, उपचार और इससे बचाव। डॉक्टर साहब, यहाँ प्रश्न ये होगा कि इस बीमारी के उपचार के जो मुख्य मुख्य घटक होते हैं वो क्या हैं?
1: देखिए कैसे होता है कि एक बार ये बीमारी आ गई बच्चे में तो इसे ठीक करने के उपचार बहुत ही कम अवेलेबल है आज की तारीख में। इन बच्चों का मुख्य जो इलाज होता है वो तो रक्त संक्रमण यानी ब्लड ट्रांसफ्यूजन, क्योंकि इनमें रक्त बनने की प्रणाली अब बंद पड़ चुकी है या गलत तरीके से काम कर रही है। इसकी वजह से क्या लगता है कि इनको हर महीने रक्त संक्रमण यानी ब्लड ट्रांसफ्यूजन देना पड़ता है, और जो लाइफ लॉन्ग यानी जिंदगी भर चलते रहता है। मुख्य रूप से अगर आप देखा जाए तो रक्त एक लोह का मुख्य स्रोत होता है, रक्त में जो हम लोग हीमोग्लोबिन कहते हैं या आयन का स्रोत होता है। तो क्या हो जाता है कि जब 20 से ऊपर ब्लड यूनिट ट्रांसफ्यूज हो जाते हैं तो लोह की मात्रा शरीर में बढ़ने लगती है। तो इसीलिए रक्त संक्रमण के साथ लोह कम करने के इंजेक्शंस या टैबलेट्स इनकी ज़िंदगी का अहम हिस्सा बन जाते हैं।
0: हो
1: तो रक्त संक्रमण और आयन चिलेशन यानी

0: वह कम करने की दवाइयाँ, ये एक सबसे मुख्य उपचार पद्धति है और यही कारगर करती है। कुछ कुछ दवाइयाँ भी अवेलेबल है इस चीज़ में, पर इतनी कारगर नहीं है। बीमारी को अगर मुख्य तरीके से ठीक करा जाए तो स्टेम सेल ट्रीटमेंट यानी स्टेम सेल ट्रांसप्लांट, ये एक मुख्य ट्रीटमेंट है इसमें।
1: आपने बताया है कि उसको एक अवधि के बाद बच्चे को ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जाता है, तो वो कितनी मात्रा में होता है और कितने महीने या दिनों के अंतराल के बाद उसको होना ज़रूरी होता है?
0: ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जो हम लोग फ्रीक्वेंसी तय करते हैं वो होती है हीमोग्लोबिन की स्तर के ऊपर। यह हीमोग्लोबिन का स्तर बच्चों में हम लोग 9 से 10 के बीच में रखना पसंद करते हैं। वही वो जब बच्चा पूरा बड़ा हो जाता है 17-18 साल का, तो यही स्तर हम लोग 7 से 8 के बीच में रखना शुरुआत कर देते हैं। ट्रांसफ्यूजन की फ्रीक्वेंसी के बारे में अगर हम लोग बात करें यानी ब्लड चढ़ाना कितना ज़रूरी होता है, तो
1: कब कब?
0: शुरुआती जो होता है हर 3 से 4 हफ्ते में एक बार लगता है, पर जैसे जैसे बच्चा बड़ा हो जाता है उसका आकार मान भी बड़ा जो होता है, उसका वजन बड़ा होता है, तो पहले जो सिर्फ 1 यूनिट हर महीने में लगता था, फिर हर महीने 2-2 यूनिट लगने लगते हैं। धीरे धीरे क्या होता है, अब हम लोग बार बार जो ब्लड चढ़ाते हैं उसके वजह से ब्लड के अगेंस्ट एंटीबॉडीज यानी प्रतिजैविक तैयार हो जाते हैं ब्लड में, और जो बाहर से ब्लड दिया जाता है वो शरीर में टिकता नहीं है। इसलिए जब हम लोग दूसरे या तीसरे दशक में आते हैं इन पेशेंट्स के साथ में, तो ब्लड करीबन हर दूसरे हफ्ते में चढ़ाना पड़ना ज़रूरी हो जाता है, पर हीमोग्लोबिन का स्तर यही ब्लड चढ़ाने की मुख्य फ्रीक्वेंसी तय करता है।
1: थैलेसीमिया जो बीमारी है डॉक्टर साहब, ये पीड़ित जो इससे बच्चे होते हैं उनकी आयु क्या होती है और इसके उपचार में तकरीबन आप क्या सोचते हैं कितना खर्च आता है?
0: करीबन 5% बच्चे भी थैलेसीमिया के आइडियल तरीके से यानी जो वैज्ञानिक रूप से जो उपचार है वो नहीं ले पाते हैं। इसका तो मुख्य कारण है इसमें लगने वाला खर्च। औसतम जो खर्च होता है अगर बच्चे की उम्र 3 से 4 साल हो जाती है तो हर साल का खर्चा लगभग 1 से 1.25 लाख रुपया होता है। इसमें जो इंक्लूड होता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन, उसके लिए बार बार हॉस्पिटल जाना, उसके लिए स्पेशल ब्लड सेट्स लगते हैं हम लोग जिसको फिल्टर्स कहते हैं, उनका खर्चा होता है, और शरीर में लोहे की मात्रा ज़्यादा रही रहे इसके लिए जो इंजेक्शंस या जो दवाई देनी पड़ती है उनकी मात्रा। तो ये जो मैंने बताया है उम्र के 4 साल तक, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है बच्चे का वजन बढ़ने लगता है तो इन दवाइयों की जो मात्रा रहती है वो भी बढ़ने लगते हैं। हम लोगों ने एक अंदाजन किया था कि भारत में इन बच्चों पर कितना खर्चा हो सकता है, तो करीबन अगर ये बच्चा 20 साल तक जीता है तो उसके ऊपर तब तक 15 से 20 लाख रुपए खर्चे हो जाते हैं, और अब 50 साल तक अगर ये बच्चा जीता है तो उस पर करीबन 1 करोड़ रुपया तक का खर्चा हो सकता है। भारत में आइडियल यानी वैज्ञानिक रूप से सभी बच्चे नहीं मैनेज करने के ऊपर इन बच्चों की औसतम आयु 15 से 25 साल के बीच में होती है।
1: ये ब्लड बैंक से मुहैया करवाने की कोई व्यवस्था होती है या परिवार के किसी सदस्य को बार बार ब्लड देना होता है?
0: हर साल भारत में ही सिर्फ, तो आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हर साल में कितना ब्लड लग सकता है। और ब्लड देने की इससे भी ज़्यादा अलग कारण होते हैं, जैसे ऑपरेशन के दौरान या किसी एक्सीडेंट के दौरान या किसी अलग वजह से ब्लड देना ज़रूरी हो जाता है। तो इसीलिए क्या हो जाता है कि ब्लड की शॉर्टेज तो हमेशा होती है। जैसे जैसे इस बीमारी के बारे में जाना गया तो भारत में कई सारी शहरों में कुछ संस्थाएं बनाई गई जो इन सब बच्चों को सपोर्ट करती है। तो ऐसे अलग अलग सोसाइटीज़ है, बम्बई में KEM अस्पताल में, JJ अस्पताल में, 80 के दशक में ये संस्थाएं बन चुकी है। थैलेसीमिया इंडिया सोसाइटी भी है, दिल्ली में एम्स में है, और काफ़ी सारे शहर में जैसे कलकत्ता, चेन्नई, हर जगह पे थैलेसीमिया सोसाइटी है। तो इनका मेंबर बन के आप ब्लड के लिए उनसे मदद की अपेक्षा कर सकते हैं। बार बार तो ब्लड देना ज़रूरी नहीं होता है वैसे, पर कभी कभार किसी रिश्तेदार को ब्लड देने की ज़रूरत पड़ सकती है।
1: ये तो बहुत उम्दा बात लाई आपने। यहाँ पर हम आपसे जानना चाहेंगे इस संबंध में गीत के पहले कि कोई दवाइयाँ भी होंगी जो इस बीमारी में मदद कर सकती हैं इंजेक्शन वगैरह के अलावा?
0: एक दो दवाइयाँ इस बीमारी के लिए देखी गई थी, उन्होंने मुख्य रूप से बीमारी में कोई ज़्यादा फर्क नहीं आया। वीट ग्रास जिसे गवांकुर कहते हैं, इसका जूस पिला के कुछ कुछ लोगों ने देखा कि बच्चों में कुछ फायदा कर सकते हैं क्या, तो उन्होंने पाया कि 25% बच्चों में रक्त संक्रमण की ज़रूरत धीरे धीरे कम होने लगी, पर कुछ अन्य परीक्षण में यही वापस से ऑब्जर्वेशन नहीं देखा गया, इसलिए इसे तो रिकमेंड नहीं करते हैं। दूसरी चीज़ होती है एक हाइड्रोक्सी यूरिया करके दवा होती है, ये ओरली लेने वाली ये कैप्सूल होती है, इसे भी देखा गया है। इस बीमारी में ये दवा इस तरह से काम करती है कि जो अपना माँ के पेट में होते होने वाला जो हीमोग्लोबिन होता है जिसे हम लोग HbF कहते हैं, ये उसकी मात्रा खून में बढ़ाने की वजह से ब्लड संक्रमण या ब्लड ट्रांसफ्यूजन की फ्रीक्वेंसी कम हो सकती है, पर मोटा मोटी तौर पे कोई भी दवा बाहर से इस बीमारी को ठीक करने में लाइलाज ही रही है।
1: और यहां पर हम चाहेंगे

0: कि जो बातचीत बहुत भारी भारी सी वजनी सी लग रही है, खतरे की आगाह वाली बात कर रही है, तो माहौल को हल्का करते हैं आपकी पसंद का कोई गाना सुनकर।
1: तो रोजा फिल्म से एक जो गाना है भारत हमको जान से प्यारा है, ये मेरा एक और एक पसंदीदा सॉन्ग है जो भारत के विषय मेरा आदर हमेशा बढ़ाते रहते हैं।

आर्थिक समझ बहुत ज़रूरी हो गई है। जितने जल्दी युवा सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट को सही जानकारी को सीखेंगे, उतना ही उनका भविष्य सुरक्षित होगा। कमाई छोटी हो या बड़ी, अगर सही प्लानिंग हो तो भविष्य मजबूत बनाया जा सकता है। और याद रखिए, मेहनत से कमाया गया पैसा बहुत कीमती होता है, इसीलिए उसे सोच समझ कर इन्वेस्ट कीजिए, सुरक्षित फैसले लीजिए और अपने सपनों को मजबूत आधार दीजिए। दोस्तों, जीवन में जागरूकता बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सड़क पर सावधानी और पैसों के मामले में समझदारी, दोनों ही हमें सुरक्षित और सफल बनाते हैं। अगर हम छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें तो हम अपने जीवन को और भी बेहतर बना सकते हैं। यह हर सही निर्णय भविष्य की मजबूत नींव बनाता है। इसी उम्मीद और सकारात्मक सोच के साथ मैं सुरभि सिंह और आपसे विदा लेती हूँ। सुनते रहिए आकाशवाणी और जुड़े रहिए युवाणी के साथ। नमस्कार।

0: युवा श्रोता सुन रहे थे अपना कार्यक्रम युवावाणी। हमारा आज का यह कार्यक्रम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र की प्रस्तुति था।
1: श्रोताओं, हम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5:30 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है फिल्म संगीत। इस कार्यक्रम में सुनिए पहला गीत फिल्म मायने में खान से।

कार्यक्रम फिल्म संगीत आप सुन रहे हैं श्रोताओं, ये आकाशवाणी का जबलपुर केंद्र है। अगला गीत हम आपके लिए लेकर आए हैं फिल्म नक्शा से। सोनू निगम, श्रेया घोषाल की इस गीत में आवाजें हैं, प्रीतम का संगीत है, समीर के बोल।

ये आकाशवाणी का जबलपुर केंद्र है, श्रोताओं आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। कार्यक्रम का अगला गीत है फिल्म नमस्ते लंदन से। मंच म्यूजिक की आवाज हिमेश रेशमिया का संगीत और जावेद अख्तर के बोल।

रफ्तार रफ्तार कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए आपको सुना रहे हैं अगला गीत श्रेया घोषाल की आवाज में। फिल्म का नाम ना घर के ना घाट के, ललित पंडित का इसमें संगीत है, मुदस्सर अजीज के बोल।

श्रोताओं, इसी गीत के साथ फिल्म संगीत अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, स्टूडियो की घड़ी में 5:55 होने को है। लीजिए, अब प्रस्तुत है आकाशवाणी जबलपुर केंद्र से आज प्रसारित किए जाने वाले शेष कार्यक्रमों की रूपरेखा।

श्रोताओं, शाम 6 बजे सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। लोक संगीत में आज सुनिए संजीव सिन्हा द्वारा गाए लोकगीत शाम 6:30 बजे। किसान भाई बहनों का अपना कार्यक्रम कृषि जगत, इसका प्रसारण सुनिए शाम 7:21 पर।

रात 8:15 श्रोताओं आप सुन सकेंगे फिल्म संगीत, रात 9 बजे समय होगा न्यूज एट 9 का। श्रोताओं रात 10 बजे शास्त्रीय संगीत में आज सुनिए उस्ताद लतीफ खां के सारंगी पर बजाया गया राग ललित, और रात 10:30 बजे कार्यक्रम मन भावन में सुनिए आपके द्वारा भेजे गए पत्रों पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीत। श्रोताओं हम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से बोल रहे हैं, अभी आप सुन रहे थे हमारे केंद्र से आज प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। अब से कुछ ही देर में सुनिए समाचार जिसे हम भोपाल केंद्र से प्रसारित करेंगे।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में सोमनाथ अमृत महोत्सव को संबोधित करते हुए कहा कि सोमनाथ मंदिर अटूट आस्था, दिव्यता और देश की शाश्वत

आत्मा का प्रतीक है। श्री मोदी ने कहा कि सोमनाथ लोगों को ये याद दिलाता है कि कोई भी राष्ट्र तभी लंबे समय तक मजबूती के साथ खड़ा रह सकता है जब वो अपनी जड़ों से जुड़ा रहे। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री मोदी ने कहा कि प्रौद्योगिकी आत्मनिर्भर राष्ट्र के निर्माण, नवाचार को गति देने, अवसरों का विस्तार करने और देश के सभी क्षेत्रों में विकास में योगदान देने का एक प्रमुख आधार बन गई है। केंद्र सरकार ने विकसित भारत जी राम जी गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम 2025 के कार्यान्वयन की अधिसूचना जारी कर दी है। यह अधिनियम इस वर्ष 1 जुलाई से देश भर में लागू हो जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज शिवपुर जिले के कूनो नेशनल पार्क में 2 मादा चीतों को खुले जंगल में विमुक्त किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश चीता स्टेट के रूप में तेजी से विकसित हो रहा है और देश के चीता पुनर्स्थापना प्रोजेक्ट को नई सफलता मिल रही है। मौसम विभाग ने बैतूल, छिंदवाड़ा, पाडुना, सिवनी, बालाघाट, मंडला, डिंडौरी और अनूपपुर जिलों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने के साथ बारिश की संभावना जताई है। और आईपीएल क्रिकेट में आज धर्मशाला में शाम 7:30 बजे से पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच मुकाबला होगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

0: संबंध
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार। उमंग कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत है।
1: और अजीत का भी नमस्कार और जोहार। अब प्रस्तुत है हमेशा की तरह एक सुंदर विचार जो हमें भेजा है कस्बा बराड़ा जिला अम्बाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका, नूर, नमन, सिमरत, गुरकिरत राहुल और गुरशब्द सिंह जी ने। लिखते हैं,
2: जिंदगी जीने के लिए अनेक तरीके हो सकते हैं, मगर सर्वश्रेष्ठ तरीका वही है जिससे स्वयं को सकारात्मक और रचनात्मक संतुष्टि मिले और दूसरे को उससे कोई नई दिशा।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका इतने सुंदर विचार के लिए। जी हाँ श्रोताओ, जो काम करना हमें अच्छा लगे वो हमें जरूर करना चाहिए। तो श्रोताओ, आइए अब सुनते हैं उमंग कार्यक्रम में संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश।
2: ग्राम टेहका बजरंग चौक वार्ड नंबर 2 छत्तीसगढ़ से लकी ऋषि नवरंग।
1: और खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा जी ने लिखा है। सर अजीत जी और मैडम विमलेश जी, सप्रेम नमस्ते जी।
2: नमस्ते जी।
1: अगला संदेश हमें मिला है स्वार रोड मुरसेना से गुलफशां इदरीसी, जीनत अमान इदरीसी, नाजिया शाजिया, भाई मोहम्मद नादिर, मोहम्मद साजिद, छोटू नाहिद और पापा हबीब अहमद इदरीसी जी।
2: प्रोग्राम पेश करने वालों को हमारी ओर से आदर और सम्मान। सर और मैम, हमें उमंग प्रोग्राम बहुत ही अच्छा लगता है। इस प्रोग्राम से हमें बहुत सारी नई नई जानकारियाँ मिलती हैं।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी श्रोताओं का संदेश भेजने के लिए। आपसे निवेदन है इसी तरह से संपर्क बनाए रखिए, संदेश भेजते रहिए। और हाँ, मात्र सुविचार भेजकर और प्रश्नों के उत्तर भेजकर ही संतुष्ट न हो जाइए, हमारे कार्यक्रमों पर प्रतिक्रिया भी जरूर दीजिए। तो अब बारी है पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तरों की। हमारा पहला प्रश्न था, दक्षिण भारत में भी बहुत से प्राचीन गुरुकुल हैं, उनमें से कुछ प्रसिद्ध गुरुकुलों के नाम बताइए।
2: इसका उत्तर है साथियों, श्रृंगेरी शारदा पीठम और कांची कामाकोटी पीठम मुख्य रूप से दक्षिण भारत के प्रसिद्ध गुरुकुल हैं।
1: और अब सुनिए हमारा दूसरा प्रश्न। हमारा दूसरा प्रश्न था, पृथ्वी के सबसे छोटे महासागर का नाम बताइए।
2: श्रोताओं, इसका सही उत्तर है, पृथ्वी के सबसे छोटे महासागर का नाम है आर्कटिक महासागर। क्षेत्रफल की दृष्टि से ये सबसे छोटा महासागर है।
1: हमारा तीसरा प्रश्न था, समुद्र के पानी में नमक किन किन स्रोतों से आता है।
2: इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों, समुद्र के पानी में नमक लाने का सबसे बड़ा स्रोत है नदियाँ, जो चट्टानों, मिट्टियों, पर्वतों से खनिज के घोल के साथ साथ नमक को भी ले आती हैं, जो खनिजों के साथ ही मिला होता है।
1: और अब हमारा अगला प्रश्न सुनिए, जो हमने पूछा था, समुद्रों को प्रदूषित होने से बचाने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं।
2: इसका उत्तर है श्रोताओं, समुद्रों को प्रदूषित होने से बचाने का सबसे पहला उपाय है नदियों को प्रदूषित होने से बचाना, क्योंकि अधिकांश नदियां समुद्रों में ही गिरती हैं और अपने साथ प्रदूषित कूड़ा कचरा ले आती हैं। दूसरा उपाय है

0: हम समुद्रों में कचरा खासकर प्लास्टिक न फेंकें, इससे भी समुद्र प्रदूषित होता है।
1: और हमारा अंतिम प्रश्न था, समुद्र के सबसे गहरे स्थान का नाम बताइए और ये भी बताइए कि ये कहाँ पर है।
0: जी हाँ, इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों। समुद्र के सबसे गहरे स्थान का नाम है चैलेंजर डीप, जो प्रशांत महासागर के मारियाना ट्रेंच में फिलीपींस के पास स्थित है।
1: तो श्रोता मित्रों, ये थे हमारे पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। यदि आपने हमारी प्रश्नोत्तरी में भाग लिया तो आपका आभार,
0: और यदि नहीं लिया तो हम आपको प्रोत्साहित करेंगे कि आप न सिर्फ भाग लें लेकिन दूसरों को भी, विशेषकर विद्यार्थियों को भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करें।
1: तो आइए अब सुनते हैं आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है, आकार में समुद्र के सबसे बड़े जीव का नाम बताइए। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: आकार में समुद्र के सबसे बड़े जीव का नाम बताइए
1: और भेज दीजिए अपना उत्तर 8800440559 पर, जो हमारा IVRS नंबर है। और साथ ही साथ आप हमारे ईमेल के पते पर भी अपना संदेश भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in।
0: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
1: तो अब बारी है श्रोताओं आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। आइए सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम, जिसका शीर्षक है
0: माई बाईसाइकिल। ये कार्यक्रम कक्षा 2 की अंग्रेजी की पाठ्य पुस्तक की कविता का संगीत रूपांतर है। कार्यक्रम के द्वारा बच्चों को सड़क पर सावधानी से चलने की सलाह दी गई है, और जब वे सड़क पार करें तो पहले ध्यान से आसपास देखें।
2: हेलो चिल्ड्रन, हाउ आर यू ऑल?
3: वी आर फाइन सर।
2: आर योर पेरेंट्स, सिबलिंग्स एंड ग्रैंडपेरेंट्स ऑल वेल?
3: यस सर।
2: वेरी गुड। ओके किड्स, नाउ टेल मी, हैव यू सीन a bicycle?
3: Yes sir, we have seen.
4: I have seen sir.
5: I like bicycle sir.
6: I love it.
2: That's very good. And children, bicycle can also be pronounced as bicycle. Okay, now tell me how it looks like.
7: It has two wheels.
8: My cycle is pink
9: and mine is blue.
10: My cycle has a bell.
2: Now tell me, have you ever ridden a bicycle?
3: Yes, sir!
2: How does it feel to ride a bicycle? Feels great, isn't it?
3: Yes, sir!
2: So, let's listen to a short, lovely poem on bicycle today.
3: Trin, trin, trin!
2: Do it again, please.
3: Trin, trin, trin!
2: I have a red bicycle.
3: I have a red bicycle.
2: I pedal and I ride.
3: I pedal and ride.
2: Trin, trin, trin goes the bell.
3: Trin, trin, trin goes the bell.
2: Makes my friends move aside.
3: Makes my friends move aside.
2: The seat is blue in color.
3: The seat is blue in color.
2: The tires and pedals are black.
3: The tires and pedals are black.
2: Sometimes fast. Sometimes slow. But my bicycle is always on track. To keep my bicycle moving. All I need is some air. I put on my little helmet. And I go happily everywhere. Well, children, you have now heard this poem and recited with me. How did you find it? Isn't it lovely?
3: Yes, sir. It's lovely.
2: So now, let's listen to a beautiful song on this poem, which is being sung by a lovely little girl, just like you.
11: Just like us.
2: Yes. And you can also hum along with this song while listening to it. Okay?
3: Yes, sir.
2: So here comes the song on bicycle.

0: Children, you have listened to the song just now. Did you like it?
1: Yes, sir. We liked it.
0: Very good. So remember, always, whenever we ride a bicycle, we have to be careful about our safety and also the safety of others.
2: अभी आपने सुना ये खूबसूरत कार्यक्रम माई बाइसाइकिल। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम
3: सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल।
4: साथियों, भारत भूमि ने एक से बढ़कर एक वीरों को जन्म दिया है जिन पर देश को नाज है। आइए आज याद करते हैं भारतीय सेना के एक ऐसे शहीद जांबाज की कुर्बानी जिसको अपनी अद्वितीय बहादुरी के कारण भारत का सर्वोच्च शौर्य पुरस्कार परमवीर चक्र मिला। भारत मां का ये सपूत था सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल, जो जिया तो सिर्फ 20 साल पर भारत की जनता के दिलों में उसकी यादों का दिया जलता रहेगा सालों साल। अरुण का जन्म 14 अक्टूबर 1950 को पूना में हुआ था। वे एक ऐसे परिवार से थे जिसका एक लंबा सैन्य इतिहास रहा है। अरुण का बाल्यकाल फौजी माहौल में बीता। अरुण जब 8 साल के थे तो वो सैनिकों के साथ खेलते, उनसे युद्ध की कहानियां सुनते और उन्हीं के साथ लंगर में जाकर खाना खाते। उनका जवानों के प्रति प्यार और फौज के प्रति रुझान देखकर साफ साफ पता चलता था कि अरुण ने भी फौज में भर्ती होने का मन बना लिया है। अरुण की प्रारंभिक शिक्षा उन विभिन्न स्थानों पर हुई जहां उनके पिता तैनात थे, पर अरुण के जीवन में एक निर्णायक अवसर वो भी था जब उसने सन 1962 में प्रसिद्ध सेंट लॉरेंस स्कूल सनावर में दाखिला लिया। अरुण की शिक्षा के अंतिम 5 वर्ष वहीं बीते। सनावर में बिताए उन 5 सालों में जैसे अरुण का व्यक्तित्व निखर सा गया। अपने स्कूल के बैंड में वे क्लैरिनेट बजाया करते थे। अरुण ने इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में दाखिला लिया, जहां से उन्होंने 23 जून 1971 को अपना पाठ्यक्रम पूरा किया। जून 1971 में उन्हें पूना हॉर्स रेजिमेंट में नियुक्ति मिली। रेजिमेंट की परंपरा के अनुसार किसी भी युवा अधिकारी को सारे काम करने पड़ते थे, जैसे ड्राइवर, गनर, रेडियो ऑपरेटर से लेकर टुकड़ी तक का नेतृत्व। अरुण को जो भी काम मिलता वो उसे पूरी लगन के साथ करते। जब उन्हें टैंक चलाने का काम मिला तो उन्होंने उसकी देखरेख, सफाई करने, मरम्मत करने जैसे सारे काम सीखे और किए।
5: मेरा रंग दे बसंती चोला मेरा।
6: साहब, आप क्यों परेशान होते हो? हम कर लेंगे सफाई टैंक की।
5: अरे नहीं नहीं नाथू सिंह, अगर मैं टैंक चलाता हूँ तो उसकी देखरेख की जिम्मेदारी भी मेरी ही है।
6: वो तो ठीक है साहब,
5: और अगर मैं इसकी देखरेख नहीं कर सकता तो इस पर बैठने का भी कोई हक मुझे नहीं है।
6: वो तो ठीक है साहब, लेकिन
5: देखो नाथू सिंह, हम सब सैनिक हैं और हमारी पूना हॉर्स रेजिमेंट की परंपरा के अनुसार एक सच्चा सैनिक वही है जो किसी भी काम को छोटा ना समझता हो और हर काम को पूरी निष्ठा, ईमानदारी और लगन से करता हो।
6: बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है साहब, लेकिन
5: अरे लेकिन लेकिन कुछ नहीं, मुझे टैंक साफ करने दो।
4: अरुण सबके साथ बड़ी आसानी से घुल मिल जाते, चाहे वो अफसर हो या जवान। देर देर तक बैठकर दोस्तों के साथ गपशप करना उन्हें बेहद पसंद था, पर इसके साथ साथ वो कठिन से कठिन परिस्थितियों से जूझने को भी तैयार रहते। हारना और डरकर पीछे मुड़ना उन्होंने कभी नहीं सीखा, और इसी का परिचय दिया उन्होंने 1971 में हुए भारत पाकिस्तान युद्ध के समय।
7: माँ।
8: अरुण, बेटा तुम पहली बार युद्ध में जा रहे हो, कैसा लग रहा है?
7: मुझे काफी गर्व महसूस हो रहा है माँ। फौज में भर्ती होने के 6 महीने के अंदर ही मुझे अपने देश की सेवा का मौका मिल गया।
8: हाँ।
7: अब मौका मिलेगा मुझे कुछ कर दिखाने का।
8: बेटा, एक बात याद रखना, तुम्हारे पूरे परिवार का एक शानदार सैन्य इतिहास रहा है।
7: जी।
8: ये चमचमाते हुए मेडल ये बताते हैं कि भारतीय सेना में तुम्हारे परिवार का कितना योगदान रहा है।
7: जानता हूं मां।
8: जाओ बेटा, इस मर्यादा को बनाए रखना और ऐसे लड़ना कि दुश्मन के गलियारों में भी तुम्हारी बहादुरी की चर्चा हो।
7: जी मां, आशीर्वाद दीजिए।
8: जाओ बेटा।
4: और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। दिन 16 दिसंबर 1971, स्थान बसंतर नदी का किनारा। दोनों सेनाओं में जम्मू कश्मीर के सामने वाले मैदानी इलाके शकरगढ़ में घमासान युद्ध चल रहा था।

0: जब सेकंड लेफ्टिनेंट खेत्रपाल और उनके साथियों ने सुना कि हमारी फौज पर दुश्मन के टैंकों ने जवाबी हमला कर दिया है, तो वो अपने टैंक के साथ पूरे जोश के साथ सैनिकों की मदद के लिए आगे बढ़े। अभी वो आगे बढ़ ही रहे थे कि उनके टैंकों पर भी दुश्मन ने गोले बरसाने शुरू कर दिए। टैंकों का आक्रमण होते ही अरुण ने बड़ी फुर्ती से अपने टैंक का मुंह दुश्मन की ओर मोड़कर उन पर जबरदस्त हमला कर दिया। दुश्मन अरुण के इस घातक हमले को झेल नहीं पाया और पीछे हटने लगा। सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण ने अपने टैंक की रफ्तार तेज कर उनका पीछा करना शुरू किया और दुश्मन के एक टैंक को नष्ट कर दिया। तभी पीछे से कमांडर का रेडियो पर आदेश आया,
1: सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण पीछे लौटो और स्क्वाड्रन की पोजीशन से आ मिलो, अब हम एकजुट होकर फिर से हमला करेंगे।
2: यस सर।
0: आदेश सुनकर अभी वे लौट ही रहे थे कि तभी दुश्मन के टैंकों की पूरी स्क्वाड्रन ने उन पर धावा बोल दिया। सेकंड लेफ्टिनेंट खेत्रपाल ने उनका सामना पूरी बहादुरी से किया। अभी सेकंड लेफ्टिनेंट खेत्रपाल दुश्मनों से जूझ ही रहे थे कि दुश्मन का एक गोला उनके टैंक पर आ गिरा और टैंक में आग लग गई, जिससे वे बुरी तरह घायल हो गए। पीछे से फिर आदेश आया,
1: अरुण तुम्हारे टैंक में आग लगी है, उसे छोड़ो और पीछे आओ।
3: सर मैं अपना टैंक नहीं छोड़ूंगा, अभी मेरी गन काम कर रही है और दुश्मनों को ठिकाने लगाकर ही दम लूंगा।
0: युद्ध के इस महत्वपूर्ण मोर्चे पर अब उस क्षेत्र में केवल सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण ही अपने टैंक के साथ बचे थे। इसके बाद टैंकों का ऐसा भयानक युद्ध हुआ जो युगों युगों तक याद रखा जाएगा।
4: सर सर ये क्या, ये तो टैंकों की पूरी स्क्वाड्रन ही हमारी ओर बढ़ती चली आ रही है साहब।
3: इन्हें रोकना ही पड़ेगा। प्रयाग सिंह टैंक की रफ्तार तेज करो।
5: यस सर।
3: नाथ सिंह निशाना साधो।
4: यस सर। दाहिनी ओर का टैंक बिल्कुल हमारे टारगेट पर है सर।
3: फायर।
4: सर
3: ये तो क्या, अब दूसरों को देखता हूं। टर्न द गन टू द लेफ्ट।
5: जी।
3: फायर।
4: सर सर वो आखिरी वाला टैंक तो वापस मुड़ रहा है सर।
3: हाँ लगता है आक्रमण करेगा, निशाना साधो।
4: ठीक है सर।
0: दो टैंक आमने सामने खड़े थे, दोनों ने एक साथ एक दूसरे पर गोले दागे। और उसी विस्फोट में अरुण ने वीर गति पाई। हालांकि सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल का देहांत हो गया, लेकिन उनकी बहादुरी की वजह से वो दिन भारत का रहा। दुश्मन का एक भी टैंक भारतीय कब्जे वाले इलाके में घुस न सका। हमारी सेना ने उस दिन दुश्मन के 10 टैंक नष्ट किए, जिनमें 4 टैंक अकेले अरुण ने नष्ट किए थे।

इस बहादुरी भरे कारनामे के लिए अरुण को मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।

0: साथियों, खेत्रपाल परिवार के लिए कहानी यहीं पर खत्म नहीं हुई। कुछ सालों बाद एक विचित्र घटना घटी, जिसके विषय में हमने उनके पिता ब्रिगेडियर मदनलाल खेत्रपाल से चर्चा की और उन्होंने जो कुछ भी बताया हम उसे आपके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं।
1: कुछ सालों बाद मुझे संदेशा मिला कि पाकिस्तान का एक ब्रिगेडियर मुझसे मिलना चाहता है। क्योंकि मैं उनके नाम से परिचित नहीं था, इसलिए मिलने की कोशिश भी नहीं की। अरुण की यादों के सहारे समय बीतता गया और 2001 की बात है, मेरा मन हुआ जाकर अपना जन्म स्थान सरगोधा देखाऊं, जो पाकिस्तान में है, और मैं रवाना हो गया। और देखिए कैसा संयोग था कि मेरी मुलाकात उसी पाकिस्तानी ब्रिगेडियर से हुई। उन्होंने मेरी मेजबानी का दायित्व संभाला और मुझे मेरे पैतृक गांव की यादगार यात्रा कराई। मैं उनके घर करीब 3 दिन ठहरा। ज्यों-ज्यों मेरा लौटने का समय नजदीक आता गया, त्यों-त्यों हमारी मित्रता गहरी होती गई। पर समय समय पर ऐसा लगता था कि कुछ बात अभी बाकी है, और वो क्या थी मैं समझ नहीं पा रहा था। बात करते करते बीच में रुकना, उनके परिवार के लोगों की आंखों में करुणा, विदाई के एक दिन पहले हम सब ने एक साथ भोजन किया। सोने का समय हो चला था, अभी हम सोने जा ही रहे थे कि ब्रिगेडियर ने कहा, सर मैं वर्षों से आपसे कुछ कहना चाहता हूं पर कैसे कहूं ये समझ नहीं आ रहा। ये बात आपके बेटे अरुण के बारे में है। मैंने उनसे पूछा कि तुम अरुण के बारे में जानते हो? उन्होंने कहा, जी बहुत अच्छी तरह से। जिस बहादुरी की वजह से उसकी घर घर में चर्चा होती है वो नजारा मैंने अपनी आंखों से देखा है। याद आता है वो दिन जब शकरगढ़ की उस युद्धभूमि पर 2 टैंक आमने सामने खड़े थे, जिसमें से एक टैंक में था आपका बेटा अरुण और दूसरे में और कोई नहीं, मैं ही था। हम दोनों ने एक साथ एक दूसरे पर गोले दागे, पर नियति को शायद यही मंजूर था कि मैं जिंदा हूं और अरुण शहीद हो गया। मैंने जो किया वो मेरा काम था, पर सिपाही होने के साथ साथ मैं एक इंसान भी हूं, और जब मुझे पता चला कि उस समय अरुण सिर्फ 21 साल का था तो उस घटना ने मुझे बड़ी बुरी तरह से झकझोर दिया। जिस बहादुरी से आपके बेटे ने अपनी मातृभूमि की रक्षा की उसके लिए मैं

मैं उसे सलाम करता हूं। मेरे लिए ऐसे व्यक्ति का सामना करना

0: यही पंक्तियां आई,
1: हिंद के सैनिक तुझे प्रणाम, सारी दुनिया में तेरा नाम,
0: दुश्मन के गलियारे में भी होती है तेरी चर्चा आम। सलाम।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल। श्रोताओं, आशा है कि आपको हमारे कार्यक्रम जरूर पसंद आए होंगे, तो फिर देर कैसी, भेज डालिए अपना संदेश। अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है, तो अपने मित्र अजीत
3: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
2: नमस्कार।
4: उमंग उमंग उमंग उमंग।
5: हम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। शाम के 6:30 बज चुके हैं। श्रोताओं, लीजिए प्रस्तुत है लोक संगीत। इस कार्यक्रम में सबसे पहले सुनिए संजीव सिन्हा के गाए ये लोकगीत।

0: श्रोताओं, हम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। अभी आप सुन रहे थे लोक संगीत। श्रोताओं, कुछ ही देर में आप सुनेंगे क्षेत्रीय समाचार एकांश हमारे भोपाल केंद्र से।
1: विज्ञान तकनीक प्रौद्योगिकी का उत्सव राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। आलेख वीणा सबलोक पाठक, वाचन स्वर राणा शाहिद।

देश भर में 11 मई को मनाया जाता है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। यह होता है प्रौद्योगिकी, तकनीक और विज्ञान के उत्सव का दिन। देश को ताकतवर बनाने में टेक्नोलॉजी का बहुत योगदान रहा है। भारत ने स्वतंत्रता के बाद विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में निरंतर प्रगति की है। सीमित संसाधनों के बावजूद भारतीय वैज्ञानिकों और इंजीनियरों ने अपने ज्ञान, परिश्रम और संकल्प के बल पर विश्व स्तर पर भारत की पहचान स्थापित की है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस का संबंध भारत की ऐतिहासिक उपलब्धि से जुड़ा हुआ है। इतिहास में यह तारीख इसलिए अहम है क्योंकि इसी दिन भारत ने 1998 में राजस्थान के पोखरण में दूसरी बार सफल परमाणु परीक्षण किया था। इस ऑपरेशन का नेतृत्व डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने किया था। इसे ऑपरेशन शक्ति या पोखरण 2 कहा जाता है। इस उपलब्धि को हमेशा याद रखने के लिए ही राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाने की शुरुआत हुई थी। उस समय देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। उन्होंने ही इस दिवस को मनाने और इसको प्रौद्योगिकी दिवस नाम दिया था। 2 दिन बाद देश में 2 और परमाणु हथियारों का परीक्षण हुआ। इस परीक्षण के साथ ही भारत दुनिया के उन 6 देशों में शामिल हो गया जिनके पास परमाणु शक्ति है। इसके अलावा कई और अहम तकनीकी क्रांति इसी दिन संभव हुई थी, जैसे भारत के विमान हंस ने 1998 में इसी दिन उड़ान भरी थी। हंस 3 को नेशनल एरोस्पेस लैबोरेटरी ने बनाया था। वह 2 सीटों वाला हल्का विमान था। 11 मई 1998 को ही रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने त्रिशूल मिसाइल का आखिरी परीक्षण किया था। फिर उस मिसाइल को भारतीय वायुसेना और भारतीय थल सेना में शामिल किया गया था। मानव जीवन का शायद ही ऐसा कोई क्षेत्र होगा जो विज्ञान और तकनीक से ना जुड़ा हो। संचार, परिवहन, चिकित्सा, शिक्षा, कृषि, उद्योग और रक्षा जैसे लगभग सभी क्षेत्रों में तकनीक ने क्रांतिकारी परिवर्तन किए हैं। इंटरनेट और मोबाइल तकनीक ने पूरी दुनिया को जोड़ दिया है। ऑनलाइन बैंकिंग, डिजिटल भुगतान, वीडियो कॉल, ई गवर्नेंस और ई कॉमर्स जैसी सुविधाओं ने जीवन शैली को पूरी तरह बदल दिया है। कोविड महामारी के दौरान तकनीक की उपयोगिता और अधिक स्पष्ट रूप से सामने आई। ऑनलाइन शिक्षा, वर्क फ्रॉम होम, टेलीमेडिसिन और डिजिटल सेवाओं ने कठिन समय में लोगों की सहायता की। चंद्रयान 3 मिशन की सफलता भारत की तकनीकी क्षमता का उत्कृष्ट उदाहरण है। भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला विश्व का पहला देश बना। इतना ही नहीं, स्वदेशी मिसाइलें, आधुनिक रडार प्रणाली, लड़ाकू विमान, युद्धपोत और ड्रोन तकनीक देश की सुरक्षा को मजबूत बना रहे हैं। भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया डिजिटल इंडिया अभियान देश में तकनीकी क्रांति का बड़ा माध्यम बना है। आज लोग घर बैठे आधार, बैंकिंग, राशन, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी सेवाओं का लाभ उठा रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट और डिजिटल सेवाओं के विस्तार से गाँव भी तकनीकी रूप से सशक्त हो रहे हैं। भारत आज कृत्रिम बुद्धिमत्ता, AI, मशीन लर्निंग, साइबर सुरक्षा, ड्रोन तकनीक और सेमीकंडक्टर निर्माण जैसे क्षेत्रों में तेजी से आगे बढ़ रहा है। आज किसान मोबाइल ऐप और डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से मौसम की जानकारी, बाजार भाव और कृषि सलाह आसानी से प्राप्त कर रहे हैं। आज भारतीय युवा स्टार्टअप सॉफ्टवेयर विकास, रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साइबर तकनीक जैसे क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य कर रहे हैं। जहाँ तकनीक ने मानव जीवन को आसान बनाया है, वहीं कई चुनौतियां भी सामने आई हैं। साइबर अपराध, डेटा चोरी, फेक न्यूज, तकनीकी बेरोजगारी और पर्यावरण प्रदूषण जैसी समस्याएं चिंता का विषय हैं। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस हमें यह संदेश देता है कि विज्ञान और तकनीक किसी भी राष्ट्र की प्रगति की सबसे बड़ी शक्ति है। भारत के वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और युवाओं की प्रतिभा ही देश को भविष्य में तकनीकी महाशक्ति बनाएंगी।

0: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम प्रादेशिक समाचार दर्शन। मैं हूं अभिषेक कटियार। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं कि इस कार्यक्रम में हम लेकर आते हैं प्रदेश के विभिन्न जिलों की समसामयिक गतिविधियों पर आधारित अपनी विशेष रिपोर्ट। तो आइए शुरुआत करते हैं प्रादेशिक समाचार दर्शन की, जिसकी पहली रिपोर्ट है ग्वालियर जिले से, जहां जनगणना के तहत चल रहे प्रथम चरण में मकान सूचीकरण और मकान गणना के काम सहित 34 बिंदुओं पर जानकारी संकलित की जा रही है। पेश है ग्वालियर से हमारे संवाददाता नवीन श्रीवास्तव की ये रिपोर्ट।
1: जनगणना के तहत चल रहे प्रथम चरण में मकान सूचीकरण एवं मकान गणना के काम सहित 34 बिंदुओं में जानकारी संकलित की जा रही है। ग्वालियर जिले में भी जनगणना कार्य निदेशालय द्वारा निर्धारित जनगणना कार्यक्रम के तहत जनगणना का प्रथम चरण कार्य जारी है। कलेक्टर एवं प्रमुख जनगणना अधिकारी श्रीमती रुचिका चौहान ने हाल ही में शहर में चल रहे जनगणना कार्य का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने न्यू दर्पण कॉलोनी क्षेत्र में प्रगणकों द्वारा की जा रही जनगणना की वस्तु स्थिति जानी। साथ ही प्रगणक श्रीमती नीलम राजपूत के साथ न्यू दर्पण कॉलोनी पहुंचकर एक घर की ऑनलाइन गणना कराई। इस अवसर पर SDM अतुल सिंह भी उनके साथ मौजूद थे। कलेक्टर एवं प्रमुख जनगणना अधिकारी श्रीमती रुचिका चौहान ने न्यू दर्पण कॉलोनी क्षेत्र की प्रगणक श्रीमती नीलम राजपूत व ब्रजेश द्वारा जनगणना के लिए बनाए गए नजरी नक्शा देखे। साथ ही इस नक्शे के आधार पर अब तक की गई मकानों की गणना की जानकारी ली। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर एवं प्रमुख जनगणना अधिकारी श्रीमती रुचिका चौहान ने आवश्यक दिशा निर्देश दिए। गौरतलब है कि गत 1 मई से शुरू हुआ जनगणना का प्रथम चरण 30 मई तक चलेगा। प्रथम चरण में मकान सूचीकरण एवं मकान गणना का कार्य किया जा रहा है। प्रगणकों द्वारा घर घर पहुंचकर मोबाइल ऐप पर निर्धारित प्रपत्र में जनगणना संबंधी 34 बिंदुओं में जानकारी भरी जा रही है। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए ग्वालियर से नवीन श्रीवास्तव।
0: प्रादेशिक समाचार दर्शन की दूसरी खबर है गुना जिले से, जहां पिछड़ा वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर प्रतिभावान युवक युवतियों को लाभान्वित करने के उद्देश्य से शौर्य संकल्प प्रशिक्षण योजना लागू की गई है। इस योजना के तहत सैन्य बल एवं अन्य समकक्ष सुरक्षा बलों, पुलिस होमगार्ड एवं निजी सुरक्षा एजेंसियों में भर्ती के लिए तैयार करने का प्रशिक्षण दिया जाएगा। अधिक जानकारी दे रहे हैं गुना से हमारे संवाददाता रोहित गोस्वामी।
2: शौर्य संकल्प प्रशिक्षण योजना के तहत गुना जिले के पिछड़ा वर्ग के युवाओं को पुलिस, आर्मी सहित सशस्त्र बल की निशुल्क ट्रेनिंग दी जाएगी। इस संबंध में निरीक्षक पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक विभाग गुना राकेश राठौर ने जानकारी देते हुए आकाशवाणी को बताया।
3: अभी अन्य पिछड़ा वर्ग के युवक युवतियों के लिए मध्य प्रदेश शासन ने बहुत शानदार योजना प्रोवाइड की है। ये योजना अन्य पिछड़ा वर्ग के युवक युवतियों के लिए है। ये एक प्रकार से अवसर उपलब्ध कराया है अन्य पिछड़ा वर्ग की तरफ से, जिसमें 100 युवक और 100 युवतियों को ट्रेनिंग करवाई जाना है, जिसमें भोजन की व्यवस्था, रहने खाने और सभी प्रकार की व्यवस्था उपलब्ध करवाई जा रही है। साथ में इसमें 4 घंटे की कोचिंग, 3 घंटे का फिजिकल ट्रेनिंग भी उपलब्ध करवाई जा रही है। इसमें अभी आमंत्रित किए जा रहे हैं। ये प्रशिक्षण प्रोग्राम 15 मई 2026 को प्रारंभ होने जा रहा है। ये एक प्रकार से बहुत शानदार अवसर है उन युवा और युवतियों के लिए जो पुलिस, अग्निवीर भर्ती, SSC, GD, CRPF और अन्य सैन्य बलों की तैयारी कर रहे हैं। उन युवाओं के लिए शानदार अवसर है। मेरा सभी अन्य पिछड़ा वर्ग के युवक युवतियों से निवेदन है कि इस

0: योजना में आप आएं, आवेदन करें और इस योजना का अवश्य लाभ उठाएं। साथ में इस योजना में जो प्रशिक्षणार्थी अपना ट्रेनिंग प्रोग्राम सफलतापूर्वक पूरा कर लेंगे, उन युवक युवतियों को एक सर्टिफिकेट मध्य प्रदेश शासन की तरफ से दिया जाएगा, जो काफी लाभकारी आप लोगों के लिए साबित होगा। इसमें योग्यता में ध्यान रखना है कि उन्हीं युवाओं को इसमें मौका मिलेगा जो 12वीं पास कर चुके हैं। योजना मध्य प्रदेश शासन की तरफ से पूर्ण रूप से निःशुल्क है। इसमें 1000 रुपए छात्रवृत्ति जो बॉयस है उनको और जो 1100 रुपए छात्रवृत्ति जो गर्ल्स है उनको मिलेगी।
1: प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए गुना जिले से रोहित गोस्वामी।
2: हमारी अगली खबर है छतरपुर जिले से, जहां समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी का काम जारी है, जिसके लिए जिले में 80 खरीदी केंद्र बनाए गए हैं, जहां स्लॉट प्रक्रिया के जरिए किसानों से सीधे गेहूं खरीदा जा रहा है। इस बारे में और ब्यौरा छतरपुर से हमारे संवाददाता सुनील पांडे से।
3: छतरपुर जिले में समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी का काम युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। इसके लिए जिले में 80 खरीदी केंद्र बनाए गए हैं, जहां पर सीधे किसानों से सेवा सहकारी समितियां गेहूं खरीदी कर रही हैं। जिला आपूर्ति अधिकारी सीताराम कोठारी ने हमें जानकारी देते हुए बताया है कि जिले में 15 अप्रैल से गेहूँ खरीदी का काम प्रारंभ हो गया था, जो शासन के निर्देशानुसार आगामी 23 मई तक जारी रहेगा। जिले को 8,20,000 क्विंटल गेहूं खरीदी का लक्ष्य मिला था, जिसके विरुद्ध अभी तक 7,24,000 क्विंटल गेहूं खरीदा जा चुका है। इसके लिए किसानों द्वारा लगातार स्लॉट बुक किए जा रहे हैं। शुरुआती तौर में छोटे किसानों को प्राथमिकता दी गई, अब बड़े किसानों के भी स्लॉट बुक हो रहे हैं। सभी खरीदी केंद्रों पर किसानों की सुविधाओं का ख्याल रखा जा रहा है, जिसमें छाया पानी की व्यवस्थाएं की गई हैं। किसानों को निर्धारित समर्थन मूल्य केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित 2585 रुपये प्रति क्विंटल एवं राज्य सरकार का बोनस 40 रुपये प्रति क्विंटल, इस तरीके से 2625 रुपये प्रति क्विंटल की दर से उनके सीधे बैंक खातों में भुगतान की प्रक्रिया की जा रही है। खरीदी केंद्रों पर किसी भी प्रकार की अनियमितता ना हो, इसके लिए सतत निगरानी टीमें बनाई गई हैं, जो निरीक्षण कर रही हैं। हाल ही में छतरपुर जिला कलेक्टर पार्थ जायसवाल ने जिले के घुआरा खरीदी केंद्र का निरीक्षण किया। यहां पर क्वालिटी FAQ की नहीं मिलने पर उन्होंने सर्वेयर को तत्काल हटाने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने किसानों से 50 किलो 200 ग्राम प्रति बोरी मानक तौल ही तौलने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने SDM, तहसीलदार, खाद्य अधिकारी सभी को सतत निरीक्षण करने के भी निर्देश दिए हैं। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए छतरपुर से सुनील पांडे।
2: प्रादेशिक समाचार दर्शन में अब हम चलते हैं धार जिले की ओर, जहां जनगणना 2027 के पहले चरण के मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना के सफल क्रियान्वयन के लिए व्यापक स्तर पर जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। और जानकारी दे रहे हैं धार से हमारे संवाददाता सुनील सचान।
4: पश्चिमी मध्य प्रदेश के आदिवासी धार जिले में 8वीं जनगणना का शंखनाद 1 मई से हो गया है। जनगणना 2027 के दो चरणों के प्रथम चरण कार्य के तहत मकानों की गणना एवं सूचीकरण का कार्य 30 मई 2026 समयावधि में पूर्ण किया जाना है। भारत सरकार द्वारा आयोजित जनगणना 2027 के प्रथम चरण के मकान सूचीकरण मकानों की गणना के सफल क्रियान्वयन हेतु धार जिले में व्यापक स्तर पर जन जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। शासन द्वारा तैयार किए गए विशेष जनगणना रथ जिले के विभिन्न क्षेत्रों में भ्रमण कर नागरिकों को राष्ट्रीय महत्व के इस कार्य के प्रति जागरूक कर रहे हैं। हमारी जनगणना हमारा विकास के संदेश के साथ भ्रमण कर रहे रथ प्रमुख चौराहों और सार्वजनिक स्थानों पर LED स्क्रीन के माध्यम से जनगणना से संबंधित लघु फिल्मों के साथ जनगणना को लेकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं। वहीं बैनर, पोस्टर आदि माध्यमों से भी लोगों को जनगणना के प्रति जागरूक किया जा रहा है। नागरिकों से आग्रह किया जा रहा है कि वे प्रगणकों को अपने परिवार, मकान की स्थिति और उपलब्ध मूलभूत सुविधाओं के संबंध में बिल्कुल सही और सटीक जानकारी प्रदान कर राष्ट्र निर्माण में अपना अमूल्य सहयोग दे। जनगणना पूरी तरह से हाईटेक हो रही है। जनगणना हेतु जिले में 4060 प्रगणक और 658 सुपरवाइजर फील्ड में उतरकर इन ब्लॉकों में मकानों की गिनती कर रहे हैं। इसके पूर्व 16 अप्रैल से 30 अप्रैल तक भारत सरकार द्वारा नागरिकों की सुविधा के लिए उपलब्ध कराई गई डिजिटल स्वगणना के माध्यम से भी हजारों लोगों ने स्वगणना पोर्टल में दर्ज कराई थी। स्वगणना के तहत डेटा और प्रक्रिया की गोपनीयता का विशेष ध्यान रखे जाने के कारण हजारों लोगों ने घर बैठे आसान तरीके से अपनी जानकारी स्वगणना पोर्टल में दर्ज करवाई, जिससे अब इन लोगों को प्रगणकों को सिर्फ SID ही देना पड़ रही है। प्रशिक्षण प्राप्त प्रगणक और सुपरवाइजर घर घर जाकर मकानों की गिनती करने के साथ उसमें रह रहे नागरिकों से 33 बिंदुओं की जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। गलत जानकारी देने या जानकारी छुपाने वाले लोगों के विरुद्ध जुर्माने का भी प्रावधान है।

0: वहीं गत दिनों जनगणना निदेशालय के ज्वाइंट डायरेक्टर नमित यादव धार पहुंचे और उन्होंने प्रगणकों के कार्य करने के तरीकों को जाना, साथ ही जहां गणना हुई है वहां पर जाकर लोगों को क्रॉस वेरिफिकेशन किया। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए धार से मैं सुनील सचान।
1: प्रादेशिक समाचार दर्शन में अगली खबर है डिंडौरी जिले से, जहां बच्चों की खेल प्रतिभाओं को निखारने एवं ग्रीष्मकालीन अवकाश का सदुपयोग सुनिश्चित करने के उद्देश्य से ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण शिविर आरोह 2026 का आयोजन किया जा रहा है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं डिंडौरी से हमारे संवाददाता लक्ष्मी नारायण अवधिया।
2: खेल युवा कल्याण विभाग भोपाल के निर्देशानुसार डिंडौरी जिले में बच्चों की खेल प्रतिभा को निखारने एवं ग्रीष्मकालीन अवकाश का सदुपयोग सुनिश्चित करने के उद्देश्य से ग्रीष्मकालीन खेल प्रशिक्षण शिविर आरोह 2026 का आयोजन 5 मई से 5 जून 2026 तक किया जा रहा है। प्रशिक्षण शिविर प्रतिदिन सुबह 6 बजे से 8 बजे तक तथा शाम 5 बजे से 7 बजे तक जिला एवं विकासखंड मुख्यालयों में संचालित किया जा रहा है। जिला मुख्यालय स्तर पर एथलेटिक्स, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल एवं कराते सहित 4 अन्य खेलों का प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जबकि प्रत्येक विकासखंड मुख्यालय में 2 खेलों का प्रशिक्षण आयोजित किया जा रहा है। खेल प्रशिक्षण के साथ अन्य विभागों के सहयोग से व्यक्तित्व विकास, मोटिवेशनल सत्र, सांस्कृतिक कार्यक्रम, सामुदायिक सहभागिता, साइबर जागरूकता तथा नशा मुक्ति एवं स्वास्थ्य संबंधी गतिविधियां भी आयोजित की जा रही है। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए डिंडौरी से लक्ष्मी नारायण अवधिया।
1: अब हम रुख करते हैं छिंदवाड़ा जिले की तरफ, जहां प्रशासन ने ई विकास प्रणाली के जरिए किसानों को बड़ी सहूलियत दी है। प्रशासन की इस पहल से खाद के लिए केंद्रों पर लगने वाली कतारें कम हो गई हैं और किसानों को सुगमता से खाद उपलब्ध हो रही है। और ब्यौरा दे रहे हैं छिंदवाड़ा से हमारे संवाददाता राकेश प्रजापति।
3: गत दिवस कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित जिला विकास सलाहकार समिति की हालिया बैठक में जिले की कृषि प्रगति को लेकर बड़े फैसले किए गए हैं। बैठक की अध्यक्षता कर रहे जिले के प्रभारी मंत्री श्री राकेश सिंह ने ई विकास प्रणाली की ताकत पर जोर देते हुए इसे किसानों के लिए एक क्रांतिकारी कदम बताया है। अब किसानों को खाद के लिए घंटों लाइनों में लगने का झंझट नहीं उठाना पड़ेगा। इस डिजिटल प्रणाली के जरिए किसान घर बैठे अपना ई टोकन बुक कर सकते हैं और अपनी मर्जी के विक्रय केंद्र का चुनाव कर सकते हैं। शासन के नए निर्देशों के तहत एक बड़ी राहत यह भी मिली है कि किसान अपनी भूमि की पात्रता के अनुसार सभी आवश्यक उर्वरकों की पूरी मात्रा एक ही बार में प्राप्त कर सकते हैं। इस नई व्यवस्था के तहत छिंदवाड़ा जिले में अब तक हुए कामकाज और खाद के स्टॉक को लेकर कृषि विभाग पूरी तरह मुस्तैद है। उप संचालक कृषि श्री जितेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि
4: छिंदवाड़ा जिले में अभी तक लगभग 18,700 से अधिक किसानों ने ई विकास के माध्यम से ई टोकन बुक करके 6700 मेट्रिक टन से अधिक खाद का उठाव कर लिया है। इस ई विकास प्रणाली के लागू होने से किसानों के लिए बहुत सुविधा होगी, लाइन से निजात मिलेगी और अपनी इच्छा अनुसार वर्ग विक्रय केंद्र का चयन करके वहाँ से अपनी इच्छा की खाद उठा सकेंगे। इस प्रक्रिया के द्वारा लगातार जो है जिले में उर्वरक वितरण किया जा रहा है। अभी तक हमारे जिले में 1,00,000 मीट्रिक टन से अधिक खाद उपलब्ध है। किसान भाइयों को जितनी आवश्यकता होगी उतनी खाद मिलेगी, लेकिन ई विकास टोकन के माध्यम से ही मिलेगी। हमारी जिले के सभी किसान भाइयों से अपील है कि आप ई टोकन बुक करें और अपनी सुविधा अनुसार जल्दी से जल्दी खाद का उठाव करें।
3: जिले में खाद की कोई कमी नहीं है। प्रशासन के पास इस समय लगभग 1,00,000 मैट्रिक टन उर्वरक का सुरक्षित भंडार मौजूद है। अगर आंकड़ों की बात करें तो यूरिया, एनपीके और डीएपी का 75,000 मैट्रिक टन से ज्यादा का स्टॉक जिले में है। इसके अलावा 5,000 मैट्रिक टन पोटास और 19,300 मैट्रिक टन सिंगल सुपरफास्फेट भी उपलब्ध है। छिंदवाड़ा कलेक्टर ने भी सभी सहकारी समितियों, मार्कफेड और निजी विक्रेताओं को सख्त निर्देश दिए हैं कि ई टोकन प्रक्रिया में किसानों को पूरा सहयोग दिया जाए। साथ ही प्रशासन ने किसानों से यह खास अपील की है कि वे सीजन की भारी भीड़ और आखिरी समय की परेशानियों से बचने के लिए जल्द से जल्द अपना ई टोकन बुक करें और अपनी खाद का उठाव सुनिश्चित करें। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए छिंदवाड़ा से मैं राकेश प्रजापति।
1: तो श्रोताओं, ये था हमारा कार्यक्रम प्रादेशिक समाचार दर्शन, जिसमें आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे इसी दिन इसी समय। दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: श्रोताओं, ये आकाशवाणी का जबलपुर केंद्र है। कुछ ही देर में आप सुनेंगे समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। शाम की 7 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, जिसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार
1: नमस्कार। आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अतहर सईद। सरकार ने कहा है कि देश के पास 60 दिन का कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस तथा 45 दिन का एलपीजी भंडार है। विदेशी मुद्रा भंडार 703 अरब डॉलर के स्तर पर है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में हुई बैठक के दौरान ये जानकारी दी गई। भारत उन चुनिंदा देशों में से है जहां संघर्ष शुरू होने के 70 दिन बाद भी पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतें स्थिर बनी हुई हैं। भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा तेल शोधक और पेट्रोलियम उत्पादों का चौथा सबसे बड़ा निर्यातक है। सरकार ने कहा कि लोगों को घबराने या ईंधन और अन्य उत्पादों की अत्यधिक खरीद करने की आवश्यकता नहीं है। सरकार ने कहा है कि देश भर में पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है और घरेलू एलपीजी की आपूर्ति निरंतर जारी है। नई दिल्ली में आज पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार उपभोक्ताओं को ईंधन की आपूर्ति सुनिश्चित कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से पेट्रोल और डीजल की खपत कम करने की अपील की है।
2: माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के सभी लोगों से आग्रह किया है कि पेट्रोल और डीजल की खपत कम करें, जहां भी संभव हो मेट्रो और सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें, कार पूलिंग का विकल्प चुनें, रेलवे एज अ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फॉर गुड्स को प्रेफर करें और जहां भी संभव हो इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग बढ़ाएं।
1: रसायन और उर्वरक मंत्रालय की अपर सचिव अपर्णा शर्मा ने कहा कि खरीफ सीजन 2026 के लिए देश में उर्वरकों का भंडार 51% से अधिक है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देशवासियों से की गई 7 अपीलों का पालन करने का आग्रह किया है। नई दिल्ली में कार्यक्रम में उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी ने कल देशवासियों से 1 वर्ष तक विदेश यात्रा से बचने और स्वदेशी उत्पादों को अपनाने की अपील की थी। श्री मोदी ने लोगों से खाना पकाने के तेल की खपत कम करने, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने तथा सोने की अनावश्यक खरीदारी से बचने का भी आग्रह किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सोमनाथ मंदिर अटूट आस्था, दिव्यता और देश की शाश्वत आत्मा का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि सोमनाथ अमृत पर्व केवल अतीत का उत्सव नहीं है, बल्कि ये आने वाले 1000 वर्षों तक देश की प्रेरणा बनेगा। गुजरात में सोमनाथ अमृत महोत्सव में प्रधानमंत्री ने कहा कि सोमनाथ लोगों को ये याद दिलाता है कि कोई भी राष्ट्र अपनी जड़ों से जुड़ा रहकर ही लंबे समय तक मजबूती से खड़ा रह सकता है।
3: आजादी के समय सरदार साहब ने 500 से ज्यादा रियासतों को जोड़कर एक भारत का आधुनिक स्वरूप गढ़ा था, तो साथ ही सोमनाथ के पुनर्निर्माण से उन्होंने दुनिया को बताया था भारत केवल आजाद नहीं हुआ है, भारत अपने प्राचीन गौरव को पुनः हासिल करने के मार्ग पर भी अब आगे बढ़ चुका है।
1: इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने सोमनाथ अमृत पर्व पर एक विशेष डाक टिकट और 75 रुपये का विशेष सिक्का भी जारी किया। इसके बाद प्रधानमंत्री ने बड़ौदरा में सरदार धाम परिसर का उद्घाटन किया। उन्होंने सरदार पटेल की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। श्री मोदी ने परिसर में भोजन और स्वागत क्षेत्र तथा ई पुस्तकालय का अवलोकन किया। केंद्र सरकार ने विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025 के कार्यान्वयन की अधिसूचना जारी कर दी है। यह अधिनियम इस वर्ष 1 जुलाई से देश भर में लागू हो जाएगा। अधिनियम का उद्देश्य एक वित्तीय वर्ष में रोजगार गारंटी को 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन करना है। निर्धारित समय में काम नहीं मिलने पर

0: ये कहानी है एक फोटोग्राफर और उसके अंतर्मन की।
1: ओह लवली, वेल डन।
0: बिजनेस लोन अप्रूव्ड।
1: अब होगा बड़ा स्टूडियो, नया कैमरा, नई लाइट्स, लगे हाथ नई कार भी ले लो उसी लोन से। नो, लोन लिए गए काम में ही लगाओ, समय से ईएमआई चुकाओ, क्रेडिट स्कोर बढ़ाओ और अगला लोन आसानी से पाओ। कार नहीं तो मेरी फोटो तो ले लो। आप कौन?
2: आरबीआई कहता है,
0: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी। ये कहानी है एक गृहिणी और उसके अंतर्मन की।
3: बिजली का बिल, किराना, स्कूल फीस, सब हो गया।
4: बन गया बजट?
3: हाँ,
4: 5,000 बच गए।
3: तो नई साड़ी ले ले।
4: ना,
3: पिछले महीने तो ली थी।
4: एक और
3: नहीं, पहले बजट बनाओ, फिर छोटी छोटी बचत को बैंक में सेव करो और पैसों को बढ़ते देखो।
4: बढ़िया, जाओ भाई।
2: आरबीआई कहता है,
0: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
5: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं पूर्वा त्रिवेदी। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सोमनाथ मंदिर देश के सभ्यतागत साहस और अटूट भक्ति का प्रतीक। भोपाल में इंडो फ्रेंच इन्वेस्टमेंट कॉन्क्लेव, कल जुटेंगे फ्रांस के प्रमुख कंपनियों के प्रतिनिधि। मध्य प्रदेश पर निवेश में होगा मंथन। देश में पहली बार 10 लाख किसानों से समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीद कर मध्य प्रदेश ने रिकॉर्ड बनाया। किसानों को अब तक 11,622 करोड़ रुपए का भुगतान। और प्रदेश में चीतों की संख्या बढ़कर हुई 57। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कूनू नेशनल पार्क में विमुक्त किए 2 मादा चीते। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सोमनाथ मंदिर गौरवशाली और शाश्वत है और देश के सभ्यतागत साहस और अटूट भक्ति का प्रतीक है। श्री मोदी ने आज गुजरात में पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन के 75 वर्ष होने के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ अमृत महोत्सव में भाग लिया। श्री मोदी ने कहा कि पवित्र सोमनाथ मंदिर में लहराता ध्वज भारत की आस्था की विजय का प्रतीक है और लाखों भारतीयों की सामूहिक चेतना की दिव्य घोषणा भी है।
1: हमारी आस्था हमें जीवन जीने का तरीका भी सिखाती है, क्योंकि हम मानते हैं सर्वम खलित्वम ब्रह्म, अर्थात सृष्टि का हर एक घटक, इस संपूर्ण प्रकृति भी ईश्वर का ही स्वरूप है। इसलिए हमारी आस्था नदियों में भी है, वृक्षों में भी है, हम जंगलों को भी श्रद्धा की दृष्टि से देखते हैं, हम पर्वतों में भी पवित्रता का भाव रखते हैं। और आज जब दुनिया प्राकृतिक जीवन शैली की ओर लौट रही है, हमें हमारी शक्ति को भी पहचानना होगा। हम हमारे तीर्थों और मंदिरों के विकास के साथ साथ उनकी गरिमा के लिए जागरूक होना होगा। हमें ऐसा जीवन अपनाएं जिससे प्राकृतिक और पर्यावरण की रक्षा हो। साथ ही हम हमारे पुण्य स्थलों को पूरी दुनिया के लिए एक उदाहरण के रूप में विकसित करें।
0: केंद्र सरकार ने विकसित भारत जी रामजी गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम 2025 के कार्यान्वयन की अधिसूचना जारी कर दी है। यह अधिनियम इस वर्ष 1 जुलाई से देश भर में लागू हो जाएगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 125 दिन की रोजगार गारंटी का अधिनियम ग्रामीण भारत को सशक्त बनाएगा। देश भर में नए ढांचे के कार्यान्वयन के लिए मौजूदा वित्तीय वर्ष में 95,692 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। भोपाल में कल इंडो फ्रेंच इन्वेस्टमेंट कॉन्क्लेव का आयोजन किया जाएगा, जिसमें निवेश संभावनाओं को लेकर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव विदेशी निवेशकों से संवाद करेंगे। इंडो फ्रेंच चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और मध्य प्रदेश शासन के सहयोग से कुशाभाऊ अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर में आयोजित इस कार्यक्रम में फ्रांस के राजदूत, फ्रांसीसी उद्योग जगत के प्रतिनिधि, वैश्विक कंपनियों के वरिष्ठ अधिकारी, मध्य प्रदेश शासन के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी और प्रदेश के उद्योग प्रतिनिधि सम्मिलित होंगे। कॉन्क्लेव से मध्य प्रदेश और फ्रांस के बीच दीर्घकालिक औद्योगिक तकनीकी और संस्थागत साझेदारी होगी। इससे राज्य सरकार फ्रांसीसी कंपनियों को मध्य प्रदेश के औद्योगिक वातावरण, निवेश संभावनाओं, नीति समर्थन और तेजी से विकसित हो रहे औद्योगिक इकोसिस्टम से अवगत कराएंगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भोपाल में आयोजित KF रुस्तम जी पुरस्कार वितरण समारोह में सहभागिता कर वर्ष 2019-20 तथा 2021-22 के अंतर्गत परम विशिष्ट, अति विशिष्ट एवं विशिष्ट श्रेणी के पुरस्कार प्रदान करते हुए उत्कृष्ट सेवाएं देने वाले पुलिस अधिकारियों एवं कर्मियों को सम्मानित किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिसकर्मी समाज की सुरक्षा के लिए सदैव समर्पित रहते हैं, इसलिए उनके व्यक्तिगत सुख सुविधाओं एवं कल्याण का ध्यान रखना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। डॉक्टर यादव ने कहा कि पुलिस विभाग द्वारा प्रदान किए जाने वाले पुरस्कार की राशि बढ़ाने को मंजूरी दी गई है।
2: मैंने पुलिस के द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कारों को लेकर के मंजूरी दी है कि हमारे डीजी पहले 25,000 तक का पुरस्कार दे रहे थे, अब उनको अधिकार 50,000 तक हम देने जा रहे हैं। इसी प्रकार से निचले स्तर तक, SP के स्तर तक भी हमारे जवानों को पुरस्कार की राशि डबल करने का निर्णय हमने किया है। साथ ही साथ इसके अलावा भी पुलिस जो जो चाहेगी हम करने को तैयार है।
0: भारत सरकार स्थानीय विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए खिलौनों के लिए एक राष्ट्रीय कार्य योजना लागू कर रही है, जिसमें गुणवत्ता नियंत्रण BIS प्रमाणन, खिलौना क्लस्टर स्थापित करना और आत्मनिर्भर भारत के तहत प्रोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देना शामिल है, जिसके तहत 1 जनवरी 2021 से भारत में निर्मित या आयातित सभी खिलौनों के लिए ISO 8124 मानकों पर आधारित अनिवार्य BIS प्रमाणन अनिवार्य कर दिया गया है, जिससे पूरे उद्योग में उच्च सुरक्षा और गुणवत्ता मानकों को सुनिश्चित किया जा सके। और अब समाचारों में वक्त है एक छोटे से अंतराल का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook साथ ही X प्लेटफॉर्म पर EIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsoneair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन EIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मध्य प्रदेश ने देश में पहली बार 10 लाख किसानों से समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीद का रिकॉर्ड बनाया है। किसानों को अब तक 11,622 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में संपन्न हुई कैबिनेट बैठक में इसकी जानकारी दी गई। बैठक में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चौथे चरण के तहत 1763 करोड़ रुपए की लागत से 2117 किलोमीटर लंबी 973 सड़कों का निर्माण कार्य को मंजूर दी गई। कैबिनेट ने कुल 29,540 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों को स्वीकृति दी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश की धरती ने चीतों को अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराकर उन्हें पुनर्स्थापित करने का महत्वपूर्ण कार्य कर अपने परिवार का हिस्सा बनाया है। श्योपुर जिले के कूनू नेशनल पार्क में दो मादा चीतों को खुले जंगल में विमुक्त करते हुए उन्होंने कहा कि आज देश में चीता पुनर्स्थापना का ये प्रोजेक्ट सफलता के साथ में आयामों की ओर तेजी से बढ़ रहा है। प्रदेश में वर्तमान में चीतों की संख्या 57 है, जिनमें से 54 कूनो नेशनल पार्क में और 3 गांधी सागर अभ्यारण्य में है। सहकारिता मंत्री और खरगोन जिले के प्रभारी मंत्री विश्वास सारंग ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कम तेल खाने, ईंधन की बचत करने और एक वर्ष तक सोना नहीं खरीदने की अपील का समर्थन करते हुए कहा कि ये देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। खरगोन में मीडिया से चर्चा करते हुए श्री सारंग ने कहा कि वर्तमान समय में युद्ध जैसे हालातों के चलते पूरी दुनिया में पेट्रोल, डीजल और ईंधन पर असर दिखाई दे रहा है। ऐसे में यदि तेल की खपत कम होगी तो देश की विदेशी मुद्रा की बचत होगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने विदेशों में डेस्टिनेशन वेडिंग जैसे फिजूल खर्ची वाले आयोजनों से बचने की भी अपील की है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत आगरमालवा जिले के स्वायत्तकला में जल संरक्षण का संदेश देने हेतु कल एक

विशाल भव्य जल कलश यात्रा निकाली गई। नीमच जिले के जावद में जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत जन अभियान परिषद जावद द्वारा संवालिया महाराज स्थित बालाजी मंदिर रामघाट पर जल स्रोत सेवा समागम कार्यक्रम आयोजित किया गया। शिवपुरी जिले में भी 23 मई तक गेहूं खरीदी होगी। कलेक्टर ने किसानों की स्वीकृति लंबित न करने के निर्देश दिए हैं। अशोकनगर में आयुक्त दिव्यांगजन द्वारा आज जिला जेल में दिव्यांगजन कैंप का आयोजन किया गया और सीहोर कलेक्टर बालागुरु के ने आज जनगणना कार्य की समीक्षा की। उन्होंने बैठक में जनगणना कार्यों में गति लाने के सख्त निर्देश भी दिए। इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।

श्रोताओं, हम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 7:20 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम कृषि जगत।

कृषि जगत कार्यक्रम सुनवे बारे सभी किसान भज्जा और बिन्ना हरन से लखन भज्जा की दो हाथ जोड़ के राम राम। किसान भैया हरो, एक दिना की बात बताएं कि हमारे चार छः जने किसान गांव के चौगड्डा में नीम के छायरे में दासी पे बैठे होते हैं। अब आप कहो लखन भज्जा की ऐसी भूमिका बना रहे, चौगड्डा पे नीम के छायरे में फिर दासी पे बैठे, कहाँ बैठे रहे ऐसे? अरे भज्जा, अपने ही गाँव में तो को अपने कछु बताएं। अब जब चार जने बैठा थे तो सबकी अलग अलग बातें होते हैं, तो कोई ने कछु बताई, कोई ने कछु बताई, सो अपने समस्या जो नती बा उको समाधान सो ही अपने और निकाल ले में। हम और जितने जने बैठे थे कि भैया ये को समा आपने अगर जा कही है और ऐसी दिक्कत है तो एक अपन को ऐसो करने हैं, जो ऐसो करने हैं। जब बात ऐसे हो रही थी कि अबई अब समय जावे में ज़्यादा टाइम नहीं लगे कि अबई तो का हुई है कि अपन को खरीफ फसलों की बोनी करवे को बहुत जल्दी टाइम ढेंगा आ जाए है, तो ऐसी कछु चर्चाएँ हमारे कराते। इतने में आ गए बट्टू कक्का। सो कहन लगे लखन भज्जा, हम तुम्हें खो तो वाय ढूंढत फिरते लो। हमने कही काय कक्का, ये सो का काम यान परो हमें ढूंढ रहे आप? कहन लगे भैया, अब भाई खेती को काम शुरू हो जाए तो जैसी हम और चर्चा कर रहे थे ऐसी कक्का कहन लगे, अब भाई खेती को काम शुरू हो जाए ऐसी तकनीक बताओ कि कम लागत में ज़्यादा उपज पैदा हो गए। अब हमने कही जो तो बड़ो कठिन सवाल है, एको जवाब कैसे दज्जे। फिर हमने कही कक्का, जा तो आपकी सार्वजनिक समस्या है और यू को समाधान होए जो बहुत जरूरी है, और जो ई को समाधान करवे को जो टेम है वो अबई को अच्छो है। तो कहने लगे तुम्हारी समझ में आ गई का हमारी समस्या? हमने कही हाँ कक्का। तो बोले बताओ, यही ने तो यही से तो हमने बूझिया है। हमने कही कक्का, खेती के लाने सबसे पहली जो तकनीक है वह मिट्टी परीक्षण की है, और दूसरी तकनीक है कि अपने खेतों में नरवाई और प्यार खो बिल्कुल न जलाओ, आग ही न लगाओ ऊ में। कक्का कहने लगे कि अच्छा, अब बिल्कुल सुनत या जा रहे हैं। कहने लगे ये भैया, हमने कही हाँ, हमने कही जब कछु झने अपने जुनका कराते हैं कि उपज तो मुतकिलो चाहत हैं, पैदा मन चाहो कर वो चाहत हैं, मनो नरवाई बार दे तो वही खेत ही में, धान को प्यार वही खेत में। अब एक लाने कक्का, हमने कही मिट्टी परीक्षण के लाने, मिट्टी को नमूना लेखें अपने ढेंगा की, मिट्टी परीक्षण की जुन प्रयोगशाला है वो मैं पहुंचा दे, ऊ की जुन रिपोर्ट तैयार हो खो आहे ऊ के आधार पे खाद उर्वरक खेती में डारो सो उम्दा उपज पैदा हुई है और अपन व्यर्थ के खर्चा से बचें, और

रासायनिक में सबई कछु महंगो हो गो है कक्का, आपको तो पता ही है जे जेब कन में कछु खर्चा कम पड़त है और फसलें उम्दा पैदा होत हैं और ये सो करें करे से पर्यावरण में सोई सुधार हुई है। सो कक्का की तो आदत है कि पूरी बातें कान लगा के सुनत जात हैं। हमने कही कक्का, आपने सुनी हुई है कि आवश्यकता आविष्कार की जननी कहावत है। सो बोले हाउ, हमने कही पेलों तुम्हें रात दिना से अपने खितवन में हर बखर हाँकते। कक्का बोले पेलों उत्तई में गुजारो हो जा तो भज्जा, अब परिवार बढ़त चले गए हैं सो जरूर थे सोई बढ़त चलेंगे। हमने कही बस कक्का अब आप समझ गए पूरी बिल्कुल, अपन दो ही जने एक ही लेन पे हैं। हमने कही बस कक्का, जरूरत चाहे व्यक्तिगत होवे चाहे परिवार की होवे और के चाहे पूरे देश भरे की होवे, सबको समाधान करने पड़त है। चाहे खावे के लाने अन्न पानी होवे, पहरवे के लाने ओढ़वे के लाने उन्ना लत्ता होवे और फिर चाहे सो सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम होवे। सो हमने कही कक्का, आज 11 मई है और आज को दिन बहुत महत्वपूर्ण है अपने देश में। आज को दिन चाहे राष्ट्रीय तकनीकी दिवस कह लो और के राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कह लो, ई को बड्डो महत्व है जिन हर एक साल 11 मई को मनाओ जाते हैं और जो भारत की तकनीकी यात्रा कार्य कुशलता को याद करो जाते हैं ई में। आज के दिन आपसे बताएं कि आज की तिथि 11 मई 1998 में देश में पहलो परमाणु मिसाइल परीक्षण के ऐतिहासिक अवसर को दर्शात है जिन राजस्थान के पोखरण पर्वतमाला में करे गए थे। परमाणु परीक्षण की क्षमता को बताते हैं के और एक ही गूंज पूरे संसार भरे में छा गई हती। इसे भारत की वैज्ञानिक क्षमता को प्रदर्शन, तकनीकी उन्नति, राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति देश के वैज्ञानिक और इंजीनियरिंग के कठिन प्रयासन को प्रमाण कहावत है जो। सो हमने कही कक्का, बतावे के लाने तो पूरो इतिहास परो है, अब कछु कछु बातें बीच बीच में कछु कछु की और बते हैं मनो। हमने कही अब खेती किसानी को तो सोई बतकाव करने, आज सोमवार को दिन है तो कहने लगे बिल्कुल भज्जा। तो हमने कही पहलूँ तो मनो खेती के बतकाए के पहलूँ अपन कर हैं मनोरंजन। वो मनोरंजन करवे के लाने जो न अपने इतने कलाकार आउत हैं, जैसे अब जब गर्मी पड़ रही तपना सो भैया उनके लाने जुड़े पानी की व्यवस्था है। इतने जो घेला भरो धरो है बिल्कुल कूरो भरो तो अब व्यक्ति में और ठंडो पानी पियो और उमदा अच्छे सुर पे गाँव सुजी हो रहे तो बैठा ही हैं गावे के लाने। हम अपनी इतनी बात कहें फिर इन औरों के लार ने जो माइक दे दे हैं के दांत उंगरियां दाब खें धर देहरी पे पाँव पेजनियां खनकाउती मनमोहनियां नाव, मनमोहनियां नाव मोह लेती गैलारे अंत गली धर लेत कहाँ ते जावे बारे, लौट घरे भगे आए मिली जब नेक नजरिया अचरज सौभव मोए दाब लई दांत उंगरिया।

हाँ, तो किसान भैया रो, अबे अब जो अपन ने लोकगीत सुनो और गावे वारे कलाकार हते राम सेवक श्रीवास्तव और उनके संगे कुल के कलाकारों को समूह स्वर, तो जो तो होगा अपनो मनोरंजन। अब एक बात है कि हम आपको एक सूचना बताए वो चाहत हैं सभी सुनवे वारों के आकाशवाणी के 90 गौरवशाली साल पूरे हो गए हैं। सो जय उपलक्ष्य में आकाशवाणी जबलपुर मंगलवार के दिना माने 12 तारीख पर है, सो उदना सुगम संगीत सभा जेको नाव है सुर संध्या को आयोजन कर रही हैं आकाशवाणी जबलपुर। तो आप सभी जने आमंत्रित हैं मंगलवार 12 मई 2026, जो जगह देख लो तो शहीद स्मारक को प्रांगण कहा उठे जबलपुर में, और आकाशवाणी की जिन संगीत सभा है सुर संध्या, वो स्थान समय तिथि को आप औरों का ध्यान रखने हैं कि 12 मई मंगलवार को दिन और संजा हैं 7:30 बजे, माने जैसे कि अब ये तक करीब करीब बज गई हुई हैं। तो शहीद स्मारक जबलपुर में आप सभी जने सादर आमंत्रित हो और ई सभा को आप आनंद ले सकत हो गीत और भजन सुन के। तो जाहती हमारी ढेंगा सूचना, जो कोई दूर पास को जैसो हो और जो को जैसो साधन बने तो भैया जरूर पहुँचियो। अब रही बात काय की कि जैसे आज सोमवार को दिन है, अब सोमवार के दिन अपन हो एक नई तकनीक की नई जानकारी की अपन को ऐसी मिलत है कि भैया हम कैसी बताएं। आप और अभी हम सुने हैं तो आप और के हो कि भैया जा तो हम चाहे तैयार और अच्छे मौका पे मिल गई, तो ये सो कृषि विश्वविद्यालय से भर मौका पे अच्छी अच्छी जानकारी आती हैं जिन्हों अपन टकटकी लगा हो देखा रहे कि जो सुनवे कवे मिले। ऐसा ही कृषि विश्वविद्यालय से खेतों तक के क्रम के अंतर्गत जा जानकारी अपने ते आउत है, तो भज्जा जा जानकारी जुन है बा ऐसी है कि मशरूम जुन कहावत है उको मूल संवर्धन और उको प्रसंस्करण अपन हो कैसे करने पड़ा थे, तो ई के बारे में सो हमने कही। जब जब जानकारी के लाने हम तजार बैठे तो का भाव के

0: बट्टू कक्का कहन लगे बच्चा तुम हमारे मतलब की चीज़ सुनवा दच्चो। हमने कही कक्का अकेले तुम्हारे मतलब की नहीं बा, हम जब सुनवाऊत है ना तो सबई के मतलब की होत है। कहन लगे ठीक कही भैया ठीक कही, और जा बात यहाँ सी के जिन 10 के काम की होए सुबह 1 के काम की। बिल्कुल हमने के कक्का जा बात तुम्हारी अब समझ में आ गई कि जिन हम क्या वो चाहत हो वही तुमने कह दई, अपन दो ही जने एक ही लेन से चल रहा है। कहन लगे हाउ लखन भज्जा तुमसे तो साँच अंखो हम का बता दे। अब हमने ही बिल्कुल कछु ने बताओ जो कछु बते हैं सो हम ही बते हैं, तो हम अपनी इतनी बात कहें। फिर अपनी जा जानकारी है डॉक्टर अर्चना पांडे मैडम अपन को विस्तार से बते हैं, और इनसे बतकाव कर हैं डॉक्टर शेखर सिंह बघेल साहब मशरूम को मूल संवर्धन और प्रसंस्करण की तकनीक के बारे में। मनो जो माइक हम इन्हों जब दे हैं जब हम अपनी इतनी बात कह दे हैं कि खेती करो मशरूम की कम लागत को काम, हर बखर बेलवा नहीं लगें मिलत करारे दाम, मिलत करारे दाम भंजालो आधी राते सेंत खें धरने होए डॉक्टर हमें बताते। कहत लखन कविराय बंद कमरन में होती खेतन में होवे अन्न घरे मशरूम की खेती।
1: किसान भाइयों राम राम। जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय से खेतों तक कार्यक्रम के अंतर्गत आज हमारे किसान भाइयों को, युवा किसानों को, हमारी महिलाओं को मशरूम का मूल्य संवर्धन एवं प्रसंस्करण तकनीक इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे बीच में उपस्थित हैं डॉक्टर अर्चना पांडे, जो कि वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं खाद्य विज्ञान विभाग जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर में। डॉक्टर पांडे मैडम आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है, नमस्कार।
2: नमस्कार
1: मैडम। अगर हम मशरूम के मूल संवर्धन की बात करते हैं या प्रसंस्करण तकनीक की बात करते हैं, ये मूल संवर्धन को अगर हम सरल भाषा में समझाएं तो इसका मतलब क्या होता है?
2: जी शेखर जी, जैसे किसी भी उत्पाद का जो प्रसंस्करण किया जाता है, मशरूम को भी हम उसमें शामिल करें, उसका जो मूल्य हम बढ़ाते हैं प्रसंस्करण करके, उसका वही मूल संवर्धन कहलाता है। जैसे उदाहरण के तौर पे मशरूम की बात हम कर रहे हैं तो ताजा मशरूम जैसे 150 रुपए किलो है, यदि उसके जो उत्पाद प्रोडक्ट जो तैयार किए जाते हैं सुखा कर बेचें तो वो 900 से 1000 रुपए किलो तक भी आप उसको उसका विक्रय कर सकते हैं। इसी को मूल्य संवर्धन कहा जाता है कि किसी भी प्रोडक्ट का मूल्य बढ़ा के उसको तैयार करना,
1: मतलब उसका वैल्यू को बढ़ाना है ताकि लोग उसको अधिक मूल्य दें और उसकी जो उपयोग की वो है वो बढ़ जाए, उपभोग की जो मतलब किसान लोगों के बीच में जो है
2: उसको वो बढ़ाने के लिए हो जाए और वो ज्यादा से ज्यादा लोग उपयोग करें, यह उद्देश्य है उसका।
1: जी हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है कि मूल संवर्धन करके उसको बेचना चाहिए। लेकिन अगर मशरूम के पौष्टिक गुणों की हम बात करते हैं या मशरूम का परिरक्षण करने की आवश्यकता होती है, तो इन सब बातों पर हमारे किसान भाइयों को थोड़ा सा जानकारी दे दें।
2: जी जैसे कि मशरूम में कहा जाता है कि बड़ा एक चमत्कारिक और बहुत अच्छा एक खाद्य पदार्थ हमारे बीच में है, इसको हम सब्जी के रूप में कह लें और कोई भी हमारे खाद्य पदार्थ के रूप में हम ले लें, तो ये इसमें बहुत अधिक पौष्टिक जो गुण होते हैं बहुत अधिक पाए जाते हैं। जैसे कि आपका 100 ग्राम जो ताजा मशरूम है इसमें 35 कैलोरी, मतलब कैलोरी बहुत कम है जिसकी हमें कम आवश्यकता है, पर इसमें हमको कार्बोहाइड्रेट अच्छा मिल रहा है, इसमें बहुत अच्छे किस्म का जो प्रोटीन होता है जैसे लाइसिन और ट्रिप्टोफैन, ये मशरूम में पाया जाता है जिसकी अनाजों में कमी होती है वो मशरूम में मिलता है, और इसमें मशरूम में वसा की मात्रा केवल 0.3% होती है, जो कि आज के जो हमारी लाइफ स्टाइल है उसके हिसाब से बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि हम लोग कम फैट और कम कैलोरी वाला खाना लोग पसंद करते हैं, क्योंकि हमारा आजकल जीवन ऐसा हो गया है कि बहुत ज्यादा शारीरिक श्रम नहीं हो पाता है, तो उसके लिए बड़ा आदर्श ये भोजन है। इसी तरह मशरूम में विटामिन सी, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जिसके बड़े टॉनिक मिलते हैं या डॉक्टर्स हमको लिखते हैं, वो बहुत अच्छा स्रोत है इसका, इसमें बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है, और फॉलिक एसिड, विटामिन बी12 अधिकतर सब्जियों में नहीं होते जो मशरूम में पाए जाते हैं। इस तरह से इसमें पोटेशियम और आयरन बहुत अच्छी प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं,
1: मतलब ये तो बहुत ही खूबियों से भरा हुआ हमारा मशरूम है और इसके पौष्टिक गुण भी बहुत हैं। मैडम क्या इसके कुछ औषधीय गुण भी होते हैं?
2: जी हाँ, इसके औषधीय गुण भी हैं, इसकी कई जो किस्में हैं उनसे दवाइयाँ बनाई जा रही हैं और उनको मार्केट में अब आ भी गई हैं उसकी दवाइयाँ, तो उसमें जैसे कि हमारा आजकल बहुत कॉमन है जो हृदय रोग है, हार्ट अटैक लोगों को हो रहा है ना, इसमें चूंकि वसा कम है, कार्बोहाइड्रेट कम है और कैलोरीज कम है, तो ये जो हार्ट के पेशेंट के लिए बहुत उपयोगी है ना, इसमें क्योंकि कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को कम करने में सहायक होता है, तो ये इसके लिए बहुत उपयोगी। इसी तरह डायबिटीज बहुत कॉमन बीमारी है, क्योंकि इसमें कैलोरी कम है और कार्बोहाइड्रेट कम है, पर प्रोटीन और बाकी मिनरल्स विटामिन अधिक है, इसलिए ये डायबिटीज के पेशेंट के लिए भी बहुत अच्छा है। और इसमें कुछ इसकी जो वेराइटी है मशरूम की, जैसे आइस्टर फ्लोरोटस और लेंटिनस एडोसस वेराइटी जो रहती है, तो इसमें एंटी ट्यूमर इसमें गुण होते हैं, तो जो एंटी ट्यूमर के गुण वो करते हैं, इसलिए ये ट्यूमर के बीमारियों में भी इसका उपयोग होता है। और सबसे बड़ी बात, आजकल बहुत कॉमन हो गया है कि लोगों को जो कॉन्स्टिपेशन होता है, कब्ज जो होता है, उसमें भी क्योंकि इसमें रेशे की मात्रा बहुत है, इसमें पानी की मात्रा बहुत है और बाकी बी कॉम्प्लेक्स की मात्रा, इसलिए ये अपने कब्ज में भी बहुत इसको दूर करने में सहायक होता है। इसी तरह एक बहुत कॉमन महिलाओं के बीच में एक समस्या आती है कि खून की कमी उनमें होती, एनीमिया जिसको हम बोलते हैं, तो उसमें भी बहुत सहायक। इस तरह कैंसर में एंटी ट्यूमर की जो मैंने बात की, तो वो कैंसर कोशिकाओं को बढ़ने में रोकता है। इसी तरह हाई ब्लड प्रेशर और कुपोषण, जो आजकल माल न्यूट्रिशन जो गांव में हम लोग देखते हैं, उसके लिए भी मशरूम बहुत आदर्श भोजन है।
1: जी हाँ मैडम, ये तो औषधि गुणों से भी भरपूर है हमारा मशरूम। अब बात आती है कि इसके प्रसंस्करण की, तो मशरूम का प्रसंस्करण या परिरक्षण के लिए कुछ महत्वपूर्ण विधियां होंगी, तो हमारे किसान भाइयों को आप बताएं कि कैसे उनका वो कौन कौन सी विधियां जिसके माध्यम से इनका परिरक्षण किया जा सकता है।
2: जी, जैसे कि मशरूम की प्रमुख जो विधियां हैं उसमें, इसको सबसे पहले तो हम इसको जो मशरूम है इसको सुखा के भी रखते हैं। सबसे सरल जो एक पॉपुलर जो प्रचलित विधि है उसको हम लोग सुखा के रखते हैं, जो उसमें मशरूम को हम लोग अच्छे बढ़िया जो मशरूम बड़े हो जाते हैं उनको हम सुखा के और तोड़ने के बाद उसको हम पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट के घोल में हम एक बार उसको उपचारित कर लेते हैं। उसके बाद हम उसको धूप में सुखाते हैं, और धूप में सुखाने में कई बार ज़्यादा जब हम व्यावसायिक रूप में करते हैं तो ड्रायर में भी सुखाया जाता है, तो धूप में सुखाने के लिए उसके ऊपर एक हम पतला सूती कपड़ा ढकते हैं ताकि एकदम डायरेक्ट जो वो है तो उस पर जो उसका जो कलर है वो ना बदले, उसका रंग वैसा ही रहे, इस तरह से उसको सुखाया जाता है इस तरह। और जब मशरूम को सुखा के जब हम पैक करते हैं तो पैक करने के लिए भी उसको हम 200 ग्राम या आधा किलो 500 ग्राम के पैक में तैयार करते हैं। इसी तरह उसमें मशरूम को जो सुखा के जब उसमें जो पूरा जब उसकी नमी निकल जाती है तब उसको पैक किया जाता है, और उसको 5 किलोग्राम के वजन तक के भी पॉलिथीन में हम कर सकते हैं जब व्यावसायिक रूप में किया जाता है। और जब मशरूम को हम लोग भरते हैं तब एक विशेष बात का ध्यान रखना पड़ता है कि मशरूम में 5% नमी तक हो तब उसको हम भरें, और उसको भरते समय उसमें सिलिका जेल या बिना बुझा हुआ चूना रख दें, तो इससे क्या होगा कि जो सूखा मशरूम है वो बहुत लंबे समय तक भी अच्छा रहता है। इसी तरह क्या होता है कि ग्रामीण स्तर पर भी इसका जो कोल्ड स्टोरेज हम लोग तैयार करते हैं ग्रामीण स्तर पर, वहां पर भी हम लोग इसको आराम से 8 से 10 दिन के लिए इसको सुरक्षित रख सकते हैं। जैसे ज्यादा मात्रा में टूट गया तो हम लोग उसको इस तरह से कोल्ड स्टोरेज जो बनाए जाते हैं गांव में ईंट और रेत की मदद से, वो कोल्ड स्टोरेज बना के उसमें हम लोग रख के और उसके बाद में उसकी विक्रय उसकी की जा सकती है। इसी तरह नमक में भी हम लोग इसको सुरक्षित रखते हैं, 20% नमक और 0.5% एसिटिक एसिड के घोल में रखते हैं, तो वो भी 2 से 3 महीने तक रखा जा सकता है। सिरका में भी सुरक्षित रखा जा सकता है। फिर इसी तरह जो हमारे प्रिजर्व हैं, जैसे कि पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट साइट्रिक एसिड के घोल में 6 महीने तक भी हम इसको रख सकते हैं।
1: मैडम जैसा रासायनिक की बात हुई तो 1% पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइट ले लें,
2: हाँ,
1: और 0.7% साइट्रिक एसिड के घोल में रखें। इस प्रकार से इसको अगर हम घोल में रखकर तो इसको 6 महीने तक भी हम
2: 6 महीने तक भी उसका उपयोग किया जा सकता है। क्योंकि क्या होता है कि आप देखते हैं जब ठंड में शीत ऋतु में ज्यादा मशरूम का उत्पादन होता है, पर जब गर्मी जैसी आती है तो हमारा उत्पादन कम होता है, तो हम इस समय फिर मशरूम का इस तरह से हम प्रिजर्व करके सुखा के रख लें और इस तरह से घोल में इसमें रख लें, नमक के घोल में रख लें, तो इसको हम लोग 6 महीने तक भी इसका उपयोग कर सकते हैं।
1: जी हाँ मैडम, अगर हम इसके डिब्बा में बंद करने की बात करें, जैसा हम डिब्बा बंदीकरण की विधि,
2: हाँ, जो कैनिंग की,
1: जी हाँ, कैनिंग की जो बात होती है, तो वो कैसे करना चाहिए और किस तरीके से, तो इसकी विधि के बारे में थोड़ा विस्तार से हमारे किसानों को बताएं।
2: जी हाँ, जैसे कि कैनिंग जो की जाती है ये लंबे समय तक बाहर भी भेजने के लिए, इस तरह में जो अच्छी किस्म के जो मशरूम होते हैं इसकी पूरी प्रक्रिया होती है। मशरूम को सबसे पहले अच्छी तरह से उसको जब वो मैच्योर हो जाता है, बड़ा परिपक्व हो जाता है, तब उसको तोड़ लिया जाता है चाकू की सहायता से, फिर उसकी ग्रेडिंग की जाती है, छांटा जाता है, उसकी छटाई की जाती है, तो इसमें जो अच्छे क्वालिटी का मशरूम है उसको अलग रखा जाता है, और टूटे कटे हुए या कोई बीमारी है या कोई दाग है उनको हटा लिया जाता है। ये कहने के लिए एक विशेष बात ध्यान रखनी पड़ती है कि इसमें मशरूम बहुत अच्छी क्वालिटी का ही लेना होता है। यदि वो थोड़ा भी कटा होगा तो खराब हो सकता है। इसको ठंडे पानी में धो लिया जाता है ताकि इसमें मिट्टी या जो भी इम्प्योरिटीज हैं वो निकल जाए। इसके बाद इसको ब्लांच किया जाता है, 3-4 मिनट उबलते पानी में इसको डाला जाता है और उसके बाद फिर ठंडे पानी में डाल दिया जाता है, इसकी ब्लांचिंग हो जाती है। फिर इसके बाद डिब्बों में भरने की प्रक्रिया की जाती है। तो डिब्बे का आकार सामान्यतः 2 का नाप का रखा जाता है, जिसमें 400 ग्राम मशरूम आ जाए या 250 ग्राम मशरूम आ जाए तो वो हैंडलिंग में आसान होता है। फिर इसके बाद इसकी ब्राइनिंग एक प्रक्रिया होती है, वो की जाती है। मशरूम भरने के बाद इसमें गर्म लवण जल हॉट ब्राइन सॉल्यूशन भरा जाता है। नमक का घोल इसमें बनाने के लिए 2% सामान्य नमक और 1% शक्कर का घोल और साइट्रिक एसिड डाला जाता है। ये ब्राइनिंग सॉल्यूशन कहलाता है। इसमें मशरूम में रखने की अवधि बढ़ जाती है। इसी तरह इसमें हमको इसका जो अंदर जो हवा है वो निकालना जरूरी होता है, तो इसके लिए भी हम एग्जॉस्ट बॉक्स का उपयोग किया जाता है। तो उसमें हम खोलते पानी में से 2-3 मिनट के लिए जब बॉक्स रखा जाता है ताकि उसके अंदर की जो हवा है वो निकल जाए, 0 वो उस पर आ जाए ताकि वो सुरक्षित रहे। तो इस तरह से वो आपका ये फिर उसको ठंडे किए जाते हैं डब्बों को, और डब्बों का फिर उसका लेबल रख के वो आप उसको मार्केट में भी आप उसको दे सकते हैं या फिर आप घर में उपयोग के लिए उसको रख सकते हैं।
1: जी हाँ, ये तो बड़ी अच्छी सिंपल भाषा में आपने हमारे किसान भाइयों को बताया कि किस प्रकार से प्रसंस्करण करना चाहिए और बाजार में उसको बेचने के लिए तैयार करना चाहिए। मैडम, अगर हम अपने महिला कृषकों को बताना चाहें कि मशरूम का उपयोग भोजन में कैसे करें तो थोड़ा सा संक्षिप्त में हमारी महिला कृषकों को और हमारे किसानों को बताएं।
2: जी, मशरूम का भोजन में जो हमारा दैनिक भोजन है उसमें हम बहुत चीज़ों में इसका उपयोग कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे विटामिन, इसकी बात तो हम कर ही चुके हैं, तो इसमें हम इसको कोई भी अपनी सब्जी में मिला के इसका उपयोग कर सकते हैं। इसके हम सूप बना सकते हैं, सूप जो बच्चों को बड़ों को सबको दिया जा सकता है। इसी तरह मशरूम का पाउडर बनाया जाता है जो बहुत आसान होता है, जो महिलाएं आसानी से कर सकती हैं। इसको सुखा के इसका पाउडर बना लिया जाए और वो पाउडर जो भी आपके घर में व्यंजन बन रहा है, जो भी आप चीज़ें बना रहे हैं घर में, आप पराठा बना रहे हैं, पुलाव बन रहे हैं, तो वो पाउडर का उपयोग चीला बनाए तो उस पाउडर का उपयोग आप 2 चम्मच उसमें डाल लें तो बहुत पौष्टिक हो जाता है। और इस तरह से आप उसको किसी भी खाद्य पदार्थ में मिला के इसका उपयोग किया जा सकता है।
1: जी हाँ मैडम, ये तो मशरूम के औषधीय गुण की बात करें या उसके पौष्टिक गुण की बात करें और उसको बाजार में बेचने के लिए, क्योंकि इतनी गुणवत्ता और क्या कहते हैं सारी उसमें मानव स्वास्थ्य से संबंधित चीजें इसमें भरी हुई हैं, तो किसान भाइयों का इसका उपयोग करना भी चाहिए और साथ ही साथ इसको बाजार में बेचने के लिए इसके स्वरोजगार के दृष्टिकोण से आगे आना चाहिए। मैडम, आप आई हमारे स्टूडियो में, हमारे किसान भाइयों को मशरूम से संबंधित इतनी बेहतरीन जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
2: जी नमस्कार, आपका भी धन्यवाद कि आपने हमें इस वार्ता में बुलाया।
0: हाँ, तो किसान भैया हरो, अब अपन सुन रहे थे जानकारी और जानकारी है कृषि विश्वविद्यालय से खेतों तक क्रम के अंतर्गत में मशरूम का मूल्य संवर्धन और प्रसंस्करण तकनीक विस्तार से बता रही थी डॉक्टर अर्चना पांडे मैडम, और आपसे बतकाव कर रहे थे डॉक्टर शेखर सिंह बघेल साहब। और अब तनक विराम के बाद मिलते हैं।
3: मौसम और जलवायु, यह यूनेस्को का संदेश है। क्या आपने कभी सोचा है कि मौसम और जलवायु में क्या अंतर है? आइए हम मौसम और जलवायु के बीच अंतर के बारे में जानते हैं। मौसम होता है रोजमर्रा की स्थिति, जैसे आज बारिश हो रही है या कल धूप निकलेगी, लेकिन जलवायु का दायरा बड़ा होता है। यह 30 सालों में मौसम का सामान्य स्तर होता है। मौसम और जलवायु दोनों को मापने के लिए एक ही उपकरण का उपयोग किया जाता है, तापमान, बारिश, हवा, आद्रता और दबाव। लेकिन हम मौसम का अनुमान सिर्फ कुछ दिनों के लिए ही लगा सकते हैं, जबकि जलवायु हमें दीर्घकालिक रुझान देखने में मदद करती है। यहाँ एक रोचक तथ्य है। दुनिया का सबसे पुराना तापमान रिकॉर्ड नेदरलैंड्स में बना, वो भी सन 1700 में।
0: हाँ, तो किसान भैया रो, अब बातें जब चला चला चला चला आगे बढ़ी तो हम का बताएं आपसे कि हमने देखो के बट्टू कक्का के हाथ में प्लास्टर बंद हो। पहली बेरा देखो के भैया जी तो हाथ में प्लास्टर बंद है। अब जो कायवान है हमने नेहरा हो गओ तो हमने अतिशो बूझ लई, हमने कक्का जो का पलस्टर सो बांध लो काया माल लो है मेड़ पैसे लुढ़क पड़े थे का। सो कहन लगे भज्जा मेड़ पैसे तो पूरी जिंदगी निकल गई है, आज लोग कबू नहीं लुड़के, हम तो सड़क पे आए लुढ़क गए। सो जो हाथ में लग गओ हमने कही तुमसे तो गाड़ी माड़ी कछु चलाउत नहीं बनती आए, फिर कैसे लुढ़क गए। सो कहन लगे भैया हम सड़क धारे पट्टी से निगत चले जा रहे थे, कुजाने कहाँ कि गाड़ी बारे बेजा तेज रफ्तार से निकले और हमें धक्का मारा चले गए, अब ने हम उन्हों चीने ने वे हमें चीने। हमने कही अब, हमने कही जा तो। सो कहन लगे हमने कही बेटा, हमने कही तुमने कछु करो नहीं कह, अरे कहन लगे जान तो देव माए, तुमने तो कह दई धक्का, मनो जा गनीमत है कि ज्यादा तो नहीं लगो, मनो हम सबई जनों से जाके वो चाहते हैं कि सड़क पे चला समय सुरक्षा बरतें। भैया देखो बट्टू कक्का के संगे तो जैसो भावसु ठीक है, बे तो अब सियाने आदमी आए समोक गए, बात एक अलग है, मनो हम जाई बात के वो चाह रहे कि जब भी अपन सड़क पे चलें तो सड़क पे तनक ध्यान रखें कि हमें कैसे चलने हैं, का सड़क पे चलवे के नियम हैं, पूरे नियम जैसे अपन अपने घर में नियम से रहते हैं ऐसे नियम से सड़क में गली में जहाँ जा रहे सब जहाँ अपने खो नियमों को पालन करने हैं। आजकल तो हर एक घरन में गाड़ियाँ हैं, चाहे वे दो चक्का की हों और फिर चाहे चार छः दस और बड्डी बड्डी मुतकेलो चक्कों की। सो जब भी गाड़ी से चलें तो हेलमेट जरूर लगा ले, जैसे अपन दो चक्कों की से जा रहे तो हेलमेट लगा लो, चार चक्कों की से जा रहे तो सीट बेल्ट लगा लो, और भैया यहाँ सो अंधाधुंध नहीं भगने, सीमित गति में अपन हों गाड़ी चलाने है कि मान लो कछु सामने कुत्ता भी लज्जा आ जावे एकदम से तो अपन वो गाड़ी खो रोक तो सकें, होते वो ऐसी अपनी वो में तो कर सकें कब्जे में, तो इतनी भागम भाग ने भगाएं अपने सीमित गति से दौड़ाएं। और एक बात और है जो बड़े काम की है कि शराब या फिर दूसरे मादक पदार्थन को सेवन करके गाड़ी घोड़ा न चलावें, और अगर ऐसो है आप नहीं जो सब कछु कर रहे अच्छी बात है, फिर दूसरी बात जा है कि उस नींद में गाड़ी सोई न चलाएं, अगर आपकी नींद पूरी नहीं भैया है नींद की झपकी आ रही है तो बिल्कुल एक किनारे में गाड़ी ठाड़ी कर दो कौन पेड़े के छायरे में सड़क किनारे, और तना घंटा दो घंटा आराम कर लो, नींद हो पूरी कर लो उके बाद फिर चलो। तो जब अपन ऐसे चले हैं ऐसी सोच विचार को चल हैं तो जुन जे दुर्घटनाएँ गली धरें हो जाती हैं वे दुर्घटनाएँ बिल्कुल न हुए हैं काय के अपन खुदाई सतर्क हैं, और जहाँ भी होए ऐसो कहते दुर्घटना संभावित क्षेत्र है तो भैया उतें अब पहले से अपनी गाड़ी को कब्जे में कर लेवें। और हम बतावो चाहें कि बे ग्रामीण सड़कें होवें चाहे शहरी सड़कें होवें और चाहे भैया राजमार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग होवें, सभी जहाँ यातायात के नियमन को अपन का पालन करो चाहिए। तख्ती गड़ी रहती हैं सड़क किनारे, आपने देखो हुई है के उन पे कछु कछु संकेत के नियम लिखे रहते हैं, उनको अपन के पालन करो चाहिए। ओई तख्तियन के ऊपर हमने एक नंबर लिखो देखो, सो हम लिखो ले आए थे, हमने कही सभी किसान भज्जाहन के लाना हम जो नंबर जरूर बते हैं, कैसे के अपन औरों के ढेंगा पास दूर कहूँ न कहूँ जाने ही पड़ा थे, तो जो टोल फ्री नंबर कहा उत भज्जा जो है 1033, माने 1033 नंबर एक चार अंक रहते हैं, अपन कहो तो 1033 जो तख्ती पे लिखो रहते हैं। मान लो अपन चले जा रहे कहूँ दूर दराज जा रहे, राष्ट्रीय राजमार्ग है कि अंतर्राष्ट्रीय राजमार्ग है, तो ई नंबर पे अगर अपन को कोनो दिक्कत परेशानी हो गई है ई नंबर पे आप फोन लगे हो तो तुरंत वही जगह पे आपके लाने आपकी समस्या को समाधान करवे के लाने उतने को न को पहुँचे। दूसरी बात जा के जहाँ देखो तई जे लाल बत्ती हरीरी बत्ती सोई लग गई हैं, सो जब लाल बत्ती लिस जाए तो तुरंत ही ठाड़े हो जाओ, जो लो हरीरी बत्ती न जले जो लो एक एक डग अपन को आगे नहीं बढ़ाऊने आए सो उते रुके रहो, और आगे बढ़ जे हो तो भैया वो फिर अपन को नुकसान होते है। कैसे के अपने घर में अपनी बहू हैं दद्दा हैं अपनी पत्नी है अपने बच्चा हैं वे सबई अपनी गली हेरत हैं कि पापा आवे बारे हैं के दादा आवे बारे हैं, और फिर अपन उनको सुरक्षित अपने घर सुई पहुँचने हैं। तो ऐसी कछु चीज़ें जे अपन को अपने यातायात के नियमन के संगे अपनाऊने हैं। और फिर अब इतनी बात कहें और अब आप औरों को मनोरंजन करवाऊने हैं जी ब्याह गीत से, तो हम फिर अपनी इतनी बात कहें, फिर जी भज्जान को जो माइक दें हैं

कि पार्वती के ब्याह से दूल्हा मिलोने मोखन दे, मोखें देखन मिलोने। फिर से सुनो जा बात कि पार्वती के ब्याह से दूल्हा मिलोने देखन मोए, और अब देखो तो का कहूँ ऐसो नैया कोय बेल पे करें सवारी, बर ततैया अंग माल सरपन की प्यारी, बिल्कुल नहीं बदले आए पति हैं जियई सती के, अब लेखें आए बरात ब्याह में पार्वती के।

हाँ तो किसान भैया हरो, अबे अपन जो लोकगीत सुन रहे थे और गावे बारे कलाकार विनोद कुमार सेन और उनके संगी साथी, और जैसे यहाँ पौरों की कौन ऐसी समस्या है और अपने कृषि जगत कार्यक्रम के माध्यम से आप उनको समाधान चाहत हो तो उके लाने आप और चिट्ठियाँ हमें लिख सकत हो। हमारे ये देखो पता है कृषि जगत कार्यक्रम द्वारा उपनिदेशक कार्यक्रम आकाशवाणी जबलपुर कटंगा जबलपुर मध्य प्रदेश, पोस्ट बॉक्स नंबर है 14 और पिन कोड है 4820001 जो हमारे तय को पता है। और भज्जा अब तनक गर्मी सोई ज़्यादा पड़ रही है और ये गर्मी से अपन औरों के कछु तनक सावधानी सोई बरतने हैं, बाल बच्चों के अच्छे से रखने हैं। और हाँ इत तो काम और करने हैं कि जो अनामत अपन पानी बहावत हैं सो भैया पानी की बचत जरूर करें। और अब घड़ी कह रही है कि लखन भैया अब धीरे धीरे तो मैं सोई अपने घरे जाने हैं, सब जनों से ले विदा। तो सभी जनों से हमारी दो हाथ जोड़ के हैं राम राम और जय जवान जय किसान।

0: नमस्कार, सुर्खियों में कार्यक्रम के आज के अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं सोनू सूद और आज हम सोमनाथ, अमृत पर्व, भारत की सांस्कृतिक चेतना और राष्ट्रीय गौरव का उत्सव विषय पर चर्चा करेंगे। इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार सतीश मोरी। सतीश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आकाशवाणी में।
1: नमस्कार
0: सतीश जी, जैसा कि हम जानते हैं आज सोमनाथ अमृत पर्व का अवसर था और प्रधानमंत्री ने इस पर्व में भाग लिया, जलाभिषेक किया और उन्होंने बहुत ही प्रेरणात्मक संबोधन भी दिया इस अवसर के महत्व को लेकर। इससे पहले कि हम चर्चा शुरू करें, आइए सुनते हैं कि उन्होंने क्या कहा।
2: 75 साल पहले आज के ही दिन सोमनाथ मंदिर की पुनर्स्थापना, ये कोई साधारण अवसर नहीं था। अगर 1947 में भारत आजाद हुआ था तो 1951 में सोमनाथ की प्राण प्रतिष्ठा ने भारत की स्वतंत्र चेतना का उद्घोष किया था। आजादी के समय सरदार साहब ने 500 से ज्यादा रियासतों को जोड़कर एक भारत का आधुनिक स्वरूप गढ़ा था, तो साथ ही सोमनाथ के पुनर्निर्माण से उन्होंने दुनिया को बताया था, भारत केवल आजाद नहीं हुआ है, भारत अपने प्राचीन गौरव को पुनः हासिल करने के मार्ग पर भी अब आगे बढ़ चुका है।
0: सो सतीश जी, जैसे प्रधानमंत्री जी ने बहुत खूबसूरती से इंगित किया कि ये प्राचीन मंदिर है और ये पहले भी बहुत चुनौतियों से गुजर चुका है, थोड़ा सा अगर आप संक्षेप में हमें इसके इतिहास के बारे में बताएं और ये बताएं कि इसका अभी तक इतने गौरवपूर्ण रूप में खड़े रहना कितना महत्वपूर्ण है।
1: ये देखा जाए तो सोमनाथ पे बार बार हमला हुआ था पहले, ये 1000 साल पहले भी बार बार हमला हुआ और सोमनाथ टेम्पल को धराशय किया गया। बाद में ये भारत की आजादी के टाइम से ये सोमनाथ टेम्पल को पुनः प्रतिष्ठित करने के लिए सरदार वल्लभ भाई ने एक स्वप्न देखा था, उसके हिसाब से हमारे राष्ट्रपति राजेंद्र बाबू जी ने उसका शिलान्यास किया और ये शिलान्यास करते करते मंदिर का बांधकाम आगे बढ़ा। 1994-95 में हमारे राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा जी ने नृत्य मंडप का भी लोकार्पण किया और उसके पे कलश लगाने की जो बात थी उसको कलश लगाया और ऐसे पवित्र जो लोग थे उन्होंने उसमें साथ देके ये सोमनाथ मंदिर का अभी तक में निर्माण पूरा कर दिया है। और अभी के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ये सोमनाथ ट्रस्ट के ट्रस्टी भी है और इतना इंटरेस्ट ले रहे हैं कि सोमनाथ मंदिर को एक राष्ट्र लेवल पे सब एक जुट रहे लोग उसके लिए का एक सेंटर बनाना चाहते हैं और एक प्रेरणा का स्रोत है ऐसा दिखाना चाहते हैं। सोमनाथ ट्रस्ट पे जब हमला होता था तब हमीर जी गोहिल की भी शहादत हुई थी, बाद में आजादी के बाद अहल्याबाई होलकर और गायकवाड़ जी सबने अपना योगदान देके मंदिर बनाने में सहयोग दिया। उसके बाद अभी जो जामनगर के राजवी है जाम साहब, उसके जो वंशज है वो भी उनके प्रमुख रहे हैं और उन्होंने भी सोमनाथ मंदिर का निर्माण में बहुत बड़ा योगदान दिया है। वो हमारे कन्हैयालाल मुंशी हो, सरदार वल्लभ भाई पटेल हो या जाम साहब हो या गायकवाड़ हो, उन सब ने अपना योगदान देके ये मंदिर को अभी तक का जो स्वरूप बना है वो भव्य स्वरूप बनाने में अच्छी तरह से अपना योगदान दिया है। अभी तो ये अथॉरिटी भी एक बना दी है मंदिर के लिए कि जितने भी इलीगल कंस्ट्रक्शन है या तो जो लीगल है उसको भी सोमनाथ ट्रस्ट में लेके उसका डेवलपमेंट ऐसे किया जाए कि एक

0: धार्मिक स्थान के साथ साथ प्रवास के लिए भी एक स्थान बने, उसके लिए भी वड़ा प्रधान नरेंद्र भाई मोदी ने कोशिश की है। 3 साल पहले भी सोमनाथ तमिल संगम करके तमिल से लोग आए थे और 5,000 से ज्यादा लोग तमिल से आए थे और सोमनाथ तमिल संगम करके एक उत्सव किया था
1: जी।
0: ऐसे हर साल में कोई ना कोई अलग अलग उत्सव होता रहता है और लोग ज्यादा से ज्यादा सोमनाथ मंदिर के प्रति जुड़ते जा रहे हैं। और उसमें शाम के टाइम पे लाइट एंड साउंड शो हो रहा है, तो ये सब चीज प्रवासी लोग आके देखते हैं। अभी उसमें एक और जोड़ दिया है कि सोमनाथ मंदिर का जो हिस्ट्री है उसके बारे में भी एक प्रेजेंटेशन होने वाला है, मीन्स ये शो भी होगा, तो लोगों को ज्यादा से ज्यादा जुड़ जाए उसके लिए प्रधानमंत्री कोशिश कर रहे हैं।
1: सो आपको लगता है कि इस तरह के जो प्रेरणात्मक धर्म स्थल होते हैं, जैसे अभी स्वाभिमान पर्व भी हुआ था, सोमनाथ स्वाभिमान पर्व, क्योंकि 1,000 साल हुए थे जो पहला रिकॉर्डेड अटैक है महमूद गजनी का इस स्थल पर उसको, तो उसके बाद जैसे आपने बताया कि कई बार इसका विध्वंस हुआ, लेकिन सबने मिलकर, श्रद्धालुओं ने, राजाओं ने आगे आकर उसका पुनर्निर्माण किया और ये साइकिल कई बार रिपीट हुई। सो आपको लगता है कि बार बार विध्वंस के बावजूद सोमनाथ का भारतीयों की सामूहिक चेतना से कभी भी लोप नहीं हुआ, ये जो एक कॉन्शियसनेस है ये हमेशा रही, ये कितना इम्पोर्टेंट है हमारी जो देश है उसकी एकता के लिए? और जैसा आप कह रहे हैं कि देश के कोने कोने से यहाँ पे श्रद्धालु आते हैं और मिलकर यहाँ पर पूजा अर्चना होती है,
0: देश के कोने कोने से लोग आ पाए, अलग अलग वहीं पे जो फैसिलिटी उपलब्ध करवा जा रही है, और वहीं एक पूरा जैसे अहमदाबाद में रिवर फ्रंट है इस टाइप का एक सीशोर पे भी एक बड़ा डेवलपमेंट हो रहा है। मंदिर के डेवलपमेंट के साथ साथ वहीं नेचर के साथ भी डेवलपमेंट हो रहा है और लोग जो सोमनाथ आते हैं नजदीक में जो लायन सेंचुरी है उसका भी विजिट करते हैं। कई लोग सोमनाथ के साथ द्वारका का भी दर्शन के लिए जाते हैं, क्योंकि जितना सोमनाथ पुराना है ऐसे द्वारका नगरी भी पुरानी
1: जी।
0: मीन्स हमारी विरासत है भारतीयों की, तो उसके साथ जुड़ते हैं और लोग धार्मिकता के साथ प्रवास का भी आनंद लेते हैं और बहुत से लोग जुड़ते हैं। इसमें अभी जो ये लाइट साउंड हो रहा है या ये हिस्टोरिकल बता रहे हैं, इससे यूथ भी ज्यादा से ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं और उसमें अपने आप का पार्टिसिपेशन कर रहे हैं। और मैं एक बात और बताऊं कि सोमनाथ मंदिर की आरती उनकी वेबसाइट पे डेली लाइव होती है, कि वो भी नरेंद्र मोदी जी जब गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे तब से ये सोमनाथ मंदिर की आरती लाइव लोग घर पे देख पाए, इसलिए भी इंतजाम उन्होंने किया है, तो विदेश में बैठे लोग भी सोमनाथ का दर्शन कर पाए, इसलिए भी प्रधानमंत्री का विजन था तो ये भी किया हुआ है।
1: जी बिल्कुल, इनफैक्ट जो ये सांस्कृतिक विरासत और हमारी जो आध्यात्मिक एकता है उसका कितना बड़ा प्रतीक है, इसके बारे में प्रधानमंत्री ने आज अपने संबोधन में क्या कहा, आइए सुनते हैं।
2: यहाँ देख रहा हूँ विनाश में सृजन के संकल्प को, जिसे सोमनाथ ने चरितार्थ किया है। मैं यहाँ देख रहा हूँ असत्य पर सत्य की विजय को, जिसे प्रभाष पाटन ने बार बार जिया है। मैं यहाँ देख रहा हूँ हजारों वर्षों की आध्यात्मिक चेतना को, जिसने मानव मात्र के कल्याण की सीख समूचे विश्व को दी है। मैं यहाँ देख रहा हूँ भारत के उस अविनाशी स्वरूप को, जिसे सदियों के कुत्सित प्रयास भी न मिटा सके न हरा सके।
1: जिस तरह से अभी प्रधानमंत्री ने कहा कि विनाश में सृजन कैसे होता है, असत्य में सत्य की जीत कैसे होती है, बहुत सारी प्रेरणात्मक यहाँ से हमें सीख मिलती है। आपको लगता है ऐसा पर्व जब होता है, स्वाभिमान पर्व या सोमनाथ अमृत पर्व, और ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ते हैं, आपको लगता है कि देश के युवाओं को भी प्रेरणा मिलती है, गौरव उत्पन्न होता है, एक आत्मविश्वास उत्पन्न होता है हमारी जो सांस्कृतिक विरासत है उसमें?
0: डेफिनेटली होता है, क्योंकि ये लोग कुछ लोग आध्यात्मिक हिसाब से वहीं विजिट करते हैं, कुछ लोग एक टूरिस्ट प्लेस के हिसाब से विजिट करते हैं, कुछ लोग ये सीशोर है इसलिए भी आना चाहते हैं, तो ऐसे अलग अलग एंगल से लोग आते हैं और जुड़ते जा रहे हैं। अलग अलग पर्व हो रहा है, अलग अलग उत्सव हो रहा है। जब महाशिवरात्रि होती है तब भी सोमनाथ का बहुत महत्व है और उसका जो शिवरात्रि की रात्रि के टाइम पे बहुत बड़ा उत्सव होता है, वहीं लाखों की मेदनी इकट्ठी होती है और सोमनाथ में अपना पर्व मनाते हैं, उत्सव मनाते हैं। ऐसा साल में अलग अलग टाइम पे अलग अलग उत्सव के टाइम पे भी ऐसे लोग जुड़ते हैं और आते रहते हैं।
1: तो जैसा कि प्रधानमंत्री ने भी कहा कि ये सिर्फ आध्यात्मिक प्रगति ही नहीं है, ये सामाजिक और आर्थिक प्रगति के भी स्रोत होते हैं जब ऐसे तीर्थ स्थलों को, धर्म स्थलों को डेवलप किया जाता है। और जो आप टूरिज्म की बात कर रहे थे, 97 लाख श्रद्धालुओं से अधिक हर वर्ष यहाँ आते हैं, और जिस तरह की वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी डेवलप की गई है जिसमें वंदे भारत और अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट भी शामिल है, ये आपको लगता है ये पूरे आर्थिक विकास के लिए भी एक बहुत इम्पोर्टेंट स्रोत है?
0: वो सही बात है, क्योंकि ये जो टूरिस्ट आते हैं तो इसके हिसाब से जो आनुषंगिक जो व्यवसाय है सब टूरिस्ट के बेस पे, तो आनुषंगिक व्यवसाय भी बढ़ता है, यूथ को एम्प्लॉयमेंट भी मिलता है और वहीं की जो लोकल कम्युनिटी है उसका भी ग्रोथ होता है। तो ये सब हिसाब से टूरिस्ट प्लेस बहुत मायने रखता है। और पहले सोमनाथ आज से 10-15-20-25 साल पहले देखो तो सिर्फ दर्शन का स्टेशन था, पहले ऐसा ही मानते थे कि दर्शन के लिए जाना है। अभी वहीं अलग अलग एक्टिविटी इतनी शुरू हो गई है कि लोग दर्शन के अलावा भी अपना आनंद प्रमोद के लिए जा सकते हैं और वहीं रुकते हैं। पहले 2-4 होटल थी, अभी तो इतनी होटल भी हो गई है, इतनी धर्मशालाएं हो गई है, अलग अलग ट्रस्ट के भी बिल्डिंग बन गए है, तो लोग आके रहते हैं, अच्छी फैसिलिटी भी उपलब्ध करवा जा रही है। जैसे आपने बोला वंदे भारत, सोमनाथ में पहले मीटर गेज रेलवे लाइन थी, वो अभी ब्रॉड गेज में कन्वर्ट हो गई है, तो इसके हिसाब से ज्यादा ट्रेन की भी कनेक्टिविटी हो गई है और पास में ही केशोद एयरपोर्ट है, दीव का एयरपोर्ट है, उसकी भी फैसिलिटी मिल रही है। तो इस हिसाब से लोग ज्यादा से ज्यादा इजिली वहीं अप्रोच करके जा सकते हैं।
1: जी, और एक और चीज़ जो आज प्रधानमंत्री ने जिस पर ध्यान केंद्रित किया, वो उन्होंने कहा कि ये तिथि बहुत महत्वपूर्ण है, भारत की जो परमाणु शक्ति है उसको दर्शाने के दृष्टिकोण से भी। आइए सुनते हैं, क्योंकि जो सोमनाथ मंदिर है वो भगवान शिव का मंदिर है जो शक्ति के प्रतीक है, उस संदर्भ में उन्होंने ये बात कही। आइए उनके शब्दों में सुनते हैं उन्होंने क्या कहा।
2: 11 मई 1998 यानी आज के ही दिन देश ने पोखरण में परमाणु परीक्षण किया था। देश ने 11 मई को पहले 3 परमाणु परीक्षण किए। हमारे वैज्ञानिकों ने भारत के सामर्थ्य को, भारत की क्षमता को दुनिया के सामने रखा। दुनिया भर की शक्तियां भारत को दबोचने के लिए मैदान में उतरी। अनेक प्रकार के बंधन लग गए। उस समय पूरी दुनिया का दबाव भारत पर था, लेकिन अटल जी के नेतृत्व में बीजेपी सरकार ने दिखाया था कि हमारे लिए राष्ट्र प्रथम है, दुनिया की कोई ताकत भारत को झुका नहीं सकती।
1: तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही है कि दुनिया की कोई भी ताकत भारत को झुका नहीं सकती, जिसका एक सिंबल सोमनाथ टेम्पल भी है। और जो उनका एक हमेशा से वर्तमान सरकार का एक मूल मंत्र रहा है, विरासत भी विकास भी, आपको लगता है ये भी बहुत अच्छी तरह चरितार्थ होता है? एक तरफ हम विरासत को पूरा उसका संरक्षण पर बहुत ध्यान दे रहे हैं, उसके प्रति जागरूकता फैला रहे हैं जैसा ये महोत्सव इंगित कर रहा है, दूसरी तरफ विकास वो चाहे एकदम एडवांस्ड फील्ड में हो, एटॉमिक पावर में हो, शक्ति हमारी जो है वो किसी भी और देश से कम नहीं होनी चाहिए, उस पर भी हमारा पूरा ध्यान है, तो इस दृष्टिकोण को आप कैसे देखते हैं?
0: देखो, सोमनाथ को शक्ति केंद्र भी बोला जाता है
1: जी।
0: वहीं लोग आते हैं, वो अपना मन की शांति लेते हैं, आध्यात्मिक विचारों की उन्नति होती है, और लोग जहाँ शक्ति केंद्र में आते हैं वहीं से एक अलग चेतना लेके जाते हैं और अपने आप को महसूस करते हैं कि मैं आगे जाके और तरक्की करूंगा, इधर मैंने सोमनाथ मंदिर का दर्शन किया है तो एक अपने आस्था का भी केंद्र है। इस हिसाब से देखा जाए तो सोमनाथ मंदिर बहुत महत्वपूर्ण मंदिर है और जितने भी धार्मिक स्थल है उसमें सोमनाथ का महत्व अलग ही है। वो भारत का प्रथम ज्योतिर्लिंग है, इसलिए भी लोग 12 ज्योतिर्लिंग को जाते हैं तो पहले सोमनाथ आते हैं और दर्शन करते हैं, तो इस रूप से भी बहुत महत्व सोमनाथ का बनता जा रहा है।
1: जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सतीश जी, आप हमारे साथ जुड़े और आपने हमें बारीकी से बताया कि क्या महत्व है जो सोमनाथ अमृत महोत्सव हो रहा है उसका पूरे देश के लिए, हमारे आध्यात्मिक, हमारे सामाजिक, हमारे आर्थिक विकास के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। श्रोताओं, इस कार्यक्रम को आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही सुर्खियों में कार्यक्रम समाप्त हुआ।

0: नमस्कार।
1: सुर्खियों में
2: श्रोताओं, हम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। रात के 8:15 बजने को है, लीजिए प्रस्तुत है फिल्म संगीत। इस कार्यक्रम में सबसे पहले हम आपको सुना रहे हैं फिल्म माय नेम इज़ खान का ये गीत, जिसे गाया है राहत फतेह अली खान ने। शंकर एहसान लॉय का संगीत है।

फिल्माइन में इस खान से इस गीत को सुनने के विशेष ख्वाहिशमंद थे श्री रूपाली शर्मा, भव्या शर्मा, कांचल शर्मा, सागर से आतिथ्य, सागर से ही प्रियंका एवं डिंडोरी से पंकज। आप सभी श्रोताओं की विशेष फरमाइश पर आपने ये गीत सुना। श्रोताओं, और अब एक महत्वपूर्ण सूचना। आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्ष पूर्ण हो जाने के उपलक्ष्य में आकाशवाणी जबलपुर मंगलवार 12 मई को सुगम संगीत सभा सुर संध्या का आयोजन कर रहा है, जिसमें आप सभी आमंत्रित हैं। मंगलवार 12 मई 2026 शहीद स्मारक प्रांगण जबलपुर में आकाशवाणी की संगीत सभा सुर संध्या। स्थान, समय, तिथि का विशेष ध्यान रखें। 12 मई मंगलवार संध्या 7:30 बजे शहीद स्मारक प्रांगण जबलपुर में। आमंत्रण पत्र प्राप्त करने के लिए आप आकाशवाणी जबलपुर के कटंगा स्थित कार्यालय में आ सकते हैं और अपने जो विशेष आमंत्रण पत्र हैं वो प्राप्त कर सकते हैं। चलिए कार्यक्रम में बढ़ते हैं, अगला गीत आपको सुनाते हैं। ये है फिल्म नमस्ते लंदन का गीत। राहत फतेह अली खान, कृष्णा बेरुआ ने इसे गाया है। संगीत है हेमेश रेशमिया का और बोल हैं जावेद अख्तर के।

यह आकाशवाणी जबलपुर है, श्रोताओं आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम का अगला गीत हम आपके लिए लेकर आए हैं फिल्म ना तुम जानो ना हमसे। पमेला जैन, उदित नारायण के इसमें आवाजें हैं, आनंद बख्शी के बोल हैं, राजेश रोशन का संगीत।

कार्यक्रम फिल्म संगीत आप सुन रहे हैं, ये आकाशवाणी जबलपुर है। श्रोताओं, अगला गीत जो हम आपके लिए लेकर आए हैं वो है फिल्म मुस्कान से। उदित नारायण अनुराधा पौंडवाल की आवाज़ है और समीर के बोल है, निखिल विजय का संगीत है। आपको बता दें कि विशेष फरमाइश इस गीत को सुनने के लिए पंकज, प्रियंका, आतिथ्य, काजल, भव्या एवं रूपाली, आप सभी ने डिंडोरी और सागर से इस गीत को सुनना चाहा है, आप सभी की पसंद पर। लीजिए सुनिए ये गीत।

श्रोताओं, हम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। एक विशेष सूचना आप सभी के लिए श्रोताओं, आकाशवाणी जबलपुर के, दरअसल आकाशवाणी जो देश भर में गौरवशाली 90 वर्ष पूर्ण कर चुकी है, उसके उपलक्ष्य में आकाशवाणी जबलपुर मंगलवार 12 मई को सुगम संगीत सभा सुर संध्या का आयोजन कर रहा है, जिसमें आप सभी आमंत्रित हैं। मंगलवार 12 मई शहीद स्मारक प्रांगण जबलपुर में आकाशवाणी की संगीत सभा सुर संध्या। स्थान एक बार फिर, समय एक बार फिर आपको बता देते हैं, 12 मई मंगलवार संध्या 7:30 बजे शहीद स्मारक प्रांगण में। आमंत्रण पत्र जो है आप आकाशवाणी जबलपुर के कटंगा स्थित कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं। तो श्रोताओं, इस भव्य आयोजन का हिस्सा जरूर बनिए, इस मौके को मत गवाइए। और फिलहाल आपके लिए लेकर आए हैं हम नमस्ते लंदन, इस फिल्म का ये गीत हिमेश रेशमिया और सुनिधि चौहान की आवाज़ें हैं, हिमेश रेशमिया का संगीत और जावेद अख्तर के बोल।

0: नरेंद्र मोदी ने लोगों से राष्ट्रीय संसाधनों पर बोझ कम करने के लिए एकजुट होने का आह्वान किया। पश्चिम एशिया संघर्ष को दशक के सबसे बड़े संकटों में से बताया। सरकार ने कहा, पेट्रोलियम उत्पादों की कोई कमी नहीं, कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का 60 दिन का तथा एलपीजी का 45 दिन का भंडार उपलब्ध। केंद्र सरकार ने 1 जुलाई से विकसित भारत जी राम जी अधिनियम के कार्यान्वयन की अधिसूचना जारी की। भारतीय जनता पार्टी नेता हेमंत बिस्व सरमा कल असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। ये राज्य में एनडीए का लगातार तीसरा कार्यकाल होगा। मौसम विभाग ने गुजरात, मध्य महाराष्ट्र, राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में कल लू चलने का अनुमान व्यक्त किया और भारतीय पुरुष टीम वनडे क्रिकेट टीम रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर बरकरार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम एशिया संघर्ष को एक दशक के सबसे बड़े संकटों में से एक बताते हुए राष्ट्रीय संसाधनों पर बोझ कम करने के लिए नागरिकों से एकजुट होने का आह्वान किया है। वडोदरा में सरदार धाम छात्रावास का लोकार्पण करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है कि इस स्थिति का देशवासियों पर कम से कम प्रभाव पड़े।
1: पिछले कुछ वर्षों में दुनिया लगातार अस्थिर परिस्थितियों से गुजर रही है। पहले कोरोना का संकट, फिर वैश्विक आर्थिक चुनौतियां और अब पश्चिम एशिया में बढ़ता तनाव। अगर कोरोना महामारी इस सदी का सबसे बड़ा संकट थी तो पश्चिम एशिया में युद्ध से बनी परिस्थितियां इस दशक के बड़े संकटों में से एक है। ऐसे समय में देश को जन भागीदारी की शक्ति की बहुत बड़ी आवश्यकता है। आज जरूरत है कि हम सब मिलकर अपना दायित्व निभाएं, देश के संसाधनों पर पड़ने वाले बोझ को कम करें।
0: प्रधानमंत्री ने लोगों से 7 सूत्रीय अपील को अपनाने का आग्रह दोहराया।
1: पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो, हम सोने की खरीद को टाले।
0: श्री मोदी ने देशवासियों से विदेशों से आयातित उत्पादों का उपयोग कम करने और विदेशी मुद्रा के व्यय से जुड़े व्यक्तिगत कार्यों से बचने का आग्रह किया। उन्होंने नागरिकों से स्वदेशी उत्पादों का अधिक से अधिक उपयोग करने का आह्वान किया। इससे पहले प्रधानमंत्री सोमनाथ अमृत महोत्सव में शामिल हुए। श्री मोदी ने कहा कि सोमनाथ मंदिर अटूट आस्था, दिव्यता और देश की शाश्वत आत्मा का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि सोमनाथ अमृत पर्व केवल अतीत का उत्सव नहीं है, बल्कि लगातार आने वाले 1000 वर्षों तक देश की प्रेरणा बना रहेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि सोमनाथ लोगों को ये याद दिलाता है कि कोई भी राष्ट्र अपनी जड़ों से जुड़ा रहकर ही लंबे समय तक मजबूती से खड़ा रह सकता है।
1: आजादी के समय सरदार साहब ने 500 से ज्यादा रियासतों को जोड़कर एक भारत का आधुनिक स्वरूप गढ़ा था, तो साथ ही सोमनाथ के पुनर्निर्माण से उन्होंने दुनिया को बताया था, भारत केवल आजाद नहीं हुआ है, भारत अपने प्राचीन गौरव को पुनः हासिल करने के मार्ग पर भी अब आगे बढ़ चुका है।
0: प्रधानमंत्री ने सोमनाथ अमृत पर्व पर एक विशेष डाक टिकट और 75 रुपए का विशेष सिक्का भी जारी किया। केंद्र सरकार ने कहा है कि पेट्रोलियम उत्पादों की कोई कमी नहीं है, कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का 60 दिन का तथा एलपीजी का 45 दिन का भंडार उपलब्ध है, विदेशी मुद्रा भंडार 703 अरब डॉलर के स्तर पर है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में मंत्री समूह की बैठक में ये जानकारी दी गई। भारत उन चुनिंदा देशों में से है जहां संघर्ष शुरू होने के 70 दिन के बाद भी पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतें स्थिर हैं। भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा तेल शोधक और पेट्रोलियम उत्पादों का 4था सबसे बड़ा निर्यातक है। सरकार ने कहा कि लोगों को घबराने या ईंधन और अन्य उत्पादों की अत्यधिक खरीद करने की आवश्यकता नहीं है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: बैठक के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अधिकारियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपीलों को जमीनी स्तर पर लागू करने के लिए ठोस कदम उठाने के निर्देश दिए। प्रधानमंत्री ने लोगों से मेट्रो और

0: सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने और कारपूलिंग को अपनाकर पेट्रोल और डीजल की खपत कम करने का आग्रह किया था। उन्होंने एक वर्ष के लिए विदेश यात्रा टालने जैसे विवेकपूर्ण खर्च पर दोबारा सोचने का आग्रह नागरिकों से किया था। श्री मोदी ने एक वर्ष के लिए विदेशों में कार्यक्रम आयोजित करने या अत्यधिक सोने की खरीदारी को सीमित करने का भी आग्रह किया था। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने किसानों से रासायनिक उर्वरकों का उपयोग 50% तक कम करने, प्राकृतिक कृषि पद्धतियों को अपनाने का आग्रह किया। शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: सरकार ने कहा है कि देश भर में पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है और घरेलू एलपीजी की आपूर्ति निरंतर जारी है। नई दिल्ली में आज पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार उपभोक्ताओं को ईंधन की आपूर्ति सुनिश्चित कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से पेट्रोल और डीजल की खपत कम करने की अपील की है।
2: माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के सभी लोगों से आग्रह किया है कि पेट्रोल और डीजल की खपत कम करें, जहां भी संभव हो मेट्रो और सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें, कार पूलिंग का विकल्प चुनें, रेलवे एज अ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फॉर गुड्स को प्रेफर करें और जहां भी संभव हो इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग बढ़ाएं।
1: रसायन और उर्वरक मंत्रालय की अपर सचिव अपर्णा शर्मा ने कहा कि देश में उर्वरकों का पर्याप्त भंडार है।
3: For the season of Kharif 2026,
4: खरीफ 2026 सीजन के लिए उर्वरकों का भंडार 51% से अधिक उपलब्ध है। प्रमुख उर्वरकों की अधिकतम खुदरा मूल्य MRP में भी लगभग स्थिरता बनी हुई है। संकट काल के बाद देश में उर्वरकों का घरेलू उत्पादन 76.78 लाख मीट्रिक टन रहा है, जबकि आयात के माध्यम से 19.94 लाख मीट्रिक टन उर्वरक प्राप्त हुए हैं। संकट की स्थिति के बाद लगभग 97 लाख मीट्रिक टन उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है।
1: कई केंद्रीय मंत्रियों ने भी देशवासियों से प्रधानमंत्री की 7 अपीलों का पालन करने का आग्रह किया है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोगों और कारोबारियों से विदेशी मुद्रा की आवश्यकता वाली वस्तुओं पर खर्च कम करने का आग्रह किया। वहीं कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि देश में खाद्यान्न का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्र सरकार ने विकसित भारत जी रामजी अधिनियम 2025 के कार्यान्वयन की अधिसूचना जारी कर दी है। ये अधिनियम इस वर्ष 1 जुलाई से देश भर में लागू हो जाएगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि देश भर में इसके कार्यान्वयन के लिए वर्तमान वित्त वर्ष में 95,692 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
2: विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 20 साल पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की जगह लेगा। इस नए अधिनियम का उद्देश्य एक वित्तीय वर्ष में रोजगार गारंटी को 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन करना है। इसके अलावा यह अधिनियम समय पर मजदूरी के साथ साथ पारदर्शी और जवाबदेह भुगतान पर जोर देता है। यदि निर्धारित समय के भीतर किसी को काम उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो इस नए अधिनियम में बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि आज ही के दिन वर्ष 1998 में पोखरण में 3 परमाणु परीक्षण किए गए थे। उन्होंने बताया कि पिछले एक दशक में देश में स्टार्टअप्स के साथ रक्षा उत्पादन और निर्यात में कई गुना वृद्धि हुई है।
3: वर्ष 2014 में हमारे पास 350 से 400 स्टार्टअप थे। आज हमारे पास 2 लाख से अधिक स्टार्टअप हैं। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम में हम दुनिया में तीसरे स्थान पर हैं। सिर्फ एक दशक में हमारा रक्षा उत्पादन 174 गुना बढ़कर 1,54,000 करोड़ रुपए हो गया है और हमारा रक्षा निर्यात भी एक दशक में 34 गुना बढ़कर 23,622 करोड़ रुपए तक पहुँच गया है।
1: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि बाघ, शेर, चीता जैसे बिग कैट्स के संरक्षण के लिए कॉरपोरेट फंडिंग बहुत जरूरी है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में उन्होंने बताया कि भारत अगले महीने राष्ट्रीय राजधानी में पहले अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा।

0: का उद्देश्य बाघ, शेर, चीता और हिम तेंदुआ सहित 7 प्रमुख बिग कैट्स की प्रजातियों का संरक्षण करना है।
1: IBCA प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की एक पहल है बिग कैट्स के संरक्षण के महत्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे कि उनके रहने के ठिकाने, तकनीक आधारित निगरानी, सामुदायिक संरक्षण, क्षमता निर्माण और संरक्षण के प्रति जागरूकता को सहयोग देने के लिए कॉर्पोरेट जगत का साथ बेहद महत्वपूर्ण है। मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि आप इन बिग कैट्स को बचाने के लिए आगे आएं।
2: टू कम फॉरवर्ड टू सेव द बिग कैट्स।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। असम में कल हेमंत बिस्व सरमा लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। गुवाहाटी में शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन सहित कई केंद्रीय मंत्री और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसी के साथ श्री सरमा लगातार 2 बार मुख्यमंत्री बनने वाले पहले गैर कांग्रेसी नेता बन जाएंगे। ये राज्य में NDA का लगातार 3रा कार्यकाल होगा। पुदुचेरी में बुधवार को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन नेता एन रंगासामी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रभारी डॉक्टर मनसुख मांडविया तथा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन सहित कई नेता शामिल होंगे। पश्चिम बंगाल सरकार ने बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल को जमीन हस्तांतरित करने का निर्णय लिया है। राज्य में नई गठित सरकार के बाद पहली मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया कि तृणमूल कांग्रेस की पिछली सरकार ने घुसपैठ को बढ़ावा देने के लिए जमीन रोक रखी थी। राज्य में केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना सहित कई अन्य योजनाओं के कार्यान्वयन की भी घोषणा की गई। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं सोनू सूद।
3: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 76,015 पर बंद हुआ। निफ्टी 23,816 पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया डॉलर के मुकाबले 83 पैसे की गिरावट दर्ज करते हुए 95.31 रुपए प्रति डॉलर के स्तर पर दर्ज हुआ।
0: मौसम विभाग ने गुजरात, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में कल लू चलने की संभावना व्यक्त की है। पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में अगले 4-5 दिन तक रात में गर्मी रहने की संभावना है। उत्तर पश्चिम क्षेत्र में अगले 2-3 दिन में अधिकतम तापमान में 2-4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है। इस बीच असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में अगले 2 दिन में तेज वर्षा हो सकती है। दिल्ली में कल बादल छाए रहने और तेज हवाओं के साथ वर्षा का अनुमान है। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC की एक दिवसीय टीम रैंकिंग में अपना शीर्ष स्थान बरकरार रखा है। आज जारी की गई रैंकिंग में न्यूजीलैंड पर भारत की बढ़त 8 अंक से घटकर 5 रह गई है। भारत 1 अंक के नुकसान के साथ 119 अंक से घटकर 118 पर आ गया है। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में एशियाई अंडर 15 और अंडर 17 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में लड़कियों के अंडर 17 वर्ग में आज 8 मुक्केबाज फाइनल में पहुंच गए। हालांकि 4 भारतीय मुक्केबाजों को आज सेमीफाइनल में हार के बाद कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा। IPL क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स और पंजाब किंग्स के बीच मुकाबला हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में जारी है। ताज़ा समाचार मिलने तक पंजाब किंग्स ने 15 ओवर में 2 विकेट पर 149 रन बना लिए हैं। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में अग्नि सुरक्षा जागरूकता, खतरे कम करना और आपदा रोकना विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। चर्चा में गृह मंत्रालय में अग्नि सुरक्षा सलाहकार प्रशांत लोनकर और दिल्ली अग्निशमन सेवा के निदेशक अतुल गर्ग शामिल होंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से राष्ट्रीय संसाधनों पर बोझ कम करने के लिए एकजुट होने का आह्वान किया। पश्चिम एशिया संघर्ष को दशक के सबसे बड़े संकटों में से एक बताया। सरकार ने कहा, पेट्रोलियम उत्पादों की कोई कमी नहीं। कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का 60 दिन का तथा LPG का 45 दिन का भंडार उपलब्ध। केंद्र सरकार ने 1 जुलाई से विकसित भारत जी राम जी अधिनियम के कार्यान्वयन की अधिसूचना जारी की। भारतीय जनता पार्टी नेता हेमंत बिस्व सरमा कल असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: Good evening. This is Akashvani. I'm Anuja Kumar with the news at 9.

पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं लवलीन निगम। पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में प्रत्येक सोमवार हम किसी एक खास विषय पर चर्चा करते हैं और आज का विषय है अग्नि सुरक्षा के प्रति जागरूकता, सतर्कता, सुरक्षा और

0: और बचाव पर विस्तार से जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं गृह मंत्रालय में अग्निशमन सलाहकार प्रशांत लोनकर और दिल्ली अग्निशमन सेवा विभाग के पूर्व निदेशक। उसका इंतजार है, स्टूडियो की फोन लाइन्स खुल चुकी हैं। आप हमारे स्टूडियो के नंबर 011 यानी ये दिल्ली का कोड है 2331 0481 2371 7117 2371 7106 और 2331 44444 पर फ़ोन कर सवाल पूछ सकते हैं। आप अपना प्रश्न हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, नंबर है 9289094044 और हमारे ट्विटर हैंडल @AIRNewsAlerts पर भी #AskAIR के जरिए अपने सवाल आप हमें पोस्ट कर सकते हैं। ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR और दूरदर्शन की DTS सेवा पर भी उपलब्ध है। तो सबसे पहले अतुल जी आपसे सवाल, आज का विषय है जो हमारा अग्नि सुरक्षा के प्रति जागरूकता और सतर्कता, और जागरूकता सतर्कता होगी तभी सुरक्षा और बचाव होगा
1: जी।
0: तो अग्नि सुरक्षा का क्या अर्थ है, अमूमन आग कैसे लगती है और सुरक्षा के लिए क्या उपाय किए जाए?
1: देखिए, अगर आप पूरे डेटा को कलेक्ट किया गया है और उसमें देखा गया है करीब करीब जो फायर होती है वो 70% फायर ड्यू टू सम इलेक्ट्रिक प्रॉब्लम होती है। इट मे बी इलेक्ट्रिक ब्लास्ट, इट मे बी शॉर्ट सर्किट, इट मे बी एसी ब्लास्ट, समथिंग लाइक दैट। सो हमें जो है सबसे ज़्यादा जो ध्यान देना है, और स्पेशली रेजिडेंशियल जो फायर होती हैं घरों में जो होती हैं, वो दो तरीके से लगती हैं मेनली। वन इज़ इलेक्ट्रिसिटी, दूसरा इज़ किचन। तो अगर हम इलेक्ट्रिसिटी जो हमारी है उसकी हेल्थ पे, उसकी वायरिंग पे, उसके लोड पे, हम जो इक्विपमेंट चला रहे हैं उन पे ध्यान देंगे तो मुझे ये लगता है कि फायर जो है काफ़ी कम हो जाएगी। मतलब उसमें करीब करीब 60-70% का लोअर आ जाएगा। आप कोई भी इक्विपमेंट को आप ये समझिए, अगर आप कंटिन्यूस चलाएंगे तो कोई भी इक्विपमेंट जब चलता है उसमें हीट जनरेट होती है, चाहे आप मिक्सी चलाएं, चाहे आप एसी चलाएं, चाहे वॉशिंग मशीन, कोई भी चीज़ चलाएं
0: जी।
1: तो अगर आप उसको कंटिन्यूस चला रहे हैं तो उसमें हीट जनरेट हो रही है और आप उसको अगर रेस्ट नहीं दे रहे हैं तो आग लगने ही वाली है, आप आज या नहीं तो कल जरूर लगेगी। स्पेशली अगर मैं ये कहूँ कि आपने देखा होगा दिल्ली में भी इस गर्मियों में बहुत, जैसे गर्मी शुरू
0: हुई
1: जी आग लगी और बहुत सारी आग भी एसी की ब्लास्ट होने के से लगी। उसका मेन रीजन सिर्फ यही है कि आप एसी की सर्विसिंग ठीक से नहीं करते, उसकी मेंटेनेंस ठीक से नहीं करते। गर्मी हुई बिना मेंटेनेंस के आपने एसी को ऑन कर दिया और एसी कंटिन्यूस चल रहा है तो उसकी क्योंकि एफिशिएंसी डाउन हो गई है, आपने 17 टेम्परेचर किया हुआ वो कभी टेम्परेचर रीच नहीं होगा तो एसी कभी बंद नहीं होगा तो उसमें आग लगने वाली है
0: जी। शिमला से राकेश जुड़े हैं, उनका सवाल जानते हैं जी। राकेश जी नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में, सवाल पूछिए
2: जी। नमस्कार, मैं राकेश कोटखाई शिमला हिमाचल प्रदेश
0: जी।
2: और मैं प्रश्न ये कहना चाहता हूँ कि जैसे अगर जंगल में आग लगती है किस तरह से आग को पाया जा सकता है, क्योंकि हमारे जो कई कई गांव ऐसे जहाँ सड़क सुविधा नहीं
0: जी,
2: लेकिन फायर पहुंचती नहीं है, तो अग्नि को कैसे किस तरह से जो है काबू किया जा सकता है।
0: प्रशांत जी, जंगल में आग एक गंभीर समस्या है।
3: नमस्कार राकेश जी, आपका सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, जंगलों में आग को कैसे काबू पाया जाए। ये एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, क्योंकि जंगलों की आग जो है अमूमन जो है उसका जो स्प्रेड है वो बहुत वास्ट होता है, उसका एरिया जो है कवरेज बहुत ज़्यादा होता है। और साधारणतः जो हम जंगलों की आग जैसे शहरों में आग बुझाते हैं या और भी जगह पर आग बुझाते हैं, तो उसके मात्रा में आपको जंगलों में आग बुझाने के लिए कई प्रकार के साधन और जो है पानी की जो रिक्वायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि इसमें आग बहुत दूर तक फैलती है और लकड़ी है जो जलने का सामान है। तो इसमें एक हम लोग क्या करते हैं कि जंगलों में, ऐसे जंगलों में जो आग को काबू पाना है तो उसको एक फायर लेन बनाते हैं हम। फायर लेन का मतलब ये है कि जहाँ पर आप आग लगी है उससे कुछ दूरी पर आप उस एक ऐसा लेन बनाते हैं जहां पे कंबस्टिबल मटेरियल ना हो, उसको साफ कर देते हैं सो दैट आग उस पर्टिकुलर उतने ही एरिया में कन्फाइंड हो, क्योंकि आग को बुझाना तो बड़ा मुश्किल काम है, अगर बड़ी आग है तो बुझाना मुश्किल है। तो फायर लेन बना के उसको कन्फाइंड करते हैं तो आग वहीं पे जले और वहीं पे बुझाए। बाकी आज के डेट में कई सारे मॉडर्न इक्विपमेंट्स भी आते हैं, जैसे आपने देखा होगा ऑस्ट्रेलिया में या यूएस में जो जंगलों की फायर होती है तो उसमें एयर लिफ्टर बुलाते हैं, उसमें पानी से आग बुझाते हैं, कई सारे केमिकल्स भी उसमें स्प्रेड करते हैं, तो वो फायर सर्विस का एक स्पेशलाइज्ड ऑपरेशन है। बट मेरा हमारा

0: ये है कि आप उसको कन्फाइंड कर सकते हैं, उसको उस एरिया को कन्फाइंड करके उसको कंट्रोल किया जा सकता है। एक नॉर्मल व्यक्ति यही कर सकता है।
1: जी राजेंद्र जुड़े हैं कार्यक्रम से, हरियाणा से हैं ये, इनका सवाल जानते हैं। जी राजेंद्र जी नमस्कार, स्वागत है।
2: नमस्कार जी, निगम जी को और विशेषज्ञ जी को भी नमस्कार जी। जन मैं ये जानना चाहता हूँ जी अधिकारीगण से, जो एक एक बिल्डिंग में 20-20, 25-25 हर कमरे में एसी लगे होते हैं, तो उनकी ज्यादा से हीट ज्यादा होने, गर्मी ज्यादा होने से भी क्या आग लगने की ज्यादा संभावना होती है? मैंने देखा है कि वहां पे 60-70 तापमान भी ऐसा हो जाता है, तो उनकी वजह से भी आग लगने की ज्यादा संभावना होती है। और ऐसी बिल्डिंग भी अधिकारीगण जो निर्धारित कर दे, जैसे MCED है, नगर पालिका है, ये बिल्डिंग जर्जर है, गिरने को है, या भी ऐसी बिल्डिंग है जिसमें आग लगने की ज्यादा संभावना हो, खतरा ज्यादा हो, क्या क्या उनको सचेत करते हैं? और दूसरा, घबराहट में लोग अपनी ज्यादा जान दे देते हैं, तो इसके बारे में भी कुछ बताएं। नमस्कार।
0: नमस्कार
1: जी राकेश जी।
3: राजेंद्र जी, आपका सवाल बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। देखिए, एसी हर घर में, हर ऑफिस में लगा होता है। एसी के चलने से आग नहीं लगती है। आप अगर एसी की ठीक से मेंटेनेंस नहीं करते, अगर कंटिन्यूस एसी चलाते हैं, तो आग लगने के चांस बढ़ जाते हैं। जो भी अभी भी घटनाएं हुई हैं, वो इस वजह से हुई कि एसी की सर्विस ठीक नहीं थी, उस पर डस्ट जम गई थी, और आप कंटिन्यूस एसी चला रहे हैं। गर्मियों में क्या है, टेम्परेचर ऑलरेडी बढ़ा हुआ होता है, और कोई भी अगर चीज़ आपके पास है जो जलने वाली और स्पार्क होता है, तो आग लग जाती है। तो ये कहना कि आपका कि आग एसी चलने की वजह से लगती है, ये थोड़ा गलत हो जाएगा। आग लगती है एसी की ठीक से मेंटेनेंस ना करने पे, एसी को रेस्ट ना देने पे, एसी की वायरिंग को ठीक से चेक ना करने पे, अपने घर का लोड ना चेक करने पे। मैं एक बहुत जल्दी से आपको छोटा सा एग्जांपल बनाता हूँ। हम लोग दो घर का एक छोटा सा कमरा लेते हैं, हस्बैंड वाइफ होते हैं, एक कमरे में सब सोते हैं, बच्चे भी उसी सोते हैं, हमारी इनकम बढ़ जाती है। फिर हम क्या होते हैं, दूसरे रूम में टीवी भी लगाते हैं, एसी भी लगाते हैं, बर्तन धोने वाला इक्विपमेंट भी, तो हम क्या कर रहे हैं, लोड बढ़ाते जा रहे हैं अपने घर में। दो एसी हो गए, दो टीवी हो गए, वॉशिंग मशीन आ गई, बट हमने अपनी वायरिंग पे कभी ध्यान नहीं दिया। जो वायरिंग 20 साल पहले लगी थी, वो इस लोड को लेने के काबिल है या नहीं है? अगर हमारा ट्रिप होता है, तो हम उसको डायरेक्ट कर देते हैं कि ये बार बार कुछ गड़बड़ है। ये जो ट्रिप होता है, या एसी आवाज़ कर रहा है, या बार बार कोई चिंगारी निकल रही, ये संकेत है कि आपकी वायरिंग ख़राब हो चुकी है, आपका लोड ज़्यादा है, आप कम जो लोड वाली वायरिंग यूज़ कर रहे हो, आग लगेगी। तो आपको ध्यान इन चीज़ों पे देना है, ना कि सबके साथ एसी चल रहे हैं उसका ध्यान देना है, क्योंकि एसी का आउटडोर यूनिट बाहर होता है, वो हवा में जा रहा है, तो वो हीट होती है, ये बिल्कुल ठीक बात है, पर उस वजह से आग लगने के चांस बहुत कम है।
1: अतुल जी, ये जो इन्होंने सवाल पूछा है कि एसी अगर हम 2400 घंटे चला रहे हैं, तो अमूमन कितने घंटे चला के उसको रेस्ट दें, या दूसरे रूम में जाके चला लें, कुछ इस तरीके की?
3: देखिए, ये मैं हमेशा ये बात कहता हूँ, बहुत जगह मैंने कहा है कि आप एसी को 2 घंटे चलाइए और आप 10 मिनट के लिए भी बंद करते हैं, तो बहुत ज़्यादा जो है वो फ़र्क पड़ता है उससे। उससे ये हो जाता है कि वो उतनी कूलिंग हो जाएगी, हीट डिसिपेट हो जाएगी। हमारे यहाँ वो क्या रहा है कि हमने एसी सुबह चला दिया, बच्चे उठे, चला दिया, 90 डिग्री कर दिया, और उसको जो है कंटिन्यूस चल रहा है। बिकॉज आपका एसी ठीक से सर्विस नहीं हुआ, काम उसमें नहीं हुआ है, दरवाज़ा खुल बनना, तो 90 डिग्री का भी टेम्परेचर अचीव नहीं होता, और एसी का भी कट ऑफ होगा नहीं, तो आग लगने के चांस ज़्यादा है। तो मेरा ये कहना है कि आप 2 घंटे चलाएं, थोड़ा सा उसको रहते हैं, इवन 5 मिनट देते हैं, दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट, कि आपका कूलिंग उतनी देर में हो जाएगा, रीस्टार्ट एसी होगा, तो आपको जो है आग लगने की संभावना बहुत कम हो जाएगी।
1: रायबरेली से रमाशंकर वाजपेयी जी का एक सवाल है। जी रमाशंकर जी, सवाल पूछिए, स्वागत है कार्यक्रम में।
4: नमस्ते, मैं ये पूछना चाहता था कि बहुमंजिली इमारतों में आजकल बहुत सुना जाता है कि फलानी मंजिल में आग लग गई, तो बहुमंजिली इमारतों में अग्नि की सुरक्षा की व्यवस्था क्या है, और वो क्रियान्वयन कैसे की जाती है, पहला प्रश्न।
0: हाँ नमस्कार रमाशंकर वाजपेयी जी, नमस्कार। आपका सवाल जो है, बहुमंजिला इमारत में आगों की कैसे सुविधा या रखरखाव कैसे करना चाहिए, तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि बहुमंजिल इमारत में जो आग लग प्रिवेंशन जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। जैसे अभी हमारा जो अभी बात चल रही थी, तो कभी भी आग का रखरखाव, आग के लिए बचाव का रखरखाव सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो बहुमंजिल इमारती में जो स्टेट्स के जो बायलॉज है या उनके जो कोड्स है, स्टैंडर्ड्स है, उसमें मापक दिए हुए हैं कि आपको बहुमंजिल इमारत में क्या क्या चीज़ों का रखरखाव रखना है, क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, कि जैसे कि आप जो है इलेक्ट्रिकल वायरिंग का एक स्टैंडर्ड होना चाहिए, उस स्टैंडर्ड के निर्धारण के हिसाब से इलेक्ट्रिकल वायरिंग होनी चाहिए, जो आपके इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट उस बिल्डिंग में है और जो वायरिंग का रेटिंग है उसका बैलेंस होना चाहिए। जैसे अभी बात कर रहे थे, गर्ग साहब बोल रहे थे कि जो आपका लोड बढ़ रहा है पर उसके बाद आपने वायरिंग का चेक नहीं किया, तो आपको हमेशा ये चेक करना है। उसके बाद स्टेबिलाइजर्स आते हैं, MCBs आते हैं, RCBs आते हैं, तो इसका भी आपने घरों में उपयोग करना है, क्योंकि ये जो इक्विपमेंट है वो ऑटोमेटिक पावर को कट कर देता है और उसके बाद जो है आपका जो अगर कोई ऐसी दुर्घटना होती है AC में या उसी और भी कोई इक्विपमेंट में ऐसी हानि उसका चेंज होता है या ऐसा फॉल्ट निर्माण होता है तो वो ट्रिप कर देता है, तो ये इक्विपमेंट्स की बहुत ज़्यादा आवश्यक है। फिर उसके बाद में हाई राइज बिल्डिंग में हाइड्रेंट सिस्टम होती है, स्प्रिंकलर सिस्टम होती है, डिटेक्शन सिस्टम होती है, बट प्रॉब्लम कहाँ हो जाती है कि ये सारी चीज़ें हम तो शुरुआत में हाई राइज बिल्डिंग में होती है बट उसका रखरखाव ठीक से नहीं होता है। आज के डेट में बहुत सारी जो मेंटेनेंस जो है उसका बहुत ज़रूरी है, और जो ऑक्यूपायर है, जो हम लोग वहाँ रहते हैं, उनको ये चीज़ों के बारे में बिल्कुल पता होना चाहिए कि हमारे यहाँ पे क्या सिस्टम है, उसको कैसे चलाते हैं। बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है, पर आप कहीं भी वहाँ पे जो इक्विपमेंट है, एक्सटिंग्विशर है, उस पे लिखा रहता है कि आपको कैसे चलाना है। आपको 5-7 मिनट 10 मिनट का एक अगर आपने समय दिया और वहाँ जाके पढ़ा आपने, तो भी आपका ज्ञानवर्धन हो सकता है और आप ऐसे समय में रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। उसके बाद में बाहर निकलने के रास्ते पता होना बहुत ज़रूरी है। हाई राइज बिल्डिंग में जब हम बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा जो घटनाएँ होती है वो बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिलने के कारण होती है। तो बहुमंजिला इमारत में कम से कम 2 एग्जिट हर जगह से आपको मिलने चाहिए, और ये है कि कहीं एग्जिट ब्लॉक नहीं होना चाहिए कि आप जो है निकलने का रास्ता ही ब्लॉक कर दिया, वहाँ पे सामान रख दिया है या कोई लॉक कर दिया है या सिक्योरिटी रीजन से है, तो वो आपने ध्यान रखना है कि निकास का रास्ता आपका साफ हो, क्लियर हो, इक्विपमेंट आपके रेटिंग हो या फायर फाइटिंग सिस्टम सही काम कर रही हो और लोगों के बारे में अवेयरनेस हो। जैसे कि हम मॉक ड्रिल की बात करते हैं, DFS दिल्ली फायर सर्विस, कोई भी फायर सर्विस हमेशा मॉक ड्रिल कंडक्ट करता है, तो मॉक ड्रिल कंडक्ट करने का एक फ़ायदा ये है कि आपको पता चलता है कि बाहर निकलना कैसा है, आग को रिस्पॉन्ड करना कैसे है, आग में ऐसी घटना होने के बाद आपको क्या रिस्पॉन्स करना है, तो ये चीज़ों का आपको ध्यान रखना है कि मॉक ड्रिल करना है, प्रिवेंशन मेंटेनेंस करना है और आपको अपने एरिया के बारे में अवेयर हो रहा है,
1: क्योंकि आप लिफ्ट से नहीं जाएंगे, सीढ़ियों से जाएंगे, हाँ। तो रास्ता साफ होना चाहिए और पैनिक नहीं सबसे बड़ी।
0: हाँ, लिफ्ट से आपको ट्रैवल, जैसे मैम ने कहा कि आपको फायर के घटना में लिफ्ट से नहीं ट्रैवल करना है, ऐसी बहुत सारी घटनाएं हुई कि लिफ्ट में स्मोक जम जाता है और उसमें हानि होती है, दम घुटता है, तो कभी भी आग के समय में लिफ्ट का यूज़ नहीं करना है, आपको सीढ़ियों का ही यूज़ करना है।
1: दिल्ली से धर्मवीर जुड़े हैं, जल्दी से उनका सवाल जानते हैं। जी धर्मवीर जी, स्वागत है कार्यक्रम में।
5: हाँ जी नमस्कार जी।
1: नमस्कार,
5: मैं धर्मवीर गांधीनगर दिल्ली से बोल रहा हूँ सर। नमस्कार, जैसे नमस्कार। कि मैं दिल्ली गांधीनगर क्षेत्र में रहता हूँ जहाँ एशिया की सबसे बड़ी रेडीमेड कपड़ा मार्केट है, रेडीमेड कपड़े की यहाँ फैक्ट्रियाँ भी हैं, दुकानें भी हैं, तो मैं आपका ध्यान 2-3 बातों की तरफ दिलाना चाहूंगा। जैसे यहाँ जो मार्केट में जो कपड़े की दुकान है, आए दिन हम देखते हैं यहाँ पे आग लगती ही रहती है, कहीं AC में लीकेज हो गई, कहीं कुछ और बात हो गई कहीं, तो यहाँ ज्वलनशील जो उनके काम होते हैं, जैसे पन्नियाँ होती हैं, प्लास्टिक होती है, लकड़ी होती है, डमियाँ होती हैं, तो इसमें आग लगती है तो वो फिर बुझती नहीं है, वो पूरी ही डैमेज कर देती है बिल्डिंग को, पहली बात। दूसरी बात ये है कि आपकी तरफ से इन दुकानों पे या इन फैक्ट्रियों में ऐसा कोई कानून नियम है MCD की तरफ से या कोई आपकी डिपार्टमेंट की तरफ से कि हर डिपार्टमेंट में ये आग बुझाने के लिए कोई साधन होना चाहिए, गैस सिलेंडर होने चाहिए, हर साल उनको चेकिंग होनी चाहिए, हर साल उसकी देखरेख होनी चाहिए। तीसरी बात ये है कि ऑटोमेटिक जो लॉक होते हैं बिल्डिंगों में, फ्लैटों में, तो कभी कभी आग लग जाती है तो ऑटोमेटिक लॉक डैमेज हो जाते हैं, वो लॉक लगे रह जाते हैं, जो अंदर फंसा हुआ आदमी अंदर ही रह जाता है। जैसे कि हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी फैक्ट्री थी, उसके अंदर आग लगी थी।
1: धर्मवीर जी सवाल हम समझ गए हैं,
5: सवाल यही कहना चाहूंगा,
1: हम समझ गए हैं। प्रशांत
5: नहीं, लवलीन जी, आप बात पूरी होने दीजिए।
1: नहीं, आप 3 सवाल पूछे जी।
5: नहीं, अगर आपके, मैं ये बताना चाहूंगा कि फैक्ट्रियों में इतना साधन होना चाहिए, फायर ब्रिगेड के आने से पहले ही पूरी आग वो खुद बुझा पाए, ये मैं कहना चाहता हूँ, इतना साधन होता है बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में, छोटी छोटी दुकानों में नहीं होता, फैक्ट्री में नहीं होता, इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे?
4: धन्यवाद
3: धर्मवीर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद ये क्वेश्चन पूछने के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। मैं ये बताना चाहूँगा, पहले तो जो अभी गवर्नमेंट ने रूल रिलैक्स कर दिए हैं और सारी जिम्मेदारी जो दी है वो पब्लिक को दी है कि पब्लिक जो है जागरूक होनी चाहिए, उसको करना चाहिए। तो इंस्पेक्शन जो है 5 साल में होता है, पहले ये शुरू में एक

0: हर साल होता था, फिर 3 साल किया गया, 5 साल हो गया। तो गवर्नमेंट की तरफ से या फायर ब्रिगेड की तरफ से इंस्पेक्शन 5 साल बाद होगा। तो आप जो ये कह रहे थे कि हर साल होता है, तो मुझे ये कहना पड़ेगा कि अभी ये नहीं होता, 5 साल बाद होता है। रही बात इक्विपमेंट प्रोवाइड करने की, तो देखिए ये मैं बहुत, अगर आप मेरे को यूट्यूब पे करेंगे, मैंने हज़ारों चैनल कहा है कि आपको जागरूक होना है, क्योंकि फायर ब्रिगेड मैं गांधीनगर कई बार गया हूँ, गांधीनगर में हमें पहुँचने में हम कितनी भी कोशिश कर लें, रात कर लें, 15-16 मिनट लगते हैं कि तंग गलियाँ हैं, गाड़ियाँ पार्क होती हैं रात में, दिन में तो जा ही नहीं सकते। मैं कई बार गया, गाड़ी कहीं दूर खड़ी की, वॉक करके गया
1: जी।
0: तो अनलेस हम सभी दुकानदार भाई, हम सभी पब्लिक लोग मिल के अगर अपना अरेंजमेंट नहीं करेंगे, तो मुझे ये कहते हुए दुख है कि नुकसान अगर होगा तो बहुत ज़्यादा होगा। इसमें फिर मैं ये बात कहूँगा, ज़्यादातर जो आग लगती है वो इलेक्ट्रिक की वजह से लगती है, और मार्केट में पब्लिक की नेग्लिजेंस की लग सकती है, किसी ने सिगरेट फेंक दी, किसी ने कुछ खाना बना रहे थे वहाँ हो गया, तेल जल गया, क्योंकि वहाँ बहुत छोटे छोटे ठेले भी लगे हैं। तो हमें सबसे पहले अपनी जितनी भी दुकान है उनको इलेक्ट्रिक सेफ्टी अगर नहीं वो कर रहे हैं वो करनी है, और सभी भाइयों को जो है छोटा छोटा जो है एक फायर एक्सटिंग्विशर रखना है अपनी दुकान में, और दुकान में रखना ही नहीं, उसको चलाना भी आना चाहिए। ऐसे भी इंसिडेंट हुए, फायर एक्सटिंग्विशर था, आग लगी, लोगों को चलाना नहीं आता, तो उन्होंने उस फायर एक्सटिंग्विशर को आग में फेंक दिया और वो फट गया और उससे ज़्यादा नुकसान हो गया
1: जी।
0: तो पहले आपको फायर सेफ्टी इक्विपमेंट जो छोटे वाले होते हैं जो आप लोगों के लिए बने, उनको रखना है, उनको चलाना आना है। और इलेक्ट्रिसिटी की जो बात है, मैं कह रहा हूँ जहाँ बिजली के प्लग होते हैं वहाँ हम देखते हैं साड़ियाँ भी लगा दिए, कपड़े भी लगा दिए, वो प्लग ही नहीं दिख रहा है, उसके ऊपर भी कपड़े लगा दिए। अगर मान लीजिए तापमान ज़्यादा हो गया है और कुछ इलेक्ट्रिक फॉल्ट हुआ, स्पार्क निकला, तो ऑलरेडी टेम्परेचर ज़्यादा है, कपड़े में आग लग जाएगी, और आग फिर कपड़े में आग लगती है वो बुझती नहीं है, गांठ होती है, आप पानी डालें, ये बहुत 24 घंटे लेती है, 2-2 दिन लेती है
1: जी।
0: तो मुझे ये लगता है कि हमें पब्लिक को अवेयर करना है, आप इसके माध्यम के थ्रू, आपके माध्यम के थ्रू, कि सबको अपनी अपनी सुरक्षा बेसिक जो प्रिकॉशन है वो लेने हैं। अगर हम वो ले लेंगे तो मुझे लगता है आग की घटनाएं बहुत कम हो जाएंगी। जैसे आपने कहा गांधीनगर में आग लगती है, पर मैं अभी हुआ, मैंने देखा कि लगती है पर बहुत सारी आग को आप लोग खुद बुझा लेते हैं, तो क्योंकि वो दिन में लगी, आप लोग जागरूक थे, आप सचेत थे, आपने तुरंत बुझा ली। पर कई बार क्या होता है, कोई ब्लास्ट हो गया, मीटर फट गया, आग बड़ी हो गई, तो आप नहीं बुझा पाते। तो अनलेस हम अपना जो है प्रिकॉशन लें, हम लोग को, क्योंकि गवर्नमेंट ने तो रूल रिलैक्स कर दिया, 5 साल बाद दिल्ली फायर सर्विस जो इंस्पेक्शन करेगी।
1: जितनी देर फायर ब्रिगेड पहुंचे उतनी देर में अपना। विजय कुमार साहनी है महाराष्ट्र से।
2: स्वामी
1: जी, विजय जी नमस्कार। हाँ, स्वागत है।
2: दीदी नमस्ते।
1: नमस्कार, सवाल।
2: हाँ, सर नमस्कार जी।
3: नमस्कार
2: जी, भाई विजय कुमार स्वामी बोल रहा हूँ, गांव बस्तवा तहसील सीहोर जिला कोल्हापुर महाराष्ट्र से
1: जी।
3: नमस्कार विजय।
2: हाँ सर जी, मेरा सवाल यह है कि अचानक इमारत को आग लग गई तो हमें शुरुआत तो क्या करना पड़ेगा, तो क्या टोल फ्री नंबर वगैरह क्या?
3: हाँ, विजय कुमार जी नमस्कार, कोल्हापुर से है आप, तो मैं आपको एक, आपका सवाल है कि अचानक अगर आग लगी तो क्या करना चाहिए। सबसे पहला काम ये करना चाहिए कि आपको आग से दूर होना है, खुद को बचाव करना है, जो लोग आसपास है उनको वहाँ से बाहर निकलना है। पहले अपनी सुरक्षा और अपने साथियों की सुरक्षा, पहले अपनी, फिर उसके अपने बाद अपने साथियों की सुरक्षा करनी है। उसके बाद आपको, अगर आप बिल्कुल सुरक्षित महसूस करते हैं, तो उसके बाद जो वहाँ पे फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं, अगर आप उसको ऑपरेशन जानते हैं तो उसको ऑपरेट करना चाहिए। और जो अभी आजकल 112 जो कॉल लाइन नंबर है, कई जगह पे 101 भी चलता है, तो यहाँ पे आप इमिजिएटली फ़ोन कर दीजिए, और जो साधन है आपके पास में, एक्सटिंग्विशर है या पानी है, तो ऐसे जगहों पे आप कर सकते हैं, बट पहले अपने आप को सुरक्षित करना है। उसके बाद जितना हो सकते हैं जो लोगों को बुलाना है मदद के लिए, और जितना आप कर सकते हैं वो करना चाहिए, वो फायर ब्रिगेड को 112 या 101 पे बुलाना चाहिए।
1: और इसके अलावा प्रशांत जी, जैसे जब आग लगती है तो कुछ लोग तमाशबीन बन के खड़े हो जाते हैं, खूब सारी गाड़ियाँ आ जाती हैं, सलाहें बहुत देती है, तो वो भी लोगों का है कि पर्याप्त जगह दें ताकि फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुँच सके।
3: ये निवेदन हम मतलब सबसे इस माध्यम से करना चाहते हैं कि ऐसे आगजनी की जैसी घटनाएं होती है तो वहाँ पे आपकी सलाह उस वक्त काम नहीं आएगी, आपका एक्शन वहाँ पे काम आएगा। तो उससे अच्छा है कि जो लोग वहाँ काम कर ले उनकी सुविधा दें, लोगों को जाने आने का रास्ता दें। और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आपको, जैसे अभी गांधीनगर के सवाल में भी सर ने कहा कि आपको अपने आप को अवेयर करना है, जैसे कहा कि आपके जो ऑटोमेटिक लॉक लगे, अब ऑटोमेटिक लॉक लगाना ही नहीं चाहिए। बिल्डिंग में फायर सेफ्टी का नॉर्म है कि कभी भी हम बिल्डिंग को लॉक लगाने को कभी भी सुझाव नहीं देते, वो हमेशा ओपन रहने चाहिए, क्योंकि आपके लॉक बंद है तो आप बाहर कैसे निकलेंगे, ऑटोमेटिक लॉक बंद हो जाते हैं, जाम हो जाते तो आप बाहर नहीं निकल पाओगे। तो ऐसे वक्त में ये चीज़ें ऑटोमेटिक लॉकिंग सिस्टम तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए।

0: गेट और एग्जिट रूट हमेशा क्लियर और ओपन होने चाहिए, उसकी मार्किंग होनी चाहिए, आपको कहाँ जाना है उसका जो है एरो होने चाहिए, उसका दिशा आपको दिखना चाहिए कि इस वे एग्जिट निकला है या रेडियम मार्किंग लगते हैं या फोर फ्लोर फुटवेयर के प्रिंट लगे रहते हैं, इस तरह से आपको पता होना चाहिए।
1: श्रीकांत जुड़े हैं महाराष्ट्र से। श्रीकांत जी नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में, सवाल पूछिए।
2: नमस्कार।
0: नमस्कार
2: जी, मैं श्रीपाद जाखड़े बोल रहा हूँ, मैं पुणे महाराष्ट्र से
1: जी।
2: तो मेरा सवाल ये है कि जैसे गर्मियों के दिनों में आग लगने की घटना तो बहुत होती है, तो कभी पानी की कमी है आजू बाजू में कोई कोई एरिया में कमी रहती है, तो इससे तो आग बुझाने के लिए कोई दूसरा कोई ऑप्शन है क्या, मतलब इसमें कोई व्यवस्था रहती है क्या, समझो पानी की कमी है, पानी उपलब्ध नहीं हो पाए तो मतलब।
1: जी जी श्रीकांत जी, इन्होंने पानी पूछा, उसी को अगर हम ग्रामीण क्षेत्र से भी जोड़ लें जहां दूर है फायर स्टेशन, तो इन दोनों में उस वक्त तक क्या करें?
0: उसमें ये होता है कि हमारे यहाँ पे एक साल्वेज का कॉन्सेप्ट है। साल्वेज का मतलब ये होता है कि अगर आपके पास पानी से आग बुझाने का कोई मतलब पानी नहीं है, ऐसे वक्त में आप एक काम कर सकते हैं कि वहाँ पे जो जलने वाली चीज़ है उसके आस पास में जो जलने वाली चीज़ है उसको वहाँ से हटा दीजिए। जैसे जंगलों में हम फायर लाइन बनाते हैं, तो एक तरह से वो साल्वेज का ही तरीका है। तो वहाँ पे जो जलने की चीज़ें जितनी ज़्यादा आप हो सकते उसको कम कर लीजिए। उसके बाद क्या होगा कि फायर कन्फाइंड हो जाएगी, उतने ही एरिया में होगी, मतलब जहाँ से आप बिल्कुल सामान हटा नहीं सकते हैं वहाँ फिर वो कन्फाइंड करके वो वहीं पे किल हो जाएगी, मतलब उतना जल के किल हो जाएगी। वो तो लास्ट ऑप्शन है, मतलब ये कभी परिस्थिति किसी पे ना आए, बट ऐसे वक्त में जलने की चीज़ें आपको दूर करनी चाहिए और उसको फिर कन्फाइंड कर देना, उसको कन्फाइनमेंट ऑफ फायर करते हैं, तो वो हम कर सकते हैं।
1: उत्तर प्रदेश से हैं चौधरी महेंद्र सिंह, इनका सवाल जानते हैं जी। महेंद्र सिंह जी स्वागत है कार्यक्रम में, सवाल पूछिए।
3: लवली जी नमस्कार।
1: नमस्कार, सवाल पूछिए।
3: आकाशवाणी स्टूडियो में आमंत्रित विशेषज्ञ महोदय को भी नमस्कार।
0: नमस्कार। नमस्कार
3: सर, मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे गांव में महिलाएं अक्सर गैस सिलेंडर पर रसोई में काम किया करती हैं, और उनकी भूल से या कैसे भी उनकी लापरवाही से गलती से और कोई गैस सिलेंडर से अग्निकांड हो जाता है, तो आपने जो फायर ब्रिगेड सर्विस सेंटर जो बनाए हैं और उनका हेल्प नंबर क्या है, किस नंबर पर सूचना दी जाए?
4: जी बहुत बहुत धन्यवाद ये क्वेश्चन पूछने के लिए। देखिए सभी पूरे भारत में 101 और अब एक 112 नंबर प्रधानमंत्री जी ने की स्टार्ट किए, दो नंबर हैं आप इनको याद रखें, 101 और 112। आप 101 पे करेंगे तो भी फायर ब्रिगेड को जाएगा
1: जी,
4: और 112 पे भी जाएगा अगर करेंगे तो भी वो फायर ब्रिगेड के पास रहेगा। दूसरा मेरा ये कहना है कि अब जो सिलेंडर है, अगर मान लीजिए सिलेंडर में आग लग भी गई है, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। आप सिलेंडर में अगर आग लग रही है और लीकेज नहीं है तो आप सिलेंडर को बाहर ले जा सकते हैं आराम से, ओपन में ले जा के उसके ऊपर कोई कपड़ा लपेट सकते हैं, कोई और चीज़। हम लोग कहीं कहते हैं ऑल दो वो क्रूड मेथड है कि अगर आप सिलेंडर का वॉल लीक हो रहा है तो आप उस पर आटे का गोला, कोई गीला कपड़ा, तौलिया रख देंगे तो भी आग बुझ जाएगी, और उसके बाद आप उसकी नॉब को बंद कर दीजिए। आप उसके ऊपर उल्टा भिगोना भी डाल सकते हैं, कोई भी चीज़ डाल सकते हैं। लीकेज है तब थोड़ी सी दिक्कत होती है कि कितनी देर से लीक हो गया आपको नहीं पता चला, तो उस केस में आपने सिलेंडर को घर से बाहर ले जाना है और कोई बिजली का सामान, कोई स्पार्क नहीं होना चाहिए, धीरे धीरे वो डिसिपेट हो जाएगी
1: जी।
4: तो उसमें घबराने की बात नहीं है, क्योंकि और अभी जो नए गवर्नमेंट दे रही है आपके पास भी पहुंचेगा। अब जो सिलेंडर आ गए हैं उस सिलेंडर में ब्लास्ट नहीं होता है, वो प्लास्टिक के हाई क्वालिटी प्लास्टिक के सिलेंडर हैं, वो आग लगने में मेल्ट हो जाते हैं, तो ब्लास्ट का चांस जो है गवर्नमेंट ने बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। मुझे भरोसा है कि बहुत जल्द आपको सिलेंडर मिल जाएगा। तो फिर जो ये ब्लास्ट की वजह से, क्योंकि कई केस ऐसे हुए हैं एलपीजी सिलेंडर में ब्लास्ट हुआ उस वजह से लोगों की जान चलेगी, तो ब्लास्ट की संभावना बिल्कुल जीरो हो जाएगी अब। और बाकी अगर लीक होता है तो आप उसको बहुत आराम से छोटी सी ट्रेनिंग से हैंडल कर सकते हैं। और मैं आपको ये भी कहूँगा कि आप अपने जो जहाँ भी फायर ब्रिगेड मान लीजिए वो 50 किलोमीटर दूर भी है, आप वहाँ चिट्ठी लिखें, वहाँ से कोई ना कोई ज़रूर आएगा और आपको इस बारे में ट्रेनिंग भी देगा। तो आप अपने गांव में एक ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज कर सकते हैं जिससे सारी महिलाओं को, एनजीओ को भी यूज़ कर सकते हैं, सब महिलाएं इसमें सक्षम हो जाएंगी और आग लगने की एलपीजी से करीब घटना नहीं होगी।
1: इसका कोई नंबर होगा जो आप बता रहे हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में अगर ट्रेनिंग के लिए बोल दिया?
4: नहीं, नंबर जो सबका एक ही है 101 ही होता है। आप अपने उसके जो भी नियरेस्ट फायर स्टेशन है वहाँ पे आप संपर्क कर सकते हैं।
0: मैं एक और चीज़, सरकार ने जो बहुत सारी उपाय योजना जो कही

0: तो मैं आपको एक छोटा सा बता देना चाहता हूँ कि पहली बार जो भारत सरकार ने फायर सर्विस के अपग्रेडेशन के लिए 5,000 करोड़ रुपए का पैकेज अनाउंस किया है, फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री ऑफ इंडिपेंडेंस। तो ये सभी राज्यों को दिया गया है, तो उससे भी आपका जो आग के लिए एफिशिएंसी बढ़े, लोगों का डिजिटलाइजेशन हो, ताकि मतलब जो लोगों का रीच बढ़े, एफिशिएंसी बढ़े, लोगों के प्रति जागरूकता हो, और सरकार अभियान चला रही है कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो अवेयरनेस कैंपेन हम चलाए उसके लिए सभी को निर्देश भी दिए गए सरकार की तरफ से। तो अगर आप इसमें इच्छुक है ट्रेनिंग में, तो आप अपनी लोकल फायर सर्विस को बिल्कुल बुलाइए, आपके यहाँ पे आएंगे और जैसे सर ने कहा कि वो ट्रेनिंग आपको देंगे और अवेयरनेस आपका बढ़ेगा।
1: RWA हो या कुछ भी,
0: हाँ कोई भी सोसाइटी हो या ग्राम पंचायत सेवा पे या कोई भी शहर विकास या पंचायत लेवल पे भी ये ट्रेनिंग अवश्य मैंडेटरी है, उनको आना ही पड़ेगा अगर आपने उनको बुलाया तो।
1: एक सवाल है पानीपत से, हैं ये शैलेंद्र शेंदुड़ का रहे हैं शायद, ये बोल रहे हैं मैं इंडियन ऑयल में काम करता हूँ, हमारे यहाँ बहुत उम्दा फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट है, आजकल इलेक्ट्रिक वाहन का प्रचलन है, उसमें आग लग जाना बहुत बार दिख रहा है, इसे कैसे रोका जा सकता है, ऐसी स्थिति में क्या कर सकें। CNG की भी हम बात करें तो CNG वाहनों में बहुत आग लग रही है।
0: या इलेक्ट्रिक वाहनों में आग लगने का प्रचलन अभी मतलब काफ़ी जगह पे ऐसे इंसिडेंट्स मिले हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी जो बैटरीज होती हैं, बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम जो अभी हमारे पास जो व्हीकल्स में है, उसमें सबसे बड़ा कारण ये होता है कि उस आग को बुझाने के लिए आपको बहुत सारा पानी डालना होता है, जितना पानी हो सकता है उस पर आप डालिए और उससे ये आप आग पानी से ही कंट्रोल हो पाएगी। सबसे बड़ी बात तो ये है कि सबसे अगर ऐसी गाड़ी में आग लगती तो आपको तो बिल्कुल वहाँ से निकल जाना है और उसके बाद फायर ब्रिगेड को ही बुलाना है, क्योंकि बैटरी फायर में आपको पानी बहुत चाहिए, तो वो आपके जो लोकल रिसोर्सेस है उससे नहीं होगा, जितना हो सकता है आपको दूर अपने आप को करना है और फायर ब्रिगेड को बुला के ही वो फायर फाइटिंग हो पाएगी। और उसके उसमें ये है कि जब भी आप ऐसे व्हीकल्स लेते हैं, ई व्हीकल्स लेते हैं, तो उसमें जो बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम है उसके लिए एक बार आप थोड़ा सा समझ लीजिए, जहाँ जिस भी मैन्युफैक्चरर से आपने लिया है कि बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम क्या है और उसकी प्रिवेंटिव मेंटेनेंस हर जो है कंपनीज अपनी अपनी देती है, उसको भी एक बार आपको समझना जरूरी है।
1: प्रमोद है जयपुर से, उनका सवाल जानते हैं। जी प्रमोद नमस्कार, स्वागत है।
2: हाँ जी नमस्कार, मैं जयपुर से बोल रहा हूँ। मेरा निवेदन ये है कि ज्यादातर जो है ना रात में और शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगती है, तो कोई सेंसर वगैरह भी ऐसा है आधुनिक युग में कि जो ऑटो कट हो जाए, या फिर जितने भी इंस्टीट्यूट ऑफिस वगैरह हैं या मतलब शट डाउन करके वो वहां से निकले, आप प्लीज इसमें बताएं। और टेम्परेचर जो एसी का जो है वो 18 के आसपास रखते हैं, अगर आगे आप टेम्परेचर बताएं।
1: जी हम जल्दी से सवाल का जवाब देंगे क्योंकि समय दौड़ रहा है।
3: जी आपका सवाल बहुत वाजिब है, रात में आग लगती है और सबसे ज़्यादा डेथ भी रात में ही होती है। देखिए इसीलिए ये MCB LCB का जो कंसेप्ट है, इसीलिए अगर ये आपने लगाया है शॉर्ट सर्किट होगा, अगर ये आपका ठीक से लगा नेचर सर्किट तो ट्रिप हो जाएगा और आग नहीं लगेगी, नंबर वन। नंबर दो, आपने एसी की बात की, एसी का मैं इससे पहले भी कई बार कह चुका हूँ कि एसी को जो है आप अगर टेम्परेचर कम भी रख रहे हैं तो उसको आपने थोड़ा थोड़ा जो है एक दो घंटे बाद उसको बंद करना है।
1: तभी जी प्रशांत जी रुकूंगी क्योंकि समय बहुत दौड़ रहा है। आप दोनों का ही बहुत बहुत धन्यवाद स्टूडियो में आने के लिए, और पब्लिक स्पीक का ये अंक यहीं समाप्त होता है। अगले सोमवार फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ, फिलहाल नमस्कार।
0: नमस्कार।
4: नमस्कार,
5: मीडियम वेव पर यह आकाशवाणी का जबलपुर केंद्र है। श्रोताओं आप सभी के लिए एक सूचना, आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्ष पूर्ण हो जाने के उपलक्ष में आकाशवाणी जबलपुर मंगलवार 12 मई को सुगम संगीत सभा सुर संध्या का आयोजन कर रहा है। आप सभी आमंत्रित हैं मंगलवार 12 मई 2026 शहीद स्मारक प्रांगण जबलपुर में आकाशवाणी की संगीत सभा सुर संध्या। स्थान, समय और तिथि का विशेष ध्यान रखें, 12 मई मंगलवार शाम 7:30 बजे शहीद स्मारक जबलपुर में। और आमंत्रण पत्र जो है आप आकाशवाणी जबलपुर के कटंगा स्थित कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं। श्रोताओं स्टूडियो की घड़ी में रात के 10 बज चुके हैं। लीजिए अब प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत, इसमें हम आपको सुना रहे हैं उस्ताद लतीफ़ खां का सारंगी पर बजाया गया राग ललित। इसमें तबला संगत है नफीस अहमद खान की।

अभी श्रोता सुन रहे थे शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत उस्ताद लतीफ खां का सारंगी पर बजाया गया राग ललित। तबला संगत थी नफीस अहमद खां की। यह आकाशवाणी का जबलपुर केंद्र है। श्रोताओं, रात के 10:30 बज चुके हैं। आपके लिए प्रस्तुत है एक आवश्यक सूचना। श्रोताओं, आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्ष पूर्ण हो जाने के उपलक्ष्य में आकाशवाणी जबलपुर द्वारा मंगलवार 12 मई को सुगम संगीत सभा सुर संध्या का आयोजन किया जा रहा है। इसमें आप सभी आमंत्रित हैं। मंगलवार 12 मई 2026 शहीद स्मारक प्रांगण जबलपुर में ये आयोजन आपके लिए किया जा रहा है और आकाशवाणी की संगीत सभा सुर संध्या, इसका स्थान, समय और तिथि, इसका विशेष ध्यान रखें। 12 मई मंगलवार संध्या 7:30 बजे से शहीद स्मारक प्रांगण जबलपुर में। और इस विशेष संध्या के जो आमंत्रण पत्र हैं वो आप आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र कटंगा स्थित कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं। श्रोताओं, अब वक्त हो चला है कार्यक्रम मन भावन का, जहां पर आपके द्वारा भेजे गए पत्रों से चुने हुए कुछ गीत हम आपको सुना रहे हैं जिनकी फरमाइश आपके द्वारा हमें प्राप्त हुई है। कार्यक्रम का सबसे पहला गीत

0: के पसंद पर लीजिए, सुनिए मुस्कान फिल्म का ये गीत।
1: जाने मन चुपके चुपके सारी दुनिया से छुपके तुमने ऐसी बात कही, दिल मेरा खो गया।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मन भावन, यह आकाशवाणी का जबलपुर केंद्र है। कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे, आपको सुनाते हैं फिल्म माय नेम इज़ खान का ये नगमा। अदनान सामी, शंकर महादेवन और श्रेया घोषाल की आवाज़ें हैं। शंकर एहसान लॉय का संगीत है, निरंजन आयंगर के बोल हैं। इस गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद अमरावती महाराष्ट्र से नसीम, आयशा, हदिया, असमा, सलिया, शोएब खान, मशतबा खान, रऊफ, शहीद, डीजे श्रोताओं, आप सभी के पसंद पर यह गीत।

श्रोताओं, आकाशवाणी जबलपुर से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मन भावन, जहाँ पर आपकी प्यारी प्यारी चिट्ठियों को हम शामिल करते हैं और आपके पसंदीदा नगमे आपके सामने पेश करते हैं। उसके पहले एक महत्वपूर्ण सूचना आप सभी के लिए। श्रोताओं, आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्ष पूर्ण हो जाने के उपलक्ष्य में आकाशवाणी जबलपुर मंगलवार 12 मई को सुगम संगीत सभा सुर संध्या का आयोजन कर रहा है और आप इसमें सभी आमंत्रित हैं। तो याद रखिए, मंगलवार 12 मई 2026 शहीद स्मारक प्रांगण जबलपुर में आकाशवाणी की संगीत सभा सुर संध्या इसका आयोजन होगा। आपको दोबारा बता दें, 12 मई मंगलवार संध्या 7:30 बजे शहीद स्मारक प्रांगण जबलपुर। और इस कार्यक्रम के आमंत्रण पत्र जो हैं वो आप आकाशवाणी जबलपुर के कटंगा स्थित कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं श्रोताओं, आपको सुनाते हैं ये जो गीत फिल्म मुस्कान से है, जिसे गाया है सोनू निगम अनुराधा पौडवाल ने। समीर के बोल है, निखिल विजय का संगीत है, सुनने के ख्वाहिशमंद है छत्रपति संभाजी नगर से राजेश साबले, राजदीप राशि एवं श्रीमती शीतल। श्रोताओं, आप सभी की पसंद पर प्रस्तुत है ये गीत।

श्रोताओं, कार्यक्रम मन भावन में अगला गीत हम आपके लिए लेकर आए हैं फिल्म नाजायज से। अलका याग्निक ने इस गीत को गाया है, संगीतकार हैं अनु मलिक और बोल हैं राहत इंदौरी के। इस गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद हैं बेमेतरा से सुरेश कुमार सारथी, पूर्णिमा हेमलता सारथी, कमलकांत सारथी, वीरेंद्र ब्रजकांत सारथी। आप सभी श्रोता सुनना चाहते हैं नाजायज फिल्म का ये गीत।

श्रोताओं, इसी गीत के साथ कार्यक्रम मन भावनम समाप्त होता है। इस गीत को जो कि हमने लिया था फिल्म नाजायज से, बर्गीनगर जबलपुर से सुनना चाहते थे रविंद्र, सुभाष, दिगंबर, राजेश, शुभांग एवं सृष्टि गदे। आप सभी श्रोताओं की पसंद पर हमने सुनाया ये गीत। और श्रोताओं, कार्यक्रम को समाप्त करने के पहले एक ज़रूरी सूचना आपको दोबारा बता दी जाए, क्योंकि आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आकाशवाणी जबलपुर मंगलवार 12 मई को सुगम संगीत सभा का आयोजन कर रहा है और इस सभा का नाम है सुर संध्या। इसमें आप सभी श्रोतागण आमंत्रित हैं। समय, तिथि, स्थान सब एक बार दोबारा नोट कर लीजिए, 12 मई 2026 शहीद स्मारक प्रांगण, शाम 7:30 बजे से। और आप सभी श्रोताओं को आमंत्रण पत्र जो हैं इस कार्यक्रम के मिल जाएंगे आकाशवाणी जबलपुर के कटंगा स्थित केंद्र से। कुछ ही देर में श्रोताओं आप सुनेंगे समाचार, जिन्हें हम अनुप्रसारित करेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम एशिया संघर्ष को एक दशक के सबसे बड़े संकटों में से एक बताया है। उन्होंने राष्ट्रीय संसाधनों पर बोझ कम करने के लिए नागरिकों से एकजुट होने का आह्वान किया है। वडोदरा में सरदार धाम छात्रावास का लोकार्पण करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है कि इस स्थिति का देशवासियों पर कम से कम प्रभाव पड़े। प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से सात सूत्रीय को अपनाने का आग्रह दोहराया।
1: पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो, हम सोने की खरीद को टालें।
0: प्रधानमंत्री ने देशवासियों से विदेशों से आयातित उत्पादों का उपयोग कम करने और विदेशी मुद्रा के व्यय से जुड़े व्यक्तिगत कार्यों से बचने का आग्रह किया। इससे पहले प्रधानमंत्री सोमनाथ

अमृत महोत्सव में शामिल हुए श्री मोदी ने कहा कि सोमनाथ मंदिर अटूट आस्था, दिव्यता और देश की शाश्वत आत्मा का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि सोमनाथ अमृत पर्व केवल अतीत का उत्सव नहीं है, बल्कि ये आने वाले 1000 वर्षों तक देश की प्रेरणा बनेगा। प्रधानमंत्री ने सोमनाथ अमृत पर्व पर एक विशेष डाक टिकट और 75 रुपये का विशेष सिक्का भी जारी किया। केंद्र सरकार ने कहा है कि पेट्रोलियम उत्पादों की कोई कमी नहीं है। कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का 60 दिन और एलपीजी का 45 दिन का भंडार उपलब्ध है। विदेशी मुद्रा भंडार 703 अरब डॉलर के स्तर पर है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में हुई मंत्री समूह की बैठक में ये जानकारी दी गई। भारत उन चुनिंदा देशों में से है जहाँ पश्चिम एशिया संघर्ष शुरू होने के 70 दिन के बाद भी पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतें स्थिर बनी हुई हैं। सरकार ने कहा कि लोगों को घबराने या ईंधन और अन्य उत्पादों की अत्यधिक खरीद करने की आवश्यकता नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार से संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली के 6 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे, जहां वे राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता ऊर्जा सहयोग सहित द्विपक्षीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री नीदरलैंड जाएंगे, जहां वे किंग विलियम अलेक्जेंडर, क्वीन मैक्सिमा और प्रधानमंत्री रॉब से मिलेंगे। तीसरे चरण में प्रधानमंत्री स्वीडन के गोथेनबर्ग पहुंचेंगे, जहां वे प्रधानमंत्री उल्फ किस्टरसन के साथ व्यापार, हरित ऊर्जा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उभरती तकनीकों समेत कई क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री नॉर्वे में तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे। इस दौरान भारत और नॉर्डिक देशों के बीच तकनीक, हरित ऊर्जा, रक्षा और अंतरिक्ष जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा होगी। यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री इटली जाएंगे, जहां वे राष्ट्रपति सर्जियो मैटारेला और प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि ये यात्रा यूरोप के साथ भारत के व्यापार और निवेश संबंधों को और मजबूत करेगी। प्रवर्तन निदेशालय ने आज पश्चिम बंगाल सरकार के पूर्व अग्निशमन और आपातकालीन सेवा मंत्री सुजीत बसु को दक्षिण दमदम नगर पालिका भर्ती घोटाले के सिलसिले में कोलकाता से गिरफ्तार किया। जानकारी के अनुसार तृणमूल कांग्रेस सरकार के दौरान नगर पालिका में नौकरी दिलाने के बदले सुजीत बसु पर धन और अन्य लाभ लेने का आरोप है। असम में कल हेमंता बिस्व सरमा लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। गुवाहाटी में शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग के निमंत्रण पर 13 से 15 मई तक चीन की यात्रा पर रहेंगे। चीन के विदेश मंत्रालय ने आज ये जानकारी दी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: This is Akashvani. The news read by R.S. Raghu. Prime Minister Narendra Modi today called upon the citizens to unite to ease burden on national resources, terming the West Asia conflict one of decades' biggest crises. The Prime Minister was addressing the gathering after inaugurating the Sardar Dham Hostel at Vadodara in Gujarat.
1: पिछले कुछ वर्षों में दुनिया लगातार अस्थिर परिस्थितियों से गुजर रही है. पहले कोरोना का संकट, फिर वैश्विक आर्थिक चुनौतियां और अब पश्चिम एशिया में बढ़ता तनाव. अगर कोरोना महामारी इस सदी का सबसे बड़ा संकट थी तो पश्चिम एशिया में युद्ध से बनी परिस्थितियां इस दशक के बड़े संकटों में से एक है. ऐसे समय में देश को जन भागीदारी की शक्ति की बहुत बड़ी आवश्यकता है. आज जरूरत है कि हम सब मिलकर अपना दायित्व निभाएं, देश के संसाधनों पर पड़ने वाले बोझ को कम करें.
0: Prime Minister Modi said the government is making continuous efforts to ensure that this situation has the minimal possible impact on the people of the country. The Prime Minister reiterated his 7-point appeal to tackle the adverse impact of West Asia crisis. These include reducing fuel consumption, prioritizing work from home wherever possible,

एयर चालू है अभी, टाइम मिला लीजिए स्टूडियो में, 5:08:36 हुआ है और एलाउंसर बुथ की घड़ी में 5:08:11 हुआ है और अब माइक्रोफोन सेकंड से। हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो, ठीक है, मिल रहा है ये वाला? ओके, स्टेशन एक से।